मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 21वीं तिथि तदनुसार 12 सितंबर सन 2026 प्रातः के 5:56:30 हुए हैं। आरंभ होती है आज की हमारी प्रातःकालीन सभा। इस सभा में आपके साथ है आप

0: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6 बजे
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। अठारहवां ब्रिक्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। दो दिन तक चलने वाले इस वैश्विक सम्मेलन में विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले 11 देश शामिल होंगे। इसमें ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इस उच्च स्तरीय सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के नेता कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इनमें वैश्विक शासन व्यवस्था, बहुपक्षवाद, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आपदा से निपटने की क्षमता और जरूरी आपूर्ति श्रृंखला शामिल हैं। ब्रिक्स सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में हो रहा है। इसका विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। इस उच्च स्तरीय सम्मेलन में दुनिया के कई बड़े नेता भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अस्सीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन शामिल होंगे। इथियोपिया के प्रधानमंत्री आपी अहमद और अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ब्राजील का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री माउरो वियेरा करेंगे, जबकि सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद भी इसमें शामिल होंगे। सम्मेलन की शुरुआत ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन व्यवस्था और बहुपक्षवाद को मजबूत करना

0: पर सत्र से होगी। ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इसके बाद सभी सदस्य देश सामूहिक रूप से वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी में रात्रि भोज में वे शामिल होंगे। प्रधानमंत्री आज ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठक भी शामिल है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और वरिष्ठ अधिकारी नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुब्यांतो कल रात राजधानी पहुंचे। हवाई अड्डे पर कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने उनका स्वागत किया। वहीं बुरंडी के राष्ट्रपति एविरिस्ते नादियने शिमिए अफ्रीकी संघ का प्रतिनिधित्व करने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के लिए महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का समर्थक है।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत 18,77,000 मकानों को मंजूरी दी है। ये निर्णय बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 9वीं बैठक में लिया गया। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं शांता सक्सेना और हरीश भारद्वाज के स्वर में ये देशगान।

अभी आपने सुना ये देशगान शांता सक्सेना और हरीश भारद्वाज के स्वर में। वंदना में आइए, अब आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी का गाया ये भक्ति गीत।

0: इस भक्ति गीत के साथ ही आज की वंदना संपन्न होती है। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर राम विद्रोही का लेख, वाचक हैं राजेंद्र कुमार।
1: अहंकार मनुष्य की शक्ति है या कमजोरी, इस पर हर व्यक्ति की अपनी अलग राय हो सकती है। वास्तविकता तो यही है कि अहंकार मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी होती है और इसी कमजोरी के केंद्र पर मनुष्य सारी उम्र जीता रहता है। इसी कमजोरी की बुनियाद पर उसका सारा जीवन चलता है। इसी के लिए वो जीता है और इसी के लिए मरता है, क्योंकि वो अपने आसपास एक भ्रम पाल लेता है कि मैं कुछ हूँ। मैं कुछ हूँ को मनुष्य अपनी शक्ति मानकर अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देता है और एक दिन मौत आती है तो सब कुछ अपने साथ ले जाती है। वो सारा अहंकार जिसे पूरे जीवन भर इकट्ठा किया था, मजबूत किया था, बिखर जाता है। मौत से भी मनुष्य को इसीलिए डर लगता है कि उसने जीवन भर जिस अहंकार को निर्मित किया है, पाला पोसा है, वो बिखर जाएगा। इसलिए आदमी मौत से भय खाता है। मौत क्या है ये तो कोई जानता ही नहीं, क्योंकि उसे किसी ने देखा ही नहीं, जाना

0: ही नहीं, इसलिए उससे भय का कोई कारण नहीं हो सकता। जो अज्ञात है, अपरिचित है, उससे भय कैसा? असल में मौत के पीछे भय यही होता है कि जिस अहंकार को हमने जीवन भर खड़ा किया, मौत उसे बिखरा देती है, अपने साथ बहा ले जाती है। अहंकार मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है, लेकिन वो समझता है यही उसका बल है, शक्ति है। जो कमजोरी को ही अपनी शक्ति मान बैठा हो, तो उसका अहंकार की कमजोरी से छुटकारा पा सकना मुश्किल ही है। सारी कठिनाई उस समय और बढ़ जाती है जब आदमी अपनी इस बीमारी को ही सेहत मान बैठता है। हम सारे लोग अहंकार को, जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी है, उसे ही शक्ति मानकर जीवन भर उसके आसपास घूमते रहते हैं। ये नहीं देखने की कोशिश करते कि ये अहंकार ही हमारे सारे दुख, अशांति, सारी बेचैनी और सारी पीड़ा का कारण बन गया है। दुनिया में दो तरह के अहंकारी होते हैं, एक वे जो पद, शक्ति और धन को खोजते हैं, और दूसरे वे जो पद, धन और शक्ति का त्याग करते हैं। अहंकार की ये दोनों स्थितियां अतिवाद है। इसके अलावा एक तीसरी भी जीवन दिशा है, एक अनुभव है, और वो है जिसमें समस्या न अहंकार भरने की है और न छोड़ने की। जो सत्य को जानता है, उसे पता होता है कि अहंकार होता ही नहीं, वो तो अनुपस्थित था, एक छाया थी जिसके भ्रमपाश में मनुष्य जीवन भर डूबा रहा। अहंकार कोई वस्तु नहीं है, यह प्रतिपल संबंधों के बीच पैदा होने वाली घटना है। किसी मनुष्य को यदि जंगल में अकेला छोड़ दिया जाए तो उसे डर लगेगा, क्योंकि जंगल में अकेला होते समय अहंकार नहीं होता, वो पीछे छूट जाता है। इसलिए मनुष्य को जंगल में अकेले भय लगता है। अहंकार तो समाज के बीच रहते हुए पल प्रतिपल संबंधों के कारण होने वाली एक घटना है। मनुष्य अकेला होता है तो भयभीत होता है और अहंकार पीछे छूट जाता है। महात्मा बुद्ध ने अहंकार और आत्मा को एक सिक्के के दो रूप में देखा है। वो कहते हैं कि आत्मा या अहंकार ऐसा है जैसे हम अंधेरा होने पर दीपक जलाते हैं और अंधेरा छंटने, प्रकाश किरण प्रस्फुटित होते ही दीपक को बुझा देते हैं। हम समझते हैं कि शाम को जो दीपक जलाया था वही हमने सुबह बुझा दिया, लेकिन यह हमारा भ्रम है, क्योंकि दीपक की ज्योति तो हर पल बुझती जाती है और नई होती चली जाती है। एक ज्योति धुआं होकर चली जाती है और उसकी जगह दूसरी ज्योति स्थापित हो जाती है। दोनों के बीच का अंतराल इतनी तीव्रता से भरता है कि हमारी आंखें उसे पकड़ ही नहीं पाती, देख ही नहीं पाती। अहंकार जब ढल जाता है तो उसकी आंखों में चुभने वाली ज्वाला भी मिट जाती है। अहंकार जब डूब जाता है तब एक आभा रह जाती है हृदय के भीतर होने की। उस समय भी मेरी उपस्थिति रहती है, पर उसमें मेरे होने का अहंकार नहीं होता, कोई तूफान या शोरगुल नहीं होता, होने की कहीं घोषणा नहीं होती। कोई पूछे तो कहूंगा कि मैं हूं, और कोई नहीं पूछे तो पता ही नहीं चलेगा कि मैं हूं। जब अहंकार छूटता है तब ना कोई दुख रहता है, ना कोई पीड़ा, ना क्रोध, ना घृणा। तब हृदय के भीतर कभी नहीं भंग होने वाली शांति स्थापित होती है। हृदय आनंद और प्रेम से सराबोर हो जाता है।
1: कार्यक्रम चिंतन में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर राम विद्रोही का आलेख, वाचक थे राजेंद्र कुमार। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

अयोध्या से आई बारात की चहल पहल जनकपुर में चहुं ओर दिखाई दे रही है। हेमंत ऋतु अगहन का सुहा

सुहावना महीना, ग्रह तिथि, नक्षत्र योग तथा शुभ दिन सभी अनुकूल होकर जब एकत्र हुए तो स्वयं ब्रह्मा ने लग्न पत्रिका बनाकर मुनिवर नारद के हाथों से राजा जनक के पास भिजवाया। शुभ मुहूर्त आया देख राजा जनक की नगरी में मंगल वाद्यों की ध्वनि गूंज उठी।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा। आज की जानकारी का विषय है पशुओं के आहार में खनिज मिश्रण की उपयोगिता। जानकारी दे रहे हैं सोहन सिंह।
1: किसान भाइयों, पशु अधिकतर कभी न कभी मिट्टी या दूसरे बिना उपयोग की वस्तुएं खाना शुरू कर देते हैं, जैसे कपड़े, कागज़, चमड़े के जूते, लकड़ी, चलते चलते रास्ते में दीवारों को चाटना, गंदी नालियों में से गंदा पानी पीना। एक पशु

0: द्वारा दूसरे पशु के शरीर को चाटना या अपना ही मूत्र पीना। पशुओं में ये लक्षण पशुपालकों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन जाते हैं। पशुओं के ये लक्षण आगे चलकर आदत में बदल जाते हैं। पशुओं में पनपी आदतों को छुड़ाने के लिए पशुपालक तरह तरह के उपाय अपनाते हैं। ये सभी लक्षण पशु में जब ही उत्पन्न होते हैं, जबकि पशु के शरीर में किसी कारणवश कुछ आवश्यक खनिज तत्वों की कमी हो जाती है और यह कमी पूरा करने के लिए पशु मिट्टी खाना शुरू कर देते हैं। पशु में मिट्टी खाने का मुख्य कारण पेट में गोल कृमियों का पैदा होना है और यह कृमि पशुओं के शरीर में खनिज तत्वों की कमी पैदा कर देते हैं। पशुओं को जो चारा दाना खिलाते हैं उसमें खनिज तत्वों की कमी होना या पशुओं को संतुलित आहार न मिलने के कारण कैल्शियम और फास्फोरस जैसे खनिज तत्वों की कमी हो जाती है। जो पशु गर्भधारण किए हुए या दूध देने वाले पशुओं में सामान्यतः कमी हो जाती है, जबकि ऐसे पशुओं को अधिक मात्रा में खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है। कभी कभी हरे चारे वाली फसलों को समय पर काटकर पशुओं को नहीं खिलाया जाता है, जिससे पशुओं में खनिज तत्व और दूसरे पौष्टिक तत्वों की कमी होने लगती है। जो पशु गंदे तालाबों का पानी पीते हैं, जिससे उनके पेट में कई प्रकार के कृमि और अंडे चले जाते हैं और ये कृमि पेट में जाकर तत्वों की कमी कर देते हैं। पशुओं में खनिज तत्वों की कमी न हो इसके लिए पशुओं को समय समय पर कृमिनाशक दवाएं देते रहना चाहिए। सबसे पहले पशुओं के गोबर की जांच करवानी चाहिए, उसके बाद ही कृमिनाशक दवाएं पिलानी चाहिए। कृमिनाशक दवाएं अधिकतर पशु के वजन के अनुसार दी जाती हैं, इसलिए पशु चिकित्सक के मार्गदर्शन में पानी, दही या लस्सी में घोल बनाकर पिलाएं। पशुओं को हरे चारे और दाने के साथ साथ 40 से 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 20 से 25 ग्राम साधारण नमक देना चाहिए। पशुओं को हमेशा मिश्रित हरा चारा ही खिलाएं, इससे पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार मिलेगा। जहां पर चारे वाली फसलें उगा रहे हैं वहां पर संतुलित खादों का प्रयोग करना चाहिए। बीज की बोनी से पहले मिट्टी परीक्षण अवश्य करवाएं और जो भी तत्व भूमि में कम हो उसकी पूर्ति करनी चाहिए। ऐसा करने से भूमि में तत्वों का संतुलन बना रहेगा और चारे की पैदावार अच्छी मिलेगी। प्राप्त चारे में सभी तत्व उपलब्ध होंगे और पशुओं के शरीर में किसी भी तत्व की कमी नहीं होने पाएगी। जहां तक संभव हो सके पशुओं को साफ, स्वच्छ और ताज़ा पानी पिलाना चाहिए। पशुशाला को कृमि रहित और साफ स्वच्छ रखना चाहिए। पशुओं के गोबर और मूत्र की निकासी का उचित प्रबंध होना चाहिए। पशुशाला हवादार स्वच्छ होनी चाहिए। मक्खी मच्छरों से बचाव के लिए नीम की पत्ती जलाकर शाम के समय धुआं कर देना चाहिए। पशुशाला के आसपास कीटनाशक चूर्ण समय समय पर छिड़काव करते रहने चाहिए, जिससे पशु में मिट्टी खाने की समस्या नहीं आएगी। पशु स्वस्थ रहेंगे, रोग रहित रहेंगे, जिससे उनकी उत्पादन क्षमता प्रभावित नहीं होगी।
1: पशुओं के आहार में खनिज मिश्रण की उपयोगिता। इस विषय पर अभी कार्यक्रम कृषि चर्चा में जानकारी दे रहे थे सोहन सिंह। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है सूचना परक कार्यक्रम दर्पण।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
4: मन की बात है जन जन की बात। संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की। अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात।
5: बधाई हो दद्दा, बहुत बहुत बधाई हो, बिटिया जन्मी है, घर में लक्ष्मी आई है, बहुत बहुत बधाई हो।
6: बेटी को भी समझे बेटा समान, उड़ने को दे खुला आसमान, फिर देखें बेटियों की उड़ान, नाप लेंगी अपने नन्हे परों से पूरा आसमान।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। अठारवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। 2 दिन तक चलने वाले इस वैश्विक सम्मेलन में विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले 11 देश भाग ले रहे हैं। इसमें ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के नेता कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। सम्मेलन की शुरुआत ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन व्यवस्था और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी। प्रधानमंत्री आज ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठक भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेशकियन और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। रूस के राष्ट्रपति के साथ बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने राजनीति, व्यापार और अर्थव्यवस्था सहित सहयोग के प्रगति की समीक्षा की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेशकियन के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों और पश्चिमी एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच में श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता

0: और नाविकों की सुरक्षा का समर्थक है।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्राध्यक्ष भी संबोधित करेंगे। एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया एसोचैम ने वैश्विक सहयोग और ग्लोबल साउथ के लिए शक्तिशाली मंच के रूप में ब्रिक्स को मजबूत करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण की सराहना की है। एसोचैम के अध्यक्ष निर्मल कुमार मिंडा ने कहा कि ब्रिक्स सहयोग को ठोस व्यावसायिक परिणामों में बदलने का प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण है। सम्मेलन को देखते हुए आज सवेरे 9:30 बजे से रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में परिवर्तन और नियंत्रित आवागमन लागू किया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन, विशेष रूप से मेट्रो रेल लाइन का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत 18,77,000 मकानों को मंजूरी दी है। ये निर्णय बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 9वीं बैठक में लिया गया। बैठक में योजना के दूसरे चरण में किफायती आवास श्रेणियों के अंतर्गत लगभग 29,000 अतिरिक्त मकानों को भी मंजूरी दी गई। ये अनुमति असम, बिहार, गुजरात, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश के लिए है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रुपये की पेंशन सुनिश्चित की गई है। महिला एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में कल भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। श्रीलंका ने कल पाकिस्तान को 4 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। पाकिस्तान के 131 रन के लक्ष्य को श्रीलंका ने 4 विकेट खोकर 19वें ओवर में हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में 7 बार की विजेता टीम ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 रन से हराया था। एशिया कप जूनियर महिला हॉकी के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया से होगा। चीन के मोकी में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार सवेरे 9:45 से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हमारे भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा।

7:20 पर हमारे केंद्र से आप सुनेंगे डॉक्टर सत्य केतु सांकृत की वार्ता भगवती चरण वर्मा का कथा साहित्य। 7:30 बजे फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा। 8 बजे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज। ये दोनों ही समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे।

0: सुबह 8:30 बजे आप सुनेंगे पॉडकास्ट भविष्य शिक्षा तकनीकी और युवा। एबीवी ट्रिपल आईटीएम ग्वालियर के निदेशक प्रोफेसर श्रीनिवास सिंह से बात करेंगी विभूति सिंह। 9 बजे गुड मॉर्निंग ग्वालियर और 9:30 बजे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। सेहत की बात तरानों के साथ 10:05 पर सुना जा सकता है। हमारे केंद्र से 7:20 पर आप सुनेंगे कुछ बुंदेली लोकगीत। ये थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे।
1: जन जन सब गाएं मिल मधुर गा।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार। आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। इंदौर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल यात्री परिवहन विजन समिट 2026 का शुभारंभ किया। महिला एशिया कप के फाइनल में कल भारत का श्रीलंका से होगा सामना। और प्रदेश में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन, आपसी सहमति से होगा मामलों का निराकरण। अब समाचार विस्तार से। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। दो दिवसीय सम्मेलन में सदस्य देशों के नेता वैश्विक शासन व्यवस्था, बहुपक्षवाद, व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सहित कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण थीम पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इंडोनेशिया और ईरान के राष्ट्रपति सहित कई देशों के नेता इसमें भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन से इतर विभिन्न देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय मजबूती, इनोवेशन, सहयोग और सस्टेनेबिलिटी के लिए निर्माण है। कल नई दिल्ली में ब्रिक्स बिजनेस फोरम के लीडर्स सेशन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने इस मंत्र को अपनी आर्थिक और व्यापारिक नीतियों का आधार बनाया है। इस साल ब्रिक्स के 20 वर्ष पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2006 में 4 देशों से शुरू हुआ यह समूह अब सदस्य और साझेदार देशों को मिलाकर 21 देशों का परिवार बन चुका है, जो दुनिया की 50% आबादी, 40% जीडीपी और 25% से अधिक व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है।
1: ब्रिक्स बिजनेस कम्युनिटी के लीडर्स, इनोवेटर्स और फ्रेंड्स, नमस्कार। ब्रिक्स बिजनेस फोरम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वर्ष हम ब्रिक्स के 20 ईयर्स मना रहे हैं। 2006 में जब इस समूह की शुरुआत हुई थी तो इसमें केवल 4 देश थे। आज ब्रिक्स और ब्रिक्स पार्टनर्स मिलाकर 21 कंट्रीज का हमारा परिवार है।
0: इस अवसर पर सजे ब्रिक्स बाजार में धार जिले की विश्व प्रसिद्ध बाघ प्रिंट विदेशी प्रतिनिधियों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। प्राकृतिक रंगों और लकड़ी के नक्काशीदार ब्लॉक से तैयार इस पारंपरिक कला का यहां जीवंत प्रदर्शन किया जा रहा है। विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने बाघ प्रिंट की प्रक्रिया को करीब से देखा और स्वयं लकड़ी के ठप्पों से कपड़े पर प्रिंट लगाकर इसकी बारीकियां जानी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के अंतर्गत यात्री परिवहन विजन समिट 2026 का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सुगम, सुरक्षित और आधुनिक यात्री परिवहन व्यवस्था विकसित की जा रही है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा 25 सितम्बर से शुरू होगी। इसे देश की बेहतरीन सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का मॉडल बनाने का लक्ष्य है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: 25 सितंबर को मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का मंगल आरंभ होने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इंदौर में 2 दिवसीय यात्री परिवहन विजन समिट 2026 का शुभारंभ करते हुए ये घोषणा की। उन्होंने बताया कि सेवा के जरिए प्रदेश में सुरक्षित, सुलभ, किफायती और तकनीक सक्षम सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी।
3: हर एक वर्ग के कल्याण के लिए, ऑपरेटर के लिए भी, सरकार के लिए भी, यात्रियों के लिए भी और नई टेक्नोलॉजी को अपनाने वालों के लिए भी। 20 साल में ये जो 360 से बदलने का समय आया, सरकार पूरी ताकत के साथ आप सबके साथ खड़ी है।
2: मुख्यमंत्री डॉ. यादव का फोकस है ग्रीन मोबिलिटी के साथ प्रदेशवासियों की यात्रा आसान, सुरक्षित और स्मार्ट बने, साथ ही रोजगार और व्यापार को भी बल मिले। आखिर यही तो है आगे बढ़ते नए मध्य प्रदेश की सशक्त पहचान।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 साल पूरे हो गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रुपये की पेंशन सुनिश्चित की गई है। इस पेंशन योजना का उद्देश्य किसानों को वृद्धावस्था में आर्थिक स्थिरता और सम्मान के साथ जीवन जीने में सहायता देना है, ताकि उनका जीवन अधिक सुरक्षित और शांतिपूर्ण हो। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
4: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में काले हिरण और चिंकारा के अवैध शिकार के मुख्य आरोपी संबाह अतुल्य की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। एसटीएसएफ इंदौर, स्थानीय पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने किशनगंज में कार्रवाई कर करीब 65 किलोग्राम वन्यजीव मांस, एक देशी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, तस्करी में इस्तेमाल टोयोटा इनोवा क्रिस्टा वाहन जब्त कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। मामले में अब तक संगठित अंतर्राज्यीय तस्कर गिरोह के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। प्रदेश में आज राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसमें लंबित और राजीनामा योग्य मामलों का आपसी सहमति से निराकरण किया जाएगा। दतिया में जिला न्यायालय परिसर से प्रचार प्रसार वाहन रवाना किया गया, जो शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को लोक अदालत की प्रक्रिया और लाभों की जानकारी देगा। विद्युत वितरण कंपनी के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग के 16 जिलों में बिजली चोरी और अन्य अनियमितताओं से जुड़े लंबित प्रकरणों का भी समझौते के माध्यम से निराकरण होगा। पांडुना जिले में कल शुक्रवार को करीब 300 वर्ष पुरानी परंपरा के तहत गोटमार मेले का आयोजन किया गया। जाम नदी के दोनों किनारों पर बसे पांडुरना और सांवर गांव के लोगों के बीच पलाश के झंडे पर कब्जे को लेकर जमकर पथराव हुआ, जिसमें 1326 लोग घायल हुए हैं। 8 गंभीर घायलों को नागपुर रेफर किया गया है। घायलों के उपचार के लिए 7 अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र, 44 डॉक्टर और 22 एम्बुलेंस तैनात की गई थी। महिला एशिया कप क्रिकेट में दुबई में कल भारतीय टीम फाइनल में पिछले चैंपियन श्रीलंका से भिड़ेगी। श्रीलंका की टीम आज पाकिस्तान को 4 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंच गई। 131 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका की महिला क्रिकेट टीम ने 4 विकेट खोकर 8 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। श्रीलंका ने 2024 के फाइनल में भारत को हराकर अपना पहला एशिया कप खिताब जीता था। प्रदेश में मॉनसून फिर सक्रिय हो गया है। कल शुक्रवार को भोपाल, दमोह, टीकमगढ़, विदिशा समेत कई जिलों में बारिश हुई। भोपाल में तेज आंधी के साथ हुई बारिश से दृश्यता 100 मीटर से भी कम हो गई, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। वहीं दमोह के निचले इलाकों में पानी भर गया। मौसम विभाग ने शनिवार को प्रदेश के 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कटनी में संचालित स्कूल बसों व अन्य वाहनों की सघन जांच में 8 की फिटनेस निरस्त कर 11 वाहन थाना बरही में खड़े कराए गए। मंडला जिले में न्यायालयों में लंबित तो प्री लिटिगेशन प्रकरणों के आपसी सुलह समझौतों के माध्यम से त्वरित निराकरण के लिए आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। खंडवा जिले के हरसू क्षेत्र के ग्राम चारखेड़ा स्थित इतली पार्क में आज रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। अशोकनगर के व्रत मुंगावली की टीम द्वारा निरंतर गश्त और दबिश दी गई। सोरान ग्राम सागरचक, ग्राम नई बसात, ग्राम मेरकाबाद में अवैध मदिरा की शिकायत पर चेकिंग की गई। मध्यप्रदेश शासन के मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने कल जिला पंचायत धार के सभाकक्ष में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान 2026 के तहत संवाद किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 13 सितंबर को आगरमालवा में लाडली बहना योजना के हितग्राही बहनों को माह सितंबर की राशि का वितरण और विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। जबलपुर में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत संभागायुक्त धनंजय सिंह ने कल पाटन विकासखंड के कटंकी में विभिन्न शासकीय संस्थाओं का निरीक्षण किया। वहीं झाबुआ में कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने कल मेघनगर विकासखंड के विभिन्न गांवों का भ्रमण कर आंगनबाड़ी स्कूल और ग्राम पंचायत फतेहपुरा और आमली पठार का निरीक्षण किया। इंदौर में आज होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए 81 खंडपीठों का गठन किया गया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है डॉक्टर सत्यकेतु सांकृत की वार्ता भगवती चरण वर्मा का कथा साहित्य।
1: भगवती चरण वर्मा हिंदी के एक महत्वपूर्ण कथाकार हैं। प्रेमचंद युग के उत्तरार्ध में ही उन्होंने एक सफल कथाकार के रूप में अपनी पहचान बना ली थी। भगवती बाबू ने 1934 में चित्रलेखा और 1936 में तीन वर्ष नामक उपन्यासों की रचना की थी। इनमें चित्रलेखा की गणना हिंदी के कुछ सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासों में की जाती है। यह एक भारतीय दर्शन पाप क्या है और उसकी स्थिति कहाँ है पर आधारित उपन्यास है, जिसके समाधान की खोज में श्वेतांक और विशाल देव निकलते हैं। श्वेतांक मगध के सामंत बीजगुप्त के साथ और विशाल देव योगी कुमारगिरी के साथ रहने लगता है। बीजगुप्त भोगी है और कुमारगिरी योगी, पर बीजगुप्त भोग विलास का जीवन व्यतीत करके भी उससे निसंग रहता है, जबकि कुमारगिरी इंद्रिय दमन और संयम के मार्ग पर चलकर भी अंत में उससे हट जाता है। इसी परीक्षा में राजनर्तकी चित्रलेखा कसौटी बनती है। वही कथा को रोचक भी बनाती है जो इस उपन्यास की लोकप्रियता का आधार है। इस कथा में यह निर्णय करना कठिन है कि चारित्रिक दृष्टि से बीजगुप्त महान है या कुमारगिरी। अंत में समाधान यह निकलता हुआ प्रतीत होता है कि संसार में पाप मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का ही दूसरा नाम है। वर्मा जी के दूसरे उपन्यास तीन वर्ष में भी एक नैतिक समस्या को ही उपन्यास का मुख्य विषय बनाया गया है। प्रेम की परिणति विवाह में आवश्यक है या नहीं,

यही इस उपन्यास का विषय है। उपन्यास में प्रमुख पात्र रमेश और प्रभा एक दूसरे से प्रेम करते हैं, पर दोनों के प्रेम संबंधी दृष्टिकोण में भिन्नता है। रमेश प्रेम को

रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस अवधि में उनके प्रकाशित होने वाले उपन्यास हैं टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, आखिरी दांव 1950, अपने खिलौने 1957, भूले बिसरे चित्र 1959, वह फिर नहीं आई 1960, सामर्थ्य और सीमा 1962, थके पांव 1963, रेखा 1964, सच्ची सीधी बातें 1968, सभी नचावत राम गोसाई 1970, प्रश्न और मरीचिका 1973 आदि। कथ्य की दृष्टि से ये उपन्यास 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक से लेकर भारत पर चीनी आक्रमण तक के समय को उसके व्यापक और वैविध्यपूर्ण आयाम में प्रस्तुत करते हैं। इन उपन्यासों में इस अवधि में भारत में होने वाले राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक उथल पुथल का अंकन किया गया है। इस दृष्टि से भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा, सीधी सच्ची बातें, प्रश्न और मरीचिका, टेढ़े मेरे रास्ते और सब ही नचावत राम गोसाई विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भूले बिसरे चित्र भगवती बाबू का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है, जिसमें तीन पीढ़ियों 1890 से 1930 की सोच और मानसिकता के बदलाव, पुरानी पीढ़ी के साथ नई पीढ़ी के संघर्ष, औपनिवेशिक शासन के प्रति बुद्धिजीवी वर्ग के मोह भंग और विद्रोह का अंकन किया गया है। सीधी सच्ची बातें में भी राष्ट्रीय आंदोलन को बुद्धिजीवियों और नेताओं के दृष्टिकोण से ही समझने की कोशिश की गई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में प्रजातंत्र की स्थापना तो जरूर हुई, पूंजीवाद की शक्तियां कमजोर होने की जगह दिनों दिन शक्तिशाली होती गईं। आपराधिक परंपरा से जुड़े व्यक्तियों का भी आगमन राजनीति में होने लगा था और सामान्य रूप से सेवा भाव की जगह सत्ता लोभ प्रबल होने लगा था। भगवती चरण वर्मा ने अपने उपन्यासों में इस स्थिति का अंकन प्रमुखता के साथ किया है। सभी नचावत राम गोसाई और प्रश्न और मरीचिका में इन स्थितियों का सशक्त चित्रण किया गया है। व्यंग्यात्मक शैली अपनाकर उपन्यासकार को इसे प्रभावशाली बनाने में बहुत सफलता मिली है। सभी नचावत राम गोसाई में डकैत नाहर सिंह का पोता जबर सिंह आज़ादी की लड़ाई में गुंडागिरी से आरंभ करके तिकड़म तथा धन और गुंडा शक्ति के बल पर राजनीति के खेल खेलता है। कुल मिलाकर भगवती बाबू के प्रायः सभी उपन्यासों में भ्रष्टाचार और नैतिक राजनीतिक स्खलन का चित्रण प्रमुखता के साथ हुआ है। भगवती चरण वर्मा एक मुकम्मल कथाकार थे। उन्होंने उपन्यास के साथ साथ कहानियां भी लिखी थीं। 1936 ईस्वी में उनका पहला कहानी संग्रह दो बांके और 1937 में इंस्टॉलमेंट प्रकाशित हुआ। प्रायश्चित, दो बांके, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, इंस्टॉलमेंट, वरना हम भी आदमी थे काम के, एक अनुभव, विवशता आदि कहानियां इनमें संकलित थीं। इन कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी व्यंग्य शक्ति थी। भगवती बाबू के समय व्यंग घुटुरन चलत रेन उतन मंडित की स्थिति में था। यद्यपि उसके पूर्व भारतेंदु मंडल के हाथों वह अपना आकार ग्रहण कर प्रेमचंद के साहित्य में एक सशक्त गद्य विदा के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका था, पर अभी भी उसके माध्यम से बहुत कुछ कार्य होना था। स्वतंत्रता के उपरांत प्रेमचंद उत्तर युग में सामाजिक और राजनीतिक स्थितियां जिस प्रकार से बदल रही थीं, उसमें उसकी विद्रूपता को सहज ही निहारा जा सकता था। बस जरूरत थी एक संवेदनात्मक दृष्टिकोण की। भगवती बाबू ने अपनी कहानियों में व्यंग्य के जिस रूप को हमारे सामने प्रस्तुत किया है, वह उनके विदेवादी विजन का ही परिचायक है। एक तरह से कहा जा सकता है कि उन्होंने गद्यात्मक व्यंग्य को शैशवावस्था से बाहर निकालने का काम किया और आगे आने वाले रचनाकारों के लिए एक सशक्त मार्ग उपलब्ध कराया। वर्मा जी गद्यम कविनाम निक्षम वदंती वाले कहावत को भी पूरी तरह चरितार्थ करते हुए प्रतीत होते हैं। अपनी गद्यात्मक भाषा में उन्होंने जिस तरह के काव्य शैली उपकरणों का प्रयोग किया है, उससे उनकी भाषा कविता के निकट जाती प्रतीत होती है। व्यंग्य के लिए जिस भाषा की आवश्यकता होती है, वह उनकी रचनाओं में भरपूर मात्रा में मिलती है। व्यंग्य का जैसा सृजनात्मक उपयोग भगवती बाबू के यहाँ मिलता है, उसे देखकर बतौर श्रीलाल शुक्ल यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया जा सकता है कि भगवती बाबू की इस प्रकार की कहानियाँ इस शताब्दी के
छठे

0: और परवर्ती दशकों में प्रचुरता के साथ लिखी जाने वाली व्यंग्यपरक कहानियों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा स्रोत भी मानी जा सकती हैं। वर्मा जी की कहानियों की विशेषता यह है कि वे समकालीन जीवन की दैनंदिन स्थितियों की विसंगति को बड़े हल्के ढंग से उद्घाटित करती हुई रोचकता के साथ हमें किसी ऐसी मूढ़ता के विषय में सचेत करती है जो कहानी में व्यक्तिगत दिखते हुए भी मूलतः सामूहिक है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भगवती बाबू के कथा संसार की विविधता और उसका व्यंग्यात्मक प्रस्तुतिकरण ही उन्हें अपने समकालीन रचनाकारों में वह वैशिष्ट्य प्रदान करता है जिसने परवर्ती हिंदी कथा साहित्य को एक सुदृढ़ आधार प्रदान किया।
1: भगवती चरण वर्मा का कथा साहित्य। अभी आपने डॉक्टर सत्यकेतु सांकृत से उनकी ये वार्ता सुनी। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

0: पंछी बोले पते की बात, जंगल धरती की सौगात, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
1: जो होंगे जंगल तो आएंगे बादल, बरसेगा पानी, धरती की चूनर हो जाएगी धानी, और पंछी छेड़ेंगे स

आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम। लेकर हाजिर है आपकी दोस्त तुलिका।

0: अभी आपने फिल्म चरस का ये गीत सुना। आवाज़ें थीं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और आनंद बख्शी की। गीत आनंद बख्शी का ही था और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: सो योर प्लेस और माइन।
6: उसके पहले ये बताओ, तुम्हारे पास कॉन्डम है?
5: कॉन्डम? लेकिन हम तो
6: क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
5: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
7: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: लता मंगेशकर के साथ आइए सुनते हैं नितिन मुकेश को। जानिसार अख्तर के गीत को संगीतबद्ध किया है खयाम ने फिल्म नूरी के लिए।

0: 5 महीने हो गए ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए, नए स्किल सीखने हैं पर पैसे भी कमाने हैं, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
1: तो फिर सोच कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई।
0: क्या, कैसे?
1: अरे मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, 12th ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जहां तुम स्किल्स भी सीख सकते हो और 10,000 तक का स्टाइपेंड भी कमा सकते हो।
0: वाह, अच्छा रजिस्टर कैसे करें?
1: mmsky.mp.gov.in पर। MMSky, सीखो भी कमाओ भी।
2: लता मंगेशकर और अमित कुमार को आइए सुनते हैं फिल्म लव स्टोरी में, गीत आनंद बख्शी का, संगीत राहुल देव बर्मन का।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार को अभी आपने सुना, फिल्म थी रॉकी। अमित कुमार और आशा भोसले को आइए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं। गुलशन बावरा का गीत है, संगीत राहुल देव बर्मन का, फिल्म का नाम जवानी।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज अब दिल्ली से होंगे।
1: अठारवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू। दो दिन के सम्मेलन में वैश्विक सुशासन, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग सहित ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच में प्रधानमंत्री मोदी ने स्थायी वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री और आपूर्ति मार्ग तथा व्यापारिक बाधाएं हटाने पर बल दिया। सऊदी अरब ने हमले के बाद महत्वपूर्ण पाइपलाइन बंद की। यमन में हौसी विद्रोहियों की महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत हुई। उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में बाढ़ का प्रकोप, राहत और बचाव कार्य तेज। और जूनियर एशिया कप महिला हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना दक्षिण कोरिया से। अठारवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रहा है। दो दिन तक चलने वाले इस वैश्विक सम्मेलन में विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले 11 देश भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के नेता कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन की शुरुआत ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन व्यवस्था और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठक भी शामिल है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ऐसे समय पर हो रहा है जब वैश्विक स्तर पर अस्थिरता का माहौल है। साथ ही विभिन्न देशों के शीर्ष नेता पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में चल रहे संघर्ष, ऊर्जा संकट और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बीच इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। ब्रिक्स प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक नीतियों के समन्वय के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह वह मंच है जहां ये देश ग्लोबल गवर्नेंस से जुड़े मुद्दों पर साझा दृष्टिकोण तैयार करते हैं। वहीं निरंतर संवाद के माध्यम से ब्रिक्स बहुपक्षीय संस्थाओं के भीतर ग्लोबल साउथ के हितों को आगे बढ़ाने का एक प्रभावी माध्यम बन गया है। ब्रिक्स का एजेंडा विकास, वित्त, प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे व्यापक क्षेत्रों तक फैला हुआ है। यह समूह विश्व स्तर पर उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बढ़ते आर्थिक प्रभाव और उनकी आकांक्षाओं को दर्शाता है। भारत की अध्यक्षता सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर आधारित है। इसमें विकास, स्थिरता और नवाचार को एजेंडे के केंद्र में रखा गया है। साथ ही यह ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को भी प्रमुखता देता है। भारत का उद्देश्य ब्रिक्स को एक रचनात्मक समाधान

0: केंद्रित और परिणाम वाले मंच के रूप में और अधिक सशक्त बनाना है। सुपर्णा सेकिया और अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।
2: रूस के राष्ट्रपति के साथ बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने राजनीति, व्यापार और अर्थव्यवस्था, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, कौशल या हुनर वाले पेशेवरों को एक दूसरे के यहाँ काम करने का अवसर देना और लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित कई क्षेत्रों में भारत रूस के बीच सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही संघर्षों को सुलझाने का सही तरीका है और भारत शांति के प्रयासों में सहायता के लिए तैयार है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री ने उनका निमंत्रण स्वीकार किया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों और पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की। श्री मोदी ने भारत के इस रुख को लगातार दोहराया कि सभी मुद्दों को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी की। दोनों नेताओं ने दुनिया भर में चल रहे टकरावों, आवागमन की आजादी, सतत विकास, अक्षय ऊर्जा, वैश्विक खाद्य सुरक्षा और मानव केंद्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मुद्दों पर चर्चा की। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए कई देशों के नेता और वरिष्ठ अधिकारी नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर आसियान के मौजूदा अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो कल रात राजधानी पहुंचे। बुरुंडी के राष्ट्रपति एवरिस्ते नदायशिमे अफ्रीकी संघ का प्रतिनिधित्व करने के लिए नई दिल्ली पहुंचे हैं। अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भी भारत पहुंच चुके हैं। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह असीसी, इथोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान भी कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए। रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्सी ओवरचुक और थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री सिहासिक फुआंग केटकेओ भी कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए। नाइजीरिया के उपराष्ट्रपति काशिम शेटिमा नई दिल्ली पहुंच गए हैं। सुपर्णा और अनुपम की रिपोर्ट के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थायी वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री मार्ग, निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला और समुद्री नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल ब्रिक्स व्यापार मंच में ब्रिक्स देशों से व्यापारिक बाधाएं दूर करने और कारोबार के लिए नए अवसरों का विस्तार करने की दिशा में काम करने का भी आग्रह किया।
4: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट ओपन हो और सी फेरर सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व में बढ़ती व्यापारिक बाधाओं के बीच भारत आर्थिक सेतु बनाने की दिशा में काम कर रहा है।
4: आज जब दुनिया में ट्रेड बैरियर्स बढ़ रहे हैं, भारत इकोनॉमिक ब्रिजेज बना रहा है। 2014 के बाद से हमने दुनिया के करीब 40 कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। इसमें भी हमारी अप्रोच यही है कि बैरियर्स को कम करना और बिजनेसेस के लिए अवसर बढ़ाना।
1: भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल एसोचैम के अध्यक्ष निर्मल कुमार मिंडा ने कहा है कि ब्रिक्स सहयोग को ठोस व्यावसायिक परिणामों में बदलने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण है।
5: ब्रिक्स का गठन व्यापार के उद्देश्य से हुआ था, लेकिन अब इसका दायरा कई क्षेत्रों तक बढ़ गया है, जैसे वैश्विक राजनीति, आतंकवाद, कृषि और आवागमन से जुड़ी चुनौतियां। इसलिए 11 देशों का इसमें शामिल होना महत्वपूर्ण है। मेरा मानना है कि इन देशों के बीच न सिर्फ व्यापार और सहयोग बढ़ना चाहिए, बल्कि जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते हैं, यह दुनिया के लिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साकार करने वाला मंच बन सकता है।
6: वसुदेव कुटुंबकम।
1: सम्मेलन को देखते हुए आज सवेरे 9:30 बजे से रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में परिवर्तन और नियंत्रित आवागमन लागू किया गया है। वहीं दिल्ली मेट्रो कल सवेरे 6 बजे से सभी लाइनों पर अपनी सेवाएं शुरू करेगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
7: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी।

0: जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी।
4: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। वर्ष 2019 में शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत फरवरी 2026 तक देश भर में 24,96,000 से अधिक किसान पंजीकृत हो चुके हैं। इनमें हरियाणा राज्य करीब 5,75,000 पंजीकरण के साथ पहले स्थान पर है, जबकि बिहार में 3,46,000 से अधिक किसान इस योजना से जुड़ चुके हैं। फरवरी 2026 तक इस योजना के कार्यान्वयन और इसकी पहुँच आने पर 540 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का उद्देश्य किसानों को वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित कराना है, जो देश की खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। शिवांग की रिपोर्ट के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
3: उत्तर प्रदेश में बाढ़ की बिगड़ती स्थिति के बीच राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक अकेले गुरुवार को लगभग 8,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, जबकि अब तक लगभग 21,000 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित आश्रय भी मुहैया कराया जा रहा है। बाढ़ के दौरान बीमारियों के फैलने के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से सक्रिय है। प्रभावित इलाकों में लगभग 1100 डॉक्टरों की टीमें तैनात की गई हैं। उधर राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
3: सऊदी अरब ने ड्रोन हमले के एक दिन बाद देश भर में फैली एक बड़ी तेल पाइपलाइन को बंद कर दिया है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि हमले के बाद ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को बंद किया गया है। यमन के हौसी विद्रोहियों ने मोखा बंदरगाह और पेरिम द्वीप पर कब्जा कर लिया है। इससे पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में एक नया मोर्चा खुल गया है। बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य दुनिया के प्रमुख नौवहन मार्गों में एक है। एशिया कप जूनियर महिला हॉकी के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। चीन की मोकी में ये मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 9:45 पर खेला जाएगा। इससे पहले कल भारतीय पुरुष टीम ने मलेशिया को 3-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में कल भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। श्रीलंका ने कल पाकिस्तान को 4 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। प्रतियोगिता में 7 बार की विजेता भारत ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 से हराया था। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
6: धन्यवाद मुकेश। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले बिजनेस फोरम की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने सम्मेलन शीर्षक से लिखा है, ब्रिक्स व्यापारिक बाधाएं हटाएं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, ब्रिक्स से बना ब्रिज, पुतिन से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा शांति के प्रयासों में मदद के लिए तैयार। जनसत्ता के अनुसार समुद्र में नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। दैनिक जागरण लिखता है, ब्रिक्स मंच पर साथ आए मोदी पुतिन फिजिशकियन। अमर उजाला की सुर्खी है, जीडीपी आंकड़ों पर आईएमएफ की मोहर, भारत को दुनिया का ग्रोथ इंजन बताया। कहा आईआईपी और पीपीआई की नई श्रृंखला से बेहतर होगी आंकड़ों की गुणवत्ता। पत्र के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में 45 अरब डॉलर की रिकॉर्ड बढ़त। ई कॉमर्स शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, ऑनलाइन खरीदारी में फर्जी डिस्काउंट पर लगा, एमआरपी बढ़ाकर बड़ा डिस्काउंट का खेल नहीं चलेगा, पिछले 30 दिन की सबसे कम कीमत बतानी होगी। पंजाब केसरी की सुर्खी है, मलेशिया को हरा भारतीय हॉकी टीम फाइनल में, जूनियर एशिया कप में लगातार चौथे और कुल छठे खिताब पर नजरे। लोकसत्ता के अनुसार महिला एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में पहुंचा भारत, पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 रन से हराया। दैनिक भास्कर ने खास खबर में दिया है, भारतवंशी वसुधा ने अमरीकी गणितज्ञ जोआन को 92 वर्ष की उम्र में दोबारा गणित से जोड़ा। मैथ से दूरी बना चुकी थी जोआन, लेकिन छात्रा वसुधा की जिद ने भर दी ऊर्जा, गुरु शिष्या के जुगलबंदी ने सुलझाई 100 साल पुरानी गणित की थ्योरी। जनसत्ता ने दिया है, भारत नवोन्मेष प्रदर्शनी में 37 अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी नवाचार प्रदर्शित, शिक्षा मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय के समन्वय से किया आयोजन, नवाचारों को वैश्विक स्तर पर बढ़ाना है उद्देश्य। हिंदुस्तान ने अध्ययन शीर्षक से लिखा है, पश्चिमी विक्षोभ तय करेगा सर्दियों में प्रदूषण। पत्र के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का सीधा संबंध शरद ऋतु के दौरान समुद्र के तापमान से होता है, इसके आधार पर प्रदूषण की गंभीरता का अनुमान एक मौसम पहले ही लगाया जा सकता है।
3: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू। 2 दिन के सम्मेलन में वैश्विक सुशासन, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग सहित ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच में प्रधानमंत्री मोदी ने स्थायी वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री और आपूर्ति मार्ग तथा व्यापारिक बाधाएं हटाने पर बल दिया। सऊदी अरब ने हमले के बाद महत्वपूर्ण पाइपलाइन बंद की। यमन में हौसी विद्रोहियों की महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत हुई। उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में बाढ़ का प्रकोप, राहत और बचाव कार्य तेज। और जूनियर एशिया कप महिला हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना दक्षिण कोरिया से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. 18th BRICS Summit to begin in New Delhi today. Discussions to focus on global governance, trade, security and supply chains as world leaders assemble for two-day summit. Prime Minister Narendra Modi to hold bilateral talks with Chinese President Xi Jinping and other BRICS leaders today on the sidelines of summit. Prime Minister Modi pushes for secure sea lanes, open supply routes and removal of trade barriers at BRICS Business Forum to sustain global trade. Saudi Arabia shuts vital pipeline after attack. Houthi rebels in Yemen seize strategic islands, tightening grip on key Red Sea shipping route. Uttar Pradesh government steps up relief and rescue operations as flood affect 25 districts. And in hockey, Indian women's team to clash with South Korea in semi-final of Junior Asia Cup in China this morning. And now the news in detail. The 18th BRICS Summit is set to begin at Bharat Mandapam in New Delhi today. The two-day grand event will bring together 11 major emerging and developing economies, including Brazil, China, Egypt, Ethiopia, Indonesia, India, Iran, Russia, Saudi Arabia, South Africa, and the UAE. During the high-level event, leaders of the BRICS member countries are expected to discuss key issues including global governance, multilateralism, trade and investment, technology, food and energy, security, healthcare, disaster resilience and critical supply chains. The summit is being held under India's 2026 BRICS chairship with the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. Several key world leaders will participate in the high-profile summit. Prime Minister Narendra Modi will be joined by Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, South African President Cyril Ramaphosa, Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi, Indonesian President Prabowo Subianto, and Iranian President Masoud Pezeshkian. The summit will begin with a closed session for BRICS member countries on inclusive global governance and strengthening multilateralism. Leaders of the BRICS member countries will also visit the Bharat Innovates exhibition at Bharat Mandapam. This will be followed by a joint tree planting ceremony and a gala dinner hosted by Prime Minister Modi. The Prime Minister is scheduled to hold a series of bilateral talks with BRICS leaders on the sidelines of the summit today. These include meetings with Chinese President Xi Jinping, Crown Prince of Abu Dhabi, Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan,

0: टीम शिवांग मिश्रा आकाशवाणी न्यूज दिल्ली।
1: दिस इज आकाशवाणी गिविंग यू द न्यूज।
2: Stay connected with AIR News.

0: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आइए सुनते हैं ये पॉडकास्ट भविष्य शिक्षा तकनीकी और युवा। इस विषय पर एबीवी ट्रिपल आईटीएम ग्वालियर के निदेशक प्रोफेसर श्रीनिवास सिंह से बात कर रही हैं डॉक्टर विभूति सिंह।
1: श्रोताओं नमस्कार, पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं प्रोफेसर श्रीनिवास सिंह जो कि ट्रिपल आईटीएम यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान ग्वालियर के निदेशक हैं। शिक्षा तकनीकी और शोध के क्षेत्र में लंबे अनुभव के साथ प्रोफेसर सिंह युवाओं और नई पीढ़ी की बदलती ज़रूरतों को भी करीब से समझते हैं। तो चलिए देर नहीं करते और इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। सर स्वागत है आपका।
2: धन्यवाद और सभी श्रोतागण का को नमस्कार।
1: जो पहला प्रश्न हम पूछते हैं ये है कि आकाशवाणी के साथ आपका व्यक्तिगत जुड़ाव कब से हुआ और जो पहली स्मृति है वो हमारे श्रोताओं के साथ साझा करें।
2: देखिए, आकाशवाणी का मेरा जुड़ाव बहुत पहले से, जब मैं अपना इंटरमीडिएट के पास जब इंजीनियरिंग करने गया तब से मैं आकाशवाणी का, चाहे कोई भी चैनल हो, FM हो, AM हो, तो उसमें हम पढ़ते समय उसके न्यूज़ सुनना, गाने सुनना, विविध भारती सुनना, इवन दो पहले में वो सिलोन से आता था, बहुत सब चीज़ें हैं आकाशवाणी से, तब से मेरा जुड़ाव है। और इवन दो इस आकाशवाणी में भी मेरा पहला एक विजिट हुआ था जिसमें एक मेरे वॉइस अबाउट द ट्रिपल आईटी जो ग्वालियर के बारे में पूछा गया था, तो क्वेश्चन उसके बारे में एक्सप्लेन किया था। तो ये जब मैं इंटरमीडिएट पास करने के बाद आया तब से मेरा इसमें से जुड़ाव इसमें आकाशवाणी।
1: कौन सा वर्ष था
2: ये? वर्ष लगभग 83 था, 82-83।
1: बहुत सारे श्रोता उस समय पैदा नहीं हुए।
2: हाँ।
1: अब अपने शुरुआती जीवन, शिक्षा और करियर की अब तक की यात्रा के विषय में हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: मेरी जो परिवृष्टि है वो एक गांव का है, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट, पहले तो ये देवरिया डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था, तो कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार से लगा हुआ ये जो हमारा ये जिला है उसमें एक छोटा सा गांव है जो अभी भी जो मूलभूत सुविधाओं से वो गांव अभी भी वंचित है
1: जी।
2: क्योंकि वो वहाँ पर 3 सिटीज़ हैं, उसके ट्रायंगल पे है, बीच में उसके सेंटर पे है, तो अभी भी जो सुविधाएं हैं गवर्नमेंट की सुविधाएं जैसे बस और चाहे ट्रेन वगैरह नहीं है, जो 10 किलोमीटर लगभग दूर है वहाँ से। तो उस गांव से जब मैंने इंटरमीडिएट वहीं से किया, तो इंटरमीडिएट करने के बाद मेरा ये जो इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुआ और मैं कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो सुल्तानपुर में है वहाँ से बीटेक करने के लिए मैं वो गांव से निकला, तब मुझे शहर और सब चीज़ की मुझे पता चला कि कैसे कैसे डिफरेंट वेराइटी ऑफ स्टूडेंट। तो पहले मैं वहाँ पर जो बीटेक प्रोग्राम था और उस समय केवल 5 ही इंजीनियरिंग कॉलेज थे जो गवर्नमेंट के थे, प्राइवेट उस समय हुआ नहीं करता था।
1: उस समय पे इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा क्या हुआ करती
2: उस समय? उसमें जो प्रवेश परीक्षा थी तो एक जैसे MNIT भी था जो आज NIT हो गया है, इलाहाबाद में है, तो हम लोगों का प्रवेश परीक्षा वही कराया था। तो UP के लिए एक टेस्ट होता था और जब उस टेस्ट में रैंक होता था फिर काउंसलिंग होती थी और काउंसलिंग के बाद जो ब्रांच और इंस्टीट्यूट जो अलाट होता था, तो उस टेस्ट से क्या होता था, पहले एक REC हुआ करते थे जो अब आजकल NIT के नाम से लोग जानते हैं। उसमें क्या था कि हर एक NIT में स्टेट का कोटा होता था और स्टेट के भी कोटा था, तो कोटा सिस्टम था, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट के जो 5 इंस्टीट्यूशन थे ये इसमें पूरा केवल स्टेट गवर्नमेंट के ही लोग होते, मतलब स्टेट के ही स्टूडेंट हुआ करते थे। तो उसमें एडमिशन हुआ और उसमें हमें विद्युत अभियांत्रिकी में मेरा एडमिशन हुआ।

0: मैं स्टेट से बाहर नहीं जाना चाहता था, स्टेट में अपना घर का इकलौता बेटा था, तो वहाँ पर घर वालों का भी अपना अटैचमेंट था, पास भी था, ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ से लगभग 200 किलोमीटर है हमारे घर से वो, तो वहाँ मेरा एडमिशन, वो नया संस्थान था, अभी 2-3 बैच वहाँ से निकले थे। फिर वहाँ आया तो परिवेश चेंज हुआ, क्योंकि बड़े बड़े शहरों से, लखनऊ से, कानपुर से, इलाहाबाद से, बेरर से, पूरा उत्तर प्रदेश के बच्चे वहाँ पर थे, उनके साथ रहना तो थोड़ा सिस्टम और जो बदलाव जो होते हैं लाइफ में शुरू हो जाते हैं। फिर जब वहाँ पर आया तो उसके बाद दो प्लेसमेंट, उस समय ऐसे कैंपस प्लेसमेंट बहुत ही रेयर हुआ करते थे। फिर वहाँ पर जो एमटेक के एडमिशन के लिए अभी भी एक गेट का एग्जाम दिया जाता है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ इंजीनियरिंग, अभी भी है, और 2 साल पहले ही शुरू हुआ था, तो उसमें मैंने टेस्ट में अपीयर हुआ, वहाँ से हमारा स्कोर अच्छा था, फिर मेरा IIT कानपुर में एडमिशन हो गया पर मास्टर्स प्रोग्राम। जब मास्टर्स प्रोग्राम में आया तो मुझे कई ऑफर मिले, जैसे HL कोरबा वहाँ सुल्तानपुर में अमेठी में है, वहाँ से ऑफर मिला, गौरीगंज साइकिल था वहाँ से मिला, फिर मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज भी लिखा, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ, IES बोलते हैं उसको, और उसके साथ साथ 1 साल रहने के बाद स्टेट गवर्नमेंट पावर कॉरपोरेशन का एग्जाम हुआ, संजोग से वो कानपुर ने ही ऑर्गेनाइज किया, और चूंकि सेंटर वहीं था तो मैं उसमें अपीयर हुआ, फिर मैं स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ज्वाइन कर लिया 1 साल एमटेक के बाद। उस समय जो एमटेक जो था 1.5 ईयर था, अब 2 साल हो गया, पहले 1.5 साल हुआ करता था, तो 1 साल करने के बाद मैंने, चूंकि हमारा CGPA बहुत अच्छा था, मैं 10 out of 10 पॉइंटर रहा हूँ वहाँ पर IIT कानपुर का, वहाँ से मैं कन्वर्ट कराया अपना पार्ट टाइम में, संजोग से मेरी पोस्टिंग भी IIT कानपुर के अंदर हो गई, पार्ट टाइम एमटेक करते हुए वहाँ से मैंने एमटेक कंप्लीट किया, वहाँ रहते रहते मैंने PhD में एडमिशन लिया वहीं पे, तो मैं पार्ट टाइम PhD भी किया। जब PhD मेरा पूरा हो गया तो फिर उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने हमको ओबरा ट्रांसफ़र कर दिया, मैं 1 साल ओबरा रहा, फिर मैं अब फैकल्टी के लिए, चूंकि मैं डॉक्टरेट हो गया था तो मैं फैकल्टी के लिए अप्लाई करना, और देखा कि IITs के फैकल्टी बहुत अच्छे होते हैं, बड़ा इन्जॉय करते हैं, तो उसके लिए मैं फिर अप्लाई करने लगा इधर उधर, मैं रुड़की में अप्लाई किया और भी IIT में किया, फाइनली बहुत से उसकी भी एक कहानी है, लेकिन मैं
1: ब्रीफ में सर बता सकते हैं
0: तो वो हम लक के बारे में बताएंगे कैसे कैसे हुआ,
1: बताइए ना।
0: हाँ, तो वो रुड़की में हो गया सिलेक्शन, फिर मैं वहाँ जाकर के UP स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से 8 साल की सेवाओं के बाद इंजीनियर से मैं असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट इंजीनियर से असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया। तब से मेरी लाइफ एकेडमिक्स लाइफ शुरू हो गई। जब मैं ओबरा में जब मैं पोस्टेड था तो उस समय मैंने कई जगह अप्लाई किया, क्योंकि मेरा डॉक्टरेट हो गया था, PhD हो गई थी, तो फिर वहाँ पर मैंने अप्लाई किया, जैसे रुड़की अप्लाई किया, IIT कानपुर भी अप्लाई किया, तो लेकिन जस्ट वहाँ पास करने तो इनब्रीडिंग नहीं लेते हैं, 5 साल बाहर रहना पड़ता है। खड़गपुर अप्लाई किया, IIT खड़गपुर, लेकिन जिस दिन रुड़की का इंटरव्यू मेरा आया उसी दिन लेटर मिला जिस दिन इंटरव्यू रुड़की में हो रहा था। फिर मैंने कहा कि ये क्या कर रहे हैं,
1: डिलेमा
0: तो जा ही सकते थे, ओबरा एंड रुड़की का डिस्टेंस लगभग 700-800 किलोमीटर है, और ओबरा आप सोचिए मिर्जापुर से कितना आगे है, तो वो बड़ी टफ है, वो तो पॉसिबल ही नहीं था उस दिन जाना ही है। तो मेरी पत्नी ने कहा कि ऐसा है कि आप उनको एक फैक्स करिए। हमने कहा ये जानते हैं कि IITs में चाहे रुड़की यूनिवर्सिटी उसमें बड़े पॉपुलर था कि हो जाने के बाद फिर तो दूसरा नहीं होता, इंटरव्यू हो गया। बट उस समय वो PCO हुआ करते थे, तो PCO पर गया तो मैंने एक हाथ से एप्लीकेशन लिखा और 20 रुपये का फैक्स किया, उस समय 20 रुपये बहुत वैल्यू रखता था, तो मैंने फैक्स कर दिया। वहाँ पर 4 दिन के बाद मुझे खड़गपुर से हमें इंटरव्यू लेटर आया, वो ऑलरेडी इंटरव्यू हो चुका था। तब मैंने सोचा प्रभु ने हमको बिजली विभाग के लिए बनाया है, अब मैं यहीं पर खुश हूँ, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पर सेवा करूँगा। टू द सरप्राइज केवल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रुड़की का कैंसिल हो गया इंटरव्यू टेक्निकली रीजन से, और फिर से हमको दिल्ली 1 महीने बाद बुलाया गया, तो जाकर के मैं उसमें अपीयर हुआ, मेरा सिलेक्शन हुआ। तो ये सब मानते हैं सब प्रभु की कृपा है और सब अपना है, मतलब वो मैं नहीं एप्लीकेशन लिखता तो शायद हमको फिर से लेटर थ्रू कई चैनल से आते हैं, शायद ना मिलता
1: जी।
0: वो हमें एड्रेस अपना अपडेट कर दिया था कि मेरा ये,
1: तो आपने थैंक यू बोला कि नहीं बात।
0: हाँ, तो फिर मेरा एकेडमिक्स लाइफ हो गया। उसके बाद मैं रुड़की में रहते हुए फिर मैं विदेश में बहुत दिन तक रहा, मैं एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बैंकॉक में फैकल्टी रहा, मैं हांगकांग में रहा, फिर वहाँ से रिजाइन करके मैं IIT कानपुर एसोसिएट प्रोफेसर ज्वाइन किया, और तब से मैं वहाँ पर हूँ। बट इधर उधर मैं जाता रहता हूँ, जैसे 1 साल मैं विजिटिंग प्रोफेसर था डेनमार्क में, बोर्ड फेलो था जर्मनी में, डेढ़, तो ये सब चीज़ें तो चली रहती है। और अभी मैं गोरखपुर में वाइस चांसलर भी था, गोरखपुर मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जो है स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, तो उसमें मैं 3 साल था, 3 महीना एक्सटेंशन भी हुआ, और उसके बाद कोविड आ गया तो मैं IIT कानपुर चला गया, कोविड खत्म हुआ तो यहाँ मिल गया IIIT ग्वालियर में, तो फिर मैं यहाँ आ गया, जो मैंने 4 साल लगभग 5 महीने यहाँ पर बिता चुके हैं, ये 5 साल का टेन्योर है। तो ये मेरी जर्नी है फ्रॉम माय एजुकेशन टू माय एम्प्लॉयमेंट।
1: बहुत दिलचस्प जर्नी है। और मैं यहाँ पे ये सवाल पूछूंगी सर कि ये विदेश का जो वहाँ पे रहा प्रवास रोजगार के सिलसिले में, तो कभी बसने का मन किया वहाँ?
0: आप जैसे मैंने पहले आपको बताया कि मैं अपने माँ बाप का इकलौता पुत्र था, पिता और माता का बड़ा एक

0: स्नेह होता है कि मेरा बेटा मेरे पास रहे। मैं शुरू में जब आता था जा करके बड़ा अच्छा लगता था, एक दो महीने अच्छा लगेगा, उसके बाद अपनी सोसाइटी नहीं मिलती है, मैं भाग के चला आता था। इवन तो आपको बता दूं, मैं पहले हांगकांग गया था तो हर 3 महीने में जाते ही टिकट रिटर्न लिया करते थे, क्योंकि सस्ता भी पड़ता था। जब टिकट लेके गए तो 3 महीना वापस का टिकट ले लेते थे। तो ऐसे करते हुए मैं वहाँ पर 1.5 साल लगभग रहा, तो लगभग 5-6 बार मैं इंडिया आया। उसी तरह से मैं बैंकॉक में गया, तो उसमें भी ऐसे ही करता रहा, आता जाता रहा। तो लेकिन बसने का मन इसलिए नहीं करता था कि बाहर क्या है, पैसा है, सोशल लाइफ नहीं है। थोड़ा सा पैसा ज़्यादा है, ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। आप इल्लूफ हैं, बस एक कमरे में हैं, आपके कोई रिलेटिव्स नहीं है किसी से, कुछ लोगों से ही केवल आप बात कर सकते हैं। तो मुझे बसने का कभी नहीं रहा, वैसे मैं जब चाहूँ तब बाहर बस सकता हूँ, क्योंकि जो मेरी क्रेडेंशियल्स है, मेरी एकेडमिक्स है, क्वालिफिकेशन से मैं रह सकता हूँ। लेकिन मैं इंडिया में रहना मैं प्रेफर करता हूँ और मुझे इंजॉय भी होता है।
1: इसको देश प्रेम कहते हैं सर।
0: हाँ, वो चाहे अपना देश प्रेम चाहे अपना प्रेम जो भी है, मुझे अपना देश में रहना है।
1: प्रोफेसर सिंह ने लंबे एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव आपको है, तो इस दौरान उच्च शिक्षा में कौन से बड़े बदलाव आपने महसूस किए हैं?
0: देखिए, एजुकेशन के जो सिलेबस हैं, टेक्नोलॉजी हमेशा बदल रही है, तो उनके सिलेबस तो हम सब जगह बदलते ही रहते हैं। नया जो भी एडवांसमेंट होता है उसको एडाप्ट करते ही रहते हैं, किताबों में भी, सब कुछ में अपना हम उसको बदला करते हैं। उसी तरह से अभी बीच में आप देखेंगे कि जब समवेयर 1995 एक MOOC जो अभी चल रहा है स्वयं में चाहे NPTEL में कोर्स चला था, तो उसमें मैं 2 कोर्स डेवलप किया था, ऑनलाइन कोर्सेज चाहिए, और ये बहुत ही अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। और ये सब चीज़ें इतना अच्छा चला कि इतने हमारे व्यूअर्स हैं और सब चीज़ें, उसमें एनर्जी थी और कोर्स लिखा, किताबें लिखी। तो टेक्नोलॉजिकल चेंज के साथ हम वो सब ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं, बट अभी देखेंगे कि AI, AI ML, डाटा साइंस, ये सब चीज़, आपका क्वांटम, हाइड्रोजन, ये सब ऑलरेडी आना शुरू हो गए हैं। आप देखेंगे कि AI, मैं जब 90 में PhD कर रहा था तब मैं AI यूज़ किया था अपने पास, और उस समय मतलब कंप्यूटर साइंस वाले लोग भी AI अभी जस्ट अभी बार हुआ था। इवन तो मैं उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी में जाकर लेक्चर लेता था AI पे, इलेक्ट्रिकल के होते हुए AI कंप्यूटर साइंस पढ़ाता था मॉडलर MTech के कोर्स में, उसमें देखा। लेकिन हमारे एप्लीकेशन के लिए वो जो मैं टूल यूज़ कर रहा था तो उतना एप्लीकेटिव नहीं था, तो मैंने छोड़ दिया। फिर लेटर फिर से मुझे आना पड़ा और जैसे और भी एडवांसमेंट हुआ तो हमने भी यूज़ करते, हमारे स्टूडेंट बहुत ही AI यूज़ किए फ्रॉम वेरी बिगनिंग। सो द AI है उसको इंक्लूड करना है, वेरी फास्ट कंप्यूटेशन है उसको यूज़ करना है। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, तो उसको हम इलेक्ट्रिकल के सेंस में हम आपको बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट हूँ, ना कि हम कंप्यूटर साइंस के। बट द कंप्यूटर साइंस की जितनी भी टेक्नोलॉजी है सब हम उसको अडाप्ट कर रहे हैं, और ये करना भी चाहिए, और इसलिए इस टाइप का हो रहा है। इसलिए आजकल ऑनलाइन कोर्सेज, MOOC कोर्सेज, स्ट्रीमिंग, ये सब आजकल नए धर्रा, जो हम ब्लैक एंड बोर्ड पे लिखते थे, अब उसके बाद जो लोग पावर पॉइंट लगाने लगे, पहले हम लोग ट्रांसपेरेंसी यूज करते थे, फिर पावर पॉइंट आया, फिर अब देखिए कि अब ऑनलाइन कोर्सेज हैं, MOOC कोर्सेज हैं, स्ट्रीमिंग कोर्सेज हैं, ये सब लोग कर रहे हैं। तो ये आजकल मिक्सचर हो गया, उसको जिसको जहाँ पर इतना एड है, मतलब आप कोई कोर्स पढ़ रहे हैं, टीचर पढ़ा रहा है, तो आपको उसके इतने ऑप्शंस हैं कि आप कहीं से लाइब्रेरी से बढ़िया बढ़िया रिकॉर्डिंग, स्टार वर्ल्ड के लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, आप पढ़िए, आपके एकदम फंडामेंटल एवरीथिंग। सो दैट इज द चेंज आई बिलीव कि दैट इज हैपनिंग।
1: अभी AI का जिक्र आपने ही कर दिया, तो अब AI केवल टेक्नोलॉजी या टेक्निक का सब्जेक्ट नहीं है, एजुकेशन और रोजगार को भी प्रभावित कर रही है। तो ये AI का जो इतना दखल है या स्कोप है, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं या चैलेंज के रूप में देखते हैं?
0: देखिए, दिस AI बहुत लोगों को ये कह रहा है कि AI हमारे जॉब को ले रहा है। ये बेसिकली AI एक असिस्टिव टेक्नोलॉजी है जो आपको हेल्प कर रहा है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो लिख नहीं पाते हैं लेटर, लेकिन आजकल AI में दे देते हैं, इतना बढ़िया लेटर लिखता है। तो और लेटर जो लिखता है तो ऐसा ऐसा लिखता है कि उसमें से आपको पिकअप करना रहता है कि क्या अच्छा ले रहा है। तो उसको लेकर में कोई बुराई नहीं है, असिस्टिव टेक्नोलॉजी हमेशा बेटर होता है। और पहले आप देखेंगे, पहले लोगों को कलम यूज़ करता था, फिर पेन आया, फिर डार्ट पेन आया, क्या क्या आते हुए आजकल हो गया, आजकल मार्कर से शुरू हो गया है। तो वो टेक्नोलॉजी चेंज है, उसको लेना चाहिए, और दीज आर द बेसिकली अपॉर्चुनिटीज वी हैव टू यूटिलाइज। चैलेंज हम ज़्यादा नहीं मानते, क्योंकि ये है कि आप देखिए, अभी याद करिए कि जो रेलवे का रिजर्वेशन शुरू हुआ था, उस समय बहुत ये सब रेलवे कर्मचारियों ने हड़ताल किया था कि हम लोग के जॉब चले जाते हैं। उस समय जब टिकट होता था तो जब टिकट के लिए लाइन लगती थी, वो रजिस्टर में बाबू देखता था और झूठे बोल देता था, भर गया, लेकिन ब्लैक साइड से सबको टिकट मिल जाता था, जो लाइन में रहता था उसको नहीं मिलता था, और केवल एक सेक्टर का मिलता था, दूसरे सेक्टर का टेलीग्राम देता था, क्या देता था, कभी मटेरियलाइज नहीं होता था। आज आप बैठे यहाँ से दुनिया में कहीं भी अपना इंडिया में आप ट्रेन टिकट कर सकते हैं, और कोई जॉब नहीं किसी की गई, और फैसिलिटेट मिली, फैसिलिटी मिली।

0: इतनी ट्रेनों में रिजर्वेशन इतना हो रहा है, अब बैक एंड में कितने लोग काम कर रहे हैं, जितना वो बाबू एक लिखता था उससे ज़्यादा लोग बैक एंड में काम कर रहे हैं, जो पैसे को लेना, उसका कंसाइल करना, उसको सॉफ्टवेयर अपडेट करना, पूरा चार्ट बनवाना, तो देयर देयर। तो ये हम इसको ना सोचा कि जो आईटी और ये टेक्नोलॉजी है हमारे जॉब को किल कर रहा है, ये आपको मल्टीटास्किंग कर रहा है। आप देखिए, हम चल रहे हैं तो अपना टिकट बुक कर रहे हैं, चल रहे हैं तो किसी से बात कर रहे हैं, तो ये जो मोबाइल AI ये सब चीज़ बेसिससे असिस्टिव टेक्नोलॉजी है जो आपको मल्टीटास्किंग प्रमोट करता है, और तभी देश डेवलप करेगा। जो ये टेक्नोलॉजी पहले अडॉप्ट कर लिया, दे आर राइजिंग, हम लोग थोड़ा अभी लेट किए।
1: तो मतलब जॉब किल नहीं होगा, जॉब का हो सकता है कि नेचर बदल जाए, फॉर्म बदल जाए, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जॉब मिलेंगे। कंप्यूटर के साथ भी ऐसा ही था शुरुआत में, शायद
0: कंप्यूटर आ गया तो लोग कंप्यूटर सब खा जाएगा। आज देखिए, बिना कंप्यूटर का आदमी रह नहीं सकता।
1: क्या आपको लगता है कि हमारी वर्तमान जो शिक्षा व्यवस्था है वो युवाओं को जो बदल रही है टेक्नोलॉजी तेजी से, उसके लिए पर्याप्त रूप से तैयार कर पा रहा है? जैसे अभी आपने कहा कि हमने देर में अडॉप्ट किया है।
0: देखिए, हमारी जो अभी हम क्या है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, पहले ब्रिटिश सिस्टम से हमने मतलब बारू किया, और इन द मेनी जगह अभी भी आप देखेंगे कि ब्रिटिशर्स जो बना के गए या जो भी पढ़ा रहे थे उसको हम फॉलो करते हैं, और हम ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ का फॉलो करते हैं, चाहे US हो चाहे यूरोप हो। बट ये अब समय आ गया है कि हम ये देखें कि जो हमारी टेक्नोलॉजी थी जो पास्ट में, वो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी जो आज अभी टेक्नोलॉजी नहीं है, उस टेक्नोलॉजी को हम फॉलो कर रहे हैं। जैसे आप देखिए, पुष्पक विमान है, आज क्या है आपके पास, हवाई जहाज क्या है, उसका एक ट्रिपल का है, लेकिन उसमें पुष्पक विमान जो कहा गया था कि वो बालू बदलता था, जितना चाहे उतने फिट हो जाएं, जिस साइड में चाहे उतनी स्पीड से चला जाए, आज का विमान फिक्स सीटिंग है, फिक्स स्पीड है। तो अभी भी उस लेवल तक हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं। इवन तो जो पहले तीर से लोग पानी बरसा देता था, आजकल आर्टिफिशियल क्लाउडिंग हो रही है, पानी बरसा तो क्या है, जाके नाइट्रोजन ऊपर छोड़ा जाता, वो कंडेंस होता है, क्लाउड होता है, पानी प्रेसिपिटेट करता था, तो तीर से कर देते थे। तो ये चीज़ें अब फिर से अब ये सोचा जा रहा है। अभी आप देखिए कि नई टेक्नोलॉजी में आजकल क्वांटम की बात है, मोस्टली आइंस्टाइन जो थियोरी है, न्यूटन्स लॉ जो हैं, तो वो बेसिकली ग्रेविटी और मास पर डिपेंडेंट थे, और ये कहा गया कि स्पीड की जो लाइट है उससे स्पीड ज़्यादा हो ही नहीं सकती। आज जब वो पार्टिकल बहुत स्मॉल हो रहे हैं, तो आप कितने लाइट ईयर पीछे कर दीजिए, यहाँ करिए तो वहाँ पर सुनाई देता था। तो हमारे जो ऋषि मुनि यहाँ बैठे आप पूरा कंट्रोल करके देख लेते थे, वो इंटैंगलमेंट वही पार्टिकल का है। तो आज हम उसको फॉलो करते समय अब जा रहे हैं, ये जो पार्टिकल न्यूटन लॉ नहीं मानता है, आइंस्टीन लॉ नहीं मानता है, तो ये अब डिफरेंट थियोरी आ रही है फिजिक्स की, जो क्वांटम थियोरी आ रही है, ये हमारे पिछले जो साइंस टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट था उसको कोरिलेट कर रहा है, और ये आगे जाकर के इस पर जितने रिसर्च होगा, आई एम श्योर देन पता चलेगा कि हमारी जो सभ्यता साइंस बेस्ड जो जितने वेद या पुराण जो भी लिखे हुए हैं, दे आर इन एक्चुअली द टेक्नोलॉजी वाज ग्रेट एट दैट टाइम एंड वी हैव टू फॉलो दैट,
1: जिसको कोरी कल्पना और शगुफा कहा
0: जाता। पहले कहते थे एपिक है, बस मेमोरी में आया, लिख दिया, ये हो गया, बहुत सब चीज़ें, बहुत लोग कहते हैं काल्पनिक है और सब चीज़ें, वो अब रियलिटी है।
1: लेकिन कल्पना में अगर कोई चीज़ आ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं
0: एग्जिस्ट कर रहा है, वो अभी हम कहीं उससे मिल ही रहा है, जो कभी चला नहीं होगा वो लिख रहा है इतना दूर की, जब उसमें ना हवाई जहाज थी अवेलेबल थी नॉर्मल आदमी का, ना ट्रेन था उस समय, कैसे इतने दूर दूर के प्लेसेस और उसके नाम लिख दिया गया, वो कल्पना से नहीं हो सकता, तो रियलिटी था। तो अपना इंडियन नॉलेज सिस्टम लाना है, उसके साथ साथ स्किलिंग की जरूरत है। आजकल केवल डिग्री लेने से काम नहीं चलेगा, आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग चाहिए, प्रैक्टिकल चाहिए, स्टार्टअप, इनोवेशन, इंक्यूबेशन, ये सब जब तक नहीं करोगे तो जॉब जनरेट होगा एंड आल्सो द बिजनेस होगा, एंड जो हमारे एंड यूजर्स हैं, जो डिप्राइव लोग हैं चाहे और भी हैं, उनको हम तकनीकी देंगे तो और भी हमारा देश आगे बढ़ेगा, इस पर गवर्नमेंट फोकस कर रही है।
1: तो रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने में जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, इनकी क्या भूमिका होनी चाहिए?
0: ये देखिए, शुरू में क्या हो रहा था कि जितने भी रिसर्च बिग IITs करते थे, तो जो AIITs हैं, ये बेसिकली अपने इंडिया के प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय बाहर के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, क्योंकि उनको पेपर छापना है तो उन्हीं वही पब्लिश करते थे। तो जो भी टेक्नोलॉजी जो डेवलप होती थी, नॉट फॉर आवर कंट्री, फॉर आउटसाइड कंट्री। अब क्या हो रहा है, अब ये नहीं कर रहा, अब अपने देश की प्रॉब्लम सॉल्व करें, और हो रहा है। आप देखेंगे तभी आप हमारा डिफेंस सिस्टम देखें, मिसाइल सिस्टम देखें, चाहे जितने भी जो भी आप सिस्टम देखें, ये डेवलप हो रहा है अपने ही कंट्री में। तो वो अब रिसर्च, ये जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, नाउ दे आर फोकसिंग इन आवर ओन कंट्री, बिकॉज गवर्नमेंट इज आल्सो प्रमोटिंग। गवर्नमेंट नहीं प्रमोट करेगा तो नहीं चलेगा, और इस तरह से हमारा देश का R&D, इनोवेशन, ये हर एक इंस्टीट्यूशन में बड़ी तेजी से बढ़ावा हो रहा है।
1: तो इस दिशा में सर जो ABV ट्रिपल ITM है इसका क्या अप्रोच है?
0: देखिए हमारे यहाँ ऑलरेडी हमारे पास एक टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर है जो MIT से प्रपोज्ड है, MIT उस फंड करता है। हम यहाँ लोकल जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनको इन्वाइट करते हैं कि आ जाओ भाई, और उनको हम पैसे भी देते हैं। हमारे यहाँ 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं जो स्केल अप किए गए हैं जिसमें उनको MIT से पैसे मिले हैं 30 लाख से 40 लाख रुपए, एक आप सामान खरीदिए और इसको अपने जो आइडिया है उसको और बड़ा करिए। तो ये ट्रिपल ITM ऑलरेडी अभी से नहीं, पिछले कई दसों साल से ये जो TIC है उसको प्रमोट कर रहा था, अब वेरी मैसिव वेब से हम कर रहे हैं।
1: AI का बढ़ता प्रभाव और ह्यूमन इंटेलिजेंस और ह्यूमन वैल्यूज को बचाने के लिए क्या ध्यान देना चाहिए?
0: देखिए AI कई देशों में जो कई चीज़ें बैन किए जा रहे हैं, कई जगह तो ये अलाउड नहीं रहता कि आप इवन द मोबाइल लें अप टू इंटरमीडिएट, क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजीज आल्सो हम मानते हैं, ये आदमी का डिस्ट्रक्शन कर रहा है, टाइम किल कर रहा है। तो हम यदि उसको प्रॉपर सही जगह से यूज़ करें तब अच्छा है, लेकिन उसको हम गलत चीज़ के लिए यूज़ करें तो खराब है। जैसे साइबर फ्रॉड्स है, डीप फेक है, ऑल दिस जो टेक्नोलॉजी कभी भी डेवलप होती है उसके साथ साथ उसके इवल इफेक्ट भी शुरू हो जाते हैं। जैसे कंप्यूटर आया सॉफ्टवेयर में तो वायरसेस आने लगे, तो वायरस का एंटीवायरस हम खरीदने लगे। तो ये भी एक बिजनेस मॉडल है कि वही कंपनियां वायरस डेवलप करती हैं कि हमारा अब एंटीवायरस खरीदिए कि ठीक हो जाए। कोई टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं है उसका कोई इविल इफेक्ट ना हो, बुरा प्रभाव ना हो, लेकिन उसको हमें और आपको सोचना पड़ेगा कि कितना हम इस्तेमाल करें, किस लेवल तक जाए, कितना इसको अच्छी तरह से यूज़ करेंगे तो ऑलवेज अच्छा है, गलत की तरह से यूज़ करेंगे तो गलत है। तभी आप देखेंगे साइबर फ्रॉड हो रहा है, किसके कहाँ से निकाल ले रहा है, आपका पिन ले रहा है साहब, आपका ATM से ले ले रहा है। तो ये सब तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ इवेल है। गवर्नमेंट को इस पर वेरी स्ट्रिक्ट रूल बनाना चाहिए, जो पाया जाए उसको पनिश किया जाए। डाटा प्राइवेसी, कि जैसे आपका डाटा किसी ने आपको हैक करके आपके मोबाइल का पर्सनल डाटा ले लिया, ये भी एक क्राइम है। तो ये सब चीज़ें टेक्नोलॉजी से ही तो हैक हो रहा है।
1: अभी सुबह से मेरे सिम में एक OTP आ रहा है जो मैं ऑपरेट भी नहीं कर रही।
0: अब सोचिए, तो ये आजकल ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो उसको लिए गवर्नमेंट को एक अच्छा सा डाटा प्राइवेसी एक रूल और स्ट्रिक्ट रूल। कितने फेक न्यूज उस पर चल रहा है, कितने लोग दवाइयाँ बेच रहे हैं फेक फेक, उसमें लिख रहे हैं कि इसे आप एक घंटे में खत्म हो जाएगा, ये सब फ्रॉड है। यदि ऐसा कोई पाया तो उसको सीधे जेल में उसको पनिश करिए, तब जा करके एथिक्स एंड मॉरल जो लूज हो रहा है इसको होना ही चाहिए।
1: अभी थोड़े समय पहले हम वैदिक काल की चर्चा कर रहे थे, जो राक्षस तप किया करते थे, जो शक्तियों का गलत प्रयोग करते
0: हैं। जहाँ देवी देवता होते हैं वहाँ राक्षस भी होते हैं।
1: उन राक्षसों को शक्तियाँ मिलनी भी नहीं चाहिए।
0: हाँ, नहीं मिला, लेकिन वो टेक्नोलॉजी से वो ले लेते हैं। तो उसको हमें कैसे कंट्रोल करना है, ये एक मतलब उपाय बहुत जरूरी है।
1: प्रोफेसर सिंह, आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो श्रोता आपको सुन रहे हैं?
0: मैं जितना भी श्रोतागण सुन रहे हैं उनसे मेरा यही एडवाइस है कि ये बहुत ही कम्पिटिटिव एज है। इसमें आप देखेंगे कि जो पॉपुलेशन इतना बड़ा है कि एक पोस्ट के लिए 1000 लोग आते हैं, तो पहली बात आप एजुकेशन जो ले रहे हैं तो नॉलेज भी साथ साथ लीजिए, क्योंकि एजुकेशन ज़रूरी नहीं है कि आपके पास नॉलेज है। और यदि ज्ञान आपने नहीं लिया, उसको सही से सिंसियरिटी ऑनेस्टली और टाइम मैनेजमेंट में आगे नहीं बढ़े, तो आप लाइफ में बहुत पीछे रह जाएंगे। क्योंकि प्रभु ने पूरी दुनिया में सबको सेम समय दिया, एक ही ऐसी चीज़ है जो इक्वल है सबके पास, और चूंकि ये इक्वल है तो उसमें जिसने अच्छी तरह से इसको मैनेज किया, उस टाइम का जो डिवीजन है, कौन किस पर फोकस किया, वही आज आप देखेंगे आगे है। तो आप अपनी प्रायोरिटी सेट करिए और ऑनेस्टली से और सिंसियरिटी से आप अपना जो भी प्रोफेशन हो, यदि आप स्टूडेंट हैं तो अच्छी से पढ़ाई करिए, आप जब नौकरी में हैं तो ऑनेस्टली अपना जॉब करिए, बिजनेस है तो ऑनेस्टली आप बिजनेस करें, तो ये सब और सिंसियरिटी से करेंगे तो आपकी सफलता थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन आई एम श्योर कि आप राइज करेंगे, और वो जो राइज होगा वो आप चमकेंगे, सूरज की तरह से आप चमकेंगे। इसीलिए कलाम साहब ने कहा था कि यदि आपको सूरज की तरह से चमकना है तो उसके तरह से तपना भी होगा, तप मतलब तपस्या करिए, और तपस्या यही है कि अपना जो भी प्रोफेशन हो उसको ध्यान से करिए, एथिकली एंड मॉरली आप एक इंडियन सिटीजन जिस पर हमको गर्व होता है उसको मेंटेन करते हुए आप आगे बढ़ें, आपको सफलता हमेशा चुनेगी।
1: और एक ट्रेडिशन भी है, कार्यक्रम खत्म करने से पहले आप अपनी पसंद का कोई एक फिल्मी गीत बताइए जो हम अपने श्रोताओं को सुनवा सके।
0: मैं जब इंजीनियरिंग पढ़ने आया उस समय रैगिंग हुआ करती थी, तो रैगिंग नहीं हो रही है, नहीं भी होना चाहिए, तो उस समय हमको छत पे बच्चे ले गए और कहे कि तुम एक गाना गाओ तो बच जाओगे। तो वो गाना हमको बड़ा अच्छा लगता था और मैं पिक्चर भी उसमें देखा था, तो वो डफली वाले डफली बजा मेरे घुघरू बुलाते हैं, तो ये गाना मुझे बड़ा टची रहा क्योंकि मैं पिक्चर में देखा तो बड़ा अच्छा लगा उस समय, व्हाट्स ओवर रीजन एज टीनेजर। तो वो गाना मैंने गाया तो मेरी सुर तो बहुत ख़राब है, तो उसने हमको बहुत एक कंटा कस के मारा, उसने कहा भाग जाओ यहाँ से। तो तब से मैं गाना ही बंद कर दिया।
1: तो ये रैगिंग तो अब नहीं हो रही है,
0: अब नहीं हो रही है, लेकिन वो भी है।
1: लेकिन इंट्रो में अगर आपके सीनियर्स आपको थोड़ा हैरेस करें तो आप सब भी ऐसा बेसुरा गाना गा सकते हैं।
0: फिर तब से मैं गाना नहीं गाया।
1: लेकिन गाना बहुत खूबसूरत है, हम सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: प्रोफेसर श्रीनिवास, बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे स्टूडियो में आए और हमें समय दिया।
1: धन्यवाद श्रोतागण। आशा करता हूँ कि मैं जो अपना एक्सप्रेस किया, ये मेरा पर्सनल फीलिंग है, इन ट्रूथ है सेम टाइम, तो आप यदि फॉलो करेंगे तो एक गांव का लड़का जो किसान का एक पुत्र है आज यहां तक पहुंच सकता है। मैं आशा करता हूं यदि फॉलो करें और अच्छी तरह से ट्रेडिशन करें तो आप भी अपने मिशन में सक्सेसफुल होंगे। धन्यवाद।
2: भविष्य, शिक्षा, तकनीकी और युवा, इस विषय पर अभी आपने ये पॉडकास्ट सुना। प्रोफेसर श्रीनिवास सिंह, निदेशक ABV IIIM ग्वालियर, से बात कर रही थी डॉक्टर विभूति सिंह। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के 8:57.40 हुए हैं। थोड़ी ही देर में इस घंटे की खास खबरें आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे।

0: आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरमई सवेरा और श्रोताओं, ये कार्यक्रम का सफर जारी रहेगा इस घंटे की खास खबरों के बाद।
1: अठारहवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इंडोनेशिया और ईरान के राष्ट्रपति सहित ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता और प्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन से इतर विभिन्न देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में ब्रिक्स बिजनेस फोरम के लीडर्स सेशन को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि 2006 में चार देशों से शुरू हुआ ये समूह अब सदस्य और साझेदार देशों को मिलाकर 21 देशों का परिवार बन चुका है, जो दुनिया की 50% आबादी, 40% GDP और 25% से अधिक व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में सुगम, सुरक्षित और आधुनिक यात्री परिवहन व्यवस्था विकसित की जा रही है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा 25 सितंबर से शुरू होगी। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 साल पूरे हो गए हैं। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रुपये की पेंशन सुनिश्चित की गई है। प्रदेश में काले हिरण और चिंकारा के अवैध शिकार के मुख्य आरोपी सबा अंतुल्य की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। मामले में अब तक संगठित अंतर्राज्यीय तस्कर गिरोह के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। और प्रदेश में आज राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसमें लंबित और राजीनामा योग्य मामलों का आपसी सहमति से निराकरण किया जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। श्रोताओं लीजिए सुनिए सूचनाओं और समाचारों पर केंद्रित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

गुड मॉर्निंग ग्वालियर कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को तूलिका का नमस्कार। कैसे हैं श्रोताओं आप? हमें उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। श्रोताओं, आज के बारे में यदि हम बात करें तो आज से दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रहा है ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन। इस शिखर सम्मेलन पर हम बात बाद में करेंगे, लेकिन आज जो सबसे पहले हम बात आपके साथ करना चाहते हैं वो है AI इमेज जनरेशन से संबंधित। ये इमेज जनरेशन जो है ये ट्रेंड बन के उभरती है। आपने इंटरनेट स्क्रॉल करते समय देखा होगा कि आजकल जो 80s का ट्रेंड है उसके इमेज जनरेशन की होड़ लगी हुई है। हर व्यक्ति ने लगभग जो इंटरनेट पर थोड़ा भी समय बिताता है उसने अपने 80s के इस ट्रेंड में जो गंगा बह रही है उसमें हाथ धोए हैं, अपनी इमेज जनरेट की है। साथ ही साथ इस इमेज जनरेशन ट्रेंड के बाद आपने ये भी सुना होगा कि इस तरह के जो ट्रेंड्स आते हैं या ऑनलाइन गेमिंग होती है या किसी तरह की ऑनलाइन भविष्यवाणियां यदि आप अपनी फ़ोटो डाल करके और जानना चाहते हैं, ये खेल की तरह से शुरू होता है और ट्रेंड बन जाता है। इस ट्रेंड के पीछे आपके पर्सनल डेटा लीक की भी बातें सामने आती हैं और अभी भी आ रही हैं। क्या ये सिर्फ इतना ही है कि आपका पर्सनल डेटा लीक होगा और आपकी व्यक्तिगत सुरक्षा को हानि हो सकती है, आपकी आर्थिक सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है? बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, इससे थोड़ा ऊपर और सोचना पड़ेगा हमें। क्या इस तरह के ट्रेंड्स हमारे भविष्य के लिए सही हैं? दरअसल यहाँ हम आपको बताना चाहते हैं कि एक AI इमेज बनाने के पीछे भारी मात्रा में बिजली खर्च होती है, पानी खर्च होता है और बहुत सी कंप्यूटिंग पावर खर्च होती है। हम बार बार आपसे अनुरोध करते हैं कि ऊर्जा की खपत को कंट्रोल कीजिए, सौर ऊर्जा पर या ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों पर शिफ्ट करिए, लेकिन साथ ही साथ हम इस तरह के ट्रेंड्स के चक्कर में भी पड़ जाते हैं। जानते हैं, एक साधारण AI इमेज जनरेट करने में उतनी बिजली लग सकती है जितनी एक 10 वॉट के LED बल्ब को

बल्ब को 17 मिनट तक जलाने के लिए चाहिए होती है, या फिर आपका फ़ोन चार्ज करने में जितनी ऊर्जा खर्च होती है उतनी ऊर्जा सिर्फ एक AI इमेज को जनरेट करने में लगती है। इसके अलावा जो डेटा सेंटर्स होते हैं जहाँ ये इमेज जनरेट की जाती है, उसके सर्वर को ठंडा रखने के लिए बड़ी मात्रा में पानी की भी आवश्यकता होती है। यानी एक तस्वीर के पीछे कुछ लीटर पानी अप्रत्यक्ष रूप से खर्च होता है और हमें पता भी नहीं चलता। चलिए एक और चीज़ सुन लीजिए, एक सिंगल AI इमेज से लगभग 100 ग्राम तक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो सकता है। यानी हम खुद इस तरह के ट्रेंड्स में फंसकर अपना कार्बन फुटप्रिंट जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं। ये कार्बन उत्सर्जन इस बात पर निर्भर करता है कि जो डेटा सेंटर को चलाने वाली एजेंसी है वहाँ बिजली कैसे आ रही है। ये भी हो सकता है कि कोयले से बनने वाली जो बिजली है वो डेटा सेंटर इस्तेमाल करता हो। नवीकरणीय ऊर्जा भी यदि वो इस्तेमाल कर रहा है तो भी ऊर्जा का तो हम उपभोग कर ही रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर जो वायरल होने वाले ट्रेंड्स हैं, इसकी वजह से सिर्फ एक व्यक्ति ऐसी तस्वीर नहीं बनाता, अरबों खरबों लोग इस तरह की तस्वीर बनाते हैं और सिर्फ एक तस्वीर से संतुष्ट नहीं होते। जिस किसी ने भी 80s के इस ट्रेंड को अपनाया है, उसने अपनी सिर्फ एक इमेज नहीं बनाई, कई सारी इमेजेस बनाई और उनमें जो तस्वीर पसंद आई उसे आपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया। तो आप समझ सकते हैं कि एक एक तस्वीर में यदि इतनी इतनी ऊर्जा खपत होगी तो हम कितने इको फ्रेंडली रह जाएंगे। AI का इस्तेमाल यदि मानवता की रक्षा के लिए हो तब तो बहुत अच्छी बात है, ये हमारे लिए बेहद कारगर सिद्ध होगी। लेकिन यदि यही हमारा रक्षक बनने के बजाय भक्षक बनने लगे, हमारी पृथ्वी के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने लगे, तो सोचिए हम खुद अपने इस ग्रह को नुकसान पहुंचाने में भागीदार बन रहे हैं। कोशिश कीजिए इस तरह के ट्रेंड्स में ना फंसिए और अपनी पृथ्वी को बचाने में अपना योगदान दे दीजिए।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: एक बार फिर स्वागत है आप सबका आपके अपने कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में। श्रोता साथियों, हम बात कर रहे थे कि हम कितने इको फ्रेंडली हैं। आइए इसके एक दूसरे पहलू पर विचार करते हैं। अपने ही घर से फिर से हम बात शुरू करेंगे। आपके घर में जब आप कचरा इकट्ठा करते हैं या कोई भी सामान है जिस जो आपके इस्तेमाल का नहीं है या टूट फूट गया है तो क्या करते हैं? आप कहते हैं ना, इसे फेंक दो। आप उसे डस्टबिन में डाल देते हैं और फिर रोज सुबह कचरे वाली गाड़ी आती है और आपके डस्टबिन का कचरा उस गाड़ी में चला जाता है। वो गाड़ी उस कचरे को ले जाकर किसी डंपिंग यार्ड में डाल देती है। आपका घर तो साफ हो जाता है, आपका गली मोहल्ला साफ हो जाता है, लेकिन वही आपके घर का कचरा आप ही के ग्रह यानी पृथ्वी पर कहीं ना कहीं किसी न किसी और का आवास गंदा करता है। अपना घर तो आपने साफ कर लिया कि चलो इसे फेंक दो, कहाँ फेंका आपने?

इसी धरती पर किसी और के घर में। जी हाँ, जहाँ भी इस तरह का कचरा फेंका जाएगा वो किसी न किसी का तो घर होगा ही। हमारी आंखों से हमारा कचरा ओझल जरूर हो जाएगा, लेकिन हमारा ये प्लैनेट, हमारा ये ग्रह उस कचरे से मुक्त नहीं हो पाएगा। हमने तमाम सारी चीज़ें खोज ली हैं, अपनी सुरक्षा के तमाम उपाय कर लिए हैं। ये सुरक्षा न सिर्फ दैहिक है, बल्कि यदि हम कहें कि आर्थिक है, हमारे स्वास्थ्य के लिए है, हर तरह की सुरक्षा हमने अपने लिए सुनिश्चित कर ली है, लेकिन हम अपना ग्रह पृथ्वी सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। सोचिए कि आपके घर का जो टूटा फर्नीचर है या जो सामान आपने मंगवाया है उसकी पैकेजिंग है, वो हमेशा हमेशा इस धरती पर बनी रहेगी यदि वो प्लास्टिक की है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो आपके घर से, आपकी आंखों के सामने से तो वो निकल गई, लेकिन जहां कचरे के बड़े बड़े ढेर पहाड़ों जैसे हो गए हैं, वहां तो ये सालों साल बनी रहेगी। तो आपकी आंखों से दूर हो जाने का मतलब ये नहीं है कि आपने उस कचरे का निस्तारण कर दिया। तो करना क्या है, उपाय क्या है इसका? उपाय बस एक ही है कि प्लास्टिक के सामान का कम से कम इस्तेमाल किया जाए, जो चीज़ें नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं उनका कम से कम इस्तेमाल किया जाए, और यदि इस्तेमाल किया भी जा रहा है, जो कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम वो इस्तेमाल टाल नहीं सकते, तो उसको रिसाइकिल किया जाए, रीयूज़ किया जाए। इसके अलावा एक और तरीका है, हम थोड़े से कंजूस हो जाएं, बाज़ारों में जाकर अंधाधुंध शॉपिंग ना करें। ये जो हमारी अलमारियां कपड़ों से भरी हैं ना, ये भी हमारे पर्यावरण पर बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग में भी लाखों लाख गैलन पानी इस्तेमाल होता है। हम बचा सकते हैं ये पानी, पानी जल स्रोतों को भी प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। ये पानी जो जिसमें केमिकल मिला होता है, कपड़ों पर जो रंग होते हैं ज़्यादातर केमिकल रंग होते हैं, यदि इनका इस्तेमाल कम हो जाए कपड़ों का, तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग भी थोड़ी सी कम तो होगी ही।

स्वागत है आप सबका आपके अपने कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में। तुलिका आपके साथ है। श्रोताओं, कार्यक्रम के आरंभ में ही हमने बताया था कि आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रहा है ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन। तो ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में दुनिया भर के 11 देश जो एक संधि से बंधे हुए हैं आपसी सहयोग और विश्वास और साथ ही साथ में विकास के लिए, ये सब मिलकर इस दुनिया में प्रगति के लिए और शांति के लिए बैठक करेंगे। कई सारे समझौते होंगे। अगले दो दिन इस शिखर सम्मेलन पर सबकी निगाहें रहेंगी। इस शिखर सम्मेलन से जुड़ी हुई कुछ ख़ास बातें तो हम आपको बताएंगे। सबसे पहली बात ये कि इसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और इसके अलावा 11 देशों के नेता शामिल हैं, जिसमें हैं बहुत सारी चीज़ों पर बात होगी। पश्चिम एशिया के संकट पर बात होगी, रूस यूक्रेन युद्ध पर बात होने की संभावना है, होर्मुज की जो नाकाबंदी है उस पर भी, इसके अलावा जो अमेरिका द्वारा तमाम तरह का टैरिफ लगाया जा रहा है इस पर भी बातचीत होने की संभावना है। बहुत सारी वैश्विक चुनौतियां हैं जिनसे साथ मिलकर निपटने की बात ये देश करेंगे। दरअसल ये जो ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है इसका मुख्य विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण और मानवता प्रथम, ह्यूमैनिटीज फर्स्ट, ये भावना जो है इसकी मूल भावना है। हम आज इसकी बात क्यों कर रहे हैं? दो कारण हैं जो बातें हम आपसे बताना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक प्राचीन तमिल ग्रंथ भेंट किया है जो है तिरुक्कुरल। इसका रूसी अनुवाद, तिरुक्कुरल का रूसी अनुवाद भेंट किया गया है। कुरल दरअसल छोटे छोटे दोहे हैं जो हमारे

जीवन से संबंधित हैं। केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान द्वारा ये पुस्तक प्रकाशित है, जो मूल तमिल श्लोकों का रूसी में अनुवाद उसमें शामिल है। उनका लिप्यंतरण भी है, उन मूल तमिल श्लोकों का लिप्यंतरण और उसका रूसी भाषा में अनुवाद। जब राष्ट्रपति पुतिन को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा ये पुस्तक भेंट की गई, तो मोदी जी ने नैतिकता, सद्गुण और शासन पर जो ग्रंथ में ज्ञान है वो भी बताया, और इसका उद्देश्य जो है भारत और रूस के बीच सांस्कृतिक और जन संबंधों को गहरा करना माना जा रहा है। इससे पहले भी मोदी जी ने पुतिन को भगवद गीता का रूसी अनुवाद भेंट किया था। तो ये जो सांस्कृतिक आदान प्रदान है ना, ये दो देशों के संबंधों को मजबूती प्रदान करता है। दूसरी जो ख़ास चीज़ है वो ये, जो हम आपको बताना चाहते हैं कि भारत मंडपम में जो ये शिखर सम्मेलन हो रहा है, वहाँ एक प्रदर्शनी भी लगी है। भारत के हस्तकला पर विशेष तौर पर ये प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश के धार ज़िले के बाघ प्रिंट को भी शामिल किया गया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश वहाँ पर मुख्य तौर पर आकर्षण का केंद्र है। यदि आप बाघ प्रिंट्स के बारे में ना जानते हों तो हम आपको बताएं कि ये एक छपाई की तकनीक है। इसमें लकड़ी के ठप्पों को रंगों में डुबाकर और कपड़े पर छपाई की जाती है, और लेयर्स में जब छपाई की जाती है तो कई रंग उभर कर आते हैं, और जो रंग इस्तेमाल किए जाते हैं वो नेचुरल डाई होती है, कोई केमिकल डाई नहीं होती। हालांकि ये जो हस्तकला है, जो कपड़े बनाने की ये जो छपाई की कला है, ये भी जब औद्योगिक क्रांति के बाद हिंदुस्तान में आई, औद्योगिक क्रांति के बाद जो मिल से कपड़ा बनकर आने लगा था, केमिकल रंगों से छपाई होने लगी थी, तो ये बहुत पीछे छूट गई थी। जो पारंपरिक कलाकार हैं उन्होंने इससे बनाना छोड़ दिया था, लेकिन अब धीरे धीरे हम जागरूक हो रहे हैं हैंडीक्राफ्ट्स के लिए, हैंडलूम्स के लिए और इस तरह की छपाई के लिए। आपने अजरक प्रिंट्स के बारे में सुना होगा, आपने पिछवई आर्ट के बारे में सुना होगा, आपने बाघ प्रिंट्स के बारे में सुना होगा। तो ये सारे कलाकार अब सब मिलकर एक बाज़ार तैयार कर रहे हैं। हिंदुस्तान में तो थोड़ा थोड़ा ये बाज़ार उन्हें मिल रहा है, लेकिन यदि सोचिए हमारे इन आर्टिसंस को वैश्विक बाज़ार मिले तो कितना अच्छा होगा। तो ये शोकेसिंग का एक बहुत बड़ा मंच है ये ब्रिक्स सम्मेलन, और ब्रिक्स सम्मेलन में वहाँ पे जो जनप्रतिनिधि आए हुए हैं उनको भी जो लकड़ी के ठप्पे हैं उनसे छपाई का आनंद आज दिया जाएगा। वो लोग कपड़े पर अपने हाथ से छपाई कर सकेंगे, यानी लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन दिया जाएगा। तो ये हम सब के लिए खुशी की बात है। यदि आपके वार्डरोब में बाघ प्रिंट नहीं है तो कोशिश कीजिए, ढूंढिए और अपने इन कलाकारों को प्रश्रय देने की कोशिश कीजिए। और यकीन जानिए, यदि आप इस तरह के प्रिंट्स पहनते हैं तो आप सबसे ज़्यादा फैशनेबल दिखाई देंगे। एक और चीज़ है जो हम आपको बताना चाहते हैं, वो ये कि हमारा जो बुंदेलखंड है, आजकल इसने हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में धूम मचाई हुई है, और उस धूम का कारण है कि एक फिल्म है हनुमान अंश। इसके बारे में हम आपको क्या ही बताएंगे, आपने बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में सुनी होंगी, फिल्में भी बहुत, इस फिल्म को भी बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, और इसके गाने तो धूम मचाए हुए हैं। आइए इसी फिल्म के इस गीत के साथ कार्यक्रम का समापन करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे सूचनाओं और समाचारों पर केंद्रित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज हम आपको सुनवा रहे हैं वीणा जोशी का शास्त्रीय गायन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं विनय विंदे। आइए सुनते हैं वीणा जोशी का गाया राग भूपाल तोड़ी।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे वीणा जोशी का ख्याल गायन। आप राग भैरव में ख्याल प्रस्तुत कर रही थी। तबले पर संगत कर रहे थे विनय विंदे। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 10 बजने को हैं। जिले की चिट्ठी अब भोपाल से होगी।

0: மியூசிக்கல் பிரேக்.
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है, लीजिए अब सुनिए पन्ना जिले की चिट्ठी।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है पन्ना जिले की चिट्ठी, आलेख दिलीप कुमार शर्मा, वाचन स्वर दीपा सिंह। पन्ना जिले में पिछले दिनों सरकोहा क्षेत्र की हीरा खदान में 7 मजदूरों को करीब 17 कैरेट का बेशकीमती हीरा मिला, जिसकी अनुमानित कीमत 50 लाख रुपए से अधिक बताई गई। इस हीरे ने मेहनतकश मजदूरों के जीवन में नई उम्मीद जगाई। किसी ने पक्के मकान तो किसी ने बच्चों की बेहतर शिक्षा का सपना देखा। वहीं कुछ मजदूरों में शादी की खुशियां भी आने की उम्मीद जगी। पन्ना की धरती का ये हीरा केवल एक कीमती पत्थर नहीं बल्कि श्रम और उम्मीद की चमक भी है। उधर पन्ना टाइगर रिजर्व जिले की पहचान और पर्यटन अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार बन चुका है। पिछले पर्यटन वर्ष में यहां 2,63,000 से अधिक पर्यटक पहुंचे और लगभग 8,77,00,000 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। बाघों की बढ़ती संख्या, जैव विविधता और प्राकृतिक सौंदर्य पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। इधर मानसून के दौरान पन्ना जिले में बारिश ने भी कई बार मुश्किलें बढ़ाई। नदियां और नाले उफान पर रहे। किलकिला नदी के बढ़े जलस्तर से पन्ना के धाम मोहल्ले में घरों में पानी पहुंचा और एक परिवार के 12 सदस्य छत पर फंस गए। एसडीआरएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने जोखिम उठाकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। उधर अमानगंज के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में गुनौर विधायक राजेश वर्मा ने दौरा कर राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। यहाँ प्रशासन के साथ मिलकर जेकेसीएम ने बाढ़ पीड़ित दर्जनों लोगों को राहत पहुंचाई। पन्ना कलेक्टर उषा परमार ने समयबद्ध सेवाओं और जवाबदेही को लेकर सख्ती दिखाई। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय में आवेदनों का निराकरण नहीं करने वाले 13 अधिकारियों पर कुल 23,500 रुपए का अर्थदंड लगाया। दंडित अधिकारियों में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पंचायत सचिव आदि शामिल हैं। ये राशि उनकी वेतन से काटी जाएगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई में लोकायुक्त ने किन बेतवा लिंक परियोजना से जुड़े मुआवजा प्रकरण में पटवारी संतोष शिकवा को 47,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा। आरोप है कि प्रभावित किसान से मुआवजा बढ़वाने और दस्तावेजों के लिए राशि की मांग की गई थी। इस कार्रवाई ने सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही की जरूरत को फिर से रेखांकित किया है। पन्ना जिले में डिजिटल बदलाव भी तेजी से दिखाई दे रहा है। चाय की दुकान से लेकर डायमंड मार्केट तक QR कोड और UPI भुगतान आम हो चुका है। वहीं ग्राम पंचायतों के ऑनलाइन कर संग्रह में पन्ना ने प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उमराव सिंह मारावी ने बताया कि जिले की सभी 386 ग्राम पंचायतें ऑनलाइन भुगतान व्यवस्था से जुड़ चुकी हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल अर्थव्यवस्था के बढ़ते विस्तार का उदाहरण है। पन्ना जिले में महिला और बाल विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय पोषण अभियान की शुरुआत रैली निकालकर की गई। इस संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला और बाल विकास विभाग अवधेश प्रताप सिंह ने बताया कि अभियान के माध्यम से बच्चों, गर्भवती महिलाओं और किशोरियों को संतुलित आहार, एनीमिया की रोकथाम और नियमित स्वास्थ्य जांच के प्रति जागरूक किया जा रहा है। पन्ना कलेक्ट्रेट में शासकीय कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए कर्मयोगी प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। इस संबंध में प्रशिक्षण दे रही प्रोफेसर वर्षा प्रजापति ने बताया कि प्रशिक्षण में नागरिक केंद्रित प्रशासन, संवेदनशीलता, कार्यकुशलता और जवाबदेही पर जोर दिया जा रहा है। वहीं सागर जिले के बंडा में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद पन्ना में आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया गया। जिला आबकारी अधिकारी मुकेश मौर्य ने बताया कि जिले में अब तक करीब आधा दर्जन प्रकरण बनाए गए हैं। उधर अवैध शराब की बिक्री को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष मीना राजे परमार ने भी कार्रवाई की मांग उठाई है। धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की बात करें तो पन्ना में भगवान जुगल किशोर जी का जन्माष्टमी पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। मध्यरात्रि में महाआरती हुई, बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। पन्ना राज परिवार की ओर से प्रथम पूजा की गई। भगवान के अधरों पर सुशोभित हीरे की बांसुरी भी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रही। वहीं ऐतिहासिक श्री बलदेव जी मंदिर में बलदाऊ जन्मोत्सव और श्री कृष्ण पर्व के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए। नृत्य नाटिका, भजन प्रस्तुतियों ने पन्ना की धार्मिक विरासत को सांस्कृतिक पर्यटन से जोड़ने का काम किया। उधर रक्षाबंधन के अवसर पर भी पन्ना में सामाजिक सरोकार का संदेश देखने को मिला। महिला एवं बाल विकास विभाग की ब्रांड एम्बेसडर और भजन गायिका शक्ति दुबे ने कलेक्टर उषा परमार को गौ कास्ट से बनी राखी बांधकर पर्यावरण का संदेश दिया। दक्षिण वन मंडल पन्ना की वनकर्मी रंजना नागर का वन्यजीव संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए भोपाल में प्रतिष्ठित मछली अवार्ड से सम्मानित किया गया। DFO अनुपम शर्मा ने बताया कि श्रीमती नागर ने वन और वन्यजीव अपराधों की रोकथाम, रात्रि और मानसून गश्त, वन्य प्राणियों के रेस्क्यू तथा जन जागरूकता के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाई।

यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम सेहत की बात तरानों के साथ। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं महिलाओं का सामान्य स्वास्थ्य विषय पर डॉक्टर सुकीर्ति दीक्षित मुद्गल से तुलिका शर्मा की बातचीत।

0: श्रोताओं नमस्कार। सेहत की बात तरानों के साथ इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे महिलाओं के सामान्य स्वास्थ्य पे। इस विषय में बहुत सारी बातें शामिल हैं और इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुकीर्ति दीक्षित मुद्गल। डॉक्टर साहब, पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार, थैंक यू सो मच।
0: डॉक्टर सुकीर्ति, महिलाओं के स्वास्थ्य की यदि बात देखी जाए तो बच्चा पैदा होता है तब से लेकर के और जब तक जीवन है तब तक महिलाओं को तमाम तरह की शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक बच्ची जब बड़ी हो रही होती है, मेंस्ट्रुएशन से उसकी विमेन हेल्थ शुरू हो जाती है। ऐसे क्या चीज़ें हैं बच्ची के लिए जो माँ को ध्यान रखनी है कि बच्ची का जो स्वास्थ्य है वो सही रहे?
1: सबसे पहले तो मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बोलूँगी कि न्यूट्रिशन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चे आजकल बहुत जंक फूड और ये सारी चीज़ें ले रहे हैं जिसकी वजह से ओबेसिटी बहुत कॉमन है। ऐसा कि हम लोग देख रहे हैं आजकल मेंस्ट्रुएशन भी बच्चों का बहुत अर्ली ऑनसेट हो रहा है, जो कि यूजुअली हम लोग पहले के टाइम में 12 प्लस 14 15 तक भी होता था। अब बच्चे हमारी ओपीडी में आते हैं यंग एज पे, 9-10 ईयर्स 11 ईयर्स तक पीरियड्स आते हैं। तो उसका बहुत सारे मैं कारण बोलूँगी, न्यूट्रिशन भी बहुत हद तक जिम्मेदार है इसके लिए। तो पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों का न्यूट्रिशन अच्छा हो, पूरा बैलेंस डाइट वो लोग लें। जहाँ बच्चों में ओबेसिटी होती है वहाँ हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। ओबेसिटी में फिर आपका जो मीनार्की है और ये सारी चीज़ें अर्ली ऑनसेट हो जाता है। दूसरा कि अब बच्चों में सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, मोबाइल फोन्स हैं, बच्चे आउटडोर गेम्स कम खेल रहे हैं,
0: शारीरिक गतिविधियां
1: कम हैं, उसका भी आपके हार्मोन्स पे, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल पे बहुत चीज़ों पे एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरा कि पीरियड्स जल्दी आ रहे हैं तो माँ का ये रोल है के बच्चों की पूरी काउंसलिंग करके रखें
0: पहले से।
1: ये नहीं हो कि बच्चे सीधे स्कूल में उनको फर्स्ट पीरियड्स जब भी वो एक्सपीरियंस करें और एक एम्बेरेसिंग सिचुएशन में हो, डरे हुए हों, उनको मालूम ही ना हो कि अब हमें करना क्या है। तो 9-10 की एज से उनकी काउंसलिंग ज़रूरी है। आजकल स्कूल्स में भी हम लोग जाते हैं, बच्चों को इस बारे में ओरिएंटेशन, सारे लेक्चर्स रहते हैं कि मेंस्ट्रुएशन क्या है, कैसे बॉडी चेंजेस होते हैं, कैसे आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों को हाइजीन के बारे में बताना, कैसे उनको सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ करना है, इमरजेंसी में कभी फंसते हैं तो डरे ना, एक हिच ना रहे उनमें, अपने फ्रेंड्स से अपने टीचर्स से डिस्कस करें सारी चीज़ें। हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे जब इन चीज़ों का पहली बार सामना करते हैं तो उतनी केयर वो खुद से नहीं कर पाते, फिर जहाँ उनको सेकेंडरी इन्फेक्शंस और बहुत सारी चीज़ों का दुष्प्रभाव से गुजरना पड़ता है। न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, हाइजीन और प्री काउंसलिंग इस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है।
0: इसके लिए माओं का एजुकेटेड होना और यूं कहें कि इसके लिए जागरूक होना बेहद ज़रूरी है। कई बार ये भी देखा जाता है कि मेनार्की से पहले जिस तरह के लक्षण आते हैं, सिम्टम्स आते हैं, हेयर ग्रोथ है या स्तनों में उभार है हल्का सा, ये लक्षण आते ही यदि बच्ची की उम्र कम है, 9 साल के आसपास है, तो पेरेंट्स उनको डॉक्टर के पास ले जाते हैं और कहते हैं कुछ कीजिए जो ये प्रक्रिया थोड़ी रुक जाए या डिले हो जाए। ये कहाँ तक सही है?
1: नहीं, ये प्रक्रिया हम रोक नहीं सकते। अगर ये नेचुरल हार्मोनल चेंजेस बॉडी में स्टार्ट हो गए हैं, जैसा कि आपने बताया प्यूबिक हेयर ग्रोथ होना, एक्सिलरी हेयर, ब्रेस्ट बडिंग होना, तो थोड़ा सा आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि आपके मेंसेस जल्दी आने को हैं
0: जी।
1: तो इस चीज़ को हम डिले नहीं कर सकते, ना इसके लिए कोई ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है, जस्ट सिंपली काउंसलिंग, माँ की भी और उसकी बेटी की भी काउंसलिंग जरूरी है।
0: सबसे बेहतर तो ये है कि बच्चों को घर का बना और फ्रेश खाना दिया जाए,
1: बिल्कुल
0: डिब्बा बंद पदार्थ ना ही दिए जाएं तो बेहतर है
1: जी।
0: प्रिजर्वेटिव्स जिसमें ज्यादा है, कलरिंग एजेंट्स ज्यादा है, वो ना दें तो मेरे ख्याल से इस तरह की समस्याएं धीरे धीरे कम भी हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, इसके आगे की यदि हम बात करें तो एक और समस्या जो है वो काफी बढ़ती जा रही है, जिसे PCOS या PCOD कहते हैं। बच्चियों में ये समस्या ज्यादा देखने में आ रही है, इसका कारण क्या है और क्या इसका एलोपैथी में इलाज है?
1: बिल्कुल है। PCOS मेनली एक लाइफस्टाइल डिसीज है। पहले ये PCOS इतना देखने में नहीं आता था, अब ये जो मैं सारी चीज़ें सब जंक फूड खाना, वेट गेन होना, सिडेंट्री लाइफस्टाइल होना, यही सब कारण है PCOS के। वेट गेन के साथ हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जिसकी वजह से आपके पीरियड्स डिले होना। PCOS इन्हें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसमें 2-3 बीमारियों को हम मिला के सिंड्रोम बोलते हैं, जहाँ की आपकी दोनों की जो ओवरीज हैं, अंडेदानियाँ, उसमें सूजन आना, पीरियड्स का डिले होना, वेट गेन होना, और मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ जैसे चिन पे, नेक पे, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसके लिए भी फर्स्ट लाइन हम लोग सबसे पहले तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि अपनी एक्टिव लाइफस्टाइल रखें, अपनी डाइट न्यूट्रिशन पे ध्यान दें, और फिर उसके अलावा हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे कि उसके लिए नॉन हार्मोनल प्रिपरेशंस कई आती हैं जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से अलग हैं। बहुत सारे पेशेंट्स को अगर वो अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करते हैं तो उन नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट से ही उनको उनके सिम्टम्स में फ़ायदा मिलता है। पर जब पेशेंट का अगर वेट बहुत ज़्यादा है या फिर उनको इन दवाइयों से आराम नहीं मिलता और उनकी एज 16-18 प्लस है, तब हम लोग लो डोज में, जो कि आप हार्मोन्स जिनको बोलते हैं, लो डोज कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को ही हम साइकिल रेगुलर करने के लिए 2-3 मंथ्स देते हैं। वो भी हम लोग बहुत लंबे टाइम नहीं प्रिस्क्राइब करते, बट इसमें PCOS में फर्स्ट रोल इज ऑफ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन।
0: इससे मैनेज हो जाता है?
1: बिल्कुल होता है, निश्चित। जहाँ पेशेंट को हम लोग बोलते हैं, पेशेंट अगर कुछ किलोज भी अगर अपना वेट लॉस करके आता है, उसको डेफिनेटली उसके साइकिल्स काफ़ी रेगुलर हो जाते हैं, ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है, बिल्कुल विजिबल चेंजेस हमें देखने मिलते हैं। और जहाँ रिस्पॉन्ड नहीं करता, वहाँ फिर ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं।
0: ये ट्रीटमेंट कितना लंबा चल सकता है अमूमन?
1: हम लोग मिनिमम जो स्टार्ट करते हैं वो 3-6 मंथ्स है। 3 मंथ्स हम देते हैं, पेशेंट नहीं रिस्पॉन्ड करता तो 6 मंथ्स तक भी, कई बार अप टू 1 ईयर तक भी चलता है। डिपेंड करता है पेशेंट के वेट पे, बहुत सारी चीज़ों पे। लीन PCOS भी होता है जिसमें पेशेंट ओवरवेट नहीं होता, उसमें थोड़ा सा कई बार दिक्कत आती है, बट ओबीस पेशेंट्स में जहाँ वेट लॉस करते हैं तो हमें इमीडिएट आराम मिलता है।
0: क्या ये लाइफस्टाइल डिजीज आपने चूंकि बताया, तो भविष्य में कभी उसकी लाइफस्टाइल में चेंज होगा तो वापस
1: बिल्कुल हो सकती है? कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं हमें जो बोलते हैं कि जब तक हमने दवाइयाँ ली, हमारा वेट लॉस हुआ, तब तक हमको आराम था, और फिर जहाँ दवाइयाँ बंद हैं फिर मेरा वेट बढ़ा, तो फिर से हालत वहीं के वहीं है। तो बिल्कुल होता है। PCOS का ऐसा परमानेंट जड़ से शोर शॉट ट्रीटमेंट या वैक्सीनेशन नहीं है कि हमने दिया और वो खत्म हो गया। आपको अपनी लाइफस्टाइल हमेशा ही ठीक रखनी पड़ेगी,
0: मतलब क्रियाशील रहें, शारीरिक गतिविधियां करते रहें, और साथ ही साथ खाना जो है वो हेल्दी खाएं।
1: बिल्कुल,
0: बाजार का जो खाना है वो थोड़ा सा नुकसानदायक है, जंक फूड नुकसानदायक है। डॉक्टर साहब, हम चूंकि विमेन हेल्थ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि महिलाओं की जो प्रजनन काल है ये कब से शुरू हो जाता है, और इस दौरान क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए जिससे हमारा जो प्रजनन स्वास्थ्य है वो सही रहे?
1: प्रजनन काल जैसे ही महिला का मेंसेस स्टार्ट होता है
0: जी,
1: वो फर्टाइल हो जाती है, बट अपने वही सब शादी की एज जो 18 प्लस है, तो मोस्टली प्रेग्नेंट पेशेंट्स हमारे यहाँ 18 प्लस एज में आते हैं। तो इन सारी चीज़ों में हमको यही ध्यान रखना है कि एक तो अर्ली प्रेगनेंसी को हम लोग प्रमोट करें। अब आजकल जो लोग, एक तो शादियां लेट हो रही हैं, बहुत सारी वर्किंग पेरेंट्स हैं, या फिर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए जो लेट मैरिजेस हो रही हैं, इसकी वजह से प्रेगनेंसी पे, बच्चे पे, और बहुत सारे मतलब महिला के खुद के स्वास्थ्य पे भी
0: असर,
1: बिल्कुल असर पड़
0: रहा है। अर्ली प्रेगनेंसी आपने बोला, कितनी उम्र पे प्रेगनेंसी हो जानी चाहिए?
1: अर्ली प्रेगनेंसी मतलब एटलीस्ट फर्स्ट प्रेगनेंसी 30 के नीचे एज पे होनी चाहिए। हाँ, 20-22 साल पे, 25 साल पे बहुत अच्छा है अगर महिला गर्भवती होती है तो, नहीं तो जो भी वजह है, कम से कम 30 के नीचे हम लोग बोलते हैं कि आप अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करें। जितना फिर आप लेट प्रेगनेंसी करते हैं तो लेट एज के संग, जैसा कि आप जानते हैं, एल्डर एज में फिर और भी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन,

0: हाइपरटेंशन, थायराइड, ये सब के अगर रिस्क बढ़ता है तो ये सारी चीज़ें फिर प्रेगनेंसी पे भी उतना दुष्परिणाम डालती हैं, और प्रेगनेंसी भी जो नॉर्मल प्रेगनेंसी के बजाय वो एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कन्वर्ट हो जाती है।
1: अच्छा,
0: बिल्कुल।
1: आपने पहली प्रेगनेंसी बोला कि पहली प्रेगनेंसी बिफोर 30, 30 साल से पहले हो जानी चाहिए। जो इसके बाद प्रेगनेंसीज हैं वो मैक्सिमम कब तक होल्ड कर सकते हैं?
0: मैक्सिमम का ऐसा कुछ कट ऑफ नहीं है, बहुत सारे लोग 35, 40 एज पे भी हमारे पास प्रेग्नेंट होकर आते हैं, बट उनमें वही है फिर रिस्क और कॉम्प्लिकेशन।
1: मोर देन 40 भी बहुत सारे लोग,
0: मोर देन 40 भी आते
1: हैं, कोई रिस्क है?
0: बिल्कुल रिस्क है, डायबिटीज, क्रोनिक हाइपरटेंशन, ये सारी चीजें फिर प्रेगनेंसी को, मदर हेल्थ को और बेबी की हेल्थ को, दोनों को इफेक्ट करती हैं।
1: मतलब यदि लाइफ प्लान कर रहे हैं और अपनी फैमिली प्लान कर रहे हैं तो कोशिश ये करनी चाहिए कि 22 साल से लेकर के 40 साल के बीच, यदि
0: 40 नहीं 30 के बीच मैं बोलूंगी,
1: बच्चे पैदा कर लिए,
0: बच्चे 30-35 तक ठीक है।
1: अच्छा,
0: 40 तक लोग जिनका कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं किसी वजह से, सेकंड मैरिजेज हैं या इनफर्टिलिटी है, उनका ठीक है, बट अगर आपका नॉर्मल सब चीजें हैं तो इतना डिले आप 40 तक क्यों ले जाना, उसको आप जितनी
1: 35 साल के बीच सबसे सही समय है कि प्रेगनेंसी प्लान कर ली जाए।
0: बिल्कुल
1: जी, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई, क्योंकि जिस तरह से लाइफस्टाइल बदल रही है, जीवन जीने का तरीका बदल रहा है, लोग करियर ओरिएंटेड ज्यादा होते जा रहे हैं, महिलाएं विशेष तौर पर, ऐसे में ये एक समस्या बनती जा रही है। डॉक्टर साहब, थोड़ा रुकेंगे हम अपने कार्यक्रम के फॉर्मेट के हिसाब से डॉक्टर्स से पूछते हैं कि उनका पसंदीदा गाना कौन सा है जो आप बार बार सुनते हैं।
0: है अपना दिल तो आवारा।
1: अरे वाह, पुराने गाने पसंद है आपको?
0: नहीं, पुराने नए सभी सुनती हूँ, ये एक अच्छा गाना लगता है।
1: हेमंत कुमार का गाया हुआ ये गाना है, चलिए आपको सुनाते हैं ये आपकी पसंद का गीत।

0: इस खूबसूरत गीत के बाद कार्यक्रम फिर शुरू करते हैं। कार्यक्रम है सेहत की बात तरानों के साथ। महिलाओं का सामान्य स्वास्थ्य, इस विषय पर हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सुकीर्ति दीक्षित मुद्गल से। डॉक्टर सुकीर्ति, हम बात कर रहे थे प्रेगनेंसी की एज पर। यदि हम बच्चा प्लान कर रहे हैं तो उससे ठीक पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम एक हेल्दी बेबी अपने जीवन में लेके आए?
1: अगर हम लोग प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो हमें गर्भधारण करने के कम 3 महीने पहले से, अगर प्लान्ड प्रेगनेंसी है तो फॉलिक एसिड की एक टैबलेट होती है जो कि ज़रूर शुरू कर देनी चाहिए। ये एक छोटी सी गोली जो कि बहुत सस्ती आती है, बड़ी चीज़ों को, बड़ी बीमारियों को, जैसे कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जो हम बोलते हैं, उनसे हमारे जो गर्भ में धारण बच्चा है उसको बचाती है। तो फॉलिक, जो भी महिला है, शादी हुई है, प्रेगनेंसी का प्लान है, तो एक तो फॉलिक एसिड टैबलेट स्टार्ट कर दें। फिर कुछ अपने बेसिक टेस्ट, जैसे कि अपना एक नॉर्मल पेल्विक अल्ट्रासाउंड, अपने कुछ हार्मोन्स, थायरॉयड, प्रोलैक्टिन, ये सारी चीज़ें टेस्ट कराएं, और अपने न्यूट्रिशन और अपनी डाइट, एक्सरसाइज, सब चीज़ों का ध्यान रखें, और सबसे इम्पॉर्टेंट मेंटल हेल्थ। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हो और उसके लिए आप अपने आप को, बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हो, तो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड ऑल्सो। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज लेकर आते हैं, फिर एबॉर्शंस के लिए बोलते हैं, वो ठीक नहीं है महिला की हेल्थ के लिए भी।
0: तो यदि एक नए जीवन को अपने जीवन वृत्त में लेकर के आ रहे हैं तो पूरे मन से तैयार हो जाए,
1: तन मन से। बिल्कुल
0: बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान भी बहुत सारी सावधानियां रखनी चाहिए, इसीलिए पूरे 9 महीने के इस प्रेगनेंसी टाइम को 3 ट्राइमेस्टर में बांटा हुआ है।
1: बिल्कुल।
0: क्यों 3 ट्राइमेस्टर में बांटा हुआ है और हर ट्राइमेस्टर का क्या महत्व है?
1: जी बिल्कुल, 3 ट्राइमेस्टर में हम डिवाइड करते हैं। शुरू के 3 महीने हमारे फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फिर 4 to 6 months सेकेंड ट्राइमेस्टर, और 7 to 9 months हमारा थर्ड ट्राइमेस्टर। तीनों ट्राइमेस्टर्स के अपने ट्रीटमेंट्स हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखने की हैं। जैसे कि हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करें, शुरू के जो 3 महीने, इसमें एक तो मैंने फॉलिक एसिड टैबलेट बताई जो कि बहुत ज़रूरी है, जो कि हर गर्भवती महिला को लेना ही लेना है
0: प्रेगनेंसी के टाइम में भी।
1: बिल्कुल, प्रेगनेंसी से पहले, अगर आपकी प्लान्ड प्रेगनेंसी है तो आप पहले से शुरू कर दें, और अगर प्लान्ड नहीं है, आप टेस्ट में पाते हो कि आप प्रेग्नेंट हो, तो जैसे ही आपको पता चलता है कि आपका टेस्ट पॉजिटिव है, आप इमीडिएटली आपके डॉक्टर को कंसल्ट करें और फॉलिक एसिड टैबलेट स्टार्ट करें। दूसरा, कि शुरू के 3 महीने में जो सबसे कॉमन सिम्टम होता है, नौशिया, वॉमिटिंग, जी मिचलाना, उल्टी आना, ये चीज़ें भी पेशेंट को बहुत परेशान करती हैं, उसकी डे टू डे लाइफ में बड़ा मुश्किल है। पेशेंट वर्किंग है, आप अच्छा न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहे हो, आपको उल्टियां हो रही हैं, जिससे कि पेशेंट की हेल्थ भी अफेक्ट होती है, और दूसरा जो अपना फीटस है, बच्चा है गर्भ में, उसकी भी ग्रोथ कम होती है। तो अगर ऐसा सिम्टम बहुत ज़्यादा है तो भी डॉक्टर को कंसल्ट करके, कुछ दवाइयाँ आती हैं जिनके बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, जो कि अगर आपको अधिक उल्टियाँ हैं तो आप उसको शुरू के 3 महीने में ले सकते हैं। फर्स्ट अल्ट्रासाउंड की हम बात करें, अगर डेटिंग स्कैन जिसे हम बोलते हैं, वो 6 to 8 weeks पे होना चाहिए, जिसमें कि हमको पता चलता है कि हमारा बच्चा गर्भ में ही है या नहीं। एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। एक नॉर्मल बच्चेदानी में बच्चा होना है, नॉर्मल इंट्रायूटराइन प्रेगनेंसी, और अगर बच्चेदानी के अलावा कहीं, जैसे कि हम बोलते हैं नलियों में या अंडेदानी में कभी गर्भ धारण होता है, तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो इसको हमें अर्लीस्ट पॉसिबल डायग्नोस करना चाहिए, क्योंकि ये अगर ट्यूब में बच्चा रहता है तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है गर्भवती महिला के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग, अब तो इतना नहीं है, पहले प्रेगनेंसी टेस्ट किया उन्होंने और अगर उनको गर्भ नहीं चाहिए तो वो एबॉर्शन पिल्स लेते हैं, और बिना अगर अल्ट्रासाउंड के आपने एबॉर्शन पिल्स इन केस ले ली और वो बच्चा आपका नस में या अंडेदानी में हुआ और वो नस फट गई, तो इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट की लाइफ को भी खतरा रहता है। तो ये डेटिंग स्कैन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे पेशेंट्स का ये कहना होता है, हम इतनी जल्दी क्यों, हम 3 महीने पे 4 महीने पे पहला अल्ट्रासाउंड कराएंगे। 4 महीने तक गर्भ इतना बड़ा हो जाता है कि वो अगर नली में रहा तो वो नली बच्चेदानी की तरह नहीं बढ़ती, तो वो उस बीच कभी भी रप्चर हो सकता है। ऐसे कई केस हमारे पास आते हैं, और फिर हमें इमरजेंसी में उनका ऑपरेट करके वो सारा पेट में ब्लड और वो सब नली जो फटी है वो निकालना पड़ता है। तो फर्स्ट डेटिंग स्कैन 6 to 8 weeks पे कराएं, फॉलिक एसिड 3 महीने चलने दें, वॉमिटिंग की ज़रूरत है तो दवा लें, वरना इतना रिक्वायर्ड नहीं है। हल्का खाना, तेल

0: मिर्च मसाला नहीं, ये सारी चीज़ें अवॉइड करने बोलते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें जहाँ की आप गरिष्ठ भोजन लेते हैं, नॉन वेजिटेरियन या हैवी फूड लेते हैं, तो वो आपके इन सिम्टम्स को, वॉमिटिंग, नौशिया को और बढ़ाता है।
1: डॉक्टर साहब, सेकेंड ट्राइमेस्टर के क्या खतरे होते हैं और क्या डाइटरी एडवाइस आप देंगे उसमें?
0: जी बिल्कुल, सेकेंड ट्राइमेस्टर में जैसे ही अपने 3 महीने कंप्लीट होते हैं, 11 से 13 हफ्ते के बीच जो स्कैन होता है, ये एंटी स्कैन बोलते हैं, न्यूकल थिकनेस हम देखते हैं। ये सब कुछ स्पेशल स्कैन्स हैं जिनके टाइमिंग्स फिक्स्ड हैं, जो कि हमें बहुत सारे सिंड्रोम्स, एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में अलर्ट करता है, जैसे डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाओ सिंड्रोम। ये चूंकि अब जो प्रेगनेंसी की एज बढ़ रही है, तो इन चीज़ों के भी कॉम्प्लिकेशन, ये सब पहले नहीं थे, क्योंकि पहले यंग एज पे शादी, यंग एज पे बच्चे, अब चूंकि 30+ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ये टेस्ट अब अनिवार्य हैं। हमको 3 महीने पूरे होने पर एंटी स्कैन और एक ड्यूअल मार्कर हम लोग एडवाइस करते हैं, वो कराना चाहिए। 3 महीने पूरे होने पे ही हम लोग टेटनेस का फर्स्ट डोज एडवाइस करते हैं। 2 टीके लगते हैं जो कि 1 महीने के अंतर से हम लोग लगाते हैं।
1: और ये ड्यूअल मार्कर टेस्ट आपने बोला, क्या आप हर गर्भवती के लिए करते हैं या जिनकी एज ज़्यादा है उनको करते हैं?
0: हम एडवाइस सबको करते हैं, क्योंकि ये एक्सपेंसिव टेस्ट हैं, बहुत सारे पेशेंट्स ग्रामीण क्षेत्र से या पुअर फैमिली से नहीं अफोर्ड कर सकते। आइडियली हम सबको एडवाइस करते हैं, पर जिनकी एज 30+ है या जिनमें कुछ हिस्ट्री है कि किसी बच्चे को पहले डाउन सिंड्रोम रहा है, या फिर जिनके मल्टीपल मिसकैरेजेस हुई हैं, मतलब कहना चाहिए जो जहाँ हमें कॉम्प्लिकेशंस हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, उनमें तो हम कंपल्सरीली बोलते हैं। बाकी हम सबको एडवाइस करते हैं, अब कराना चाहिए। बढ़ती एज है, सिर्फ एज एक फैक्टर नहीं है, कई लोगों में यंग एज पे भी निकल आती हैं ये सारी चीज़ें। तो आइडियली तो पेशेंट अगर अफोर्डिंग है, कुछ समस्या नहीं है, तो उन्हें कराना चाहिए।
1: यदि कोई फैमिली हिस्ट्री है, परिवार में कोई इस तरह का बच्चा है,
0: तो डेफिनेटली कराना चाहिए आपको।
1: जी, तो वो अपने डॉक्टर को जरूर बताना चाहिए, जिससे कि डॉक्टर्स उस हिसाब से बता सके आपको टेस्ट वगैरह।
0: हाँ, हम लोग पेशेंट से भी पूरा फैमिली हिस्ट्री या उनके प्रीवियस जॉब्स हिस्ट्री, प्रीवियस बच्चे कितने हैं, उनमें कोई डिफेक्ट, मिसकैरेजेस, उसके अकॉर्डिंग हम लोग एडवाइस करते हैं। दूसरा, 3 महीने पूरे होने पे जो आयरन और कैल्शियम हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे मरीज पूछते हैं कि हम शुरुआत से क्यों नहीं आयरन देते, क्योंकि आयरन अपने आप में थोड़ी सी हैवी, एक कहना चाहिए डाइजेशन में प्रॉब्लम देती है, कभी कभी गैस्ट्रिक अपसेट बड़ा कॉमन सा सिम्टम है आयरन की टैबलेट का। तो शुरू के 3 महीने में मरीज को वैसे ही जी मिचलाना, उल्टी ज़्यादा रहता है, अगर हम तब आयरन की टैबलेट देंगे तो वो इन सारे सिम्टम्स को और बढ़ा सकती है। तो आयरन की टैबलेट मोस्टली हम पेशेंट को 4th महीने से, या जब उसकी उल्टी वगैरह पूरी सबसाइड हो जाए, आयरन और कैल्शियम का डोज हम 4th मंथ से स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन में वही पेशेंट को सारा बैलेंस डाइट, अच्छी हरी सब्जियाँ, पत्तेदार सब्जियाँ, पूरा दाल होना चाहिए आपका, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर रिच डाइट, फ्रूट सैलेड, ड्राई फ्रूट्स, सारी चीज़ें उसको बैलेंस डाइट हम लोग समझाते हैं जो कि उसको लेना है। और मैं एडवाइस करती हूँ कि हम शॉर्ट फ्रिक्वेंट मील्स लें, बजाय एक मील हम ज़्यादा लेने के, उसमें फिर आप एक साथ बहुत सारा खाना खाते हो तो वो आपको पचने में दिक्कत देता है। तो आप शॉर्ट फ्रिक्वेंट मील्स, हम पेशेंट को बोलते हैं सुबह ब्रेकफास्ट ले, फिर लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में एक मॉर्निंग स्नैक, जिसमें कि उसके कुछ फ्रूट्स जूस या कुछ ड्राई फ्रूट्स, भीगे हुए आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। फिर लंच ले, और लंच और आपके डिनर के बीच में भी कुछ इवनिंग स्नैक उसका, जो भी वो पसंद करती है, कुछ आप अंकुरित चने, अंकुरित मूंग, नट्स वगैरह, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें ले। तो शॉर्ट फ्रिक्वेंट मील्स लेने से आपका डाइजेशन ईजी रहता है, आपको नौशिया, गैस्ट्राइटिस, ये सब जो कॉमन सिम्टम्स है प्रेगनेंसी में, आप उनसे बचते हैं।
1: इस दौरान वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। वजन बहुत सारी महिलाओं का नहीं भी बढ़ता है या बहुत कम बढ़ता है, सामान्य तौर पर कितना वजन बढ़ना चाहिए और कब से शुरू होना चाहिए वजन बढ़ना?
0: सामान्य तौर पर टोटल जो हम एक एवरेज बोलते हैं, वो लगभग 12 किलो वेट गेन एक प्रेगनेंसी में एक महिला का होता है। हालांकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, किसी का वेट बहुत ज़्यादा भी बढ़ता है, किसी कोई कोई अंडरवेट भी रहता है। जिसको ज़्यादा उल्टियाँ और ये सारे सिम्टम्स रहते हैं, खाना नहीं पचता, शुरू के 3 महीनों में पेशेंट का इनफैक्ट वेट लॉस होता है। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि हमारा उल्टा वजन बढ़ने की बजाय घट रहा है, तो ये उनको काउंसलिंग करते हैं, अभी उल्टियाँ हो रही हैं, तो तब शुरू के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपका वेट नहीं बढ़ता। वेट आपका बढ़ना शुरू होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर से, जब आपकी उल्टियाँ कम होती हैं, आपकी भूख बढ़ती है, आपकी डाइट बढ़ती है, और सबसे मैक्सिमम वेट गेन जो है वो 3rd ट्राइमेस्टर में होता है। अत्यधिक वेट बढ़ना भी अच्छा नहीं है, जैसा कि डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में या फिर बीपी वाले पेशेंट्स में। बीपी में एक्लेम्शिया, प्री एक्लेम्शिया, कुछ और कॉम्प्लिकेशंस हैं बीपी के, जिसमें पेशेंट के बॉडी में फ्लूड रिटेंशन हो जाता है, जिसमें कि एक्सेस वेट गेन होता है, तो वो भी अच्छा नहीं है। जहाँ भी हम पाते हैं कि हमें ज़रूरत से ज़्यादा वेट गेन है तो वहाँ हम मरीज़ का बीपी मॉनिटरिंग और शुगर मॉनिटरिंग एडवाइस कर

0: सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, थर्ड ट्राइमेस्टर की हम बात थोड़ी देर बाद करेंगे, एक और गीत हमारे श्रोता सुनना चाहेंगे आपसे कि आपकी पसंद का कौन सा गीत है।
0: फिर ले आया दिल बर्फी का।
1: आहा, कितना सुंदर ये गीत है।

0: इस खूबसूरत ईद के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम सेहत की बात तरानों के साथ में। हम बात कर रहे हैं महिलाओं के सामान्य स्वास्थ्य पर डॉक्टर सुकीर्ति दीक्षित मुद्गल से। डॉक्टर सुकीर्ति, हम बात कर रहे थे प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर पर। थर्ड ट्राइमेस्टर में खाना पीना कम होता चला जाता है क्योंकि मेरे ख्याल से उस कैविटी में जगह नहीं बचती तो शायद फ्रीक्वेंटली खाना और ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए।
1: नहीं, सबका खाना कम नहीं होता, किसी किसी की डाइट भी बढ़ती है। थोड़ा सा एक खाना कम जो आप कह रहे हैं उसका रीज़न हो सकता है क्योंकि पूरा पेट आपका ऊपर तक आ जाता है, तो जिसकी वजह से आपको एसिडिटी, गैस, ये सारी चीज़ें, बर्पिंग होना, ये कॉमन हो जाती है। तो थोड़ा सा इंडाइजेशन किसी किसी महिला में रहता है, पर निश्चित थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर ये सब सिम्टम्स नहीं हैं तो आपको आपकी डाइट बढ़ाना चाहिए।
0: क्या ये ट्राइमेस्टर जो थर्ड ट्राइमेस्टर है, सातवें महीने से नवें महीने पर, इसमें सबसे ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए?
1: हाँ बिल्कुल, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है जबकि आपके बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है और आप डिलीवरी के नज़दीक होते हैं। इस टाइम में बहुत सारे पेशेंट्स को कभी कभी प्री टर्म लेबर, जो कि हम बोलते हैं, टाइम से पहले डिलीवरी होना, कई बार लीकिंग होना, ये दर्द शुरू होना, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो पेशेंट को सावधानी बरतना है। थर्ड ट्राइमेस्टर के शुरुआत में कोई भी बहुत विगरस एक्सरसाइजेज ना करें और अपना नॉर्मल रूटीन वॉक वगैरह करें। और कभी भी ऐसा लगता है, इस टाइम हम बच्चे के मूवमेंट्स भी बहुत अच्छे से महसूस कर सकती है गर्भवती महिला, तो हम उसको DFMC डेली फीटल मूवमेंट काउंट या किक काउंट करने बोलते हैं कि दिन भर में अपनी सेल्फ मॉनिटरिंग करें। एटलीस्ट दिन भर में 12 घंटे में 12 से 15 बार बच्चे की किक्स या मूवमेंट्स उसको फील होने चाहिए। थर्ड ट्राइमेस्टर में फिर हम ग्रोथ स्कैन करते हैं और फाइनली डिलीवरी टाइम हम ग्रोथ स्कैन करते हैं, जिसकी में कि हम बच्चे की फाइनल पोजीशन, उसका सिर नीचे है कि नहीं है, उसके गले में नाल के अंटे तो नहीं है, उसका जो मेन फ्लूड रहता है बच्चे के आसपास वाटर बैग में, वो फ्लूड की लेवल कितना है, उसका जो प्लेसेंटा पुरैन हम लोग आंवल बोलते हैं वो जगह पर कहाँ है, इन सारी चीज़ों से फिर हम डिसाइड करते हैं कि हम उसको नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल देंगे या फिर सिजेरियन करना है हमको।

0: आमतौर पर ये माना जाता है कि फला डॉक्टर जो है वो सीजेरियन ज़्यादा करती है, फला डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वो नॉर्मल डिलीवरी करा देती हैं, ये कितना सही है?
1: मैं तो बोलूँगी ये बिल्कुल भी सही नहीं है। डॉक्टर बिल्कुल हमेशा पेशेंट के हित में ही निर्णय लेते हैं।
0: जी
1: डॉक्टर को बिल्कुल कोई नहीं चाहता कि बिना बात के सिजेरियन करना। हालांकि आजकल सिजेरियन रेट्स बहुत बढ़ गए हैं, जिसके लिए सिर्फ आप डॉक्टर को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इसमें मोस्ट कॉमन कारण मैं बोलूँगी लेट मैरिजेस और लेट प्रेगनेंसीज। जब महिला की एज ज़्यादा रहती है तो शरीर की जो लोच है, एक फ्लेक्सिबिलिटी, वो भी कम होती है। फिर आपकी ओल्ड एज में, जो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड, ये सारी चीज़ें हैं। अगर पेशेंट को मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं तो भी नॉर्मल ट्रायल में उसको रिस्क रहता है। दूसरा कि पेशेंट का, बच्चे का वज़न कैसा है। अगर उसकी पोजीशन नॉर्मल है, उसका हेड नीचे है पेल्विस में, गले में नाल के अंटे नहीं हैं, उसकी बाकी चीज़ें नॉर्मल हैं, तो हम लोग पूरा कोशिश करते हैं कि हम नॉर्मल का ही ट्रायल दें। ट्रायल वर्ड इसलिए बोला गया है कि आजकल पेशेंट्स गारंटी मांगते हैं, तो डॉक्टर भगवान तो नहीं है, गारंटी कैसे दे
0: जी
1: सकता है। हम
0: जी
1: पूरा ट्रायल देते हैं और पेशेंट को बता के रखते हैं कि ड्यूरिंग द ट्रायल, जब भी आप लेबर पेन 10 से 12 घंटे आप ले रहे हैं, इस बीच हम कंटिन्यू मॉनिटरिंग करते हैं। इंट्रा यूट्राइन हमारे पास डॉपलर्स रहते हैं, जिससे हम इंट्रा यूट्राइन भी बच्चे की धड़कन पल पल पे चेक करते हैं, और एक्टिव लेबर में जब पेशेंट दर्द ले रही है, खून पानी जा रहा है, तब ये मॉनिटरिंग और इम्पॉर्टेंट हो जाती है, ताकि कुछ भी हम मिसहैप से बचें। तो कंटिन्यू हम ड्यूरिंग दैट पीरियड हम मॉनिटरिंग करते हैं। कभी भी बच्चे को ऐसा लगता है कि पेट में लैटरिन करी उसने या धड़कन कम हुई, तो हमें इमरजेंसी में सिजेरियन शिफ्ट करना पड़ता है। अदरवाइज तो मैं यही बोलूँगी, हम पूरी प्रयास करते हैं कि पेशेंट की नॉर्मल डिलीवरी हो।
0: कभी कभी बहुत सारे पेशेंट्स इस पेन से घबरा करके भी सीजरियन डिलीवरी की तरफ
1: बिल्कुल
0: उन्मुख होते हैं
1: जी
0: और ये चाहते हैं कि उनकी सीजरियन डिलीवरी हो जाए, या कुछ लोग इतने एडमिट होते हैं कि नहीं, हमें तो नॉर्मल ही कराना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये दोनों ही स्थितियां मेरे ख्याल से खराब हैं। डॉक्टर की सलाह से ही जो
1: बिल्कुल
0: कुछ हो वो होना बेहतर है। डॉक्टर साहब, ये रही डिलीवरी की बात, आफ्टर डिलीवरी जो हेल्थ है वो कितनी जरूरी है, पोस्टपार्टम?
1: पोस्टपार्टम अब महिला को अपना ख्याल भी रखना है और एक न्यूबॉर्न बेबी का, जिसमें कि आपको रात रात जगना, ब्रेस्ट फीडिंग कराना, और पोस्ट डिलीवरी, चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन हो, स्टिचेस कई बार नॉर्मल डिलीवरी में भी आते हैं, उसका पेन रहता है, ये सारी चीज़ें महिला को फेस करना है। और बच्चे को फीडिंग उसी को कराना है, तो कहीं ना कहीं उसकी नींद अफेक्ट होती है, वो बच्चे की वजह से अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दे पाती, बल्कि उसको ड्यूरिंग लैक्टेशन में बोलूँगी कैल्शियम रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी से भी ज़्यादा डबल हो जाता है। पोस्टनेटल पेशेंट्स को बहुत आपने कॉमनली सुना होगा कि कमर दर्द, पीठ दर्द, जॉइंट पेन, ये सारी चीज़ें, क्योंकि जब महिला ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो उसके जो कैल्शियम उसको जा रहा है वो सारा उसके बोन से जाता है। अगर उसका कैल्शियम रिक्वायरमेंट पूरा नहीं है तो ये सारा कैल्शियम आपकी बोन से डिजॉल्व होके आपके ब्रेस्ट मिल्क में बच्चे को पहुंचता है, जिससे कि आपकी हड्डियां पोली होने लगती हैं कमज़ोर, जिस सिचुएशन को हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि एक एज रिलेटेड भी होती है, हार्मोनल होती है, और पोस्टपार्टम भी लैक्टेशन पीरियड में बड़ी कॉमन है। तो इसमें पेशेंट को अपने डाइट में स्पेशली कैल्शियम रिच चीज़ें, दूध, दही, ऐसे फल जैसे सीताफल, केला, ये सारी चीज़ें, कैल्शियम रिच मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह, इन सब चीज़ों को ऐड करना चाहिए, और कैल्शियम रिक्वायरमेंट भी उसको अपना बढ़ा देना चाहिए। न्यूट्रिशन में बाकी सारी चीज़ें, हाई प्रोटीन डाइट, हरी सब्जियां, इन सब चीज़ों का भी उसको बहुत ध्यान रखना चाहिए। कोशिश करें घर के लोग भी मदद करें, पेशेंट बच्चे की केयर करें, जिससे कि माँ की एक अच्छी नींद हो पाए। पोस्टनेटल एक डिप्रेशन भी बड़ा कॉमनली,
0: ये बहुत बड़ी चीज़ है,
1: बहुत कॉमनली आजकल देखने मिलता है। पेशेंट इतना डिस्टर्ब हो जाती है कि वो बिल्कुल अपना ध्यान नहीं रख पा रही, और अगर उसकी हेल्थ अफेक्ट होती है तो नेचुरली फिर बेबी हेल्थ भी अफेक्ट होती है। अगर वो प्रॉपरली ब्रेस्ट फीड नहीं कराएगी, फीडिंग टाइम में ब्रेस्ट कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट को, अगर वो सही तकनीक नहीं जानती ब्रेस्ट फीडिंग की, तो ये भी उसको ब्रेस्ट फीडिंग में बहुत परेशानी। तो ये हमारा ड्यूटी है हॉस्पिटल में, डॉक्टर्स का, स्टाफ का, कि डिस्चार्ज से पहले ही हम लोग माँ और बच्चे की बॉन्डिंग, और जो कि हमारा उसकी ब्रेस्ट फीडिंग, हम वहीं इनिशिएट कराएँ और प्रॉपरली उसको इस चीज़ में ट्रेन करें, जिससे कि उसको घर जाके इन चीज़ों में दिक्कत ना आए।
0: शरीर का तो इलाज डॉक्टर कर देते हैं, जब आप डिस्चार्ज करते हैं किसी माँ और बच्चे को, माँ की और उसकी फैमिली की किसी तरह की काउंसलिंग की जाती है?
1: हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत ज़रूरी है। एक तो बहुत मिथ है कि ऑपरेशन हुआ तो पेशेंट को खाना नहीं देना, सिर्फ दलिया ही दलिया देना है, लड्डू नहीं देना।

0: ये सारी चीज़ें, तो ये तो हमको सासों को बुला के उनकी काउंसलिंग करनी पड़ती है कि या नॉर्मल डिलीवरी है सिजेरियन, आप पेशेंट को पूरा खाना दीजिए, दाल रोटी सब्जी फल सलाद सारी चीज़ें आपको उसके न्यूट्रिशन में देना है। एक बहुत कॉमन मिथ है कि खट्टी चीज़ें ना दें टाके पक जाएंगे। इनफैक्ट हम लोग बोलते हैं विटामिन सी तो हीलिंग में बहुत हेल्प करता है, तो विटामिन सी मतलब नींबू अगर आप दे रहे हैं उसको खाने में सलाद में, तो मुझे नहीं लगता वो कोई हार्मफुल है, बल्कि आपके स्टिचेस की हीलिंग में आपकी रिकवरी में और हेल्प करता है।
1: खट्टी चीज़ें देने से टांके पक जाएंगे ये भी सुना है मैंने, और ये भी सुना है कि खट्टी चीज़ें देने से दूध सूख जाएगा।
0: नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। पेशेंट को यही बोलना है कि उसको फ्रिक्वेंटली अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराए, ब्रेस्ट फीड ऑन डिमांड एटलीस्ट एक दो घंटे में ब्रेस्ट फीडिंग कराए, और टॉप फीड को हम लोग बिल्कुल डिस्करेज करते हैं।
1: टॉप फीड यानी बाहर का दूध,
0: बाहर का दूध जो कि आप गाय का या डिब्बे का दूध, कम से कम 6 मंथ्स तक डिलीवरी के बाद सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ही माँ को करानी चाहिए, क्योंकि जब आप टॉप फीड देते हैं तो फिर आपका ब्रेस्ट मिल्क आना भी कम हो जाता है, और बच्चे को जो न्यूट्रिशन एक माँ के दूध से मिलता है वो चीज उसको टॉप फीड से नहीं मिल सकती। माँ का दूध इतनी इम्यूनिटी बच्चे को प्रोवाइड करता है जो कि उसको आगे की लाइफ में भी बहुत सारी बीमारियों से बचाता है।
1: डॉक्टर साहब, इसके अलावा हम यदि बात करें तो हर महीने मासिक स्राव तो महिला को होता ही है, इसके अलावा भी अलग अलग तरह के स्राव जो हैं वजाइना से जो निकलते हैं वो कौन से हेल्दी डिस्चार्ज हैं, और कब ये मान लेना चाहिए कि ये हमारे लिए नुकसानदायक है?
0: वाइट डिस्चार्ज पेशेंट मोस्टली ओपीडी में कंप्लेंट करते आते हैं कि सफ़ेद पानी जा रहा है, तो हर सफ़ेद पानी का क्या इलाज ज़रूरी है, ये आपका सवाल है
1: जी।
0: तो बहुत सारे कुछ डिस्चार्जेस नॉर्मल होते हैं, जैसे ड्यूरिंग ओविलेशन पीरियड के लगभग 12वें-14वें दिन हल्का गीलापन सा महसूस होता है, तो वो कई बार नॉर्मल डिस्चार्ज रहता है, पर डिस्चार्ज को हम तब बोलेंगे एबनॉर्मल है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा क्वांटिटी में हो रहा है, हर वक्त महिला को एक गीलापन ही महसूस हो रहा है, उसमें कोई फाउल स्मेल आ रही है, या फिर उसको नीचे अपने प्राइवेट पार्ट्स में इचिंग या कुछ बर्निंग या भी कुछ एबनॉर्मल फीलिंग हो रही है, कई बार रैशेज दाने वगैरह हो रहे हैं, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो उसको अपने डॉक्टर को दिखा के और उसका इलाज बिल्कुल लेना चाहिए। फिर डिस्चार्जेस भी कई तरीके के होते हैं, एक ही दवा हर डिस्चार्ज पे काम नहीं करती। ये जब हम लोग इंटरनल एग्जामिनेशन करते हैं तब हम लोग ये चेक करते हैं कि ये नॉर्मल डिस्चार्ज है या फंगल है या फिर प्रोटोजोअल बैक्टीरियल, ये सब डिस्चार्जेस अलग अलग होते हैं, इनकी कंसिस्टेंसी इनका लुक अलग होता है और इनका ट्रीटमेंट भी अलग होता है। स्पेशली जो कर्डी डिस्चार्ज बड़ा कॉमन है पेशेंट बोलती है, दैट इज़ मोस्टली फंगल, और वो बहुत क्रोनिक होता है, बहुत लंबे समय तक चलता है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं प्रिकॉशंस जो सब पेशेंट को ध्यान रखने चाहिए।
1: इन प्रिकॉशंस पर हम बात करेंगे डॉक्टर साहब, लेकिन एक छोटा सा अंतराल हम गीत का भी लेंगे। पहले हम जानना चाहेंगे कि क्या आप गुनगुनाती भी हैं?
0: थोड़ा बहुत।
1: तो ये जो गीत अपने श्रोताओं को बताइए, ये गुनगुना कर बताइए।

0: इस गीत के बाद एक बार फिर स्वागत है। कार्यक्रम है सेहत की बात तरानों के साथ। डॉक्टर सुकीर्ति दीक्षित हमें बता रही हैं कि महिलाओं का सामान्य स्वास्थ्य कैसे मैनेज किया जाए। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम समाप्त हो इससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि महिलाओं का जो वजाइनल हेल्थ है, ये बड़ी समस्या वाली स्थिति है। बचपन से ही, जैसे ही बच्ची बड़ी होनी शुरू होती है, उसे तरह तरह के वजाइनल वॉश इस्तेमाल करने को दे दिया जाता है। ये कितने सेफ हैं?
1: वेजाइनल वॉश अच्छा है यूज़ करने के लिए, क्योंकि वेजाइनल पीएच जो कि एसिडिक रहता है
0: जी।
1: आप जैसे कि अपने शरीर में आप शैम्पू लगाते हैं, फेस वॉश लगाते हैं, सोप लगाते हैं, तो वो तो हमारा बहुत ज़रूरी है कि वेजाइनल हाइजीन के लिए भी हमारे पास कुछ हो जिससे हम उसको क्लीन करें। तो जो हमारे सोप्स हैं, शैम्पूज, जो अदर जो हम लोग बॉडी के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो थोड़ा अल्कलाइन पीएच के होते हैं। तो जब अगर हम नॉर्मल सोप से अपना ये सब चीज़ें आप अगर वॉश करते हो, तो आपका पीएच बढ़ जाता है, जिससे कि आप वेजाइनल इन्फेक्शंस के लिए प्रोन होते हो। तो वेजाइनल वॉश यूज़ करना बिल्कुल सेफ़ है। एटलीस्ट दिन में एक बार जब आप नहा रहे हो तब आपको यूज़ करना चाहिए, और अगर आप कोई इन्फेक्शंस या ऐसा है तो आपको, आप उसको दिन में दो बार भी यूज़ कर सकते हैं।
0: इसके अलावा महिलाओं में यूटीआई की समस्या ज़्यादा होती है। जिन्हें यूटीआई की समस्या बार बार हो रही है, वो किन चीज़ों का ध्यान रखें?
1: यूटीआई के लिए महिलाएं इसलिए प्रोन हैं, एक तो शॉर्ट यूरेथ्रा की वजह से, और ये कॉमनली उनमें होता है जब आप पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ कर रहे हो, जब आप पानी का इंटेक कम कर रहे हो, जब आप बहुत देर तक अपनी यूरिन रोके हुए हो, तब आप यूरिन इन्फेक्शंस के लिए प्रोन रहते हो। दूसरा कि जब महिला इन वाइट डिस्चार्ज और भी अलग वेजाइनल इन्फेक्शन से पीड़ित रहती है, तो ये सब डिस्चार्जेस भी कहीं ना कहीं आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में जाते हैं और आपको यूरिन इन्फेक्शंस करते हैं। तो जब आपको अपनी वेजाइनल हाइजीन का जब आप ध्यान रखते हो, तो आप यूरिन इन्फेक्शन से भी बचते हैं। कम से कम जो हम लोग बोलते हैं, 2 से 3 लीटर मिनिमम पानी आपको दिन में पीना चाहिए। आप पब्लिक टॉयलेट्स में जा रहे हैं तो वो साफ़ सफाई का ध्यान रखें, पहले फ्लश करें फिर उनको यूज़ करें। इसलिए फीमेल्स ज़्यादा प्रोन रहती हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखने से आप वेजाइनल इन्फेक्शंस और यूटीआई दोनों से बच सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, हमारे इस पूरे कार्यक्रम में आपसे बहुत अच्छी बातें हुई और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे श्रोताओं तक पहुँची जो हमें जानना बेहद ज़रूरी है। न सिर्फ माओं को बल्कि बच्चियों को भी जानना बेहद ज़रूरी है। आपने तो सासों के जानने की भी बहुत सारी बातें बताई। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार।

अभी सेहत की बात तरानों के साथ में इसी विषय पर डॉक्टर सुकीर्ति दीक्षित मुद्गल से आप तुलिका शर्मा की बातचीत सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

0: दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे।
1: इतनी वफादारी, आजकल कौन सोचता है ये सब। जीने के हैं चार दिन तो जियो जी भर के।
2: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से HIV एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे HIV एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
1: हाँ भाई समझा।
2: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: राहत फतेह अली खान और रेखा भारद्वाज को आइए सुनते हैं। फिल्म का नाम है बजरंगी भाईजान।

0: शुरू हो रहा है। दो दिवसीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इंडोनेशिया और ईरान के राष्ट्रपति सहित ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता और प्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी विभिन्न देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। विद्युत वितरण कंपनी के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग के 16 जिलों में बिजली चोरी और अन्य अनियमितताओं से जुड़े प्रकरणों का निराकरण होगा। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 साल पूरे हो गए हैं। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 साल की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 13 सितंबर को आगर मालवा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान लाडली बहना योजना की हितग्राही बहनों के खातों में माह सितंबर की राशि का अंतरण करेंगे। मुख्यमंत्री इस दौरान यहां विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। मौसम विभाग ने आज उज्जैन, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, देवास, हरदा, सागर, रायसेन, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, पांडुना, सिवनी, बालाघाट और छतरपुर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और महिला एशिया कप क्रिकेट में दुबई में कल भारतीय टीम फाइनल में पिछले चैंपियन श्रीलंका से भिड़ेगी। श्रीलंका की टीम कल पाकिस्तान को 4 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंची। श्रीलंका ने 2024 के फाइनल में भारत को हराकर अपना पहला एशिया कप खिताब जीता था। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए फोन इन कार्यक्रम बात आपकी। गीत हमारे प्रस्तुति रक्षा तन्वर की है।

0: आपकी रेडियो दोस्त रक्षा तवर। आप सभी श्रोताओं का हार्दिक हार्दिक स्वागत है आज के कार्यक्रम में। श्रोताओं, जिंदगी जो है वो सिर्फ जिम्मेदारियों को पूरा करने का नाम नहीं है। काम, पढ़ाई और रोजमर्रा की भागदौड़ के बीच ऐसा भी कुछ होना चाहिए जो हमें अंदर से खुशी दे। इसके लिए कई लोग संगीत सुनना पसंद करते हैं, जैसे आप आकाशवाणी केंद्र को सुनते हैं, या कुछ लोग किताबें पढ़ते हैं। किसी को अपने पौधों बगीचों में सुकून मिलता है तो कोई चित्रकारी, नृत्य, लेखन या फिर खेलों में अपना मन लगा लेता है। यही छोटे छोटे शौक और रुचियां हमारे जीवन को और बेहतर करते हैं और धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व को भी निखारते हैं। आज के कार्यक्रम में आपसे हम बात करेंगे आपके शौक, आपकी रुचियों के बारे में। तो चलिए पहले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारी।
1: जी नमस्कार महोदया, मैं ग्राम तरसमा जिला मुरैना से हरविलास सिंह तोमर बोल रहा हूँ।
0: हरविलास जी, कैसे हैं आप?
1: आपकी दुआ इस कृपा से बहुत अच्छी तरह से है।
0: क्या करते हैं हरविलास जी?
1: खेती किसानी करता हूँ मैं।
0: खेती किसानी करते हैं तो हरविलास जी, आज कार्यक्रम है बात आपकी गीत हमारे और कार्यक्रम का विषय हमने रखा है रुचि या शौक। तो किस तरह के शौक हैं जो आपके आम जीवन से अलग आपको खुशी देते हैं, आपको आनंद देते हैं, ऐसे क्या शौक हैं आपके?
1: जी मुझे इस तरह का शौक है कि मैं सुबह सुबह प्रातः काल उठकर सबसे पहले 2 घंटे झाड़ू लगाता हूँ, मंदिरों में, गलियों में, स्कूलों में सफाई रखता हूँ। आज से 14 साल पहले से मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे बड़ी संतुष्टि मिलती है इस कार्य से।
0: आपको साफ सफाई का शौक है?
1: जी।
0: और आप अपने घर में नहीं बल्कि आसपास समाज में साफ सफाई रख करके इस शौक को पूरा करते हैं?
1: जी, गांव की गलियां हैं, मंदिर हैं, स्कूल हैं, उन सब की सफाई करता हूं मैं 2 घंटे प्रातःकाल।
0: अरे वाह, बहुत बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत नेकी का काम करते हैं। अच्छा लगता है ये आपको?
1: जी बहुत अच्छा लगता है, लोगों की दुआएं मिलती हैं, बहुत संतुष्टि मिलती है मन को।
0: तो हमने देखा है कि ये जो शौक होते हैं छोटे छोटे, ये आपके व्यक्तित्व को भी विकसित करते हैं, आपको और बेहतर इंसान बनाते हैं, और जो आपका शौक है ये तो जरूर बनाता है।
1: ये अपने लिए तो को जीता भी जीते, सबको जीते, लेकिन थोड़ा समाज के लिए कुछ न कुछ हर आदमी को करना चाहिए। वृक्ष लगाना चाहिए, सफाई रखना चाहिए, पर्यावरण प्रदूषण उपाय इस तरह के कार्य करना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं हरविलास जी, और बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद हरविलास जी कार्यक्रम में फोन करने के लिए।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
0: धन्यवाद, नमस्कार।

0: नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे
1: हेलो,
0: जी। नमस्कार।
1: नमस्कार। मैं ओम प्रकाश नेमा, विद्यानगर तेलुखड़ा, जिला दमोह, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ।
0: ओम प्रकाश नेमा जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं।
0: क्या करते हैं ओम प्रकाश जी?
1: हमारे यहाँ कपड़े की दुकान है।
0: कपड़े की दुकान करते हैं। अच्छा जी,
1: जी
0: कार्यक्रम का विषय हमने रखा है शौक या फिर रुचियां हमारी जो होती हैं, हम आम जीवन में जो काम करते हैं उससे अलग जो हमें खुशी देती है, सुकून देती है। तो ऐसे क्या शौक हैं आपके, क्या बताना चाहेंगे?
1: तो हमारा शौक तो यही है कि आपके प्रोग्राम सुनते रहते हैं,
0: जी।
1: रेडियो सुनते रहते हैं, पेपर पढ़ते रहते हैं, और तुम्हारी दुकान में हम कार्य करते रहते हैं। और दुकान में तो ये हमारी कपड़े दुकान में तो ये है कि यहाँ तो हमको सारे शौकों का मालूम है कि कैसे कैसे शौक वाले आदमी आते हैं, कैसे कैसे हमको उनको ये कपड़े दिखाने पड़ते हैं। नए नए शौक चल रहे हैं और नए नए प्रकार की डिजाइने आ रही हैं,
0: जी
1: तो वो मांग करते हैं ग्राहक।
0: ओम प्रकाश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
1: उस सारे श्रोताओं के लिए नमस्कार, आपके लिए भी नमस्कार।
0: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है
1: जी। नमस्कार, ये मैं चित्रकूट धाम के बहेरी ग्राम से दिनकर सिंह बात कर रहा हूँ। दीदी जी को नमस्कार कर रहा हूँ।
0: दिनकर सिंह जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, मस्त है। अभी स्नान करके फुर्सत हुए थे तो ट्राई किए, फोन भी लग गया।
0: जी जी जी जी जी
1: तो आज का विषय वस्तु क्या है दीदी?
0: तो कार्यक्रम में आज का विषय है शौक। किस तरह के शौक आप रखते हैं जो आपके जीवन को और बेहतर करते हैं?
1: जी पहले तो बचपन से अभी करीब 20 साल 25 साल तक तो खेलने का शौक ज्यादा था।
0: क्या
1: इसके बाद
0: जी
1: घूमने का शौक भी रहा 15 से 20 साल।
0: अच्छा,
1: और अब जो है जहाँ शांति जगह है, भीड़ भाड़ वाली इलाके में मैंने घूमना बंद कर दिया है। अभी भी घूमने का शौक है, लेकिन जहाँ छोटी छोटी जगह है, प्रसिद्ध जगह है, भीड़ भाड़ कम रहती है, वहाँ जाने का अभी भी मुझे शौक है।
0: अच्छा, तो क्या खेलते थे आप? आपने बताया आप खेलने में रुचि।
1: मैं क्रिकेटर था, जो है क्रिकेटर था, ऑल राउंडर।
0: अच्छा।
1: जो है के हिसाब से क्रिकेट खेलता, स्पिन गेंदबाजी करता था।
0: हम्म,
1: और अपनी क्लब की तरफ से खेलता था।
0: अरे वाह, बहुत बहुत बहुत अच्छा खेल। तो अब नहीं खेलते हैं आप?
1: जी अब मैं जो है मेरी उम्र 55 इयर्स है। मैं 35 साल की उम्र तक खेला है, जो है लगभग 20 साल से 35 साल की उम्र तक खेला है। इसके बाद लोगों के साथ जाता जरूर रहा हूँ, और क्रिकेट के अलावा जो है फुटबॉल भी मैं खेलता रहा हूँ शौक के लिए, हल्का फुल्का
0: जी।
1: और ये जो क्षेत्रीय खेल होते रहे वो और बचपन में खेलता रहा।
0: अच्छा, और आपने बताया कि आपको घूमने का भी शौक है।
1: जी जी जी जी जी।
0: तो कहाँ कहाँ आप घूम चुके हैं, ऐसी कोई प्रसिद्ध जगह आप एक दो बताएं?
1: धार्मिक स्थलों में गया, जैसे आपके प्रयागराज, काशी हो गया, मैहर भी गया, जो है एमपी के स्थानों में, और आपका जो छतरपुर के एक दो स्थान है वहाँ घूमने गया। आपका जो है जहाँ जलियांवाला कांड हुआ था वहाँ गया था मैं, घूम आया।
0: अच्छा,
1: तो इस तरह से कुछ प्रसिद्ध जगहों में मैं घूमने गया हूँ, और अभी उज्जैन जाने की तैयारी है, क्योंकि मैं जो है ये श्रीमती जी का जो है उनका ज्यादा इच्छा है, क्योंकि मैं भीड़ भाड़ में अब कम पसंद करता हूँ, लेकिन उनकी इच्छा तो उनको लेके जाऊंगा।
0: अच्छा, तो दिनकर जी ये जो शौक है आपके, जैसे खेल खेलना हो गया या फिर घूमना हो गया, आपको क्या लगता है इसके क्या फायदे हैं आपके हिसाब से?
1: खेलने में तो शरीर बिल्कुल एकदम स्वस्थ रहता है, और खेलना तो हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। अगर आप वृद्धावस्था में भी हैं तो आप अपने उम्र के व्यक्ति से थोड़ा बहुत कसरत के तौर पर खेल सकते हैं, क्योंकि मैंने जो देखा है, मैं ग्रामीण क्षेत्र से बात करता हूं, लेकिन मैंने शहरों में देखा कि 50-50, 60-60 साल के लोग जो है आपस में टेनिस वगैरह खेलते रहते हैं सुबह शाम।
0: जी,
1: तो इससे व्यायाम भी होता है, और जो है आपकी जो शरीर की एनर्जी है वो जो है मेंटेन रहती है।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद दिनकर जी, आपने कार्यक्रम में फोन किया उसके लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
1: जी नमस्कार जी।
0: नमस्कार।

0: किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।
1: कैसे?

0: नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार मैडम, कैसे हो आप?
0: मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं?
1: मैं ठीक है मैडम। मैं रघुवीर से राजपूत बोल रहा हूँ मैडम, महाराणा प्रताप चौक छिपावड़ तहसील करकिया जिला हरदा मध्य प्रदेश से।
0: क्या करते हैं रघुवीर जी?
1: जी मैडम, मेरे दुकान है और खेती किसानी है मैडम।
0: किस चीज़ की दुकान है आपकी?
1: जी मैडम, मेरे पान के दुकान है और होटल वगैरह है, चाय नाश्ता वगैरह।
0: अच्छा जी, तो कार्यक्रम में हम एक विषय रखते हैं जिस पर हम चर्चा करते हैं, तो आज का विषय है शौक या रुचियाँ।
1: जी मैडम, मैं बचपन से वैसे तो पेंटिंग बनाता हूँ
0: जी
1: और मतलब किसी भी चीज, प्रकृति की जो चीज़ है उस पर बनाना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। प्रकृति, जैसे क्लास में प्रतियोगिता होती थी स्कूल के दौरान, तो उसमें कई बार प्रथम स्थान पर भी चयनित हुआ हूँ मैडम।
0: अरे वाह, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो अभी भी करते हैं आप?
1: क्या मैडम?
0: अभी भी करते हैं, अपने शौक को जिंदा रखे हुए हैं आप?
1: मैडम अब समय नहीं मिल पाता है, बस अब रेडियो पर पत्र लेखन जो रहता है बस उसी का समय निकाल पाता हूँ, बाकी तो अब ज्यादा समय पेंटिंग में नहीं मिल पाता।
0: लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको करना चाहिए और अधिक समय निकालना चाहिए?
1: जी मैडम, शौक तो है मगर समय अभाव के कारण वो चीजें अब कम हो गई है, और तब केवल जैसे आकाशवाणी पर पत्रों के माध्यम से जो रहता है उस पे कुछ भी विशेष त्योहार पर पेंटिंग बनाकर आकाशवाणी में शुभकामना संदेश के दौरान भेज देता हूँ, बाकी अब वो समय नहीं रहा कि खुद के लिए शौक का समय निकाल पाऊँ।
0: अच्छा, लेकिन आपको क्या लगता है इसके क्या लाभ हैं? अगर अभी आप पेंटिंग दोबारा शुरू करते हैं तो क्या आपके जीवन में इससे कोई लाभ होगा?
1: जी मैडम, लाभ तो बहुत है, अपने मन का काम होता है क्योंकि जिस चीज में रुचि रहती
0: जी
1: उससे अपने को बहुत सुकून मिलता है मैडम।
0: जी बहुत अच्छी बात है रघुवीर सिंह जी।
1: पहली बार मैडम आकाशवाणी मध्य प्रदेश पर मेरा फोन कॉल लगा है, बहुत अच्छा लग रहा है मैडम।
0: अरे वाह, बहुत बहुत बधाई हो आपको कार्यक्रम में फोन करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रघुवीर जी।
1: जी जी मैडम, धन्यवाद।

0: नमस्कार,
1: हेलो,
0: कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है।
1: मैं राकेश कुमार, हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट शिमला।
0: राकेश कुमार जी, शिमला से बात करें, कैसे हैं आप?
1: जी बहुत बढ़िया हैं और बहुत अच्छा लग रहा है आपके प्रोग्राम से जुड़ रहा था, कॉल लग गई तो बहुत अच्छा लग रहा है।
0: बहुत अच्छी बात है। राकेश जी, कैसा मौसम है शिमला में अभी?
1: शिमला में मौसम अभी बिल्कुल साफ है और ठंडी ठंडी जो है मस्त हवा चल रही है और बहुत अच्छा पानी गिरा है और ऐसा मौसम बहुत अच्छा लगता है। और इस तरह से मौसम शाहरुख खान निवा जो हम जो हुआ पिछली बार हुआ था, इस बार बहुत अच्छा मौसम गया हिमाचल का।
0: हाँ, बहुत अच्छी बात है राकेश जी। तो कार्यक्रम में आज का विषय है शौक या रुचियां, जो हम हमारे आम जीवन में जो काम करते हैं उसके अलावा हम रखते हैं। किसी को खेलने का शौक होता है, किसी को गाने का शौक होता है, ऐसे ही शौक के बारे में हम बात कर रहे हैं।
1: जी जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा विषय है। तो मैं ये क्या कहता हूँ कि ऐसे ऐसे शौक है हमारे, मैं अपनी बात करूँ तो मुझे गाने सुनने का, गाने गाने का या म्यूजिक बजाने का बहुत ज्यादा शौक है। और कई बार जैसे मैं जैसे छोटा हमारे घर में कोई भी फंक्शन होता तो मैं ढोलक वगैरह इसको बजा देता हूँ। जब हमारे हिमाचल में कोई भी जब फंक्शन होता था या तो हमारे जो पहाड़ी पहाड़ी संगीत होता था तो मैं उसमें ढोलक बजाता था। और ऐसा नहीं कि ढोलक है थोड़ी बजा ली जब तक सुबह नहीं तब तक बजाता था। एक बार मैं एक बात की बात करूँ, मैं एक घर एक मैं बुआ के घर गया था
0: जी।
1: जैसे कि हमारे जैसे कोई भांजा तो मामा में बन के गए थे सभी, तो मैं भी गया था।
0: जी
1: तो उधर मैं गया था तो वहाँ चली थी महफिल। तो पहले तो मेरे को उनने बोला तो उनने बोला कि भी उसको बुलाओ, राकेश जी को बुलाओ। तो फिर मैं गया तो मैं 3 बजे से लगा 5 बजे तक तो वह हाथ में इतनी इतनी क्या बोलते सूजी से आ गई, लेकिन वो जो जुनून था वो मैंने छोड़ा नहीं, लेकिन जो बजाया मैंने तो सब बहुत आनंद आ गया।
0: अरे वाह राकेश जी,
1: जब तक वो जो गाने वाला या नाचने वाला ये ना कहे कि बस बस हो गया वो,
0: हाँ।
1: सुबह तक तब तक मैं बजाना नहीं छोड़ता। तो मैं उनको बोलता रहता कि आप जितना भी गाना गाए हो, आप जितना भी डांस करो, तो मैं कभी थकता ही नहीं। बिल्कुल मैंने ऐसा जा सुबह तक बिल्कुल पूरा दर्द का एहसास नहीं हुआ। जब मैं सो गया था 5 बजे पे, जब मैं ऊपर जो उठने की उठा तो मैं जब हाथ धोने लगा तो फिर थोड़ा दर्द हो गई थी बजाते बजाते।
0: अच्छा, तो
1: जी जी
0: कोई
1: जी
0: गीत हमारे श्रोताओं के लिए गाना चाहेंगे? आप गाने का शौक रखते हैं तो।
1: जी तो जैसे कि हमारे एक पहाड़ी में आपको 2 लाइन में गुनगुना देता हूँ।
0: जी
1: ऐसे मुजरे जो के जवाना वैसे रुको तो लड़किए, ऐसे मुजरे ऐसे मुजरे जो के जवाना वैसे रुको तो लड़किए ऐसे मुजरे। जी, ये हमारे पहाड़ी गीत बजता था। जब मैं आकाशवाणी शिमला सुनता था तो हमारे जो हैं ऐसे ऐसे

0: नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है।
1: हाँ नमस्कार दीदी,
0: किन से बात हो रही है?
1: कल्ली दुबे बात कर रहा जी, नरवर जिला शिवपुरी से।
0: शिवपुरी से कल्ली दुबे
1: हाँ
0: जी बात
1: दीदी,
0: कर रहे हैं, क्या करते हैं कल्ली जी?
1: मैं दीदी खेती खाने का काम करता हूँ।
0: खेती किसानी का काम करते हैं। अच्छा, और कैसे हैं आप?
1: दीदी मैं बहुत अच्छा हूँ।
0: तो खेती में अभी क्या चल रहा है, क्या लगाया हुआ है आपने?
1: अभी दीदी धान लगी हुई है हमारे यहाँ।
0: धान लगी हुई है, अच्छा बहुत अच्छी
1: हाँ
0: बात है।
1: धान की रुपाई हो चुकी है, मतलब धान निकल आई है उसमें, और पानी की व्यवस्था नहीं है दीदी हमारे यहाँ,
0: अच्छा
1: क्योंकि पानी अभी बहुत कम बरसा हुई है, तो
0: जी।
1: इसके कारण बोर में कम पानी है हमारे यहाँ।
0: ओ, तो आपको समस्या हो रही होगी।
1: हाँ दीदी बहुत समस्या है, क्योंकि पहाड़ पर खेत है हमारे,
0: अच्छा
1: तो वहाँ पर पानी बहुत कम आता है।
0: अच्छा,
1: हाँ दीदी ऊंचाई है ज्यादा, तो क्या है कि ऊंचाई पर कम चढ़ेगा तो खेती कम होगी।
0: हाँ देखते हैं, अभी थोड़ा और बारिश होने की संभावना है, हो सकता है थोड़ा बेहतर हो जाए।
1: हो जाए दीदी तो बहुत
0: अच्छा
1: अच्छा लगेगा
0: रहेगा
1: दीदी,
0: जी
1: और फसल भी हो जाएगी हमारे यहाँ,
0: जी जी जी जी
1: और नहीं सूखा तो वैसे ही पड़ना है।
0: जी कली जी, कार्यक्रम जो है वो है बात आपकी गीत हमारे। तो आज कार्यक्रम में हमने विषय रखा है शौक और व्यक्तित्व विकास।
1: मेरा पहला शौक तो खेती किसानी का है।
0: अच्छा
1: हाँ, और दूसरा शौक रेडियो सुनना है दीदी, और तीसरा शौक मेरा है क्रिकेट,
0: क्रिकेट भी खेलते हैं, अरे वाह, तो
1: क्रिकेट खेलना,
0: आपने अपने काम को ही अपना शौक बना लिया है खेती किसानी करते हुए
1: क्योंकि दीदी देखो उसमें क्या है, मैं आपको बताऊं कि
0: जी।
1: अगर काम नहीं करेंगे खेती

0: फसल नहीं होगी तो खाएंगे क्या? खेती किसानी करेंगे तो अपना पेट भरेगा
1: जी,
0: और दूसरों का भी पेट भरेगा उससे।
1: बिल्कुल सही
0: और
1: बात
0: अगर
1: है।
0: खेती किसानी नहीं करेंगे तो अपन भूखे मरेंगे और दूसरे भी भूखे मरेंगे।
1: और आपने बताया कि आपको रेडियो सुनने का शौक है और आप क्रिकेट खेलते हैं, तो अभी भी खेलते हैं क्रिकेट आप?
0: नहीं दीदी, अब तो मैंने छोड़ दिया है क्योंकि मैं कम से कम 40 वर्ष का हो चुका हूँ दीदी।
1: अच्छा,
0: हाँ दीदी, और मैं जे समझो आपके कम से कम नहीं तो आकाशवाणी से मैं 1982 से सुन रहा हूँ दीदी।
1: 1982 से बहुत समय हो गया।
0: हाँ दीदी,
1: अरे बड़े
0: पहले
1: पुराने श्रोता
0: मैं
1: हैं आप।
0: ये आपका कार्यक्रम आता था हेलो डॉक्टर,
1: अच्छा जी
0: आकाशवाणी भोपाल से हेलो डॉक्टर,
1: जी
0: तो उसमें कॉल लगा करके मैं सवाल भी करता था और जानकारी भी मिलती थी उससे।
1: अच्छा
0: हाँ दीदी, और जब से आपने ये कार्यक्रम शुरू किया है, बात आपके गीत हमारे हेलो फरमाइश
1: जी
0: फोन करो गीत सुनो कार्यक्रम, ये सब कार्यक्रम मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं दीदी।
1: जी बहुत
0: क्योंकि
1: अच्छा।
0: आकाशवाणी शिवपुरी से प्रसारण होता है तो मैं वहीं से सुनता हूँ दीदी।
1: अच्छा, जी कली जी बहुत अच्छा लगा, इतनी पुरानी आप श्रोता हैं जानकर, और आप हमें सुनते आए हैं और हमारे कार्यक्रमों की सराहना करते हैं, बहुत बहुत अच्छा लगा सुन करके
0: और दीदी मैं
1: जी।
0: अपने दोस्तों के नाम ले सकता हूँ
1: बिल्कुल
0: दीदी?
1: बिल्कुल लीजिए
0: श्रीनाम सिंह जाटव जी है,
1: जी।
0: उनसे पहले बात करवा चुका हूँ मैं एक बार।
1: अच्छा
0: हाँ, तो उनसे मैं पहले बात करवा चुका हूँ क्योंकि वो कह रहे थे कि यार कल्ली भैया आप नंबर लगाते हो
1: हाँ
0: तो कभी हमारा भी नंबर लगा दिया करो। मैंने कही तो आपको मैं लगवा देता हूँ। तो
1: अच्छा
0: एक बार उन्होंने कॉल लगाया मैंने, तो बात भी की और गीत भी सुनवाया आपने,
1: अच्छा
0: उनको बहुत खुशी मिली।
1: अरे वाह।
0: और दीदी मैं अधिकतर ज्यादा दोस्तों से यही कहता हूँ कि देखो अपन को काम के साथ साथ मनोरंजन भी करना चाहिए। हाँ
1: जी बिल्कुल ठीक।
0: दीदी, तो मैं आकाशवाणी का भी देता हूँ कि आकाशवाणी पर कॉल लगा करके श्रोता बने और अपनी पसंद के गाने भी सुने।
1: जी तो आपको क्या लगता है, ये जो हमारे शौक होते हैं, ये रुचियां होती हैं, वो हमारे जीवन को कैसे बेहतर करते हैं या हमें एक बेहतर इंसान किस तरह बनाते हैं?
0: दीदी देखो, एक बात तो ये है कि जैसे कि आप शौक है आपका क्रिकेट खेलना,
1: जी
0: तो क्रिकेट में क्या है कि अपन को खेलने से अपना शरीर भी अच्छा लगता है,
1: बिल्कुल
0: उसमें मेहनत भी होती है।
1: हाँ
0: और दूसरी बात एक और है दीदी के, उसमें अपन जैसे दूसरों को खेलते हैं दूसरों से तो वो भी शिक्षा भी मिलती है कि ऐसे नहीं
1: जी
0: ऐसा करना चाहिए।
1: जी जी जी
0: हाँ दीदी,
1: बहुत अच्छी जानकारी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके कल्ली दुबे जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फोन करने के लिए, धन्यवाद।
0: थैंक यू थैंक यू।

0: हाँ नमस्ते दीदी
1: जी नमस्ते, किनसे बात हो रही है?
0: जी। नटेरन जिला विदिशा मध्य प्रदेश से कल्याण सेन बात कर रहा हूँ।
1: कल्याण सेन जी,
0: जी दीदी
1: तो क्या करते हैं कल्याण जी?
0: मेरा सैलून है दीदी।
1: सलाह है। अच्छा, तो कार्यक्रम में आज का विषय है शौक या रुचियां और उसके साथ ही व्यक्तित्व विकास। तो ऐसे शौक या ऐसी रुचियां जिससे आपका व्यक्तित्व विकास होता है।
0: शौक शौक की कहें तो दीदी बचपन से ही रेडियो का शौक रहा है।
1: आपकी आवाज थोड़ी धीमी आ रही है।
0: मैं ये कह रहा था कि
1: जी
0: बचपन से ही मुझे रेडियो का शौक रहा है
1: जी
0: और इसमें गीत संगीत के अलावा ज्ञान वर्धक और जानकारियां मिलती रहती हैं,
1: जी
0: बहुत
1: जी
0: अच्छा लगता है।
1: रेडियो सुनने का शौक है आपको,
0: हाँ जी दीदी,
1: इसके अलावा और कोई?
0: बस घूमने फिरने का शौक है दीदी। पिछले साल दिल्ली घूमे थे, इसके
1: अच्छा
0: अलावा वैष्णो देवी गए थे।
1: हाँ,
0: इस बार थोड़ा छत्तीसगढ़ जाना था लेकिन कुछ मजबूरी हुई ऐसे नहीं जा पाए थे वहाँ पे। जी
1: अच्छा तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के जो शौक होते हैं, जो भी आप
0: जी
1: अपने काम के अलावा करते हैं, वो उनके
0: जी
1: क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है?
0: इसमें क्या रहता है कि दीदी काम काज तो ऐसा है कि लगा ही हुआ है और थोड़ा बहुत मन का जो संतुष्टि मिलती है घूमने फिरने से, वो थोड़ा मन को लिए बहुत आनंदित रहता है।
1: मन की संतुष्टि आपको
0: जी जी
1: मिलती है शौकों से। जी बहुत बहुत अच्छी बात है कल्याण जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कार्यक्रम में
0: जी
1: फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद दीदी।
2: बम चिक चिक बम, चिक बम बम बम चिक चिक।

0: नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी मैम नमस्ते, मैं नरेश प्रजापति बात कर रहा हूँ।
0: नरेश प्रजापति जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: इंदौर मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ।
0: इंदौर से। क्या करते हैं नरेश जी?
1: मैं एम्प्लॉय हूँ मैम, मैन्युफैक्चरिंग लाइन में ट्रक और बसेस बनाने का काम होता है हमारा।
0: अच्छा जी,
1: जी,
0: और क्या हाल चाल है?
1: हाल चाल बस अच्छे हैं।
0: तो कार्यक्रम में आज का विषय है शौक या रुचियां और व्यक्तित्व विकास। तो ऐसे शौक, ऐसी रुचियां जो आप रखते हो अपने काम के अलावा में, और उससे किस तरह से किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास होता है या क्या फायदे हमें होते हैं, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं।
1: जी, ये तो शौक की बात करें तो सबसे बड़ा जो शौक है वो है रेडियो सुनना। और रेडियो सुनने से विकास किस तरह से होता ये भी मैं बताऊं आपको।
0: जी
1: तो ये बात लगभग

0: आज से 15 या हाँ 15 साल हो गए होंगे, तकरीबन 15 साल पुरानी है।
1: जी
0: रेडियो तो मैं बहुत पहले से सुन रहा हूँ, लेकिन रेडियो सुनते सुनते बहुत कुछ सीखने को मिला है।
1: जी
0: तो जिन दिनों मैं क्लास पढ़ता था उस टाइम पे हमारे एक सर हुआ करते थे, संजय ओझा जी, गुना
1: अच्छा
0: से। वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके द्वारा जो रेडियो पे जानकारी दी गई और बताई गई वो मेरे लिए काफी कारगर सिद्ध हुई है। तो
1: जी
0: सैड मैप करके एक वो संस्था थी, मैं ETP, वो DTP कोर्स कराया जाता था, तो
1: अच्छा
0: जी कंप्यूटर का एक कोर्स था। तो उन्होंने रेडियो पर वो जानकारी दी और उसके जरिए इग्नू से वो होता था, तो वो हमने वहां से किया और रेडियो भी सुनते रहे। और इसी दौरान फिर इंदौर आना हुआ, से फिर ITI की पढ़ाई हुई। ITI की पढ़ाई के बाद ये पीथमपुर में इंडस्ट्रियल एरिया है, तो यहाँ पे ट्रेनिंग की मैंने और फिर मुझे यहाँ पर जॉब मिली। तो ये रेडियो सुनते हुए बिल्कुल विकास हुआ है।
1: अच्छा, तो रेडियो से आपको इतना फायदा हुआ कि आप अपनी जॉब तक पहुंच सके। अरे
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं तो ये
1: वाह,
0: कहूंगा कि इसका पूरा श्रेय रेडियो को ही जाता है।
1: बहुत अच्छी बात है। नरेश जी, इसके अलावा और कोई शौक रखते हैं?
0: हाँ, एक और शौक है मेरा, क्रिकेट देखना
1: अच्छा
0: और क्रिकेट खेलना भी शौक है।
1: हाँ
0: और मैं बॉलिंग करता हूँ, तो बॉलिंग में मैं लेफ्ट हैंड बॉलर हूँ।
1: अभी भी खेलते हैं?
0: हाँ, अभी तो इतना ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता, और टाइम भी मिल जाता है तो फिर वो जो पहले जो दोस्त हुआ करते थे खेलने वाले साथ में, तो वो सब इधर उधर हो गए ना, तो यहाँ पे सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं।
1: जी
0: वो ये है कि अब वो समय वापस तो नहीं आ सकता है, लेकिन ये है कि कार्यक्रम के जरिए उन यादों को ताजा किया जा सकता है।
1: बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर आपके पास मौका होता तो क्या आप खेलना पसंद करते?
0: बिल्कुल बिल्कुल। और एक और बात बता दूं, जब
1: जी
0: हम हमारे स्कूल में एक मैच था,
1: जी
0: तो टाइम में मैंने बॉलिंग की, तो एक ही ओवर में मैंने 3 विकेट चटकाए थे। बिल्कुल,
1: अरे वाह, हैट्रिक मार दिया आपने।
0: बड़ा अच्छा लगता था उस टाइम के जो दिन थे। और मैं जितने भी श्रोता सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को, उनको कहना चाहूंगा कि भाई अपने जो आपने लक्ष्य बना के रखा है उस पर विशेष फोकस करें, और यदि कभी आपका जो शौक है वो आपका बिल्कुल आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में भी कारगर सिद्ध हो सकता है। बिल्कुल उसे ईमानदारी और मेहनत से कीजिए, वो
1: जी
0: सफलता जरूर मिलेगी।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: अठारहवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हो रहा है। दो दिवसीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इंडोनेशिया और ईरान के राष्ट्रपति सहित ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता और प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी यहां विभिन्न देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री बिरला ने कहा है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की शिक्षाएं हमें सत्य के मार्ग पर चलने और जरूरतमंदों की सेवा करने के लिए प्रेरित करती हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सेवा और सहभागिता की भावना को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक प्रदेश में सेवा संकल्प अभियान 2026 संचालित किया जाएगा। इस दौरान सभी जिलों में नागरिक सेवा और जन भागीदारी से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि प्रदेश में पिछले दो वर्षों में शिक्षा पोर्टल के माध्यम से लगभग 1,25,00,000 विद्यार्थियों के खातों में 696 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति पहुंचाई गई है। मौसम विभाग ने आज उज्जैन, धार, खरगोन, रायसेन, नर्मदापुरम, बालाघाट सहित 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और महिला एशिया कप क्रिकेट में दुबई में कल भारतीय टीम फाइनल में पिछले चैंपियन श्रीलंका से भिड़ेगी। श्रीलंका की टीम कल पाकिस्तान को 4 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंची। श्रीलंका ने 2024 के फाइनल में भारत को हराकर अपना पहला एशिया कप खिताब जीता था। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम के इस सफर में मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी रेडियो संगीनी प्रियंका। श्रोताओं नमस्कार, और वक्त आ गया है पत्रों द्वारा भेजी गई आपकी फरमाइश पूरी करने का। तो सबसे पहले सुनते हैं सरगम फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज की। और ये खत हमें मिला है मानोरा वाशिम से ध्रुव कुमारी गिरी, ज्योति, तेजस, प्रणीता, शैलीशपुरी, सोनमपुरी और धनेशपुरी का। और गांधी चौक रोपड़ पंजाब से ये फरमाइश हम तक पहुंची है हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जैतिक बीरक और मीका बीरक की।

अगला गीत इससे भी बहुत खूबसूरत है और बहुत ही भावुक कर देने वाला गीत है, और इसे सुनने के लिए फरमाइश भेजी है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हृदया खान, अस्मा, सायला, सालिया शोएब खान, साइमा खान, पोतरा पोत्री मुस्ताबा खान, अफिया खान, राहू भाई, शहीद भाई, और गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। और इसी गीत के लिए ये पत्र भेजा है असालतपुरा मुरादाबाद से मोहम्मद फरीद अंसारी, मोहम्मद बिलाल अंसारी, मोहम्मद ज़ुबेर अंसारी ने, और दौलतबाग मुरादाबाद से जाफ़र हुसैन, नईमा बेगम, कासिल अली, नदीम अली, जुनेद अब्बासी, और शेरकोटा जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर। हमारे ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं तलाश फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में, जिसे संगीत से सजाया है SD बर्मन ने और बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने।

कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में आइए अब सुनवाते हैं अनजान का लिखा ये गीत महेंद्र कपूर और उषा खन्ना की आवाज़ों में कंगन फिल्म से। इसकी फरमाइश हमें भेजी है धामणी मानोरा से तुलसीराम डेरे, मायावती, संदेश, आदेश, किरण, प्रज्वल और अनुत डेरे ने। कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार है और सदस्यों के नाम हैं मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। आदर्श नगर मलोट, राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मिंडी सौरव, शाइना शर्मा और निवान शर्मा। और छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों से ये पत्र हमें मिला है लेकिन नाम एक ही पत्र में शामिल है। ततरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू। इन सभी की पसंद पर कंगन फिल्म का ये गीत।

0: गीतकार गुलजार का लिखा गीत अब आपको सुनवाने जा रहे हैं मुकेश की आवाज़ में। आनंद फिल्म से इसे हमने लिया है और संगीत सलील चौधरी का है। फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता है मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाड़कर, राही श्रीमती सरिता प्रिंस एकांश गवाड़कर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत प्रणीता अर्जुन, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गवाड़कर, सुमित और कुमारी ध्वनि। ये पत्र बुरहानपुर मुकाम पोस्ट मोहत से हमें मिला है। मुशर्रफ खां तड़वी, जरीना मुबारक, परवेज बिटिया, रोजमीन तैमूर, भैया तड़वी, रीना मुशर्रफ तड़वी, रोजूबाई, सनी बाबू, परू तड़वी और समस्त तड़वी परिवार शामिल है इस फरमाइश में। और पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप और बेबी आरजुजा जाजोरिया, और छाबड़ा राजस्थान से ये खत हमारे हाथ में है और नाम है आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो। तो हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद पर मुकेश का गाया आनंद फिल्म का ये गीत।
1: मैंने

और कार्यक्रम के अंत में शामिल करने जा रहे हैं हमारे इन श्रोताओं की पसंद, दिल्ली शहर मोरीगेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार, घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सनमति पंचोलिया, और गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। हमारे ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं कालिया फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। इस गीत के बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत आरडी बर्मन का है।

पत्रों के माध्यम से श्रोताओं द्वारा भेजी गई फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब यहीं समाप्त करने की अनुमति दीजिए आपकी अपनी रेडियो संगीनी प्रियंका को। नमस्कार, ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 12:25 हुए हैं, समय है एक अंतराल का।

0: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा।
1: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
0: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
1: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
1: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
0: शाम सुहानी हो,
1: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
0: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
1: सफर में
0: आपके साथ
1: आकाशवाणी।

अंतराल का समय पूरा हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए अब सुनिए रेडियो धारावाहिक जमुनिया की 25वीं कड़ी।

अभी तक आपने सुना कि जमुनिया अपने आरंभिक दुख और तिरस्कार के बावजूद पढ़ लिख कर जीवन संघर्ष में उतरती है। गांव वालों की मर्जी से वो ग्राम सरपंच भी चुनी जाती है और बहुत कम समय में सरकार की दी हुई योजनाएं लागू करके गांव में सारी आधारभूत संरचनाएं खड़ा करती है। शीघ्र ही गांव में एक अजब सा उत्साह और जोश भर देती है। वहां गांव तक सड़क आई, बस आई, गांव में बिजली आई, स्कूल बना, अस्पताल खुला, पोस्ट ऑफिस और बैंक भी गांव आए। और उधर जमुनिया के बच्चे गोलू और चिरैया

0: घर आते हैं। तभी तेजस और रूपस भी गांव आते हैं। इसी बीच जयंत अखबार में जमुनिया की फोटो देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। अब आगे
1: बाबा।
2: हाँ बिटिया।
1: आपको चाय कैसी लगी?
2: अरे चाय
1: जी
2: बिल्कुल अमृत जैसी लगी बेटा। हाँ अमृत। अरे चाय नहीं बेटा, ये तो अमृत है अमृत। हाँ।
1: बाबा बस भी कीजिए, तारीफ करना तो कोई आपसे सीखे।
3: और बुराई करना
1: वो तो इस घर में है ही नहीं, और आगे भी भगवान हमें बुराई से दूर ही रखे।
4: चाय तूने वाकई अच्छी बनाई है, इसमें तारीफ वाली कोई बात नहीं है। अरे हाँ रूपस, जरा मेरा सर तो देख, बहुत दर्द कर रहा है।
1: क्यों मजाक कर रहे हो भैया, तुम तो दूसरे के सर में दर्द कर दो, तुम्हें कौन सर दर्द देने वाला है।
4: तू तो बड़ी अच्छी डॉक्टर हो गई है रे, बिना देखे ही मर्ज बता देती है।
3: तुम्हारी ही बहन है। अच्छा तेजस, ये जीप तू शहर से लेकर आया ना, ये यहाँ कब तक रहेगी?
4: एक दो हफ्ते तो रहेगी बाबा।
3: तो ठीक है चलो, जमुनिया का चेकअप भी करा आते हैं।
1: बाबा ये तो मेरी बेइज्जती हुई ना, घर में मेरे होते हुए इन्हें शहर लेकर जाएंगे।
3: अरे तू तो बुरा मान गई। अरे ऐसी कोई बात नहीं है।
1: फिर
3: कल इनकी जो खबर अखबार में छपी थी ना,
1: हाँ?
3: पता नहीं उसे पढ़कर मुझे पूरी तसल्ली नहीं हुई, इसलिए मन बार बार कह रहा है कि कुछ बाकी है, ये खबर पूरी नहीं है।
4: क्या बाकी है बाबा?
3: देखो भाई, ये जो कुछ छपा है ना, इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। मैं प्रेस से पता करना चाहता हूं कि इसके पीछे क्या है, पर पहले यही अखबार आज के तारीख का फिर से देखना चाहूंगा।
4: मैं ले आता हूं बाबा।
3: और तेजस बेटा, दो तीन अखबार और लेकर आ जाना।
4: जी ठीक है।
1: ठीक है भैया, तुम पेपर लेकर आओ, तब तक मैं कुछ नाश्ता बनाती हूँ।
4: ठीक है।
5: बस अब बहुत हो गया, चूल्हा चौका मेरा है, बहुत आराम हो गया। तुम लोग तो इस तरह मुझे बैठा कर रख दोगे।
1: अरे नहीं माँ, नाराज क्यों होती हो, हम दोनों मिलकर बनाएंगे।
5: तो ठीक है।
2: अच्छा तुम लोग नाश्ते की तैयारी करो।
1: जी
2: मैं तब तक एक बांस लेके आता हूँ, मैंने कल बात कर रखी थी बेटा। हाँ
1: ठीक है बाबा।
3: हाँ बाबा ये ठीक कहा आपने।

0: आप ठीक कह रहे थे बाबा, ये खबर तो आधी अधूरी छपी थी कल। खबर तो आज छपी है, फतेहपुर ग्राम पंचायत जिले की सर्वश्रेष्ठ पंचायत चुनी गई है और इसके लिए कल शहर में सम्मान आयोजित किया गया है। इसमें अम्मा को सम्मानित किया जाएगा और ग्राम पंचायत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भी दिया जाएगा।
1: अरे वाह,
2: अरे ये क्या हो गया आपको, रो क्यों रहे हैं?
3: ये तो खुशी के आंसू हैं जमुनिया, खुशी के। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अभी भी ईमानदारी बची है, ना हमने कोई जोड़ तोड़ की, ना तुमने कोई सिफारिश की। हम लोग रात दिन काम करते रहे और देखने वालों ने देखा, उसका सम्मान किया और आज ये दिन देखने को मिला है। ऐसी खुशी पचा लेना आसान नहीं है जमुनिया। मैं जानता हूं तुमने जो कोशिश की गांव को बेहतर बनाने की, उसके पीछे ये मंशा नहीं थी कि तुम्हारा सम्मान करें, तुम्हें पुरस्कार मिले। तुम तो बस रात दिन गांव को बेहतर बनाने में जुटी रही और मुझसे इस पर जितना बन पड़ा मैंने तुम्हें योगदान दिया।
0: सही है बाबा, आप सही कह रहे हैं, पर अच्छे काम का सम्मान भी ज़रूरी है ना, तभी हम अच्छे काम के लिए प्रेरित होते हैं। पुरस्कार देने कोई आएगा कि यहाँ से जाना होगा?
3: ये तो मुझे भी नहीं पता बेटा, रुको पढ़कर देखता हूँ और फिर बताता हूँ।
0: जी ठीक है।
2: बस अम्मा, देखा ना अम्मा, तुमसे भी रहा नहीं गया, बड़ी खुशी के पीछे आंसू होते ही हैं।
4: ए लो भाई, मैं भी आ गया। पर आप लोग मुझे बताओ तो सही कि आखिर हुआ क्या है? अरे गांव भर में जमुनिया के बारे में बातें हो रही हैं, जो देखो

0: वही जमुनिया जमुनिया कर रहा है। हाँ, अरे मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आया। मैंने सोचा अब जयंत बाबू ही बताएंगे मुझे।
1: बाबा मैं बताता हूँ आपको,
0: हाँ,
1: हमारी ग्राम पंचायत फतेहपुर पूरे जिले में सबसे अच्छी मानी गई है,
0: अरे
1: और
0: वाह,
1: उसके लिए अम्मा को पुरस्कार देंगे और सम्मान भी करेंगे।
0: अरे वाह, मन खुश हो गया। कब होगा ये सब बेटा? हैं?
2: बाबा
0: हाँ
2: मैं ये डिटेल में पढ़कर आप सबको बस थोड़ी देर में बताता हूँ।
0: ठीक है बेटा।
3: अरे सुनो भैया सुनो, अरे सुनो।
4: अरे हाँ भैया बोलो।
3: अरे क्या कह रहा यार? अरे भैया देखा जमुनिया का कमाल।
4: हाँ, अरे भैया मुझे तो शुरू से ही लगता था कि ये देवी कुछ ना कुछ कमाल जरूर करने वाली है।
3: हाँ, देखो पर भैया जे जमुनिया जी अभी आई नहीं है। अरे मैं बेचैन हो रहा हूँ कि पूरे जिले में अव्वल आने वाले ग्राम पंचायत की सरपंच पुरस्कार का समाचार पाकर अरे कैसी लगती होंगी भैया।
4: अरे अरे बेचैन मत हो भैया, सबर कर यार। वो देखो वो आ गई। ये देखो दादा, एक बात देखो कि इनके चेहरे पे कोई ऐसा भाव नया नहीं दिख रहा यार। ऐसे लग रही है इतनी बड़ी खबर है मगर ऐसे सादगी से ले ली कि वाह।
3: अरे ये तो बहुत महान है भैया।
4: ले भाई दीवान जी भी आ रहे हैं। दीवान भी आ रहे हैं। दीवान
3: अच्छा अच्छा अच्छा। अरे जे भी आ रहा है। अच्छा
4: मैं दीवान भी पधार रहे हैं।
3: हां तो देख के आन दो।
5: भाइयों आज आप सबके सामने हम ये स्वीकार करते हैं कि आज तलक हम जमुनिया को दिल से माफ नहीं कर पाए थे, और इसके लिए आप लोग जो चाहे हमें सजा दें हमें कबूल है। पर सच मानिए भाइयों, आज हम जमुनिया जी के सामने समर्पण करते हैं। और आप सबसे वादा करते हैं कि इस गांव की तरक्की में जितना भी बन पड़ेगा हम आपके साथ हैं, पूरा सहयोग देंगे। ठीक है ना
6: भाइयों? इससे बड़ी बात क्या होगी कि आज पूरा गांव एक मत है और हम तरक्की की राह पर निकल चुके हैं। जो भी सम्मान पुरस्कार है वो पूरे गांव का है। आप सबकी मेहनत को सलाम है।
5: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक।
6: सरकार जब बुलाएगी मैं जाऊंगी और आप लोगों की तरफ से पुरस्कार ग्रहण करूंगी। आप सब मेरी मदद करें, शुभकामनाएं दें ताकि आगे हम लोग गांव को और बेहतर बना सके।
5: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश।
6: दरअसल ये मीटिंग मैंने इसलिए बुलाई थी कि ये खबर आप सबको दे सकूं, पर मुझे लगता है कि ये तो सबको पता चल ही गया है कि हमारी ग्राम पंचायत जिले में सबसे आगे रही है और उसमें सारा श्रेय आप सबको ही जाता है।
7: और हाँ भाई और बहनों, आप सबको ये बताना चाहूंगा कि ये पुरस्कार सम्मान समारोह परसों शहर में होगा। और हाँ सुनो सुनो, इसमें हमारे गांव से जो लोग चलना चाहे हमारे साथ चले। और हाँ भाइयों, सबके आने जाने की व्यवस्था ग्राम पंचायत करेगी।
3: हम चलेंगे, कल्लू भैया चलेंगे, दादा चलेंगे, भैया जाएंगे। और
8: रात और दिन आते जाते हैं, कानों में कुछ कह जाते हैं।
9: राम राम।
5: राम राम, आओ जग्गा आओ, बोलो क्या खबर है?
9: आज का अखबार देखा जीवान जी?
5: हाँ जग्गा, देखा भी और पढ़ा भी। और तुमसे सच कहूं कि पहली बार हमें ये पता चला कि सच्ची मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। अरे बाकी सब तो लफाजी है लफाजी।
9: ये क्या हो गया है आपको दीवान जी? मैं तो सोचता था कि आपके मन को अच्छा लगने वाली कोई बात कहूं।
5: अच्छा हमारे मन को अच्छा लगने वाली बात? अच्छा हाँ। भला बताओ तो कौन सी बात कहना चाहते हो जो हमारे मन को अच्छा लगने वाली है?
9: आप जाने दीजिए, लगता है आप भी जमुनिया की सफलता से प्रभावित हो गए हैं।
5: सही लगा है तुमको जग्गा, सही लगा है तुमको। अरे गलत सलत सोच के चलते हमने अपना बहुत नुकसान कर लिया है, और आज समझ में आता है कि इन सब का कोई मतलब नहीं है।
9: दीवान जी, मैंने तो सुना है कि कुछ डाकू आज रात इस गांव पर हमला करने वाले हैं।
5: क्या?
9: हाँ, डाका डालने वाले हैं। तो सोचा आपको तो ये खबर दे ही दूं।
5: डाका? इस गांव में डाका?
9: हाँ।
5: अरे जग्गा, भला बता तो इस गांव में हमारे सिवा किसी और के पास है क्या? अरे क्या है किसी और के पास कि जिस पर डाकू डाका डालेंगे? और यदि ऐसा होने वाला भी है ना, तो सुन ले, हम किसी भी कीमत पर ये होने नहीं देंगे गांव में।
9: अरे दीवान जी, ये डाका चोरी लूट के लिए नहीं पड़ेगा, ये केवल उन लोगों को डराने धमकाने के लिए होगा।
5: अरे वो सब करके भी हम देख चुके हैं, अब इस बात का कोई भी मतलब नहीं है जग्गा। और अच्छी बात तो ये है कि गांव वाले अब बहुत सजग हैं, संगठित हैं, और ऐसे गांव का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता चक्का, कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
10: जयंत बाबू, जयंत बाबू।
2: हाँ भैया।
10: अरे भैया, अरे अरे सुना, ये आज रात को ये गांव में डाका पड़ने वाला है।
6: क्या
2: क्या कहा? डाका?
10: अरे मैं सीधा सुन के चला आ रहा हूँ अभी।
2: चमोरिया
6: जी,
2: इस वक्त निकलकर पुलिस को बुला पाना तो संभव नहीं है। समय हमारे पास कम है, इसलिए सारे गांव को इकट्ठा करो और अपने आदमियों को चारों तरफ अंधेरे में चुपके से फैला दो।
6: हाँ।
2: और जैसे ये डाकू गांव में आते हैं, उन्हें अंदर आने दो और चारों तरफ से खेल लो और मिलकर ललकार करो।
6: ठीक बात कह रहे हैं आप।
0: अच्छा सुनो।
6: हाँ।
0: भैया, अरे मैं गांव वालों को समझा के आता हूँ।
6: हाँ बाबा।
0: हैं, और सब लोग एक साथ मिलकर तय करते हैं कि क्या करना।
6: हाँ बिल्कुल बाबा।
11: बोलो भैया। जैसा जैन बाबू और जमुनिया कह रहे हैं,
0: हाँ
11: वैसा ही करना है।
0: हाँ भैया, वैसा ही करना है बिल्कुल।
12: इन डाकुओं को हमारे गांव से बाहर भगा रहा है।
13: देखो देखो, घर जला कर भी दीवान को चैन नहीं आया है, तो इसने हमें डराने के लिए डाकू बुलवाए हैं। महाराज चले नहीं देंगे।
14: अब दीवान को बताएंगे हम।
6: देखो भैया, ये बेकार की बातें मत करो। हर बात में दीवान को घसीटना, ये कोई अच्छी बात नहीं है।
14: नहीं चमुनिया जी।
5: भाइयों, हम जानते थे कि आप लोग यही कहेंगे, पर भाइयों, ये लोग जो पकड़े गए हैं, पहले इनके मुंह खोलिए और इनसे पूछिए कि इन्हें किसने भेजा है या कि ये खुद आए हैं। पूछिए इनसे कि इसमें हमारा कितना हाथ है, पूछिए। भाइयों भाइयों भाइयों, अरे हम आप सबके सामने ये स्वीकार कर चुके हैं कि हमारा मन अब बदल गया है। अरे हमने कसम खाई है कि अब भविष्य में कोई गलत काम नहीं करेंगे और ना ही इस गांव में कोई गलत काम होने देंगे। हो सुनिए, मेरी बात सुनिए भाइयों। इस गांव को जो सबसे अच्छी पंचायत का इनाम मिलने वाला है, उसमें हम भी आप लोगों के साथ चलना चाहते हैं। हाँ, अरे सबके साथ मिलकर इस सम्मान का हम भी स्वागत करना चाहते हैं। खोलिए इसका मुंह।

0: पूछिए। हे चल बता ये सब क्या है और किसके कहने पे तू इस गांव में डाका डालने आया था, चल बता।
1: नहीं मैं नहीं खोलूंगा मैं, नहीं।
2: अरे हमें तो ये भी पता नहीं कि ये गांव कौन सा है और किसका घर है। हम तो भाई लुटेरे हैं, एक रात पहले तय करते हैं और दूसरी रात को गांव पर हमला कर देते हैं ताकि हमारा डर गांव वालों में बना रहे। पर आप लोगों ने तो पहले ही हमको हराने की तैयारी कर रखी है।
0: देखा भाइयों, देखा इन लोगों की करतूत को। भाइयों हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि अब आप हम पे भी यकीन करना सीखिए, मेहरबानी करके हम पे यकीन करना सीखिए, हम बदल गए हैं भाइयों।
3: ठीक है भाई, ठीक है, अब इन लोगों को थाने पहुंचाइए। अब जयंत बाबू आपको बताएंगे कि सम्मान पुरस्कार का कार्यक्रम 2 दिन बाद शहर में होने वाला है। मेरे पास कागज आ गए हैं और सब जाने वाले लोग 2 दिन बाद यहीं इकट्ठा होंगे और यहीं से बस से शहर चलेंगे, ठीक है?
4: सुनो भैया, सुनो यार, ठीक है भैया, हमारी बात सुनो भैया।
5: क्या कह रहे हैं
4: भैया? आपकी इजाजत हो तो एक बात हम भी कहना चाहते
3: हैं। हाँ हाँ कहिए।
5: बिना डर के बोलो।
4: देखो भैया ऐसा है कि अपन सब एक जमाने से गांव में रह रहे हैं और हमें तो ये भी नहीं पता कि अपने गांव का नाम फतेहपुर कैसे पड़ा।
6: ये तो सही है।
4: पर अपनी जमुनिया बहन ने जिस तरह इस गांव को बदला है तो भैया मेरे तो ये सुझाव है कि अपने गांव का नाम फतेहपुर से बदल के जमुनिया खास रख दिया जाए।
6: अरे भैया जो कहां से लिया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया रहा है, बढ़िया बढ़िया।
4: देखो भैया,
6: हाँ भैया,
4: सब राजी हो? और पक्का कर लो एक बार।
6: पक्का पक्का।
4: दोनों राजी हो, हाथ उठाओ अपने अपने।
6: अरे भैया हाथ क्या उठाना है, पक्का ये वे तो।
3: मैं इस राय से सहमत नहीं हूँ।
4: क्यों भाई?
3: आज मैंने कुछ अच्छा किया तो आप फतेहपुर को बदल कर जमुनिया खास कर दे, कल दीवान जी ने कुछ अच्छा किया तो दीवाने खास कर दे, इस तरह तो गांव की कोई पहचान ही नहीं बचेगी।
7: ये बात तो साफ
6: है, समझदार है, सियानी है।
3: एक गांव का नाम लोगों के जहन में आते आते बड़ा समय लगता है और उस नाम को बदलकर उसकी अर्जित सारी अच्छाइयां भी बदल जाती हैं। मैं मानती हूँ कि आप सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरा बड़ा सम्मान करते हैं, तो हम सब मिलकर एक ही बात सोचे कि इस गांव की तरक्की जमुनिया ना हो या हो पर ये फतेहपुर तो रहेगा ना। आप सब की तरफ से 2 दिन बाद मैं शहर जाऊंगी और इस गांव का सम्मान लेकर आऊंगी और जहां तक बन पड़ेगा कुछ नई योजनाएं इस गांव के लिए लेने की कोशिश भी करूंगी, जिसमें सबसे ऊपर अभी टेलीफोन की जरूरत है। जो हम शुरू से ही कोशिश कर रहे हैं, जो नहीं हो पाई, और जयंत बाबू बता रहे हैं कि टेलीफोन के साथ साथ ब्रॉडबैंड भी इस गांव को चाहिए, साथ में हाँ हाँ अरे साथ में कंप्यूटर भी, जिससे इस गांव का सारा लेखा जोखा एक क्लिक पर मिल जाया करेगा। शहर में सम्मान के साथ मैं बात उठाऊंगी और दूसरी बड़ी जरूरत खेतों के पानी की है।
6: ये तो सही है।
3: और आप सबको पता है कि नहर यहाँ से केवल 3 मील दूर जाने वाली है। हम कोशिश करेंगे कि उसकी एक नाली सिंचाई के लिए हमारे गांव में आए।
8: तो बहुत बढ़िया जमुनिया
6: भैया।
8: हाँ एक बात समझ में नहीं आई, ये जमुनिया है नहीं 24 घंटे कचू ना कचू सोचती रहती
6: है,
8: जब देखो तब कुछ ना कुछ गांव के फायदे के लिए सुविधाएं जुटाने की बात सोचती रहती है।
3: और हाँ जो लोग शहर जाना चाहते हैं वो जयंत बाबू के पास अपना नाम लिखवा दें ताकि सबके आने जाने की व्यवस्था हो सके।
6: ठीक है भैया, ठीक है। और क्या भैया, हमारा नाम लिखवा बाबू जी, हमारा लिखवा।

0: नमस्कार दीवान जी। हरे दीवान जी, सुबह सुबह, सब कुशल तो है?
1: हाँ जमुनिया, सब कुशल है। अरे भाई, तुमने जिस मेहनत, लगन और ईमानदारी से गांव को संवारा है, तो अब गांव में सब कुशल ही रहना है। आज इस गांव के लिए बहुत बड़ा दिन है जमुनिया, और आज तुम सबकी खुशी में हम भी शामिल हैं और सबको दिल से बधाई देते हैं। और जमुनिया सुनिए, हम भी आप लोगों के साथ शहर चल रहे हैं।
0: अरे वाह।
1: हाँ भाई, हमने अपना ट्रैक्टर बस स्टैंड पर लगा रखा है।
0: अच्छा।
1: हाँ भाई, कुछ लोग उसमें चलेंगे और बाकी बस से।
0: हाँ हाँ बिल्कुल
1: और जैन भाई
2: जी,
1: आप लोग तो शायद जीप से शहर जाएंगे।
2: जी
1: तो भाई, उसमें थोड़ी बहुत भी जगह हो तो हमें भी अपने साथ ही बिठा लीजिएगा।
2: अरे कैसी बात करते हैं दीवान जी, आप तो हमारे अग्रज हैं। आइए, आप यहाँ मेरे पास बैठिए।
1: अरे वाह वाह, धन्यवाद।
2: तेजस, पहले गुरुजी के घर चलेंगे और उनको लेकर ही शहर चलेंगे।
3: जी बिल्कुल।
0: गुरुजी प्रणाम।
4: प्रणाम गुरुजी।
5: प्रणाम बेटा, प्रणाम।
0: आप आइए, हमें आज शहर चलना है, आपकी शिष्या को सम्मानित होना है। जो कुल मिलाकर आपके ही ज्ञान का आदर और सम्मान है।
5: अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, चलो बेटा, मैं भी देख लूँ कि किस तरह तुम्हें आदर सम्मान मिलता है।
0: आइए गुरुजी, आराम से। हाँ
5: अच्छा अच्छा,
0: आप यहाँ बैठिए गुरुजी।
6: भाइयों और बहनों, मुझे लगता है कि आप सभी लोग फतेहपुर से ही आए हैं। ये सामने जमुनिया जी बैठी हैं, जयंत बाबू हैं, सम्मान के लिए कृषि मंत्री आने वाले हैं, वो जमुनिया जी को सम्मानित करेंगे। आप सब लोग शांति बनाए रखें। जमुनिया जी, आप कृपया मंच पर आए।
0: ये मंच पर जाने की क्या जरूरत है? जो कुछ कहना है कह दें, और को जो कुछ देना है दे दें। मुझे तो इन सब के बीच में बैठना भी नहीं आता।
2: नहीं आता तो अब सीखना पड़ेगा। और जाइए, सीधे मंच पर जाइए और बैठ जाइए वहां पर।
0: क्या मैं नहीं बैठ सकती?
6: नहीं, आपको तो आना ही पड़ेगा।
7: आपको तो आना ही पड़ेगा।
6: संकोच मत कीजिए, आप चाहें तो जयंत जी को भी साथ ले आइए।
0: ये ठीक है, उठिए जयंत जी, चलिए।
2: अरे अरे, मुझे क्यों ले जा रही हो?
0: अब आपको चलना ही पड़ेगा, उठिए चलिए, आपके साथ मैं मंच पर सहजता से बैठ सकूंगी।
2: अब तुम मानोगे तो हो नहीं। अच्छा ठीक है, चलो।
0: जैन जी, ये सब लोग तालियां क्यों बजा रहे हैं?
2: अरे चलिए बैठिए, ये सब बातें मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी बस आप बैठ जाइए।
0: ठीक है।
6: भाइयों और बहनों, कृषि मंत्री जी पधार चुके हैं, अब प्रशस्ति पत्र का वाचन होगा। श्रीमती जमुनिया ग्राम फतेहपुर की पहली महिला सरपंच हैं, और अपने छोटे से कार्यकाल में ही उन्होंने दिखा दिया है कि प्रबल इच्छा हो तो विकास की राह चलना कोई मुश्किल काम नहीं है। पूरे जिले की ग्राम पंचायतों में फतेहपुर का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा है, जिसके लिए जमुनिया जी को 10,000 रुपये नकद, शॉल और श्रीफल कृषि मंत्री जी के कर कमलों से दिया जाएगा। धन्यवाद। अब आपको जमुनिया जी संबोधित करेंगी।
2: अरे संकोच मत करो, जाओ, जो भी हो दो चार वाक्य कह दो।
0: ठीक है।
8: जमुनिया, इसकी 25वीं कड़ी का प्रसारण अभी आपने सुना संग्रहालय से के अंतर्गत। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से।

0: दोपहर के 12:58 होने को हैं। अब प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: अठारहवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हो रहा है। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इंडोनेशिया और ईरान के राष्ट्रपति सहित ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता और प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी यहां विभिन्न देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान अधिभार में छूट के साथ ही विद्युत संपत्ति और जलकर सहित लंबित प्रकरणों का आपसी सहमति से निराकरण होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 13 सितंबर को लाडली बहना योजना की हितग्राही बहनों के खातों में माह सितंबर की राशि का अंतरण करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव आगरमालवा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन भी करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री बिरला ने कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की शिक्षाएं हमें सत्य के मार्ग पर चलने और जरूरतमंदों की सेवा करने के लिए प्रेरित करती हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी प्रकाश पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। प्रदेश में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान 2026 संचालित किया जाएगा। इस दौरान सभी जिलों में नागरिक सेवा और जन भागीदारी से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और महिला एशिया कप क्रिकेट में दुबई में कल भारतीय टीम फाइनल में पिछले चैंपियन श्रीलंका से भिड़ेगी। श्रीलंका ने 2024 के फाइनल में भारत को हराकर अपना पहला एशिया कप खिताब जीता था। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 1 बजे हैं। प्रस्तुत है महिला सभा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रीवा केंद्र का योगदान है।

मिश्रा और आप सुन रही हैं कार्यक्रम महिला सभा। नमस्कार बहनों, हमने अक्सर अपनों को किसी न किसी ऐसी बीमारी से जूझते हुए देखा है जहां अंग प्रत्यारोपण ही एक सरल उपाय रह जाता है, लेकिन उस दौरान इसके लिए अंग का उपलब्ध होना कई बार मुश्किल होता है, या यूं कहें कि कोई उस अंग को देने वाला नहीं होता है। इस वजह से हमारे देश में प्रतिवर्ष लाखों लोगों को जीवन गंवाना पड़ जाता है। लेकिन भारत सरकार ने एक नई मुहिम के तहत जुग जुग जियो अभियान चलाया है, जिससे किसी भी व्यक्ति को अंग मिलना सरल हो जाता है। बहनों, यदि हम प्रैक्टिकली सोचेंगे कि इंसान दुनिया में आता है सारे अंगों के साथ, परंतु जब उसकी मृत्यु होती है तो उसका शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है, तो इससे ऊपर आकर यदि हम अंग दान करेंगे, उसके प्रति जागरूकता बढ़ाएंगे, तो लोगों को नया जीवन दान मिल सकता है, उन्हें नई जिंदगी मिल सकती है। बहनों, सरकार द्वारा चलाई गई ये जो मुहिम है जुग जुग जियो, 3 अगस्त 2026 को शुरू की गई है, तो ये अभियान जन जन में जागरूकता फैलाएगा, जिससे लोग अंग दान के प्रति जागरूक हों।

बहनों, हमारे समाज में अंगदान को लेकर कुछ भ्रांतियां हैं। लोगों से ये सुनने में आता है कि इस जन्म में हम जिस अंग का दान करेंगे तो अगले जन्म में उस अंग से विहीन हो जाएंगे। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि इससे जीवन छोटा हो जाता है, आप स्वयं बीमार होने लगते हो। तो ऐसी बातें अफवाह मात्र ही हैं या सिर्फ भ्रांतियां हैं। जैसे छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, किसी का कोई अंग किसी दुर्घटना से खराब हो जाता है या कैंसर जैसी बीमारी में डॉक्टर्स किसी अंग को हटाने के लिए कहते हैं तो हम एक पल नहीं लगाते कुछ सोचने में, तुरंत डॉक्टर की बात मान लेते हैं। तो फिर किसी को अंग दान देने में क्या परेशानी हो सकती है? बहनों, सरकार ने ई प्रत्यारोपण नाम का नया डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है, जिसके द्वारा अस्पताल, डॉक्टर, मरीज, अंगदाता और अन्य सभी संबंधित संस्थाएं एक ही डिजिटल नेटवर्क से जुड़ सकेंगी, जिससे रजिस्ट्रेशन, वेटिंग लिस्ट, अंग आवंटन और पूरी प्रक्रिया ज्यादा सुविधाजनक और पारदर्शी होगी। इसके अलावा नोटो मोबाइल ऐप यानी नेशनल ऑर्गेन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च किया गया, जिससे आम लोगों और स्वास्थ्य कर्मियों को अंगदान और प्रत्यारोपण से जुड़ी जानकारी और सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। बहनों, अंगदान केवल एक निर्णय नहीं बल्कि किसी जरूरतमंद के लिए जीवन की नई उम्मीद बन सकता है। तो आइए अंगदान के महत्व को समझें, सही जानकारी साझा करें और इस नेक पहल के प्रति जागरूकता बढ़ाएं। आज ही अंगदान का संकल्प लें और जीवन की इस उम्मीद को आगे बढ़ाएं। तो बहनों, अब आइए चलते हैं गीत संगीत की ओर और सुनते हैं क्या यही प्यार है फिल्म का ये गीत, जिसे अपनी आवाज दी है अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो ने।

0: अभी हमने बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक की आवाज में सुना क्या यही प्यार है फिल्म का गीत। बहनों, आज हैं हमारे बीच गायत्री शक्तिपीठ की कार्यकर्ता श्रीमती संध्या तिवारी जी, जिनसे हम करेंगे विशेष बातचीत।
1: आपका हमारे कार्यक्रम महिला सभा में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार
1: दीदी। आपकी संस्था जैसे बहुत अच्छे काम कर रही है समाज के लिए, साथ ही नशा मुक्ति अभियान भी शामिल है इसमें, तो इस अभियान का उद्देश्य क्या है और आप इसे किस तरह से संचालित करती हैं?
2: यज्ञ के माध्यम से हम लोगों ने नशा निवारण अभियान चलाया। हमारा देश भारत धार्मिक देश है, धार्मिक भावना का उछाल कर हम लोगों ने यज्ञों के माध्यम से लाखों लाखों लोगों को नशा मुक्त कराया। यज्ञ के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, रैलियों के माध्यम से, प्रदर्शनी के माध्यम से, नशा निवारण प्रदर्शनी के माध्यम से हम लोगों का नशा निवारण अभियान सतत चल रहा है और अभी सतत चलता रहेगा जब तक पूरा देश हमारा नशा मुक्त नहीं होगा। गायत्री परिवार कटिबद्ध है देश से नशा को
1: पूरी तरह
2: मुक्त करने के लिए, इसीलिए इस अभियान का नाम रखा है व्यसन मुक्ति आंदोलन।
1: जी,
2: नशा दूर करने का आंदोलन है, मुक्ति शब्द उन्होंने लिया कि कैसे मुक्त हो, इसके लिए हम लोग लगे हैं। और अभी एक जरूर आशा सब श्रोताओं से करेंगे
1: जी
2: कि एक संस्था किसी काम को पूरा अंजाम दे संभव नहीं है,
1: इसमें
2: हम सबको मिलना पड़ेगा, मिल करके करना पड़ेगा। यदि हमको कहीं भी टीस है, कहीं हमको समाज का दर्द है या इस समाज में जो ये असंतुलन की स्थिति है, बिखराव विघटन पतन जो हमें दिखाई पड़ रहा है नशे के कारण, इससे भिड़ना है, इससे लड़ना है, तो सबको एकजुट होकर के एक हुंकार लगानी पड़ेगी, एक धक्का लगाना पड़ेगा इस नशा विरोध के लिए या इस नशा मुक्ति के लिए। इसलिए एक निवेदन तो मैं करना चाहूंगी, आह्वान है इस गायत्री परिवार का कि हम सब मिलकर के एक बार पूरी तरह से इस नशे को पूरी तरह दूर भगा दे, मुक्त कर दे, नशा मुक्त कर दे देश को।
1: जी जी, बहुत अच्छा। दीदी, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और साथ ही इतनी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं से साझा की, हमें भी आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद आपका। नमस्कार।
2: नमस्कार।
0: जब कोई सुर आत्मा को छू जाए तो समझ लीजिए कि वह सिर्फ संगीत नहीं बल्कि साधना है, तपस्या है। तो ऐसी ही एक साधिका थी MS सुब्बू लक्ष्मी, उन्हें लोग प्यार से स्वर की देवी कहते थे। भारत रत्न की पहली महिला संगीतज्ञ थी। तो आज इनकी आवाज के पीछे की कहानी क्या है वो हम जान लेते हैं। मदुरै तमिलनाडु में 16 सितंबर 1916 में एक साधारण परिवार में जन्मी थी। इनकी माँ वीणा बजाती थी और यहीं से संगीत की पहली चिंगारी जगी। इन्होंने बचपन से ही शास्त्रीय संगीत के गुर सीखने शुरू कर दिए थे। बहनों, सिर्फ 11 साल की उम्र में इन्होंने पहली बार अपने गाने की रिकॉर्डिंग की और लोगों ने इनका दिव्य स्वर सुना। उस दौर में एक महिला का मंच में आकर गाना लोगों को स्वीकार्य नहीं था, लेकिन उन्होंने न सिर्फ मंच पर गाया बल्कि मंच को ही मंदिर बना दिया। उनके मंच पर प्रदर्शन की उम्र थी महज 13 वर्ष। और बहनों, बहुत जल्द ही उनकी आवाज को

ऑल इंडिया रेडियो में जगह मिली। उन्होंने कर्नाटक संगीत के साथ साथ हिंदी भजन में मीरा भजन और संस्कृत श्लोक भी गाए। कम लोग ही जानते हैं कि कम समय के लिए ही सही वो फिल्मों में भी आईं। 1945 में बनी फिल्म मीरा में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्त मीरा का किरदार निभाया। इस फिल्म के गानों ने उन्हें संपूर्ण भारत की श्रद्धा की आवाज बना दिया। गांधी जी ने भी कहा था कि उन्हें अगर कोई भजन सुना सकता है तो वो है सुब्बू लक्ष्मी। उनका संगीत सिर्फ कला नहीं था, वह भक्ति था। उनके द्वारा गाया गया विष्णु सहस्त्रनाम, हनुमान चालीसा, वैष्णव जन जैसे भजन हर घर में गूंजते थे। बहनों, वो मंच पर जाती, आंखें बंद करती और ऐसा लगता जैसे ईश्वर स्वयं उतर आए हों। उन्होंने संगीत को मंदिर से जोड़ दिया और अपने स्वर के जरिए सबके दिलों में जगह बनाई। बहनों, उन्हें मिले सम्मान बताते हैं कि वह सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व की गौरव थी। 1954 में पद्म भूषण, 1975 में पद्म विभूषण, 1998 में भारत रत्न पाई जाने वाली पहली संगीतज्ञ बनी। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और चेन्नई संगीत अकादमी से संगीता कलानिधि भी प्राप्त हुआ। बहनों, संगीत के अलावा सुब्बू लक्ष्मी परोपकार और सामाजिक कल्याण के प्रति भी समर्पित थीं। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और महिला कल्याण जैसे क्षेत्रों के लिए धन इकट्ठा करने के लिए कई चैरिटी संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किए। उनके योगदान है, संगीत कार्यक्रम से जो धन इकट्ठा हुआ उसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष और तिरुपति देवस्थानम को दान किया। रामकृष्ण मिशन, भारत सेवा समाज और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट का समर्थन किया। उन्होंने ऐसे ही समाज के लिए बहुत से काम किए जो उन्हें और महान बनाते थे। तो ऐसी महान शख्सियत को हमारा तहे दिल से नमन है। अब आइए एक बार और चलते हैं मनोरंजन की ओर और सुनेंगे मेरे जीवन साथी फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में।

अभी हमने किशोर कुमार की आवाज में मेरे जीवन साथी फिल्म का गीत सुना। बहनों, आज हर कोई अपनी सेहत को लेकर बहुत सजग हो गए हैं, और सही भी है, क्योंकि कहा भी गया है पहला सुख निरोगी काया। तो जहां एक ओर योगा व्यायाम को प्राथमिकता दी जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर खान पान सही हो ये भी मायने रखता है, और खाने में हाई प्रोटीन युक्त खाना हो वो जरूरी होता है। तो आज मैं प्रोटीन से भरपूर सिंपल सी रेसिपी लेकर आई हूँ, सोया चना दाल पुलाव की। तो सबसे पहले करीब 200 ग्राम चावल को कम से कम 30 मिनट के लिए भिगो दें। अब सोया बड़ी के लिए क्या करें कि एक बर्तन में पानी गर्म करेंगे, और जब पानी खौलने लगे तो उसमें सोया बड़ी डाल दीजिए और थोड़ा सा नमक भी डाल दीजिए। 5 मिनट बाद गैस को ऑफ कर दीजिए। ठंडा होने के बाद सोया बड़ी से पानी पूरी तरह से निचोड़ दीजिए। अब उसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून दही, 2 चम्मच गरम मसाला या बिरयानी मसाला, साथ ही 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए, और बस इन सब चीजों को मिक्स करके 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब एक प्रेशर कुकर में 2 चम्मच के करीब घी डालिए, और बघार के लिए लेंगे कुछ खड़े मसाले जैसे तेज पत्ता, जीरा, खड़ी मिर्च, छोटा टुकड़ा दालचीनी का, एक बड़ी इलायची, 3 से 4 छोटी इलायची और थोड़ी सी काली मिर्च खड़ी डालकर फ्राई कीजिए। अब प्याज काटकर इसे भी 5 मिनट तक फ्राई करेंगे, मतलब हल्का सुनहरा होने तक। इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 हरी मिर्च खड़ी, साथ ही 2 टमाटर काटकर डाल देंगे। फिर नमक डालकर टमाटर सॉफ्ट होने के बाद वही सोया बड़ी डाल दीजिए जो मसालों के साथ 5 मिनट के लिए रखी हुई थी। अब कुछ देर तक भून लीजिए। इसके बाद चना दाल, जिसे हमने 3 घंटे के लिए भिगोई थी, वो कम से कम आधा कप के करीब डाल दीजिए। मिक्स कर लीजिए। फिर भिगोए हुए चावल डालकर अच्छी तरह से भून लीजिए। जरूरत के अनुसार नमक डालकर पानी डाल दीजिए, और प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके कम से कम 2 सीटी आने तक पका लीजिए। तो इस तरह आपका चना दाल चावल सोया बड़ी वाला प्रोटीन से भरपूर पुलाव बनकर तैयार है। आप इसे जरूर से जरूर ट्राई करिए। तो अब चलते चलते ये गीत सुन लें जिसे गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने। फिल्म है कुरुक्षेत्र।

0: महिला सभा का प्रसारण अभी आपने सुना। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। हमारा अगला कार्यक्रम इस अंतराल के बाद।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।

0: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
1: आकाशवाणी है ना,
2: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
1: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
0: शाम सुहानी हो,
3: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
1: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
0: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
1: सफर में
0: आपके साथ
1: आकाशवाणी।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा, स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
4: पानी की हर बूंद है अनमोल,
5: बहने ना दें इसे बेमोल।
4: आओ मिलकर सच कर दें हम धरती माँ का सपना,
5: बूंद बूंद जल संरक्षण कर पहना दें हरियाली का गहना।
6: इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। 1:30 हो चुके हैं। अब हम आपको सुनवा रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम और ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रीवा केंद्र से हमें प्राप्त हुआ है। इसमें अब आप सुनेंगे नरेंद्र मिश्रा के गाए हुए कुछ लोकगीत। कार्यक्रम का आरंभ इस बिरहा गीत से।

और अब हम आपको सुनवा रहे हैं ये लोक भजन कलाकार हैं नरेंद्र मिश्रा।

प्रकाश तिवारी के गाए हुए इसी भजन के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये प्रस्तुति थी आकाशवाणी के रीवा केंद्र की। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। 1:57 हुए हैं। हमारा अगला कार्यक्रम इस अंतराल के बाद।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण इस समय आप सुन रहे हैं, 2 बजने को हैं। अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म संगीत।

अनुराधा श्री राम और गोपाल राव ने इसे गाया है महबूब के शब्द, धुन आगोश की, फिल्म का नाम जोर।

शब्बीर अहमद के शब्दों को आप सुन रहे हैं अमजद नदीम की धुन पर। सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने इसे गाया है। फिल्म का नाम है ज़िला गाज़ियाबाद।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण, प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज दोपहर नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। दो दिन के सम्मेलन में 11 पूर्ण सदस्य देश और 10 साझेदार देशों सहित कुल 21 देश हिस्सा ले रहे हैं। 11 पूर्ण सदस्य देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया शामिल हैं, जबकि बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम साझेदार देशों के रूप में भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में वैश्विक शासन, बहुपक्षवाद, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन और महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉ आबी अहमद अली के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों नेताओं के बीच यह चर्चा द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से हुई। आज प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें लंबित और राजीनामा योग्य मामले आपसी सहमति से निराकरण के लिए रखे जा रहे हैं। भोपाल में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल के अध्यक्ष मनोज कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय परिसर भोपाल में लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ 57 खंडपीठों का गठन किया गया है। लोक अदालत के संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल के सचिव न्यायाधीश सुमित अग्रवाल ने बताया,
1: आज वर्ष की तृतीय लोक अदालत का आयोजन हो रहा है। देखिए, आज के लोक अदालत के लिए 57 खंडपीठ का गठन किया गया है, जिसमें जिला न्यायालय, तहसील न्यायालय, कुटुम्ब न्यायालय और औद्योगिक न्यायालयों में कुल मिलाकर 57 खंडपीठ का गठन किया गया है और 10,000 पेंडिंग मामले रखे गए हैं और 80,000 प्री लिटिगेशन मामले रखे गए हैं और अधिक से अधिक मामलों के निराकरण की आशा है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री शाह ने कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की शिक्षाएं सेवा, त्याग, समानता, करुणा और मानवता की भावना को बढ़ावा देती हैं और समाज को मानव कल्याण के लिए प्रेरित करती हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के जीवन शैली पर आधारित पुस्तक का विमोचन कल विधानसभा भोपाल में किया गया। वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण मोहन झा द्वारा लिखी गई इस पुस्तक में डॉ. मोहन भागवत के व्यक्तिगत विचारों एवं उनके राष्ट्र व समाज के प्रति अनुशासित व्यक्तित्व का संपूर्ण गाथा का उल्लेख है। पुस्तक के बारे में वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण मोहन झा ने बताया,
2: किशोर संचालक जी ने जब 2009 में ये दायित्व संभाला था, 17 साल हो चुके हैं। इन 17 वर्षों में देश एक अलग राह पे चला है और जो समस्याएं थी, बहुत सारी जो जटिल समस्याएं जिनको लेकर के वो बात करते थे, उनका समाधान होता भी दिखाई दे रहा है। तो यही वजह थी, बहुत लोगों ने सलाह दी है कि जो आपने लेख लिखा हुआ है उसका संग्रह करें और एक उसको पुस्तक का स्वरूप दें।
0: महिला जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत ने फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में खेले गए पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। महिला एशिया कप क्रिकेट में दुबई में कल भारतीय टीम फाइनल में पिछले चैंपियन श्रीलंका से भिड़ेगी। श्रीलंका की टीम कल पाकिस्तान को 4 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंच गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति अल्पेश यशवंत कोगजे ने कल जबलपुर में पदभार ग्रहण कर लिया। नर्मदापुरम जिले के स्कूली बच्चों ने स्थानीय शिल्पकारों के साथ मिलकर प्राकृतिक मिट्टी से 500 से अधिक गणेश प्रतिमाएं तैयार की हैं। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति व आगरमालवा जिला एड्स नियंत्रण समिति के संयुक्त तत्वावधान में कल एचआईवी एड्स पर जागरूकता कार्यशाला आयोजित हुई। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत की अध्यक्षता में दो दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए विश्व के नेता नई दिल्ली पहुंचे। अब से कुछ ही देर में शुरू होगा सम्मेलन। वैश्विक शासन, बहुपक्षवाद, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया, वियतनाम और इथियोपिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। अबूधाबी के युवराज के साथ भी मुलाकात की। यमन में हौसी विद्रोहियों के महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत। सऊदी अरब ने हमले के बाद महत्वपूर्ण पाइपलाइन बंद की। छत्तीसगढ़, तेलंगाना और विदर्भ में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला टीम ने चीन के मोकी में दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराकर जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। और अब समाचार विस्तार से। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अब से कुछ ही देर में नई दिल्ली के भारत मंडप में शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए हैं। दो दिन के सम्मेलन में 11 पूर्ण सदस्य देश और 10 साझेदार देशों सहित कुल 21 देश हिस्सा ले रहे हैं। 11 पूर्ण सदस्य देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिश्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया शामिल हैं, जबकि बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम साझेदार देश के रूप में भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में वैश्विक शासन, बहुपक्षवाद, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, खाद्य एवं सुरक्षा, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन और महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत की अध्यक्षता में हो रहे इस शिखर सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। और अब अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं भारत मंडपम में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित से। जी अंकित।
1: जी जागृति, देखिए।
0: हेलो अंकित, अभी आप शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल पर मौजूद हैं और ये बताइए कि इस समय कार्यक्रम स्थल का माहौल कैसा है और इस सम्मेलन के बारे में आपके पास क्या कुछ अन्य जानकारियां हैं।
1: जी जागृति, देखिए इस समय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो आज का सत्र है अब से कुछ देर में शुरू होने वाला है। विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष सम्मेलन स्थल पर पहुंच रहे हैं। अब से कुछ देर बाद 11 सदस्य देशों के नेता क्लोज डोर सेशन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करने के मुद्दे पर विचार विमर्श करेंगे ये नेता। इसके बाद भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। इसके बाद वे संयुक्त रूप से पौधारोपण करेंगे और फैमिली फोटो के लिए भी एकत्रित होंगे। शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले ब्रिक्स नेताओं के लिए सम्मान में भव्य रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। ये देखिए, भारत की अध्यक्षता में यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया एक महत्वपूर्ण बदलाव के दौर से गुजर रही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था इस समय आर्थिक बिखराव, तकनीकी बदलाव और भू राजनीतिक अनिश्चितता का सामना कर रही है। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन और संसाधनों पर बढ़ता दबाव इन चुनौतियों को और जटिल बना रहे हैं। इन आपस में जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए ऐसे सहयोग की जरूरत है जो समावेशी, व्यवहारिक और विभिन्न देशों की परिस्थितियों के अनुरूप हो। देखिए, ब्रिक्स इन चुनौतियों से निपटने के लिए संवाद और समन्वित कार्रवाई के माध्यम से एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। इसकी वजह यह भी है कि ब्रिक्स देश दुनिया की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व तो करते हैं। इसके अलावा वैश्विक जीडीपी में इन देशों की हिस्सेदारी करीब 40% और वैश्विक व्यापार में करीब 25% हिस्सेदारी है। जी जागृति।
0: जी धन्यवाद अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। सम्मेलन में भाग लेने के लिए शी जिनफिंग आज नई दिल्ली पहुंचे हैं। और अब अधिक जानकारी के लिए हम बात करते हैं हमारे संवाददाता आनंद से। जी आनंद, प्रधानमंत्री आज शिखर सम्मेलन से अलग अब तक किन किन देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर चुके हैं और अगर आज की बात करें तो किन देशों के साथ अभी द्विपक्षीय

0: वार्ता होने का कार्यक्रम है।
1: जी जागृति, आज का दिन भारत के लिए द्विपक्षीय और राजनयिक संबंधों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का पहला सत्र शुरू होने वाला है।
0: जी,
1: आज सुबह से ही ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के नेताओं के साथ लगातार द्विपक्षीय बैठकें कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबिय अहमद अली के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और वियतनाम के प्रधानमंत्री के साथ बैठकें की। इथियोपिया मलेशिया ने भारत के साथ रक्षा सहयोग को और मजबूत करने में रुचि जताई है। इथियोपिया के ने विशेष रूप से भारतीय खनन कंपनियों को आमंत्रित किया है। वहीं मलेशिया के साथ सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में मौजूदा अवसरों पर चर्चा हुई। अगर आज हम शाम के कार्यक्रम की बात करें तो जागृति, आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक होने का कार्यक्रम है। यह राष्ट्रपति जिनपिंग की करीब 7 वर्षों में भारत की यह पहली यात्रा है। दोनों नेताओं के बीच बातचीत मुख्य रूप से सीमा पर तनाव कम करने और व्यापार असंतुलन के मुद्दों पर केंद्रित रहने की संभावना है। जी जागृति।
0: जी आनंद, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। बेलारूस के विदेश मंत्री मैक्सिम रिजनकोफ आज नई दिल्ली पहुंचे। भारत और बेलारूस के संबंध प्रगाढ़ और मैत्रीपूर्ण हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर सहयोग लगातार बढ़ रहा है। इससे पहले आज ही सुबह विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस भी सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ मुलाकात की। इससे पहले शिखर सम्मेलन से अलग कल उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की थी। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रम पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। इस बीच चाइना सदर्न एयरलाइंस इस महीने की 21 तारीख से ग्वांगझोउ और नई दिल्ली के बीच नियमित यात्री उड़ानें फिर शुरू करेगी। इसके साथ ही 6 साल से बंद ये हवाई सेवा बहाल हो जाएगी। कोविड महामारी के बाद वर्ष 2020 में भारत और चीन के बीच हवाई सेवाएं निलंबित कर दी गई थी। ये सेवा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत दौरे के बीच शुरू हो रही है। इस साल मार्च में भारतीय विमानन कंपनी इंडिगो ने भी शंघाई और कोलकाता के बीच दैनिक उड़ानें शुरू की थीं, जिससे दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क और मजबूत हुआ है। इस बीच ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को देखते हुए आज रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में परिवर्तन और नियंत्रित आवागमन लागू किया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन, विशेषकर मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। ये समाचार हमारे NewsOnAIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आयोजित भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का उद्देश्य उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों में विकसित नवाचारों को दुनिया तक पहुंचाना है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रदर्शनी में आए सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत करना देश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की नवाचार व्यवस्था तेजी से विकसित हुई है।
3: भारत का नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र तेजी से विकसित हुआ है। भारत इनोवेटिव्स की यात्रा ने नीस में आयोजित अपने पहले वैश्विक प्रदर्शन के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव स्थापित किया है। भारत के ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने के साथ हम अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में एक मजबूत साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रयोगशाला से बाजार तक और भारत से विश्व।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आशय से ये योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रुपये की पेंशन सुनिश्चित की गई है। सऊदी अरब ने ड्रोन हमले के एक दिन बाद देश भर में फैली

0: एक बड़ी तेल पाइपलाइन बंद कर दी है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को बंद कर दिया गया है। इस तेल पाइपलाइन को ऐसे समय में बंद किया गया है जब यमन के हौसी विद्रोहियों ने मोखा बंदरगाह और पेरिम द्वीप पर कब्जा कर लिया है, जिससे पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में एक नया मोर्चा खुल गया है। बाब अल मंदेब जल डमरू बध्या दुनिया के प्रमुख नौवहन मार्गो में से एक है। पंजाब पुलिस के गैंगस्टर रोधी कार्यबल AGTF और देश छोड़कर भागे लोगों की निगरानी और प्रत्यर्पण की शाखा OFTEC ने केंद्रीय एजेंसियों के समन्वय से फरार अपराधी अमृतपाल सिंह उर्फ अमृत दलम को मोल्दोवा गणराज्य से भारत प्रत्यर्पित कराने में सफलता हासिल की है। गैंगस्टर रोधी कार्यबल के पुलिस अधीक्षक बिक्रमजीत सिंह बराड़ के नेतृत्व में पंजाब पुलिस की 4 सदस्यीय टीम आज सुबह उसे भारत लेकर आई। बिहार में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, हालांकि कई इलाके अब भी प्रभावित हैं। राज्य के 14 जिलों के 2000 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान जारी है।
1: प्रदेश में गंगा, सोन, बागमती, घाघरा और पुनपुन समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में गिरावट जारी है। हालांकि गंगा और पुनपुन कई स्थानों पर अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार गंगा का जलस्तर पटना के गांधी घाट समेत राज्य के लगभग सभी स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर है। पुनपुन नदी श्रीपालपुर में खतरे के निशान से 1 मीटर से अधिक ऊपर बह रही है। जलस्तर में कमी के साथ गंगा, गंडक, कोसी और सोन के तटवर्ती इलाकों में कटाव का खतरा बढ़ गया है। जल संसाधन विभाग ने संवेदनशील तटबंधों और कटाव संभावित स्थलों पर निगरानी बढ़ा दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश श्री।
0: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तेलंगाना और विदर्भ में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, कराईकल, विदर्भ, बिहार, राजस्थान और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल तक आंधी तूफान की आशंका है। दिल्ली में आज शाम हल्की बारिश का अनुमान है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने तमिल विद्वान प्रोफेसर सोलोमन पपैया के निधन पर शोक व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधा कृष्णन ने कहा कि प्रोफेसर पपैया की वाक्पटुता और विद्वता ने देश की साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया है। गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। गृहमंत्री ने कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की शिक्षाएं सेवा, त्याग, समानता, करुणा और मानवता की भावना को बढ़ावा देती हैं और समाज को मानव कल्याण के लिए प्रेरित करती हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। महिला जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत ने फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। भारत की ओर से सुप्रिया ने हैट्रिक लगाई, जबकि मधु और सुखवीर कौर ने 1-1 गोल दागा। फाइनल में भारत का मुकाबला मेजबान चीन से होगा। इससे पहले पुरुषों के जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत ने कल पहले सेमीफाइनल में मलेशिया को 3-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में अमेरिका के बेन शेल्टन का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। महिला सिंगल्स में मौजूदा चैंपियन बेलारूस की आर्याना सबालेंका आज रात फाइनल में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना का सामना करेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की अध्यक्षता में 2 दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए विश्व के नेता नई दिल्ली पहुंचे। अब से कुछ ही देर में शुरू होगा सम्मेलन। वैश्विक शासन, बहुपक्षवाद, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया, वियतनाम और इथियोपिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। अबुधाबी के युवराज के साथ भी मुलाकात की। यमन में हौसी विद्रोहियों के महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत। और भारतीय महिला टीम ने चीन के मोकी में दक्षिण कोरिया को हराकर जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।

0: नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। आप सुनिए कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को शुभम का नमस्कार। कार्यक्रम का पहला नगमा ये रहा, फरमाइशी नाम और बाकी की जानकारियाँ गीत के बाद।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश का ये पहला नगमा हमने आपको सुनवाया था स्त्री टू फिल्म से। मधुबंती बागची और दिव्या कुमार ने इसे गाया था। अमिताभ भट्टाचार्य के शब्द थे, धुन थी सचिन जिगर की। सुनना चाहते थे हमारे ये सभी श्रोता। मोहम्मद हलवाईयान शेरकोट ज़िला बिजनौर से, मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी, बिट्टू भैया, हिना कौसर और साजिदा रानी। जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जासमिन और प्रयागराज भट्ट।

सचिन देव बर्मन की आवाज़ में उन्हीं का संगीत बद्ध किया हुआ एक गीत अभी आपने सुना। फिल्म थी बंदनी, बोल थे शैलेंद्र के, और सुनना चाहते थे हमारे ये सभी श्रोता। धामणी मनोरा ज़िला वाशिम से तुलसीराम डेरे, मायावती डेरे, संदेश, आदेश, किरण और प्रज्वल डेरे, साथ में हैं अनुदत्त डेरे। आशा रेडियो श्रोता संघ मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, सरिता गवाणकर, प्रिंस एकांश और इनका पूरा परिवार बदलापुर।

मुंबई से सिद्धांत गावणकर, प्रणीता, अर्जुन गावणकर, टुक टुक ने भी इसी गीत को सुनना चाहा था। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से अगली चिट्ठी आई है। वैशाली, शैलेश, सुमित और ध्वनि गावणकर की। अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता जी का गाया हुआ ये गीत, फरमाइशी नाम गीत के बाद।

जयदेव के संगीत निर्देशन में ये गीत लिखा था जानिसार अख्तर ने, आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था प्रेम पर्वत। सुनने के लिए अपनी चिट्ठी लिख भेजी थी हमारे इन सभी दोस्तों ने, हुकुम करमरकर, सुनीता, हार्दिक, प्राची और तनु करमरकर ने। ये अगले अनुरोध करता है संदलपुर से कालीचरण यादव, दीपक चांदनी और निर्मल देवी यादव। इन सभी दोस्तों की फरमाइश पर हमने आपको सुनवाया ये गीत।

रास्ते प्यार के इस फिल्म का ये गीत आपने सुना, आशा भोसले और किशोर कुमार का गाया हुआ। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन थी और बोल थे आनंद बख्शी के। सुनने के लिए चिट्ठी लिख भेजी थी हमारे इन सभी दोस्तों ने, शाहूनगर यवतमाल से राहुल, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी और स्वीट बेबी प्रियांशी मनवर ने। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं हमारे इन दोस्तों की फरमाइश, आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो। इन्होंने सुनना चाहा है महेंद्र कपूर को फिल्म हमराज से। रवि ने धुन बनाई है, बोल हैं साहिर के।

आप सुन रहे हैं मोहम्मद अजीज़ को निगाहें। इस फिल्म का ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। आनंद बख्शी ने इसे शब्द दिए हैं, धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। और सुनना चाहा है पालदा नाका इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी और मोहम्मद रफ़ी मंसूरी।

0: निगाहें फिल्म के इसी नगमे के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब ख़त्म हुआ। कार्यक्रम आपकी फरमाइश का प्रसारण अभी आपने सुना आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। इस समय 2:58 हुए हैं। अब प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: अठारहवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज दोपहर नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो गया है। 2 दिन की इस सम्मेलन में 11 पूर्ण सदस्य देश और 10 साझेदार देशों सहित कुल 21 देश हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग इथियोपिया, मलेशिया और वियतनाम के प्रधानमंत्रियों तथा अबूधाबी के युवराज के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉ. आबी अहमद अली से मुलाकात की। आज प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालत

का आयोजन किया जा रहा है। इसमें लंबित और राजीनामा योग्य मामले आपसी सहमति से निराकरण के लिए रखे जा रहे हैं। भोपाल में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय परिसर भोपाल में लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री बिरला ने कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की शिक्षाएं हमें सत्य के मार्ग पर चलने और जरूरतमंदों की सेवा करने के लिए प्रेरित करती हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी प्रकाश पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश में पिछले 2 वर्षों में शिक्षा पोर्टल के माध्यम से लगभग 1,25,00,000 विद्यार्थियों के खातों में 696 करोड़ की छात्रवृत्ति पहुंचाई गई है और महिला जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत ने फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में खेले गए पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। मीडियम वेव पर हमारी सभा संपन्न हो उससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं हमारी सांझकालीन सभा के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। युवा दोस्तों के कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण आप सुनेंगे 5:02 पर। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के रीवा केंद्र का योगदान होगा। पॉडकास्ट सीरीज प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ इसे सुना जा सकेगा 6:00। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं 6:30 पर। किसानवाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा 7:30 से। सुर्खियों में इस कार्यक्रम को आप सुनेंगे रात्रि 8:00 से 8:35 के मध्य। संस्कृति भारती इस कार्यक्रम का अनुप्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी दिल्ली से। समय याद रखिएगा आज रात 9:30। और संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम हम रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से ही, जिसमें आज कलाकार होंगे अश्विन एम दलवी, इनसे आप सुनेंगे सुरबहार बादन। ये थी संक्षिप्त सी जानकारी हमारे सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। 3:02 होने को हैं। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी भोपाल है। DTH पर इस समय आप सुन रहे हैं हमारा प्रसारण। आप सुनिए लोक संगीत का ये कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रीवा केंद्र का योगदान है।

और लोक संगीत के बाद अब बारी है सुगम संगीत के कार्यक्रम की, और सुगम संगीत के इस कार्यक्रम को आप सुनने जा रहे हैं आकाशवाणी भोपाल से। ये कार्यक्रम भी आकाशवाणी के रीवा केंद्र का योगदान है। कलाकार हैं प्रकाश तिवारी, इनसे सुनिए ये गीत।

और इसी के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम खत्म हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। 3:30 होने जा रहे हैं। अब हम आपको सुनवा रहे हैं चित्रपट संगीत।

0: और इसी के साथ चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब ख़त्म हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण DTH के ऑडियो चैनल पर। 3:58 हुए हैं। अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स समिट 2026 की शुरुआत करते हुए कहा, हम ब्रिक्स की 20वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। मानव जीवन में 20 वर्ष की आयु मैच्योरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी के नए चरण का आरंभ करती है। यह वो अवस्था होती है जब सपनों के साथ जिम्मेदारियां जुड़ती हैं। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 11 पूर्ण सदस्य देश और 10 साझेदार देशों सहित कुल 21 देश हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग इथियोपिया, मलेशिया और वियतनाम के प्रधानमंत्रियों तथा अबूधाबी के युवराज के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉ आबी अहमद अली से मुलाकात की। आज प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें लंबित और राजीनामा योग्य मामले आपसी सहमति से निराकरण के लिए रखे गए हैं। भोपाल में जिला न्यायालय परिसर में लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री बिरला ने कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की शिक्षाएं हमें सत्य के मार्ग पर चलने और जरूरतमंदों की सेवा करने के लिए प्रेरित करती हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश में पिछले 2 वर्षों में शिक्षा पोर्टल के माध्यम से लगभग 1,25,00,000 विद्यार्थियों के खातों में 696 करोड़ की छात्रवृत्ति पहुंचाई गई है। और महिला जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत ने फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में खेले गए पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: यह आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। आप सुनिए कार्यक्रम इनसे मिलिए। इसमें आप सुनने जा रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार एवं विधानसभा सलाहकार पंकज शुक्ला से मनीष गजभिये की बातचीत।
1: श्रोताओं नमस्कार,
2: इनसे मिले कार्यक्रम में स्वागत है आपका। इस कार्यक्रम में हम आपको ऐसी शख्सियतों से रूबरू कराते हैं जिन्होंने अपने कार्य, विचार और अनुभवों से समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज हमारे साथ है एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने पत्रकारिता की दुनिया में लगभग 3 दशकों का सफर तय किया है। प्रिंट से लेकर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया तक सक्रिय रहते हुए आपने न केवल पत्रकारिता को करीब से समझा बल्कि जल, पर्यावरण, स्वास्थ्य, आदिवासी समाज, कुपोषण और संवैधानिक मूल्यों जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक सरोकारों से भी स्वयं को जोड़ा। पत्रकार, संपादक, साहित्यकार, लेखक और सामाजिक सरोकारों से जुड़े सक्रिय व्यक्तित्व श्री पंकज शुक्ला, वर्तमान में आप पत्रकारिता के साथ साथ संविधान संवाद जैसे प्रयासों से भी जुड़े हैं और विधानसभा से संबंधित अपनी नई भूमिका में भी सक्रिय है। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
3: जी नमस्ते श्रोताओं और धन्यवाद मनीष जी।
2: पंकज जी, हाल ही में आपकी नियुक्ति विधानसभा सलाहकार के रूप में हुई है, आपको हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई।
3: जी धन्यवाद।
2: पंकज जी, पत्रकारिता की लंबी पारी के बाद विधानसभा सलाहकार की भूमिका आपके लिए किस तरह का नया अनुभव है और इसमें आपकी प्रमुख जिम्मेदारियाँ क्या है?
3: बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस चर्चा के उपयुक्त पाया। असल में मैं तो अपने पत्रकारिता और तमाम सारे काम करने में जुटा हुआ था, तभी विधानसभा से एक प्रस्ताव मुझे मिला और शायद विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का जो दृष्टिकोण है, पीछे 2-2.5 सालों के उनके अध्यक्षीय कार्यकाल को जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि उन्होंने कई तरह के नवाचार किए हैं। विधानसभा जो विधायी कार्य करने के लिए पूरा जानी जाती है, वहाँ उन्होंने कुछ तरह के नवाचार किए कि कैसे महिला प्रतिनिधियों के सवालों को प्राथमिकता से सुना जाए, जो युवा विधायक आए हैं उनकी आवाज़ अनुभव के आगे दब कर न रह जाए, तो उस बात को सुनने के लिए उन्होंने तय समय किया कि युवा विधायकों के सवालों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रश्नकाल जैसी जो महत्वपूर्ण गतिविधि है जहाँ पर जनता के प्रश्नों को विधायक उठाते हैं, वो कैसे संचालित हो सके, वो शोर में या विरोध के बीच में दब कर न रह जाए, उस तरह का नवाचार उन्होंने किए। तो उन तमाम नवाचारों के बीच में उन्हें शायद ये लगता है कि विधानसभा की जो एक पत्रिका है विधायिनी, उसको नए स्वरूप में आना चाहिए। विधानसभा का जो पुस्तकालय है, जो मेरे हिसाब से सबसे समृद्ध पुस्तकालयों में से एक है, वो पुस्तकालय कैसे एक संदर्भ के रूप में व्यापक समाज के साथियों के, युवाओं के काम आ सकता है, कुछ इस तरह की गतिविधियों को संचालित करना और कैसे विधानसभा अपने विधायी दायित्व के अलावा और एक निर्माण की भूमिका में हो सकती है समाज के, हमारे आसपास के लोगों के, उस सारे दायित्व में मुझे लगता है कि एक सलाहकार के बतौर में उस काम को कर पाऊंगा।
2: जी जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। अब जैसे हम बात करते हैं कि आज के युवाओं की, तो युवाओं को लोकतंत्र और विधानसभा की कार्य प्रणाली से जोड़ने के लिए कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कदम है जो उठाने चाहिए?
3: जो लोग विधानसभा की परंपरा को, वहाँ की कार्यवाही से परिचित है, वे जानते हैं कि विधानसभा में दर्शक दीर्घा होती है और चाहे नरेंद्र सिंह तोमर जी हों, उनके अध्यक्षीय कार्यकाल में हों, या उसके पहले पूर्ववर्ती अध्यक्षों ने भी एक व्यवस्था की कि वहाँ पर आम जनता भी पहुँच पाए। लेकिन तोमर जी की ओर से ये प्रेरणा रही कि युवाओं को, विद्यार्थियों को दर्शक दीर्घा में लाया जाए, वो विधानसभा की जीवंत कार्रवाई को देख पाएँ, समझ पाएँ। और इसके अलावा भी जब विधानसभा नहीं चल रही होती है, जब वहाँ पर विधायी कार्य नहीं हो रहे होते हैं, तब भी वो वहाँ पर भवन है, भवन की कार्यवाहियाँ हैं, भवन की गतिविधियाँ हैं, लोग वहाँ आते हैं, उसको जानते हैं, समझते हैं और कैसे एक वो भवन जो उस पूरे प्रदेश के विकास की इबारत लिखता है, कैसे वहाँ पर सारे काम होते हैं वो समझ सकते हैं, देख सकते हैं। वहाँ आने के बाद में जो मेरा लोगों से संवाद हुआ, बतौर पत्रकार भी और वहाँ देखा, लोग एक अलग तरह की अनुभूति से अभिभूत होते हैं। जैसे कोई आकाशवाणी आता है और यहाँ आने के बाद में वो पूरा रिलेट करता है अपने पूरे अतीत को कि कैसे रेडियो को सुनते सुनते हम और आकाशवाणी में आकर आज हम यहाँ खड़े अचंभित होकर इसको देखते हैं। वैसे जब विधानसभा में पहुँचता है तो एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस होती है, उसको लगता है कि ये वो भवन है जहाँ से नीतियाँ बनती हैं, जहाँ से प्रदेश संचालित होता है, जहाँ से विकसित भारत का हम सपना देखते हैं, कैसे हम अपने भारत को और उन्नत, अपने प्रदेश को उन्नत बना सकते हैं। तो वहाँ आने के बाद में शायद लोगों का जुड़ाव महसूस ज़्यादा होता है। यही वो प्रक्रिया है, हम लगातार युवाओं के बीच में,

0: भी आपने मेरे परिचय में उल्लेख किया कि संविधान एक मूल्यों पर संविधान पर बात होनी चाहिए, हम एक कार्यक्रम संविधान संवाद से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो कैसे युवाओं की भाषा में युवाओं की शैली में हम उन तत्वों को उन तथ्यों को ले जा पाए जो पूरे देश और पूरे समाज के लिए महत्वपूर्ण है, इन बिंदुओं पर कैसे युवाओं के तरीकों से बात कर सकते हैं वो करना आज सबसे ज्यादा आवश्यक लगता है।
1: निश्चित तौर पर हम कहते भी है कि संविधान को समझना हम सभी की आवश्यकता है और साथ ही हमारी जिम्मेदारी भी है। अब पंकज जी, जो अभी हमने बात करी आपके विधानसभा से संबंधित कार्यों की, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि पढ़ने लिखने की रुचि ने आपको पत्रकारिता की ओर आकर्षित किया, बचपन और विद्यार्थी जीवन में ऐसी कौन सी घटनाएं थी जिन्होंने आपके भीतर लिखने और समाज को समझने की जिज्ञासा पैदा की?
0: मैं बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश का आदिवासी जिला है एक झाबुआ, और वहाँ की पेटलाव तहसील है, वहाँ मेरी बचपन की पढ़ाई हुई। उन दिनों अखबार पढ़ना अनिवार्य अंग होता था, सुबह सुबह अखबार आते थे, नई दुनिया आता था, दैनिक भास्कर आता था, नवभारत, चौथा संसार एक अखबार था, अखबार आते थे और हम ये अनिवार्यता थी कि उस अखबार को पढ़ना है। और जिस तरह से हम जब प्रतियोगिता परीक्षा में कहते हैं कि हिंदू अखबार पढ़ना चाहिए, उस दौरान नई दुनिया के संपादकीय पृष्ठों को पढ़ने की खास तौर से सलाह दी जाती थी, कैसे वर्तनी सुधारी जाए, कैसे भाषा आपकी परिष्कृत हो, कैसे आप अपने को अभिव्यक्त कर सकते हैं। जो पाठक के पत्र होते थे वो पत्र लिखना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी कि नई दुनिया के पाठक के पत्र अगर छप गए हैं तो वो अपने आप को बड़ा लेखक मानने लगता था, वो किसी पत्रकार से कम नहीं होता था। बचपन में वो चीज़ें दिखी तो एक अवचेतन में एक ख्याल बना, अवचेतन में एक धारणा बनी कि पत्रकारिता कुछ कर सकती है। सोचा नहीं था कि पत्रकारिता की तरफ आना होगा। जब मैं कॉलेज में पहुंचा तब वहां पता चला कि झाबुआ में जिस तरह की चीजें हम देखते थे, जी कर आए थे, शहर में आने के बाद में वहां पर बहुत सारी चीजें समझ में आती है कि कस्बों में किस तरह का भेदभाव होता है, किस तरह की असमानता है, किस तरह का अच्छापन भी है, बुरापन भी है, शहर में होने पर पता चलता है। वहां से एक धारणा बनी कि क्या जो बदलाव की बात हम करते तो समाज सेवा की तरफ जाया जाए। चाहता तो था मैं कि समाज सेवा की तरफ जाना, लेकिन वो कुछ घटनाएं बनी और मैं पत्रकारिता की तरफ आ गया, और जब इधर आया तो फिर यहीं का होकर रह गया।
1: जी जी जी। और निश्चित तौर पर इसमें आपने काफ़ी उपलब्धियां भी हासिल की। और अब जैसे हम बात करते हैं कि आपने वर्ष 1998 में रतलाम से जो पत्रकारिता की शुरुआत की, और आज लगभग 28 वर्षों बाद पत्रकारिता के कई माध्यमों में आप काम कर चुके हैं, जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो पत्रकारिता ने आपके व्यक्तित्व को सबसे ज़्यादा क्या दिया?
0: पत्रकारिता ने पूरा ही व्यक्तित्व गढ़ा है। ये मेरा सौभाग्य रहा और अवसर बनते गए कि नई दुनिया उस समय बड़ा अखबार माना जाता था, वहाँ काम करने का मौका मिला, सीखा हमने नई दुनिया से। फिर जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की आपने बात कही तो विनोद दुआ जी जैसे या बड़े नाम जो हमारे देश के, उनके साथ में काम करने का मौका मिला। वेब पत्रकारिता में आए तो यहाँ नवाचार करने का मौका मिला, आकाशवाणी और दूरदर्शन के साथ में बहुत शुरुआत से जुड़ने का मौका मिल गया, और उसके पहले रंगकर्म और कुछ लिखना पढ़ना, ये वो सारे आयाम थे जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को संबल देते हैं और एक दूसरे को निखारते हैं। यहाँ से करते करते लगातार काम करते रहना, अवसर मिले ना मिले आपको सतत चलते रहना है, काम करते रहना है। और जब आप काम करते रहते हैं तो आप लगातार निखरते रहते हैं। आप ये सोचेंगे कि दो घंटे में ट्रेनिंग लूंगा उसके बाद मैं काम करूंगा, इसकी बजाय वो दो घंटे अपने आप को काम करने में झोंक दीजिए, आपकी ट्रेनिंग एक ऑनगोइंग ट्रेनिंग हो जाएगी, काम करते करते ट्रेनिंग हो जाएगी। तो इस तरह से पत्रकारिता ने मेरे पूरे व्यक्तित्व को निखारा, और हमको लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं कोई देख नहीं रहा है उसे, लेकिन कई लोग हैं जो आपको आकाशवाणी से सुन रहे होते हैं, जो आपके लिखे को पढ़ रहे होते हैं, जो आपकी कविता से पता नहीं कब एक प्रेरणा पा लेते हैं, जो आपकी आलोचना भी करते हैं, और अचानक एक दिन एक फोन आता है, कोई रास्ते में मिल जाता है, वो कहता है कि अरे मैंने आपकी वो खबर पढ़ी थी, या वो चेहरा पे आप वो है जो दूरदर्शन पे आपने वो इंटरव्यू लिया था, ये सवाल अच्छा पूछा था, ये सवाल और पूछ लेना था, तो मन में एक होता है कि कोई देख रहा है आपको, आप कोई काम कर रहे हैं चाहे वो सामने आंखें नहीं है, लेकिन जो है एक थर्ड आई की तरह जो देख रहा होता है, आपको एक प्रेरणा मिलती रहती है कि मुझे अच्छा काम करते चलना।
1: जी जी जी जी। पत्रकारिता के अलावा आपका एक दूसरा पहलू भी है, आप साहित्य से भी जुड़े हैं, तो बतौर पत्रकार पंकज शुक्ला और साहित्यकार पंकज शुक्ला, इन दोनों में से कौन सा पक्ष आपके अधिक करीब है?
0: मुझे लगता है कि किसी एक आयाम की बात करना बहुत एकांकी हो जाना होगा। दरअसल ये एक इंद्रधनुष है या एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है, जहाँ पे हर वाद्य का हर रंग का अपना एक महत्व है, एक सिंक्रोनाइजेशन है। अगर आप पत्रकार हैं केवल तो अकेले हैं, अगर आप, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अगर मैं केवल एक साहित्यकार हूँ तो मैं अकेला हूँ, अगर मैं केवल एक खिलाड़ी के रूप में हूँ तो अकेला हूँ, अगर मैं केवल रंगकर्म कर रहा हूँ तो अकेला हूँ, क्योंकि सब आपस में गूंथे हुए हैं और इन सब ने मुझे गढ़ा है, इन सब के होने में मैं हूँ।

0: ये ठीक वैसी ही बात है कि आप अभिव्यक्त करना चाहते हैं तो कौन सी बात आप कविता में कहेंगे, कौन सी बात खबर बनेगी, कौन सी बात को आप चाहेंगे कि आप उसको फेसबुक पर लिख कर रख दें। ऐसा नहीं हो सकता कि एक 5 कॉलम की खबर को आप एक छोटी कविता में नहीं व्यक्त कर सकते। अभिव्यक्ति के तरीके क्या होंगे इसको चुनते चुनते अपने आप को परिष्कृत करते हुए चलते हैं और लगता है कि ऐसे ही व्यक्ति फिर पूरा बनता है, गढ़ता है।
1: जी जी जी, निश्चित तौर पर। पंकज जी, आपके द्वारा सामाजिक कार्य भी किए गए हैं, आपके काम में जल, पर्यावरण, स्वास्थ्य, आदिवासी अधिकार, कुपोषण और संवैधानिक मूल्यों जैसे विषय वस्तु रहे हैं, तो सामाजिक सरोकारों से जुड़ने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
0: मैंने बहुत सीधे सीधे तो सामाजिक कार्य नहीं किए, लेकिन जो पत्रकारिता में सामाजिक कार्यों का या जिन मुद्दों को उठाने की बात हो सकती है, जिनका आपने भी विषयों का उल्लेख किया, मीडिया जो हर जगह की जाकर वहाँ की कमियों को उजागर करता है, वो अगर कहीं नहीं पहुँच रहा है, मतलब सूरज की रोशनी वहाँ नहीं पहुँच रही है, मानना चाहिए। वैसे ही पानी को लेकर, हमने रात में 3-3 बजे उठकर पानी भरा है, हम 2-2 किलोमीटर से पानी उठाकर लेकर आए हैं, वो जब हम पत्रकारिता कर रहे हैं वहां पर अगर हम पानी के बिंदु पर बात ना करें तो ये तो धोखाधड़ी होगी हमारे जीवन के साथ में। हम वो लोग हैं जो असमानता को जिन्होंने देखा है, भोगा नहीं है लेकिन देखा है, अगर हम असमानता की बात नहीं करेंगे, उसको समानता में बदलने की बात नहीं करेंगे तो फिर हमारा जीना तो व्यर्थ है, हमारा सारा कर्म व्यर्थ है। तो शायद वो था जो बचपन में देखा था, समझा था, जाना था, वो धीरे धीरे पत्रकारिता के ऐसे इश्यूज को चुनने में मेरा सहायक बना। मेरे सामने मौका था कि मुझे थर्ड पेज की, जिसे ग्लैमर की रिपोर्टिंग करनी है, या मुझे किसी गांव में जाकर वहां पे कुपोषण की रिपोर्टिंग करनी है, तो मैंने कुपोषण पर रिपोर्टिंग करने को चुना, मैंने ग्लैमर की रिपोर्टिंग को नहीं चुना। तो शायद ये वो सोच की बुनियाद थी जिसने मुझे मुद्दों पर काम करने के लिए प्रेरित किया। और समाज सेवा कहें या ना कहें, लेकिन ये जरूर हुआ कि हमने कुछ लिखा, कुछ लोगों ने पढ़ा, कुछ लोगों ने दिशा बदली, और यही शायद मेरा पारितोषिक भी है।
1: पंकज जी, वर्तमान में आप संविधान संवाद जैसे कार्यक्रम से भी जुड़े हैं, आम नागरिक के लिए संविधान को समझना कितना ज्यादा जरूरी है?
0: जब संविधान की बात होती है तो या तो इसकी राजनीति की बात होती है, या संविधान को विधि की किताब मान लिया जाता है, या जब हम सोशल स्टडी करते हैं 6वीं 7वीं 8वीं किताबों में, तब हम कुछ मूल करते हुए अधिकारों की बात करते हैं। जबकि हर नागरिक संविधान को, जिसने आत्मार्पित किया है, जिसने संविधान को लागू होने का भारतीय नागरिक बोध दिया है, उसके लिए संविधान तो एक जीवन रेखा है, जीवन संचालन का तरीका है। तो हम तो उससे एकदम कटे हुए होते हैं, हम नहीं जानते कि जिस स्वतंत्रता, जिस न्याय, जिस बंधुता, जिस समता समानता की हम मांग कर रहे हैं, वो संविधान की आत्मा कही जाने वाली प्रवेशिका में लिखा हुआ, उद्देशिका में लिखा हुआ है, प्रस्तावना में लिखा हुआ है। तो जब तक हम इसको जानेंगे नहीं, हम नागरिक कैसे बेहतर बन पाएंगे? जिस देश को हमें चलाना है, हमें जब वोट देना है, जो वोट हमारी सरकार को चुनता है, हम अगर उसके दायित्व बोध को नहीं जानेंगे, हम उनके मूल्यों को नहीं जानेंगे, उनका पालन नहीं जानेंगे, तो कब तक देश बेहतर नहीं बन पाएगा। इसीलिए शायद ये संविधान संवाद ने प्रयास किया, संविधानिक मूल्यों को लेकर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचना, पेशेवर लोग जो पत्रकार है, वकील है, युवा सामाजिक कार्यकर्ता है, उन तक पहुँचना, संविधानिक मूल्यों के बारे में जागृति लाना। और ये ऐसा भाव है कि आप अधिकार तो लोगों से मांगना पड़ता है, मूल्यों का पालन तो हमें खुद सीखना है। मैं आपका सम्मान करूंगा, आपकी गरिमा का ध्यान रखूंगा, तो मुझे सीखना है। तो जो खुद करने की बात है वो शायद ज्यादा सिखाने की आवश्यकता है, इसलिए हम संवैधानिक मूल्यों की ओर काम करने को प्रेरित हुए।
1: जी जी जी। पंकज जी, आपके 2 काव्य संग्रह भी है, एक सपनों के आसपास और नन्ही बूंदों का समंदर। तो पत्रकारिता की व्यस्त जिंदगी के बीच कविता आपके लिए क्या है? अभिव्यक्ति, आत्मसंवाद या समाज को देखने का एक अलग नजरिया?
0: ये वैसा ही है कि आप एक बहुत अच्छे बिस्तर पर सोए हैं और आपको एक बेचैनी है
1: जी
0: कुछ काम करने की, तो आप काम पर निकल जाते हैं
1: जी,
0: और आप बहुत काम से थके हुए हैं और आप चाहते हैं कि को आराम मिले, तो आप बिस्तर की तरफ आ जाते हैं। कविता में कुछ व्यक्त होता है, कोई पीड़ा व्यक्त होती है, कोई उम्मीद व्यक्त होती है, कोई आस बनती है, और जब उसको पूरा करने की बारी आती है तो मुझे लगता है कि पत्रकारिता की तरफ मैं चला जाता हूँ कि वहाँ कुछ करने का, उसको लागू करने की प्रक्रिया शायद मैं कर सकूँ, दिखा सकूँ। और पत्रकारिता से जो कुछ पीड़ा मिलती है, जो कुछ सुखद अनुभूति होती है, वो व्यक्त कहाँ करूँ, तो मुझे लगता है मैं कविताओं की तरफ चला जाता हूँ और वहाँ कुछ रचाता हूँ। तो ये एक तरह से काम है, जो जहाँ जो संतोष मिलता है वो दूसरी तरफ मैं उड़े लाता हूँ, जहाँ कुछ अगर असंतोष मिलता है तो मैं दूसरी तरफ व्यक्त कराता हूँ।
1: जी जी जी जी। और आपके काव्य संग्रहों के शीर्षक बहुत संवेदनशील है, नन्ही बूंदों का समंदर, शीर्षक के पीछे क्या विचार था?
0: ये दरअसल रतलाम के 4 कवियों का एक संग्रह है, और हम बहुत शुरुआती दौर के कवि थे, ये 2000 के आसपास में काव्य संग्रह आया।

0: था और उस समय लगा था कि हम बूंद भी नहीं है समंदर में, लेकिन जब हमारी कविताओं को पढ़ा और उस पर जो आशीर्वचन भूमिका चाहे वो सरोज कुमार जी ने लिखी हो या बलराज गुमास्ता जी ने उसमें कहा हो, तो उन्होंने कहा कि ये बूंद जरूर है लेकिन इसमें समंदर की संभावना नज़र आती है। तो फिर हमको लगा कि, और ये टिप्पणी विनय उपाध्याय जी ने दी थी, तो मुझे लगा कि शायद हम साथियों ने तय किया कि इसका शीर्षक भी यही होना चाहिए कि कुछ नन्ही बूंदें थी जिनमें समंदर का आभास दिखाई देता था।
1: जी जी जी पंकज जी, हम चाहेंगे कि क्यों ना एक कविता आप हमारे श्रोताओं के लिए भी प्रस्तुत करें।
0: जी जी, मैं कोशिश करता हूँ एक कविता को रखने की, हालांकि मुझे अपनी रचना याद नहीं होती हैं, लेकिन इसलिए भी कि शायद वो मेरे जीवन का संदेश भी है, मेरे काम करने का तरीका भी है। एक छोटी सी रचना प्रस्तुत करना चाहूँगा, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी।
1: जी,
0: यूं तो वह दरवाज़ा है आवाजाही के लिए, मगर अक्सर बंद ही रहता है अपरिचितों पर। पुख्ता इंतजाम है कि अवांछित कोई घुस न आए बिना इजाज़त, फिर भी यह रोक न पाता था हवा, पानी और रोशनी को, कि जरा सी दरार से बेधड़क आ धमकती किरणें छनकर आ ही जाती पुरवाई, और दीवारों से रिस कर आता पानी गवाही था मौसम के हरियाने का। हवा, पानी, रोशनी की ही तरह घुस आती थी एक मुट्ठी उम्मीद भी, राह के बंद हर कपाट को ठेलते हुए। भले बार बार न देता हो दस्तक मौका, उम्मीद कहाँ करती है परवाह उसे सुने जाने की। आप बंद किए रहिए लाख दरवाजे, वह आ ही धमकेगी, और मैं यह उम्मीद होना चाहता हूँ।
1: वाह क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, निश्चित तौर पर बहुत ही प्रेरणादायी कविता है आपकी, और जो भी अभी संघर्ष कर रहा है अपने जीवन में, आपकी इस कविता से निश्चित तौर पर उनको एक उम्मीद की किरण अवश्य रूप से मिलेगी। अब जैसे हम बात करते हैं कि क्या आपको लगता है कि एक साहित्यकार समाज के उन आवाज़ों को सामने ला सकता है जिन्हें खबरों में हमेशा जगह नहीं मिलती?
0: आप देखेंगे जो अपने आसपास के व्यक्ति होंगे कि हम अपनी अभिव्यक्ति में कहाँ कहाँ खड़े हैं और कहाँ कहाँ नहीं हैं। हर अभिव्यक्ति के मंच का एक अनुशासन होता है, उसकी एक मर्यादा होती है। मान लीजिए एक अखबार है, एक वेबसाइट है, आकाशवाणी है, हम यहाँ क्या अभिव्यक्त करते हैं वो एक अनुशासन में और एक सीमा में करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें छूटी रह जाती हैं जो यहाँ व्यक्त नहीं हो पाती, जो नेपथ्य की होती है। कई बार उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज अब भीतर से उठती है तो व्यक्ति उसको सोशल मीडिया पर लिखाता है, वो फेसबुक पर लिख देता है। एक व्यक्ति का, चाहे वो मैं हूँ, मेरा अखबार में लिखा हुआ, मेरा कविता में लिखा हुआ और मेरा फेसबुक पर लिखे हुए में काफ़ी अंतर होता है, लेकिन वो मेरी पूरी विचार प्रक्रिया का हिस्सा है। तो जब ये लगता है कि मैं पत्रकारिता में कोई व्यक्ति काम नहीं कर पा रहा है, तो वो रचनात्मकता कहाँ खोजेगा, वो अभिव्यक्ति कहाँ खोजेगा, वो उन प्लेटफॉर्म्स पर खोजेगा जहाँ पर वो उसको कह सकता है। कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिनके, जहाँ वीडियो चलते हैं, जहाँ पे वन लाइनर में बात की जाती है। अभी तो जो एक्स हो गया है, ट्विटर ने अपनी शब्द सीमा बढ़ा दी है, वरना वहाँ तो आपको 200 शब्दों के भीतर अपनी बात कहनी होती थी। तो हर मंच की अपना एक अनुशासन है, मर्यादा है और सीमा है। उस सीमा के बाहर की जो चीज़ है वो अपने लिए मंच तलाशती है, और जहाँ मंच उसको जो तरीका, जो साँचा, जो ढंग उसको मिल जाता है, वहाँ वो व्यक्त हो जाती है।
1: जी जी जी पंकज जी, आपने पत्रकारिता के अलावा संवैधानिक मूल्यों, पर्यावरण, जल और सामाजिक जागरूकता से जुड़े अभियानों में भी काम किया है। इनमें से ऐसा कौन सा काम है जिसे आप अपनी सबसे सार्थक सामाजिक उपलब्धि मानते हैं और क्यों?
0: नहीं, मैं उपलब्धि तो किसी को भी नहीं कहूँगा, बल्कि इन सारे मुद्दों में जब आपने सवाल किया तो मुझे लगा कि आप ये पूछेंगे कि इनमें क्या महत्वपूर्ण पाते हैं या किस पर काम करना जरूरी पाते हैं। और मुझे लगता है कि हर बिंदु, आप खाली घड़े देखिए, हमको लगता है कि पानी बचाने की ज़रूरत है। आप कटते हुए पेड़ देखिए, हमको लगता है पौधे उगाने की ज़रूरत है। हम किसी बच्चे को जब काम करते हुए देखते, लगते हमको स्कूल खड़े कर देना चाहिए। हम जब किसी बीमार को हाँपते हुए देखते हुए, लगता है कि क्यों ना अस्पताल बढ़ा दिए जाएं। बुजुर्ग देखेंगे तो लगेगा कि क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बने जो हमारे यहाँ के वरिष्ठ जनों के सेवा कर पाए, उनकी देखभाल कर पाए। महिलाओं की स्थिति देखकर लगता है कि हमारा समाज आज भी ऐसा है। पुरुषों को काम करते हुए देखते लगता है कि आज भी इतनी असमानता है कि एक के लिए काजू घना है और किसी को मुट्ठी भर चना भी नहीं है। ऐसी स्थिति में हर मुद्दे की तरफ देखकर लगता है कि काम करते रहना चाहिए, हमको जुट जाना चाहिए। तो जहाँ जो मौका मिलता है, हम अगर कुछ बदलाव के लिए कोशिश करते रहें। और ख़ास बात यह है, ये तमाम बातें मैं मतलब अपने आप को सौभाग्यशाली पाता हूँ कि इन मुद्दों के जरिए, मतलब बात मुझ पर हो रही है, लेकिन मुझसे ज़्यादा ये जिन प्रक्रियाओं की मैं बात कर रहा हूँ, जिन मुद्दों की बात कर रहा हूँ, इन पर बात करनी ज़्यादा आवश्यक है कि हम जहाँ हैं हम कुछ काम करते रहें, बदलाव का काम करते रहें। एक पुस्तक है मेरी पानी पुस्तिका, उस पर अनुपम जी ने भूमिका लिखी। अनुपम जी हमेशा कहते थे कि पंकज भाई अच्छे अच्छे काम करते जाना।

0: तो क्या हम ये मैसेज नहीं, अपना जीवन सूत्र नहीं बना सकते हैं कि हम काम करते जाएंगे, अच्छा अच्छा काम करते जाएंगे, वो दर्ज होता रहेगा। हम सबको आदत होती है कि हम इतिहास में अमर हो जाएं, हमारे नाम अमिट अक्षरों में लिखा जाए, तो बजाय किसी पत्थर पर नाम लिखने के आप कोई ऐसा नाम लिख जाए कि लोग आपको उस काम के जरिए याद करें।
1: जी जी जी जी बिल्कुल। पंकज जी, इतने वर्षों तक लगातार पढ़ना लिखना और काम करना, आप खुद आपको अपडेट रखने के लिए क्या करते हैं?
0: मैंने कोशिश की और मैं लगातार कोशिश करता हूँ। हमें बचपन से सिखाया गया था, पत्रकारिता में आया तब हमारे गुरुओं ने भी सिखाया कि जरूर अखबार पढ़ना चाहिए। आज भी जब मैं कहता हूँ कि अखबार जरूर पढ़ना चाहिए, चाहे आपके हाथ में मोबाइल तुरंत सूचना दे रहा है, लेकिन उस तुरंत सूचना की सच्चाई और उसका सत्यापन अखबार के जरिए ही हो सकता है। इसके बावजूद कि अखबार को लेकर तमाम शिकायतें लोगों को हैं, लेकिन कई अखबार हैं, कई पत्रिकाएं हैं जो बहुत ईमानदारी से काम कर रही हैं। उनको चिन्हित करने की आवश्यकता है, उनको पढ़ने की आवश्यकता है। समाज उनको अगर रिकॉग्नाइज करेगा, उनको पहचान देगा, तो वो खड़े होंगे और मीडिया की, पत्रकारिता की वो पहचान फिर से बन पाएगी। तो ये आवश्यक है कि दूसरा है कि आप ये टटोलिए कि आपकी ऊर्जा आपको मिलती कहाँ से है। आपको अपनी ऊर्जा के स्रोत को सतत सिंचित करते रहना होगा, उनसे अपनी ऊर्जा पाते रहना होगा। ऐसा ना हो कि आपको लिखने में, पढ़ने में, कविताओं में, खेलने में रुचि मिलती है और आप उस तरफ सिर्फ दौड़ते भागते रहें, उस तरफ आप ध्यान देना ही बंद कर दें। ऐसा ना हो, आप अपने ऊर्जा के स्रोत को जीवंत बनाए रखिए, आपकी कार्यप्रणाली, आपके कर्म जीवंत बने रहेंगे।
1: जी, और ऊर्जा के स्रोत को बनाए रखने के लिए क्या आप गाना सुनना भी पसंद करते हैं?
0: हाँ, बहुत। आकाशवाणी, मतलब मेरी गाड़ी में विविध भारती ही चलता है। हमारे घर जो रेडियो है उसमें विविध भारती बनता है और हमारे परिवार में रेडियो का स्थान एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक के स्थान की तरह होता है। बचपन से हमारे दोनों तीनों परिवार जो हैं, चाहे वो मेरा खुद का परिवार हो, मेरा ससुराल हो, मेरे मित्रों के परिवार हो, वहाँ रेडियो का होना जीवन के अहम अंग के होने का है। और रेडियो माने आकाशवाणी।
1: तो कोई ऐसा गीत जो आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहेंगे या सुनवाना चाहेंगे आप?
0: हाँ, मैं जरूर, राज कपूर साहब पर फिल्माया गाना है, किसी की मुस्कुराहटों पर हो फिदा, वो अगर गाना हो पाए तो बहुत अच्छा लगेगा।
1: आइए सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का यह खूबसूरत गीत।

0: ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है आपका।
1: पंकज जी, आपकी जिंदगी में ऐसा व्यक्ति, पुस्तक या विचार है जिसने आपकी सोच को गहराई से प्रभावित किया हो, और चलते चलते आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे?
2: कोई एक व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे जीवन को गढ़ने में जो समुच्चय है लोगों का, चाहे वो परवरिश से लेकर जीवन के तमाम चरणों में मुझे बहुत अच्छे लोग मिले जिन्होंने मुझे समर्थन दिया, साथ दिया, सहयोग दिया, मार्गदर्शन दिया, तो किसी एक का नाम नहीं, लेकिन एक पूरी प्रकृति मेरे साथ जुड़ी रही, उन सब के प्रति आभार भी है। और जो वाक्य है, जो मैंने अनुपम जी का वाक्य कहा कि हमको चलते रहना है, हमको काम करते रहना है, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो इन दिनों हमने सिखाई है अपने बच्चों को कि ना कहना आना चाहिए, लेकिन आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि आपको कहाँ ना नहीं कहना है, आपको कहाँ काम करते रहना है, आपको कहाँ थकना नहीं है, आपको कहाँ बैठना नहीं है। और अगर ये करते रहेंगे, आप ये मत सोचिए कि उसको कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है, कोई उसको प्रशंसा दे रहा है कि नहीं दे रहा है, आप काम करते रहिए, कोई है जो आपको देखता रहता है, अचानक से वो प्रकट होगा और कहेगा कि मैंने ये देखा था, आपने ये कहा था, ये लिखा था, मैंने सुना था। वो जो संतोष मिलता है वो सबसे बड़े पुरस्कार जैसा होता है। और हर साथी को, सबको मेरा यही सलाह होती है कि आप काम करते, काम मतलब काम जॉब वाला काम नहीं,
1: जी,
2: आप
1: जी,
2: जीवन में कुछ करते रहिए, बैठिए मत,
1: जी, जी, जी,
2: बैठेंगे तो रुक जाएंगे।
1: जी पंकज जी, आपसे हुई यह बातचीत निश्चित रूप से हमारे श्रोताओं के लिए एक अनुभवपूर्ण यात्रा रही। यह एक ऐसी यात्रा जिसमें पत्रकारिता के अनुभव के साथ साहित्य की संवेदनशीलता, सामाजिक सरोकारों की चिंता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता भी दिखाई देती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपका यह अनुभव और आपकी विचार यात्रा हमारे श्रोताओं, विशेषकर युवाओं को अपने आसपास के समाज को समझने और उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित करेगी। पंकज जी, इनसे मिले कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपका भी धन्यवाद कि आपने मुझे अवसर दिया अपनी बात कहने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।

0: अभी तक आपने सुना कि जमुनिया अपने आरंभिक दुख और तिरस्कार के बावजूद पढ़ लिख कर जीवन संघर्ष में उतरती है। गांव वालों की मर्जी से वो ग्राम सरपंच भी चुनी जाती है और बहुत कम समय में सरकार की दी हुई योजनाएं लागू करके गांव में सारी आधारभूत संरचनाएं खड़ा करती है। शीघ्र ही गांव में एक अजब सा उत्साह और जोश भर देती है। वहां गांव तक सड़क आई, बस आई, गांव में बिजली आई, स्कूल बना, अस्पताल खुला, पोस्ट ऑफिस और बैंक भी गांव आए। और उधर जमुनिया के बच्चे गोलू और चिरैया पढ़ लिख कर कलेक्टर और डॉक्टर बन गए। गांव के गुरुजी ने बच्चों को तेजस और रूपस नाम दिया। एक दिन ये दोनों बच्चे गांव लौटने वाले हैं और जमुनिया उनकी प्रतीक्षा में बैठी है। शाम होने तक तेजस और रूपस नहीं आते। चिंतित जमुनिया बच्चों के मंगल के लिए व्रत रखती है और अचानक बेहोश हो जाती है। डॉक्टर उसको देखकर सबको संतुष्ट करता है और कहता है कि कोई खास परेशान होने वाली बात नहीं है, थोड़ा पानी की कमी हो गई थी और जयंत ने उसे ORS देकर बहुत समझदारी का काम किया है। रात भर के इलाज के बाद जमुनिया को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। वो लोग घर आते हैं, तभी तेजस और रूपस भी गांव आते हैं। इसी बीच जयंत अखबार में जमुनिया की फोटो देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। अब आगे
1: बाबा।
2: हाँ बिटिया,
1: आपको चाय कैसी लगी?
2: अरे चाय
1: जी
2: बिल्कुल अमृत जैसी लगी बेटा। हाँ अमृत, अरे चाय नहीं बेटा, जी तो अमृत है अमृत। हाँ।
1: बाबा बस भी कीजिए, तारीफ करना तो कोई आपसे सीखे।
3: और बुराई करना
1: वो तो इस घर में है ही नहीं, और आगे भी भगवान हमें बुराई से दूर ही रखे।
4: चाय तूने वाकई अच्छी बनाई है, इसमें तारीफ वाली कोई बात नहीं है। अरे हाँ रूपस, जरा मेरा सर तो देख, बहुत दर्द कर रहा है।
1: क्यों मजाक कर रहे हो भैया, तुम तो दूसरे के सर में दर्द कर दो, तुम्हें कौन सर दर्द देने वाला है।
4: तू तो बड़ी अच्छी डॉक्टर हो गई है रे, बिना देखे ही मर्ज बता देती है।
3: तुम्हारी ही बहन है। अच्छा तेजस, ये जीप

0: जो कुछ छपा है ना, इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। मैं प्रेस से पता करना चाहता हूं कि इसके पीछे क्या है, पर पहले यही अखबार आज के तारीख का फिर से देखना चाहूंगा।
1: मैं ले आता हूं बाबा।
0: और तेजस बेटा, दो तीन अखबार और लेकर आ जाना।
2: जी ठीक है।
3: ठीक है भैया, तुम पेपर लेकर आओ, तब तक मैं कुछ नाश्ता बनाती हूँ।
2: ठीक है।
4: बस अब बहुत हो गया, चूल्हा चौका मेरा है, बहुत आराम हो गया। तुम लोग तो इस तरह मुझे बैठा कर रख दोगे।
3: अरे नहीं माँ, नाराज क्यों होती हो, हम दोनों मिलकर बनाएंगे।
4: तो ठीक है।
5: अच्छा, तुम लोग नाश्ते की तैयारी करो।
3: जी।
5: मैं तब तक एक बांस लेके आता हूँ, मैंने कल बात कर रखी थी बेटा। हाँ
3: ठीक है बाबा।
0: हाँ बाबा, ये ठीक कहा आपने।

0: आप ठीक कह रहे थे बाबा, ये खबर तो आधी अधूरी छपी थी कल। खबर तो आज छपी है, फतेहपुर ग्राम पंचायत जिले की सर्वश्रेष्ठ पंचायत चुनी गई है और इसके लिए कल शहर में सम्मान आयोजित किया गया है। इसमें अम्मा को सम्मानित किया जाएगा और ग्राम पंचायत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भी दिया जाएगा।
1: अरे वाह, अरे ये क्या हो गया आपको? अरे रो क्यों रहे हैं?
2: ये तो खुशी के आंसू हैं जमुनिया, खुशी के। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अभी भी ईमानदारी बची है ना, हमने कोई जोड़ तोड़ की ना तुमने कोई सिफारिश की। हम लोग रात दिन काम करते रहे और देखने वालों ने देखा, उसका सम्मान किया और आज ये दिन देखने को मिला है। ऐसी खुशी पचा लेना आसान नहीं है जमुनिया। मैं जानता हूं तुमने जो कोशिश की गांव को बेहतर बनाने की, उसके पीछे ये मंशा नहीं थी कि तुम्हारा सम्मान करे, तुम्हें पुरस्कार मिले। तुम तो बस रात दिन गांव को बेहतर बनाने में जुटी रही और मुझसे इस पर जितना बन पड़ा मैंने तुम्हें योगदान दिया।
0: सही है बाबा, आप सही कह रहे हैं, पर अच्छे काम का सम्मान भी ज़रूरी है ना, तभी हम अच्छे काम के लिए प्रेरित होते हैं। पुरस्कार देने कोई आएगा कि यहाँ से जाना होगा?
2: ये तो मुझे भी नहीं पता बेटा, रुको पढ़कर देखता हूं और फिर बताता हूं।
0: जी ठीक है।
1: बस अम्मा, देखा ना अम्मा, तुमसे भी रहा नहीं गया, बड़ी खुशी के पीछे आंसू होते ही हैं।
3: ए लो भाई, मैं भी आ गया। पर आप लोग मुझे बताओ तो सही कि आखिर हुआ क्या है? अरे गांव भर में जमुनिया के बारे में बातें हो रही हैं। जो देखो वही जमुनिया जमुनिया कर रहा है। हाँ? अरे मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आया। मैंने सोचा अब जयंत बाबू ही बताएंगे मुझे।
0: बाबा मैं बताता हूँ आपको।
3: हाँ
0: हमारी ग्राम पंचायत फतेहपुर पूरे जिले में सबसे अच्छी मानी गई है और उसके लिए अम्मा को पुरस्कार देंगे और सम्मान भी करेंगे।
3: अरे वाह, मन खुश हो गया। कब होगा ये सब बेटा? हैं
2: बाबा। हाँ। मैं ये डिटेल में पढ़कर आप सबको बस थोड़ी देर में बताता हूँ।
3: ठीक है बेटा।
4: अरे सुनो भैया सुनो, अरे सुनो।
5: अरे हाँ भैया, हाँ बोलो।
4: अरे क्या कह रहा यार?
6: अरे भैया देखा जमुनिया का कमाल।
5: हाँ। अरे भैया मुझे तो शुरू से ही लगता था कि ये देवी कुछ ना कुछ कमाल जरूर करने वाली है।
4: देखो पर भैया जो जमुनिया जी अभी आई नहीं है। अरे मैं बेचैन हो रहा हूँ कि पूरे जिले में अव्वल आने वाले ग्राम पंचायत की सरपंच पुरस्कार का समाचार पाकर अरे कैसी लगती होंगी भैया।
5: अरे अरे बेचैन मत हो भैया, सबर कर सबर कर यार। वो देखो वो आ गई। ये देखो दद्दा, एक बात देखो कि इनके चेहरे पे कोई ऐसा भाव नया नहीं दिख रहा हूँ यार। ऐसे लग रही है इतनी बड़ी खबर है मगर ऐसे सादगी से ले ली कि वाह।
4: अरे ये तो बहुत महान है भैया।
5: ले भाई दीवान जी भी आ रहे हैं। दीवान भी आ रहे हैं। दीवान
4: अच्छा। अरे जय भी आ रहा है। अच्छा
5: दीवान भी।

0: भाइयों, आज आप सबके सामने हम ये स्वीकार करते हैं कि आज तक हम जमुनिया को दिल से माफ नहीं कर पाए थे, और इसके लिए आप लोग जो चाहे हमें सजा दें हमें कबूल है। पर सच मानिए भाइयों, आज हम जमुनिया जी के सामने समर्पण करते हैं। और आप सबसे वादा करते हैं कि इस गांव की तरक्की में जितना भी बन पड़ेगा हम आपके साथ हैं, पूरा सहयोग देंगे। ठीक है ना
1: भाइयों? इससे बड़ी बात क्या होगी कि आज पूरा गांव एक मत है और हम तरक्की की राह पर निकल चुके हैं। जो भी सम्मान पुरस्कार है वो पूरे गांव का है। आप सबकी मेहनत को सलाम है।
0: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक।
1: सरकार जब बुलाएगी मैं जाऊंगी और आप लोगों की तरफ से पुरस्कार ग्रहण करूंगी। आप सब मेरी मदद करें, शुभकामनाएं दें, ताकि आगे हम लोग गांव को और बेहतर बना सकें।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश जमुनिया जी, शाबाश।
1: दरअसल ये मीटिंग मैंने इसलिए बुलाई थी कि ये खबर आप सबको दे सकूं, पर मुझे लगता है कि ये तो सबको पता चल ही गया है कि हमारी ग्राम पंचायत जिले में सबसे आगे रही है और उसमें सारा श्रेय आप सबको ही जाता है।
2: और हाँ भाइयों और बहनों, आप सबको ये बताना चाहूंगा कि ये पुरस्कार सम्मान समारोह परसों शहर में होगा। और हाँ सुनो सुनो, इसमें हमारे गांव से जो लोग चलना चाहे हमारे साथ चले। और हाँ भाइयों, सबके आने जाने की व्यवस्था ग्राम पंचायत करेगी।
3: हम चलेंगे, कल्लू भैया चलेंगे, बंदा चलेंगे, हम जाएंगे।
4: रात और दिन आते जाते हैं, कानों में कुछ कह जाते हैं।
5: राम राम।
0: राम राम, आओ जग्गा आओ, बोलो क्या खबर है?
5: आज का अखबार देखा जीवान जी?
0: हाँ जग्गा, देखा भी और पढ़ा भी। और तुमसे सच कहूं कि पहली बार हमें ये पता चला कि सच्ची मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। अरे बाकी सब तो लफाजी है, लफाजी।
5: ये क्या हो गया है आपको दीवान जी? मैं तो सोचता था कि आपके मन को अच्छा लगने वाली कोई बात कहूं।
0: अच्छा? हमारे मन को अच्छा लगने वाली बात? अच्छा, भला बताओ तो कौन सी बात कहना चाहते हो जो हमारे मन को अच्छा लगने वाली है?
5: आप जाने दीजिए, लगता है आप भी जमुनिया की सफलता से प्रभावित हो गए हैं।
0: सही लगा है तुमको जग्गा, सही लगा है तुमको। अरे गलत सलत सोच के चलते हमने अपना बहुत नुकसान कर लिया है, और आज समझ में आता है कि इन सब का कोई मतलब नहीं है।
5: दीवान जी, मैंने तो सुना है कि कुछ डाकू आज रात इस गांव पर हमला करने वाले हैं।
0: क्या?
5: हाँ, डाका डालने वाले। तो सोचा आपको तो ये खबर दे ही दूं।
0: डाका? इस गांव में डाका?
5: हाँ।
0: अरे जग्गा, भला बता तो इस गांव में हमारे सिवा किसी और के पास है क्या? अरे क्या है किसी और के पास कि जिस पर डाकू डाका डालेंगे? और यदि ऐसा होने वाला भी है ना, तो सुन ले, हम किसी भी कीमत पर ये होने नहीं देंगे गांव में।
5: अरे दीवान जी, ये डाका चोरी लूट के लिए नहीं पड़ेगा, ये केवल उन लोगों को डराने धमकाने के लिए होगा।
0: अरे वो सब करके भी हम देख चुके हैं, अब इस बात का कोई भी मतलब नहीं है जग्गा। और अच्छी बात तो ये है कि गांव वाले अब बहुत सजग हैं, संगठित हैं, और ऐसे गांव का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जग्गा, कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
6: जैन बाबू, जैन बाबू।
2: हाँ भैया।
6: अरे भैया, अरे अरे सुना, ये आज रात को ये गांव में डाका पड़ने वाला है।
1: क्या
2: क्या कहा, डाका?
6: अरे मैं सीधे सुन के चला आ रहा हूँ अभी।
2: चमोरिया, इस वक्त निकलकर पुलिस को बुला पाना तो संभव नहीं है। समय हमारे पास कम है, इसलिए सारे गांव को इकट्ठा करो और अपने आदमियों को चारों तरफ अंधेरे में चुपके से फैला दो।
1: हाँ।
2: और जैसे ये डाकू गांव में आते हैं उन्हें अंदर आने दो और चारों तरफ से खेल लो और मिलकर ललकार करो।
1: ठीक बात कह रहे हैं आप।
7: अच्छा सुनो।
1: हाँ।
7: भैया, अरे मैं गांव वालों को समझा के आता हूँ।
1: हाँ बाबा।
7: हैं? और सब लोग एक साथ मिलकर तय करते हैं कि क्या करना।
1: हाँ बिल्कुल बाबा।
3: जैन बाबू, जैन बाबू, जमुनिया कह रहे हैं वैसा ही करना है।
7: हाँ भैया, वैसा ही करना है बिल्कुल।
2: इन डाकुओं को हमारे गांव से बाहर भगाना है।
8: देखो देखो, घर जला कर भी दीवान को चैन नहीं आया है, तो इसने हमें डराने के लिए डाकू बुलवाए है। महाराज, चला नहीं देंगे।
3: अब दीवान को बताएंगे हम।
1: देखो भैया, ये बेकार की बातें मत करो। हर बात में दीवान को घसीटना ये कोई अच्छी बात नहीं है।
3: नहीं चमुनिया जी।
0: भाइयों, हम जानते थे कि आप लोग यही कहेंगे, पर भाइयों, ये लोग जो पकड़े गए हैं, पहले इनके मुंह खोलिए और इनसे पूछिए कि इन्हें किसने भेजा है या कि ये खुद आए हैं। पूछिए इनसे कि इसमें हमारा कितना हाथ है, पूछिए। भाइयों, अरे हम आप सबके सामने ये स्वीकार कर चुके हैं कि हमारा मन अब बदल गया है। अरे हमने कसम खाई है कि अब भविष्य में कोई गलत काम नहीं करेंगे और ना ही इस गांव में कोई गलत काम होने देंगे। हो सुनिए, मेरी बात सुनिए भाइयों। इस गांव को जो सबसे अच्छी पंचायत का इनाम मिलने वाला है उसमें हम भी आप लोगों के साथ चलना चाहते हैं। हाँ, अरे सबके साथ मिलकर इस सम्मान का हम भी स्वागत करना चाहते हैं। खोलिए इसका मुंह, पूछिए। हे, चल बता ये सब क्या है और किसके कहने पे तू इस गांव में डाका डालने आया था, चल बता।
9: नहीं, मुंह नहीं खोलूंगा मैं, नहीं।
10: अरे हमें तो ये भी पता नहीं कि ये गांव कौन सा है और किसका घर है। हम तो भाई लुटेरे हैं, एक रात पहले तय करते हैं और दूसरी रात को गांव पर हमला कर देते हैं ताकि हमारा डर गांव वालों में बना रहे। पर आप लोगों ने तो पहले ही हमको हराने की तैयारी कर रखी है।
0: देखा भाइयों, देखा इन लोगों की करतूत को। भाइयों, हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि अब आप हम पे भी यकीन करना सीखिए। मेहरबानी करके हम पे यकीन करना सीखिए, हम बदल गए हैं भाइयों।
1: ठीक है भाई, ठीक है, अब इन लोगों को थाने पहुंचाइए। अब जयंत बाबू आपको बताएंगे कि सम्मान पुरस्कार का कार्यक्रम 2 दिन बाद शहर में होने वाला है। मेरे पास कागज आ गए हैं और सब जाने वाले लोग 2 दिन बाद यहीं इकट्ठा होंगे और यहीं से बस से शहर चलेंगे। ठीक है?
6: सुनो भैया, सुनो यार।
3: ठीक है
6: भैया, हमारी बात सुनो भैया।
3: क्या कह रहे हैं
6: भैया? आपकी इजाजत हो तो एक बात हम भी कहना चाहते
1: हैं। हाँ हाँ, कहिए।
3: बिना डर के बोलो।
6: देखो भैया, ऐसा है कि अपन सब एक जमाने से गांव में रह रहे हैं और हमें तो ये भी नहीं पता कि अपने गांव का नाम फतेहपुर कैसे पड़ा।

0: ये तो सही है।
1: पर अपनी जमुनिया बहन ने जिस तरह इस गांव को बदला है, तो भैया मेरे तो ये सुझाव है कि अपने गांव का नाम फतेहपुर से बदल के जमुनिया खास रख दिए जाए।
0: अरे भैया जो कहां से लिया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया रहा है, बढ़िया बढ़िया।
1: देखो भैया,
0: हाँ भैया,
1: सब राजी हो?
0: हाँ राजी,
1: और पक्का कर लो एक बार।
0: हाँ पक्का पक्का।
1: चलो राजी हो, हाथ उठाओ अपने अपने।
0: अरे भैया हाथ क्या उठाना है, पक्का ही है वे तो।
2: जय जय जय।
3: मैं इस राय से सहमत नहीं हूँ।
1: क्यों भाई?
3: आज मैंने कुछ अच्छा किया तो आप फतेहपुर को बदल कर जमुनिया खास कर दें, कल दीवान जी ने कुछ अच्छा किया तो दीवाने खास कर दें, इस तरह तो गांव की कोई पहचान ही नहीं बचेगी।
4: ये बात तो साफ
0: है, समझदार है, सयानी है।
3: एक गांव का नाम लोगों के जहन में आते आते बड़ा समय लगता है, और उस नाम को बदल कर उसकी अर्जित सारी अच्छाइयां भी बदल जाती हैं। मैं मानती हूँ कि आप सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरा बड़ा सम्मान करते हैं, तो हम सब मिलकर एक ही बात सोचें कि इस गांव की तरक्की, जमुनिया ना हो या हो, पर ये फतेहपुर तो रहेगा ना। आप सब की तरफ से 2 दिन बाद मैं शहर जाऊंगी और इस गांव का सम्मान लेकर आऊंगी, और जहां तक बन पड़ेगा कुछ नई योजनाएं इस गांव के लिए लेने की कोशिश भी करूंगी, जिसमें सबसे ऊपर अभी टेलीफोन की जरूरत है। जो हम शुरू से ही कोशिश कर रहे हैं, जो नहीं हो पाई, और जयंत बाबू बता रहे हैं कि टेलीफोन के साथ साथ ब्रॉडबैंड भी इस गांव को चाहिए, साथ में साथ में कंप्यूटर भी, जिससे इस गांव का सारा लेखा जोखा एक क्लिक पर मिल जाया करेगा। शहर में सम्मान के साथ मैं बात उठाऊंगी, और दूसरी बड़ी जरूरत खेतों के पानी की है।
0: ये तो सही है।
3: और आप सबको पता है कि नहर यहाँ से केवल 3 मील दूर जाने वाली है, हम कोशिश करेंगे कि उसकी एक नाली सिंचाई के लिए हमारे गांव में आए।
5: भैया हाँ, एक बात समझ में नहीं आई, ये जमुनिया है नहीं, 24 घंटे कचू ना कचू सोचती रहती
0: है,
5: जब देखो तब कुछ ना कुछ गांव के फायदे के लिए सुविधाएं जुटाने की बात सोचती रहती है।
3: और हाँ, जो लोग शहर जाना चाहते हैं वो जयंत बाबू के पास अपना नाम लिखवा दें, ताकि सबके आने जाने की व्यवस्था हो सके।
0: हाँ ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। और भैया हमारा नाम लिखवा, अब बाबू जी हमारा लिखवा, चलो चलो। अरे तुम पीछे आ यार, हम भी। हाँ चलो।

0: नमस्कार दीवान जी। हरे दीवान जी, सुबह सुबह सब कुशल तो है?
1: हाँ जमुनिया, सब कुशल है। अरे भाई, तुमने जिस मेहनत, लगन और ईमानदारी से गांव को संवारा है, तो अब गांव में सब कुशल ही रहना है। आज इस गांव के लिए बहुत बड़ा दिन है जमुनिया, और आज तुम सबकी खुशी में हम भी शामिल हैं और सबको दिल से बधाई देते हैं। और जमुनिया सुनिए, हम भी आप लोगों के साथ शहर चल रहे हैं।
0: अरे वाह।
1: हाँ भाई, हमने अपना ट्रैक्टर बस स्टैंड पर लगा रखा है।
0: अच्छा।
1: हाँ भाई, कुछ लोग उसमें चलेंगे और बाकी बस से।
0: हाँ हाँ बिल्कुल
1: और जैन भाई
2: जी,
1: आप लोग तो शायद जीप से शहर जाएंगे।
2: जी
1: तो भाई, उसमें थोड़ी बहुत भी जगह हो तो हमें भी अपने साथ ही बिठा लीजिएगा।
2: अरे कैसी बात करते हैं दीवान जी, आप तो हमारे अग्रज हैं। आइए, आप यहाँ मेरे पास बैठिए।
1: अरे वाह वाह, धन्यवाद।
2: तेजस, पहले गुरुजी के घर चलेंगे और उनको लेकर ही शहर चलेंगे।
3: जी बिल्कुल।
0: गुरुजी प्रणाम।
4: प्रणाम गुरुजी।
5: प्रणाम बेटा, प्रणाम।
0: आप आइए, हमें आज शहर चलना है, आपकी शिष्या को सम्मानित होना है। जो कुल मिलाकर आपके ही ज्ञान का आदर और सम्मान है।
5: अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, चलो बेटा, मैं भी देख लूँ कि किस तरह तुम्हें आदर सम्मान मिलता है।
0: आइए गुरुजी, आराम से। हाँ
5: अच्छा अच्छा,
0: आप यहाँ बैठिए गुरुजी।
6: भाइयों और बहनों, मुझे लगता है कि आप सभी लोग फतेहपुर से ही आए हैं। ये सामने जमुनिया जी बैठी हैं, जयंत बाबू हैं, सम्मान के लिए कृषि मंत्री आने वाले हैं, वो जमुनिया जी को सम्मानित करेंगे। आप सब लोग शांति बनाए रखें। जमुनिया जी, आप कृपया मंच पर आएं।
0: ये मंच पर जाने की क्या जरूरत है? जो कुछ कहना है कह दें, और कुछ जो कुछ देना है दे दें। मुझे तो इन सब के बीच में बैठना भी नहीं आता।
2: नहीं आता तो अब सीखना पड़ेगा। और जाइए, सीधे मंच पर जाइए और बैठ जाइए वहां पर।
0: क्या मैं नहीं, नहीं बैठ सकती?
6: नहीं, आपको तो आना ही पड़ेगा।
7: आपको तो आना ही पड़ेगा।
6: संकोच मत कीजिए, आप चाहें तो जयंत जी को भी साथ ले आइए।
0: ये ठीक है, उठिए जयंत जी, चलिए।
2: अरे अरे, मुझे क्यों ले जा रही हो?
0: अब आपको चलना ही पड़ेगा।
8: संग्रहालय से कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक जमुनिया की 25वीं कड़ी।

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज पर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर। ये आकाशवाणी भोपाल है। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स समिट 2026 की शुरुआत करते हुए

0: वे कहा, ब्रिक्स को मजबूत करते हुए हमें ग्लोबल रिफॉर्म की दिशा में भी तय करनी होगी। ग्लोबल गवर्नेंस का वर्तमान ढांचा पिरामिड की तरह दिखाई देता है। ग्लोबल साउथ आज वैश्विक संकटों की फ्रंट रो में है, लेकिन डिसीजन मेकिंग की बैक रो में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग इथियोपिया, मलेशिया और वियतनाम के प्रधानमंत्रियों तथा अबूधाबी के युवराज के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉ. आबी अहमद अली से मुलाकात की। आज प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें लंबित और राजीनामा योग्य मामले आपसी सहमति से निराकरण के लिए रखे जा रहे हैं। भोपाल में जिला न्यायालय परिसर में लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया से सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के विकास, रोजगार सृजन, युवाओं के कौशल विकास तथा प्रदेश में रोजगार के नए अवसरों के विस्तार से जुड़े विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। प्रदेश में पिछले 2 वर्षों में शिक्षा पोर्टल के माध्यम से लगभग 1,25,00,000 विद्यार्थियों के खातों में 696 करोड़ की छात्रवृत्ति पहुंचाई गई है। और महिला जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत ने फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में खेले गए पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। फाइनल में भारत का मुकाबला मेजबान चीन से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है युवा मित्रों का कार्यक्रम युववाणी। प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की है।

दोस्तों, शुरुआत करते हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी की। मैं आपके रेडियो दोस्त इशिका, नमस्कार। दोस्तों, जब उपभोक्ता किसी टिकाऊ उत्पाद का उपयोग कर लेता है तो उसे कूड़े के ढेर में फेंकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चक्रीय अर्थव्यवस्था के तकनीकी चक्र उत्पादों को प्रक्रिया का हिस्सा बनाते हैं, जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है और बार बार उत्पाद बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है, जैसे खाद्य पदार्थ, कपास और लकड़ी जैसी जैव अपघटनीय उपयोग्य सामग्री भी मिट्टी को आवश्यक पोषक तत्व लौटाकर इस प्रणाली में योगदान देती है। चक्रीय अर्थव्यवस्था का उद्देश्य अपशिष्ट और उत्सर्जन को कम करना और पर्यावरण में सक्रिय रूप से सुधार करना है। इसकी आवश्यकता मुख्य रूप से हमारी वर्तमान रैखिक अर्थव्यवस्था की कमियों और पृथ्वी के सीमित संसाधनों के कारण पड़ी। पारंपरिक रैखिक अर्थव्यवस्था लेना, बनाना, इस्तेमाल करना और फेंक देना के मॉडल पर काम करती है। इसके विपरीत सर्कुलर इकोनॉमी कम करो, दोबारा इस्तेमाल करो और रिसाइकल करो पर आधारित है। इसकी आवश्यकता के कई कारण हैं, जैसे प्राकृतिक संसाधनों की भारी कमी, पृथ्वी पर कोयला, तेल और खनिज जैसे सीमित संसाधन हैं, वर्तमान खपत की रफ्तार से खत्म हो रहे हैं। दुनिया की आबादी और मांग लगातार बढ़ रही है, जिसके लिए संसाधनों को बचाना और उन्हें बार बार इस्तेमाल करना जरूरी हो गया है। दूसरा, कचरे और प्रदूषण का संकट। प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक सामान और अन्य कचरा समुद्र और जमीनों को दूषित कर रहे हैं। कच्चे माल को जमीन से निकालने और नए उत्पाद को बनाने में भारी मात्रा में ऊर्जा खर्च होती है, जिससे ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं। पुरानी चीजों को रिसाइकल करने या दोबारा इस्तेमाल करने से नए उत्पादन की तुलना में बहुत कम ऊर्जा लगती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद मिलती है। सर्कुलर इकोनॉमी से आर्थिक लाभ होता है और स्थिरता आती है, क्योंकि कच्चे माल की कमी के कारण उनकी कीमतें तेजी से बदलती हैं, जिससे कंपनियों को नुकसान होता है। रिसाइकलिंग, रिपेयरिंग और नए डिजाइनिंग क्षेत्रों में रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होते हैं। इससे दूसरों पर निर्भरता कम होती है। दोस्तों, कई देश कच्चे माल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहते हैं। अब अपने ही देश में कचरे और पुराने सामान को रिसाइकल करके देश आत्मनिर्भर बन सकता है। दोस्तों, अब सुनते हैं ये गीत माई नेम इज खान फिल्म से राहत फतेह अली खान की आवाज में।

दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी युविका के बारे में, यानी युवा विज्ञानी कार्यक्रम। ये स्कूली बच्चों के लिए इसरो की एक विशेष आवासीय प्रशिक्षण योजना है। इसका उद्देश्य युवा छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और इसके अनुप्रयोगों की बुनियादी जानकारी देना है। ये मुख्य रूप से 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले या 8वीं कक्षा पास करने वालों के लिए 2 सप्ताह का कार्यक्रम है। इसरो ने स्कूली बच्चों के लिए कम उम्र में पकड़ना की सोच के तहत इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है, ताकि बच्चों में विज्ञान और तकनीक के प्रति रुचि जाग सके। दोस्तों, आप सुनते हैं ये गीत कभी खुशी कभी गम फिल्म से, सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में।

0: दोस्तों, अब हम युवा श्रोता शिखा पांडे से जानेंगे प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड के बारे में।
1: मेरा नाम शिखा पांडे है और मैं जिला चिकित्सालय सीधी में नर्सिंग ऑफिसर हूँ। आज मैं आप सभी से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रही हूँ, प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड। हमारे जीवन में कभी भी किसी को चोट लग सकती है, जल सकता है, गिरने से चोट लग सकती है या दुर्घटना हो सकती है। ऐसी स्थिति में अस्पताल पहुंचने से पहले दी गई सही मदद किसी की जान बचा सकती है। प्राथमिक चिकित्सा क्या है? चोट या अचानक बीमारी की स्थिति में डॉक्टर या अस्पताल तक पहुंचने से पहले व्यक्ति को दी जाने वाली तुरंत और आवश्यक सहायता को प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। फर्स्ट एड के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, जान बचाना। दूसरा, स्थिति को और गंभीर होने से रोकना। तीसरा, व्यक्ति को जल्द से जल्द चिकित्सा सुविधा तक पहुँचाना। फर्स्ट एड बॉक्स में क्या होना चाहिए? कार्यस्थल पर एक फर्स्ट एड बॉक्स जरूर होना चाहिए, जिसमें हम रख सकते हैं गौज, कॉटन, बैंडेज, एडहेसिव, मेडिकल टेप, एंटीसेप्टिक

0: लोशन, एंटीसेप्टिक वाइप्स, डिस्पोजेबल ग्लव्स, सीजर, थर्मोमीटर, ORS और मास्क। ध्यान रखें कि दवाइयाँ रखने पर उनकी एक्सपायरी डेट नियमित रूप से चेक करनी चाहिए। अगर किसी को चोट लग जाए तो क्या करें? सबसे पहले घबराएं नहीं, पहले अपनी और घायल व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करें, फिर देखें कि व्यक्ति होश में है या नहीं, सांस सामान्य है या नहीं। अगर खून बह रहा हो तो ग्लव्स पहनकर गौज या साफ कपड़े से घाव पर सीधा और लगातार दबाव दें। अगर गौज खून से भीग जाए तो उसे हटाएं नहीं, उसके ऊपर नया गौज रखकर दबाव जारी रखें। अगर चोट छोटी हो तो ब्लीडिंग नियंत्रित होने के बाद घाव को साफ पानी से धोकर बैंडेज किया जा सकता है। अगर जल जाए तो जले हुए स्थान को ठंडे बहते पानी के नीचे लगभग 20 मिनट तक रखें। लेकिन याद रखें, बर्फ, टूथपेस्ट, घी या घरेलू चीज बर्न पर नहीं लगानी चाहिए। कब तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए? अगर खून बहुत ज़्यादा बह रहा हो, व्यक्ति बेहोश हो, सांस लेने में परेशानी हो, चोट बहुत गहरी हो, सिर या रीढ़ की गंभीर चोट हो या बहुत बड़ा बर्न हो, तो तुरंत इमरजेंसी मेडिकल हेल्प लें और गंभीर चोट वाले व्यक्ति को बिना जरूरत हिलाए डुलाए नहीं। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, फर्स्ट एड का मतलब सिर्फ पट्टी करना नहीं है, यह सही समय पर सही कदम उठाकर किसी की स्थिति को बिगड़ने से रोकना और उसकी जान बचाने की कोशिश करना है। इसलिए हर व्यक्ति को बेसिक फर्स्ट एड जरूर सीखनी चाहिए। धन्यवाद।
1: दोस्तों, आप सुनते हैं ये गीत तोशी शाबरी की आवाज में, राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज फिल्म से।

दोस्तों, अब बढ़ते हमारे आज के विशेष स्तंभ हमारी धरोहर की ओर, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगी शिलाचित्र पार्क के बारे में। लद्दाख में बन रहा शिलाचित्र संरक्षण पार्क भारत का अपनी तरह का पहला और अनूठा पार्क है। ये पार्क लद्दाख के लेह में सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाट पर बनाया जा रहा है। इस ऐतिहासिक परियोजना की आधारशिला विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल 2026 के अवसर पर लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा रखी गई थी। लद्दाख में लगभग 400 ऐसे स्थान हैं जहां पत्थरों पर उकेरी गई प्राचीन आकृतियां मौजूद हैं। आधुनिक विकास कार्यों जैसे सड़क निर्माण, अनियंत्रित पर्यटन और मौसमी बदलाव के कारण इन ऐतिहासिक धरोहरों को नुकसान पहुंच रहा है। इसी खतरे से बचाने के लिए इस पार्क का निर्माण किया जा रहा है। इस पार्क के पहले चरण में लद्दाख के विभिन्न सुदूर और असुरक्षित इलाकों जैसे फ्यांग थांग, लिकिट, थिक्से, स्पितुक, निमू से संकटग्रस्त शिलाचित्र वाले पत्थरों को बेहद सावधानी से लाकर यहां सुरक्षित किया जा रहा है। जून 2026 तक 31 प्राचीन शिलाचित्रों को इस पार्क में सफलतापूर्वक स्थानांतरित किया जा चुका है, जिनका वजन 500 किलोग्राम से लेकर 10 मीट्रिक टन तक है। पार्क में संजोए जा रहे ये शिलाचित्र प्रागैतिहासिक काल से लेकर बौद्ध काल तक के मानव इतिहास की गवाही देते हैं। शुरुआती चित्रों में आदि मानव के जीवन, शिकार के दृश्यों, हाथ के छापों, लद्दाख के स्थानीय वन्य जीवों जैसे आइबेक्स, हिम तेंदुआ, जंगली याक और नीली भेड़ की आकृतियां उकेरी गई हैं। बाद के समय के पत्थरों पर बौद्धिक धर्म से जुड़े प्रतीक जैसे स्तूप, वज्र और स्वास्तिक के साथ साथ प्राचीन चीनी, अरबी और संस्कृत भाषा के शिलालेख भी मिलते हैं। ये दर्शाता है कि लद्दाख प्राचीन काल से सिल्क रूट और व्यापार का मुख्य केंद्र था। दोस्तों, शिलाचित्र संरक्षण पार्क का एक ओपन एयर म्यूजियम खुले आसमान के नीचे संग्रहालय के रूप में विकसित किया जा रहा है, ताकि पर्यटन और इतिहास में रुचि रखने वाले लोग इन हजारों साल पुरानी आकृतियों के पीछे की कहानियों और लद्दाख के गौरवशाली इतिहास को आसानी से समझ सकें। दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन चलने से पहले आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है हमें जरूर बताइएगा। आप अपनी शिकायतें और अपने सुझाव हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है yuvvaanirewa@gmail.com। तो फिर मिलने के वादे के साथ अपनी रेडियो दोस्त इशिका यानी मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ संध्या।

0: अभी आप सुन रहे थे युवा दोस्तों का कार्यक्रम युववाणी, प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है छोटे से अंतराल का।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
3: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
1: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। फिल्म संकेत कार्यक्रम का आरंभ लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के गाए गीत से। मजरूह सुल्तानपुरी के गीत को सुरों में सजाया है आर डी वर्मन ने और फिल्म का नाम है कारवां।

सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में सुनिए आनंद फिल्म का गीत। गुलजार के गीत में आवाज मुकेश की।

अभी आपने लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के स्वर में तलाश फिल्म का गीत सुना। मजरूह सुल्तानपुरी के गीत को संगीत से सजाया था एस डी वर्मन ने। अब आप सुनेंगे झुक गया आसमान फिल्म का गीत। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन और आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की।

लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर के युगल स्वर में सुनिए वो कौन थी फिल्म का गीत। राजा मेहदी अली खान

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। फिल्म संगीत में आज आपने जिन फिल्मों के गीत सुने उनके नाम थे वो कौन थी, तलाश, झुक गया आसमान, आनंद और कारवां। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अगले कार्यक्रम के पहले छोटा सा अंतराल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा, स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
4: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
5: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
4: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए। ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
5: आकाशवाणी है ना,
6: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
5: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
4: शाम सुहानी हो,
5: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
4: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भोले बिसरे पल, हर पल
5: सफर में
4: आपके साथ
5: आकाशवाणी।

सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है इस घंटे की खास खबरों का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स समिट 2026 की शुरुआत करते हुए कहा, ब्रिक्स को मजबूत करते हुए हमें ग्लोबल रिफॉर्म की दिशा भी तय करनी होगी। ग्लोबल गवर्नेंस का वर्तमान ढांचा पिरामिड की तरह दिखाई देता है। ग्लोबल साउथ आज वैश्विक संकटों की फ्रंट रो में है, लेकिन डिसीजन मेकिंग की बैक रो में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग इथियोपिया, मलेशिया और वियतनाम के प्रधानमंत्रियों

0: तथा अबू धाबी के युवराज के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉ. आबी अहमद अली से मुलाकात की। आज प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें लंबित और राजीनामा योग्य मामले आपसी सहमति से निराकरण के लिए रखे जा रहे हैं। भोपाल में जिला न्यायालय परिसर में लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया से सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के विकास, रोजगार सृजन, युवाओं के कौशल विकास और प्रदेश में रोजगार के नए अवसरों से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल आगर मालवा से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की सितंबर माह की 40वीं किस्त का अंतरण करेंगे। इस अवसर पर प्रदेश की 1,25,10,150 पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की मासिक आर्थिक सहायता सीधे अंतरित की जाएगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है पॉडकास्ट सीरीज प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ की 11वीं कड़ी।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ,
3: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत आज सुनिए बच्चों के साथ गौरैया और पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष योगदान देने वाली तथा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर अर्चना शुक्ला के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही है सोनू सूद।
4: नमस्कार, प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के नए प्रसंस्करण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का प्रसंस्करण बहुत ही विशेष है क्योंकि हम एक ऐसी शिक्षिका से आज बात करने वाले हैं जिन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य शुरू किया है बच्चों को पर्यावरण से जोड़ने का, और इसके लिए उन्हें हाल ही में टीचर्स डे के दिन राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर शुक्ला, आपका बहुत बहुत स्वागत।
5: धन्यवाद
4: डॉक्टर शुक्ला। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, ये जो आपको पुरस्कार सरकार की तरफ से मिला है, और आप हमें बताएं कि कैसा आपको महसूस हुआ और कौन सा ऐसा प्रमुख कार्य रहा है जो आपको लगता है कि जिसको सम्मानित किया गया है।
5: यह मेरे लिए बहुत गर्व का क्षण है, और सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे विद्यालय के लिए, मेरे विद्यार्थियों के लिए और पूरे मध्य प्रदेश के शिक्षकों के लिए। यदि हम कार्य की बात करें कि किस लिए अवार्ड दिया जा रहा है, तो जब हम कोई कार्य करते हैं और उस कार्य को रिकॉग्नाइजेशन मिलता है और शासन को लगता है कि उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए या उस कार्य से दूसरे टीचर भी इंस्पायर हो सकते हैं, तो आपको अवार्ड दिया जाता है। यदि मैं बात करूं कि ऐसा क्या विशेष किया है, तो मुझे लगता है कि मेरा जो विज्ञान पढ़ाने का जो ढंग है वो थोड़ा सा, उसकी विधि जो है वो दूसरे शिक्षकों से विभिन्न है। तो इसमें मैं अपने विद्यार्थियों को विज्ञान जो है सिर्फ किताब के माध्यम से पढ़कर या प्रश्नों के उत्तर देकर ना सिखाकर उनको उसे महसूस कराती हूँ। तो जो मेरा टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है। इसमें मेरे विद्यार्थी अलग अलग तरह की परियोजनाएं करते हैं, और उन परियोजनाओं को करते समय हमारी सरकार जो कह रही है कि विद्यार्थी NEP 2020 में 21st सेंचुरी स्किल्स पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है कि विद्यार्थियों में 21st सेंचुरी स्किल्स डेवलप होनी चाहिए, तो मुझे लगता है इसके लिए सबसे जो बेस्ट तरीका है वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग ही है।
4: सो आपने जैसे कहा कि आप सिर्फ थ्योरी नहीं, जो प्रैक्टिकल एक एस्पेक्ट है उसको ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कर रही हैं, और जो आपने हमें बताया कि बच्चों को प्रकृति से जोड़ने का जो कार्य है, उसका आपको ख्याल कैसे आया, क्यों आपको लगा कि ये बहुत जरूरी है?
5: विज्ञान पढ़ाते हुए मुझे लगभग आज 16-17 साल हो गए हैं, और मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि विद्यार्थियों को विज्ञान सिर्फ कक्षा में नहीं पढ़ाया जा सकता, विज्ञान तो हर चीज में है, विज्ञान तो प्रकृति के हर जगह पर है। तो कोरोना के समय मुझे रियलाइज हुआ, आपने सुना होगा कि कोरोना में लोग कहते थे कि काढ़ा पियो, तो काढ़ा पीने की जब बात आती है तो काढ़े में जो जो चीजें मिलाई जाती हैं, तो मेरे विद्यार्थी उन चीजों को पहचानते ही नहीं है। कितनी अजीब बात है कि आप अर्जुना रेस्ट बाजार से खरीद कर पी रहे हैं और आपको ये नहीं पता है कि आपके में लगा हुआ पेड़ ही अर्जुन है, तो अर्जुन की छाल से को आप उबाल कर पी सकते हैं। तो यहाँ से मुझे रियलाइज हुआ कि जिसको भी आप जानोगे नहीं उसको आप मानोगे नहीं। तो यदि आप कंजर्वेशन संरक्षण की बात करते हैं, तो सबसे पहला कदम जो है वो है आइडेंटिफिकेशन। जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, जब तक आप चीजों को अपने आसपास के पक्षियों को, पशु को, इंसेक्ट्स को, ट्रीज को

0: और जब तक आप पहचानेंगे नहीं तो आप कंजर्व कैसे करेंगे, तो उनका संरक्षण कैसे होगा? हमारे आसपास इतनी सारी जैव विविधता थी, लगातार कई जीव जो हैं वो खत्म होते जा रहे हैं, और जब कोई बड़ी विपदा आती है तब हमें लगता है कि हमने ऐसी क्या गलती की। तो यहाँ पर मुझे लगा कि विद्यार्थियों को प्रकृति से जोड़ना बहुत जरूरी है, और उसके लिए सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन।
1: बहुत ही आपने खूबसूरती से बताया कि आइडेंटिफिकेशन यानी जागरूकता सबसे पहला स्टेप है। जो आपने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की बात की, उसमें प्रमुख सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट्स आप जो आपको लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट था, उसका बहुत प्रभाव हुआ बच्चों पर और उनकी इन्वॉल्वमेंट हुई, उसके बारे में बताएं।
0: मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने कई बार इस बात को कहा है कि विद्यार्थियों में साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करिए। तो विद्यार्थियों में साइंटिफिक टेम्परामेंट कैसे डेवलप होगा? सिर्फ बायोलॉजी को क्लास में पढ़ लेने से डेवलप नहीं होगा। तो इसी तरह से एक बार मैं अपने 11th बायो के बच्चों को कंजर्वेशन पढ़ा रही थी, तो मैंने विद्यार्थियों से पूछा, क्या आपको लगता है कि हमें किसी जीव को कंजर्व करने की जरूरत है? तो मेरे एक विद्यार्थी ने खड़े होकर कहा कि मैम, पहले एक छोटी चिड़िया आया करती थी, गौरैया। तो जब मैं नानी के घर जाता था, बहुत सारी गौरैया आती थी, हम बहुत चावल खिलाया करते थे, आजकल वो दिखती नहीं है। तो मैंने कहा, ओके, क्या कारण है कि वो खत्म हो गई? तो किसी एक बच्चे ने रैंडम कहा कि मैम, रेडिएशन। तो ऐसे आपने कहाँ पढ़ा कि रेडिएशन कारण है? तो बोले, नहीं मैम, सब जगह आ रहा है सोशल मीडिया पे कि रेडिएशन के कारण बर्ड्स खत्म हो रही हैं। तो मैंने कहा, ऐसे नहीं, यू फाइंड आउट द रिसर्च पेपर्स और फिर कारण पढ़िए, देर आर मेनी रिसर्च पेपर ऑन स्पैरोज। तो हमने एक साल सिर्फ यही काम किया कि हमने रिसर्च पेपर्स निकाले और उसका मुख्य कारण खत्म होने का जानने की कोशिश की। तो बच्चों ने कंक्लूजन में लिखा कि गौरैया की नेस्टिंग साइट खत्म हो रही है। क्यों खत्म हो रही है? क्योंकि मॉडर्न आर्किटेक्चर जो है वो गौरैया को कहीं भी अंडे रखने की जगह नहीं दे रहा है। तो जो आज हम मॉडर्न बिल्डिंग बना रहे, जो आज हम अपने घर बना रहे हैं, उन घरों में कहीं भी गौरैया के अंडे रखने की जगह ही नहीं है। जबकि पहले जब हमारे खपड़े के घर होते थे, अर्थन टाइल्स होती थी, तो वहां कई जगह जगह होती थी जहां पर वो अंडे अपने रख पाती थी। गौरैया एक ऐसा जीव है, जब हमने खेती शुरू की वो हमारे साथ चला आया और जंगलों से हमारे साथ आके हमारे घरों में रहने लगा। धीरे धीरे उसकी जो नेस्टिंग की कला थी वो खत्म हो गई। अब वो प्रॉपर नेस्ट नहीं बनाता है, वो कहीं पर भी जहां जगह होती है वहां पर अंडे रख देता है। तो थोड़ी सी घास रखता है और अंडे रख देता है। तो फाइनली ये निकला कि भाई, हमें गौरैया के लिए नेस्ट साइट बनानी पड़ेगी। तो फिर ये हुआ, कैसी नेस्टिंग साइट बनाई जाए? 2021 में और 20 में जब हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किए थे, उस समय कहीं पर भी प्रॉपर स्पैरोज के लिए नेस्टिंग बॉक्स नहीं थे। तो मैंने बच्चों से कहा कि आपको जैसा लग रहा है वैसे बनाइए। तो बच्चों ने इतनी क्रिएटिविटी उसमें दिखाई, मतलब भूसे से घर बनाए, मिट्टी से बनाए कि ठंडा रहेगा, फिर उसमें जो है शू बॉक्स से घर बनाए। तो मैंने उनसे कहा कि जो भी आपने घर बनाया इसको अपने घरों में लगा दीजिए और देखिए गौरैया इसको अडॉप्ट करती है कि नहीं, क्योंकि रहना तो उसी को है। तो हमने देखा कि जो शू बॉक्स थे उसमें गौरैया आके रहने लगी। तो वो पहली बार जब किसी बच्चे ने मुझे बोला कि मैम, वो वेंटिलेटर के ऊपर जो मैंने शू बॉक्स रखा था उसमें गौरैया ने बच्चे दिए, अंडे हैं उसके अंदर, तो वो जो खुशी थी, मतलब आई हैव गॉट गूज बम्स। तो वो मतलब कि यस, दिस इज वर्किंग एक्चुअली। फिर ये हुआ कि ठीक है, तो इस तरह के बॉक्सेस होने चाहिए, और फिर हमने उन बॉक्सेस को बनाना शुरू किया। तो पहली बार जब लकड़ी के बॉक्सेस हमने बनाए, तो हमने रियलाइज किया कि उसके अंदर दूसरी बर्ड्स एंटर कर रही थी। तो हमने देखा कि मैगपाई रॉबिन एंटर कर रही है, ब्राह्मणी स्टर्लिंग एंटर कर रही है, तो कुछ गड़बड़ है। तो देन वी रियलाइज कि होल साइज बहुत बड़ा है, तो हम इसका होल साइज थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। तो हमने होल साइज छोटा किया। देन वी रियलाइज कि उसकी छत के ऊपर कबूतर बैठ जाता है, और कबूतर जो गौरैया है वो शाय बर्ड है, तो कबूतर आके अंडे दे देगा तो वो अंदर आएगी नहीं। तो फिर हमने उसकी जो रूफ है वो स्लैंटिंग कर दी, ताकि उसके ऊपर जो है वो कबूतर ना बैठ पाए। देन वी रियलाइज कि प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, फिर हमने उसके दोनों तरफ होल कर दिए। देन वी रियलाइज कि अंडे कई बार फूट जाते हैं, उसमें चींटियां लग जाती है, तो फिर हमें रियलाइज हुआ कि नीचे भी होल होना चाहिए ताकि वो पानी नीचे से निकल जाए। तो इस तरह से कंटिन्यूअसली 4 years कंटिन्यूअस जब मेरे बच्चों ने वर्क किया, तो हमने इंडिया के फर्स्ट साइंटिफिकली प्रूवन स्पैरो बॉक्सेस बनाए। आप कोई भी नेस्ट बॉक्स लेने जाएंगे उसमें हमेशा स्टिक होती है, पर हमने एक्सपेरिमेंट करते समय ऑब्जर्व किया, यदि घोंसलों में आगे स्टिक लगी होती है तो उसमें दूसरी बर्ड आकर बैठती है। बच्चे जो होते हैं वो सोचते हैं माँ आई है, और वो बाहर फेस निकालते हैं और वो खा जाती है, तो इसलिए हमने इससे स्टिक हटा दी। तो इस तरह से कंटिन्यूअसली, दिस इज व्हाट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी।
1: बिल्कुल।
0: तो मेरे बच्चों ने 4 साल में प्रॉपर नेस्ट डेवलप किए। और अगर हम अचीवमेंट की बात करें, तो अचीवमेंट ये है मैम कि आज इसको हम डिफरेंट स्टेट्स में डिलीवर कर रहे हैं, इसकी बहुत अच्छी डिमांड है। हमने इसको मुंबई भेजा, जयपुर भेजा, पुणे भेजा, कई जगह से डिमांड आती है, नोएडा भी भेजा, और नोएडा में 1.5 साल के बाद अभी हमें पता चला कि गौरैया आने लगी। तो ये जो रिजल्ट्स हैं, फिर इस प्रोजेक्ट को अभी हमने जून में 42 कंट्रीज से कंजर्वेशनिस्ट आए थे, एशिया कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस जो काठमांडू में हुई है नेपाल में, वहां पर हमने इसको प्रेजेंट किया। 42 कंट्रीज से जो लोग आए थे, जो प्रॉपर साइंटिस्ट है, कंजर्वेशन का काम किया हुआ है, उन्होंने जब इस वर्क को देखा तो दे सेड कि इस तरह का वर्क अगर हम करते हैं तो इसमें बहुत सारा फंड चाहिए होता है एंड लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड. हाउ इज इट पॉसिबल दैट द स्टूडेंट्स ऑफ 9th एंड 11th क्लास आर डूइंग दिस टाइप ऑफ वर्क? सो वी गॉट लॉट्स ऑफ एप्रिसिएशन फ्रॉम देयर.
1: सो बहुत ही मतलब कहें कि

0: आपने जो अचीव किया वो एक कम लागत पे भी किया, और इसमें जो इन्वॉल्वमेंट आप बता रही हैं बच्चों की, क्या बच्चों के द्वारा और कम्युनिटी लेवल पर भी इसका इंटरेस्ट जागा लोगों का?
1: जब हमने परफेक्ट मॉडल्स डेवलप कर लिए तो हमें ये रियलाइज हुआ वी नीड फंड फॉर इट सो दैट वी कैन ऑल्सो इलैबोरेट दिस वर्क. तो हमने फिर मध्य प्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी को अप्रोच किया, और सबसे अच्छी बात है कि बच्चों ने प्रेजेंट किया उनके सामने, और हमने उनसे कहा कि बिकॉज गौरैया जो है वो भी वाइल्ड लाइफ के अंतर्गत आती है, तो इसलिए वी नीड फंड्स फॉर इट. एंड लकली वी गॉट 1 लाख रुपीज फंड फ्रॉम देम. एंड जब हमने जो बॉक्सेस बनाए उस 1 लाख रुपीज से, वो हमने हमारे अवधपुरी के पूरे टेम्पल्स, गुरुद्वारे और जितनी रिलीजियस प्लेसेस थी वहां पर लगाए. तो वहां पर लगाने का एक बेनिफिट ये था कि जो बर्ड है उसको आसानी से दाना मिल जाता है, पानी मिल जाता है, और अगर नेस्टिंग साइट भी मिल जाती है तो उनका नंबर आसानी से इंक्रीज हो सकता है. और उसके बाद मेरे बच्चे इसको कंटिन्यूसली अब ऑब्जर्व करते हैं, तो दे यूज टू से कि मैम अभी उसमें थर्ड टाइम नेस्टिंग हो रही है और इसमें इतने अंडे हैं, इतने बच्चे उड़ गए. तो दिस होल ऑब्जर्वेशन दे आर राइटिंग एंड वी हैव पब्लिश्ड आवर वर्क नेशनली एज वेल एज इंटरनेशनली.
0: सो एवरेज एडॉप्शन रेट क्या है, और कोई जो हमारे श्रोता अगर वो भी प्रेरित होकर पहल करना चाहे, कैसे वो बना सकते हैं और वो भी दे सकते हैं ये घर एक आशियाना गौरैया को?
1: तो हमारा जो मिशन है वो है कि हर घर गौरैया घर होना चाहिए, क्योंकि आप जहां आज अपने घर बना रहे हैं वो जीवों के ही थे. तो बेसिकली आज हम कहते हैं ना कि लेपर्ड हमारे घरों में घुस गया, टाइगर हमारे घरों में घुस गया, ये उल्लू हमारे घरों में आ रहे, हमारे घरों में नहीं आ रहे, हम उनके घरों में चले गए हैं. तो इसलिए उनका भी आशियाना बना रहे ये जरूरी है. तो जब हम इसके डिजाइन की बात करते हैं, जो होल साइज है वो हमने 1.5 से 2 इंच रखा है. इससे बड़ा होल साइज करने पर बड़ी बर्ड्स इसके अंदर जाने लगती है. दूसरा, प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए हमने होल बनाए हैं ताकि हवा जो है प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके. इसमें नीचे होल्स हैं ताकि कभी अगर पानी इकट्ठा हो तो वो पानी निकल सके. इसका जो रूफ है वो हमने स्लैंटिंग बनाया है ताकि कोई पिजन्स वगैरह इसके ऊपर ना बैठ पाए. और कोशिश ये करनी है कि इसको विंडो या वेंटिलेटर के पास लगाएं, या जहां पर आपका एसी लगा हुआ है. दूसरी, हमें ये कोशिश करनी है कि जहां पर भी आप इसको लगाएं उसके ऊपर रूफ होनी चाहिए ताकि पानी इसके ऊपर ना गिरे. और दूसरा, आप जो गौरैया है वो हमेशा वेंटिलेटर से एंटर करने की कोशिश करती है. आजकल हमने अपने रोशनदान में भी जाली लगा दी है, सब चीजों में जाली लगी है, तो गौरैया अंदर आ ही नहीं सकती है. तो इसके लिए सबसे अच्छी जगह वो है. दूसरा, इस पर हम किसी भी तरह का पेंट यूज नहीं करते हैं. ऑर्गेनाइजेशन से या रोड पर जो बॉक्सेस मिलते हैं वो बहुत कलरफुल होते हैं. हम भी कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को देते हैं, इसका जो एडॉप्शन रेट है वो 86% है मैम. तो हमने कई बार देखा कि जब हमने इसको दिया तो लोगों ने इसका होल साइज बड़ा कर दिया, ये सोच के कि इतनी छोटे में कैसे एंटर करेगी. और दूसरा, कई बार लोग इसको येलो ऑरेंज कलर का पेंट कर देते हैं, इसमें ग्लासेस लगा देते हैं, क्योंकि ह्यूमंस लाइक एवरीथिंग टू बी ब्यूटीफुल, उनको हर चीज ऐसा सुंदर चाहिए. जबकि कोई भी बर्ड्स मैम कभी ये नहीं चाहती कि उनका
0: ये ज्यादा नेचुरल हैबिटेट से
1: कि उनका नेस्टिंग साइट कहाँ है ये किसी को भी पता चले. तो अक्सर इसको छुपा कर लगाना चाहिए, और हम इसका कलर ऐसा रखते हैं मुल्तानी मिट्टी या गेरू से, ताकि ये कैमोफ्लाज कर जाए वॉल के साथ आसानी से. तो ये दिखना नहीं चाहिए, कोई बर्ड ये नहीं चाहती कि उसका नेस्टिंग साइट किसी को भी पता हो. दूसरा, इसमें दाना पानी नहीं रखना है. इसमें कहीं पर भी अगर आप पानी के लिए बनाते हैं, बैठने के लिए बनाते हैं या दाने के लिए बनाते हैं, तो इसमें दूसरे जो बर्ड्स हैं वो आकर बैठते हैं और उसके वो प्रेडेटर्स हो सकते हैं, उसको चिक्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं.
0: जी, तो बहुत ही आपका सराहनीय ये प्रोजेक्ट है, एंड आई एम श्योर कि बहुत लोगों को प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि गौरैया तो हमारे जीवन का बहुत एक इंपॉर्टेंट, उसको कहा ही कॉमन हाउस स्पैरो जाता है.
1: आई वुड लाइक टू ऐड जस्ट वन थिंग इन दिस. क्वेश्चन ये आता है कि क्यों हमें लगा कि गौरैया को बचाना जरूरी है, गौरैया हमारे लिए क्यों जरूरी है, ये हमें सोचना बहुत जरूरी है. तो गौरैया जो है मैम ये ह्यूमंस के साथ रहती है. बहुत कम ऐसी बर्ड्स हैं जो ह्यूमन कम्युनिटी के साथ रहती है, गौरैया उनमें से एक है. और ये क्या करती है कि जब इसके बच्चे अंडा फोड़कर बाहर आते हैं तो उनको हाई प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, और उस हाई प्रोटीन के लिए ये हमारे बगीचे में जितने भी लार्वाज हैं, जो हमारी नालियों में है, जो हमारे पौधों में है, जो हमारे गमलों में है, उससे लार्वा को चुन चुन के अपने बच्चों को खिलाती है. और ये वही लार्वाज हैं जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरसेस होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, जो हमारी फूड चेन में एंटर करते हैं. तो यानी यदि आप एक छोटा सा गौरैया घर नहीं लगाते हैं तो आप हर महीने किसी न किसी रोग या बीमारी की वजह से डॉक्टर को विजिट करते हैं. क्योंकि जो कम्युनिकेशन, जो आपके डिजीज हैं जो आसानी से फैल सकते हैं, उन डिजीजेस को रोकने का एक ही तरीका है कि जो आपके पास लार्वाज हैं आसपास, जो आपकी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको आप खत्म करें. तो खत्म करने का ये नेचुरल तरीका है, ये बायो पेस्टिसाइड्स हैं, बायो इंसेक्टिसाइड्स हैं, और दूसरा तरीका है आप केमिकल्स डालेंगे.
0: तो आप जो कह रही हैं कि इतने सारे आपने छात्रों को इसमें इन्वॉल्व किया है, जो खुद उन्होंने अपने आप रिसर्च की और बहुत एक कहें कि एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रही उनकी, तो उनके जो आसपास के जो उनका घर वाले हैं या उनके फ्रेंड्स हैं, उनमें भी वो जागरूकता फिर एक तरह से एक डोमिनो इफेक्ट होता है.
1: यस यस ऑफ कोर्स मैम. जब मैं किसी बच्चे को कुछ सिखाती हूँ तो वो बच्चे से अभिभावक और अभिभावक से कम्युनिटी में जाती है. तो जब ये स्पैरो बॉक्सेस मेरे बच्चे घर में बनाते हैं या लगाते हैं तो सबकी नजर जाती है, और जब उसमें चिड़िया आती है या अंडे देती है तो सिर्फ वो नहीं देख रहे, इवन उनके दादा दादी बताते हैं कि हमारे यहाँ पहले बहुत आया करती थी। तो इस तरह से एक पूरा घर, एक पूरा समुदाय, एक पूरी कम्युनिटी धीरे धीरे उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। तो हमने एक दिया, बाद में वो 10 बनाते हैं, तो अब उनको ये पता है कि मेरे घर में अगर सोफा का कुछ लकड़ी बच गई है या डोर बनाते समय कुछ बच गया है तो उसको काट कर हम स्पैरो हाउस बना सकते हैं।
0: तो ये लकड़ी से ही बनता है या गत्ते से भी या किसी और मटेरियल से भी?
1: अगर आपको सिर्फ एक सीजन के लिए लगाना है तो आप गत्ते से भी बनाकर लगा सकते हैं। स्पैरो आसानी से आ जाती है अगर आप एक नॉर्मल शू बॉक्स लेते हैं और उसमें होल कर देते हैं। जो सबसे बड़ा डर है मैम वो ये है कि उसमें पानी एब्जॉर्ब करेगा और वो फूल जाएगा, तो उसमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, कई बार चींटियां आ जाती हैं जो बच्चों को नुकसान पहुंचाती हैं, कई बार वो वीक हो जाता है और टूट जाता है, गिर जाता है, कई बार हवा से गिर जाता है। तो इसलिए हम एक सेफ नेस्टिंग जो है उनको प्रोवाइड करना चाहते हैं।
0: और एक और जो आपकी पहल जिसके बारे में हम जानना चाहेंगे, जो पेड़ों को लेकर आपने जो जागरूकता बच्चों में जो QR कोड सिस्टम आपने इंट्रोड्यूस किया है, थोड़ा सा ये बताएं।
1: मैम सेम आई वुड लाइक टू मेंशन, कोरोना के बाद जब बच्चे मेरे पास आए, कोरोना में हम लोगों ने ही सभी बच्चों को इंसिस्ट किया कि स्मार्टफोन्स खरीदिए, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करिए। तो ऑनलाइन क्लासेस लगभग 1.5 साल चली और उसका रिजल्ट ये हुआ कि मेरे बच्चों को सोशल मीडिया की आदत पड़ गई। तो जब पेरेंट्स मेरे पास आए तो उन्होंने बोला कि मैम हमारे बच्चे जो हैं वो मोबाइल ही हाथ से नहीं छोड़ते हैं। तो मुझे ये लगा कि वो टेक्नोलॉजी को जानते हैं, अब उस टेक्नोलॉजी का कैसे यूज किया जा सकता है दैट आई हैव टू सी, बिकॉज उनके हाथ से मोबाइल छुड़ाना इज नॉट द सोल्यूशन, बट मोबाइल का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सकता है, ये एक समस्या थी मेरे साथ। मैं एज अ क्लास टीचर आई वॉज फेसिंग दिस। एंड दूसरी तरफ मेरे बच्चों को मैं बायोडाइवर्सिटी पढ़ा रही थी तो मैंने देखा कि मेरे ही स्कूल में जो लगे हुए पेड़ है बच्चे उनके भी नाम नहीं बता पा रहे हैं, मतलब वो सिर्फ कुछ पेड़ों के नाम जानते हैं, वो पीपल और बरगद में अंतर तक नहीं जानते हैं। तो मुझे लगा कि अगर वो आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे तो बहुत डिफिकल्ट है। तो मैंने एक दिन 9th क्लास में बच्चों से पूछा कि क्या हम पेड़ों को कैसे पहचान सकते हैं, तो एक बच्चे ने कहा कि मैम जैसे हम अपना नाम बताते हैं यदि वो भी अपना नाम बता दें खुद ही तो हम पहचानने लगेंगे। तो मैंने कहा इसके लिए क्या किया जाए, तो देयर वाज अ स्टूडेंट चाहत मिश्रा इन द 9th क्लास, सो ही सेड कि मैम QR लगा देते। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई हर्ड कि QR लगा देते हैं, कैसे QR लगाओगे? तो बोले मैम आप देखिए ना आपके लैपटॉप में QR लगा है, ये पेन में लगा हुआ है, हर चीज में बुक्स में QR लगे हुए हैं, पेड़ों पे QR क्यों नहीं लगा सकते, 2021 की बात है ये। तो मैंने कहा लगाते हैं फिर, तो चलिए आप लोग QR बनाइए, फिर बना लोगे? तो दे सेड यस। बच्चे कभी ना नहीं कहते मैम, कुछ भी कहिए तो दे यूज्ड टू, दे लाइक हां कर लेंगे ना मैम, दे नेवर से कि नहीं होगा, इवन आई वाज ब्लैंक की कैसे होगा। तो अगले दिन 5 QR कोड बन के पेड़ों पे लग गए मैम, और हमने उन सबको स्कैन किया, देयर वर ग्लिचेस, उनमें से एक भी चल नहीं रहा था लेकिन QR बन गए थे। तो उससे एक होप डेवलप हुआ कि हम बना सकते हैं। फिर बहुत सर्च किया तो इंडिया में कहीं पर भी नहीं मिल रहा था जिन्होंने ये काम पहले किया हो, इंडिया के बाहर एक दो जगह मिला पर वो जिस तरीके से लगा रहे थे वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। तो फिर हमने कहा कि ठीक है QR बनाते हैं। तो QR बनाने के लिए सबसे पहले आपको बॉटनिकल सर्वे करना पड़ेगा कि आपके स्कूल में कौन से पेड़ हैं, कितने प्रकार के हैं और कितने नंबर में हैं। तो ये एक बॉटनिकल सर्वे शुरू हुआ, तो हमने फाइंड आउट किया कि हमारे स्कूल में टोटल इतने पेड़ हैं और इतने प्रकार के हैं। तो शुरू किया कि इस पेड़ का QR बनाना है। अब ये काम जो है वो काफी डेप्थ में जा रहा था और इतना टाइम आप स्कूल में दे नहीं सकते क्योंकि स्कूल में बच्चों के फिक्स पीरियड होते हैं, क्योंकि जूम मीटिंग हम पहले सिखा चुके थे बच्चों को, तो हमने उसको यूटिलाइज किया और हम डेली 8 से 9:30 नाइट में बच्चों के साथ मिलने लगे। ऑलमोस्ट 50-55 स्टूडेंट्स 9th के सभी सेक्शंस के मिले,
0: बच्चों में बहुत उत्साह था।
1: सो वो बच्चे कनेक्ट होते थे और हम डिस्कस करते थे कि क्या क्या लिखना चाहिए, QR में क्या क्या होना चाहिए। तो फाइनली 1.5 साल की मेहनत के बाद हमने प्रॉपर QR बनाया जिसमें इंग्लिश नेम, उसका हिंदी नेम, साइंटिफिक नेम होता था, और हम ये चाहते थे कि आप जिस जगह रहते हैं उस भाषा का भी विवरण उसमें होना चाहिए क्योंकि कम्युनिटी अगर स्कैन करे तो उसको पता हो। तो हम सिर्फ इंग्लिश नहीं चाहते थे, हम उसको हिंदी में भी चाहते थे, बाद में कई लैंग्वेजेस में बने ये। तो हमने उसको बनाया और उसमें इन्फॉर्मेशन दी कि ये पेड़ आपको कितना ऑक्सीजन देता है, इसका मेडिकल यूज क्या है, और इसके अलावा ये सब तो हमें नेट से मिल रहा था लेकिन उसके बाद ये आया कि हमारी कम्युनिटी में इसका कैसे यूज करते हैं। तो मेरे पास जो बच्चे आते हैं वो गाँव से आते हैं तो वो कई तरह से, जैसे अमलतास की फली है वो अपने गाय भैंस को खिलाते हैं डाइजेशन के लिए, और आज इसको हम पढ़ रहे हैं रिसर्च में कि अमलतास की फली इस तरह से यूज हो सकती है। कदम का जो फूल होता है हम कभी नहीं जानते थे उसके फल को खाया जाता है, पर मेरे बच्चे ने बताया कि मैम इसकी तो हम चटनी बना के खाते हैं, तो हमने उसमें विधि लिखी अगर आपको इसको खाना है तो चटनी कैसे बनाई जाए। तो जब आप इसको स्कैन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस फ्रूट की चटनी कैसे बनाई जाती है। फिर हमने साइंटिफिकली पढ़ा तो पता चला कि अगर अक्टूबर नवंबर में जब ये फल आता है यदि आप इसे खा लेते हैं तो दिसंबर जनवरी में आपको सर्दी खांसी बुखार कुछ नहीं होगा।
0: कोई भी जो विजिटर है जो भी वहां से गुजर रहा है स्कैन करिए और आपको
1: यस यू डोंट नीड एनी ऐप फॉर इट, सिंपली विद द QR स्कैनिंग आप उसको स्कैन कर सकते हैं। फिर इस प्रोजेक्ट के बारे में हमारे वहाँ कमिश्नर मैम थी तन्वी हुड्डा, शी केम टू नो अबाउट इट, तो शी कॉल्ड अस कि कैन वी डू इट इन ऑल द पार्क्स ऑफ आवर। हर बच्चा जो है जो उस पार्क के पास रहता था वो वहां जाता था सुबह।

0: वॉक करने अपने पेरेंट्स के साथ, वहाँ के जो लोग थे उनसे पूछता था कि इस पेड़ का नाम क्या है, और वो लिखता था कि ये पेड़ इतने हैं, ये पेड़ इतने हैं, और फिर हमने QR कोड्स लगाए। मोर देन 4,000-5,000 ट्रीज अभी तक हम QR कोडिंग कर चुके हैं। फिर हमने पन्ना टाइगर रिजर्व में लगाए, फिर हमने मुकुंदपुर में लगाए, ऐसे कई टाइगर रिजर्व में हमने QR कोडिंग की, एंड फिर पुणे में किया हमने सिखाया इसको, बैंगलोर में सिखाया। तो वो एक छोटे से जिले से जो काम शुरू हुआ था वो पूरे इंडिया में फैल गया, और फाइनली मिशन लाइफ के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने इस प्रोजेक्ट को लिया, और लास्ट मार्च में सभी इंडिया के स्कूल्स में इस प्रोजेक्ट को मस्ट कर दिया गया। अब सभी स्टेट ICSE और CBSE बोर्ड के स्कूल्स में ये हो रहा है।
1: बहुत ही मतलब एक इनोवेटिव पहल है जिससे एक इंटरेस्ट डेवलप होता है बच्चों का। और जो दूरगामी फायदे क्या हैं, क्या आपको पता लगता है कि कितनी बायोडायवर्सिटी है, नहीं है, किस तरह के सजेशंस या पॉजिटिव आउटकम्स क्या आती हैं?
0: अगर हम पॉजिटिव आउटकम्स की बात करें तो यहाँ पे दो चीजें मैं देखती हूँ। एक कम्युनिटी की तरफ से अगर हम देखें तो जब मेरे बच्चों ने ये डेटा निकाला, मैम बॉटनिकल सर्वे किया, तो जब हमारे पास रिजल्ट आया कि किस पार्क में कितने पेड़ लगे हैं, और उसको जब हमने एनालाइज किया, दिस इज व्हाट इज रिसर्च, तो हमने देखा कि जो हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रीज है हमारे एरिया में वो रॉयल पाम था। दिस इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि मेरा एरिया जेरोफाइटिक एरिया है नहीं, तो ये रॉयल पाम का नंबर सबसे ज्यादा कैसे हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि प्लांटेशन में आप रॉयल पाम सेलेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब आप महुआ काटते हैं, शीशम काटते हैं, आम, बरगद, नीम, महानीम, कहां गए सब? ये सब कहां गए? जंगल जलेबी कहां गया? आपने इन सबको काट के और प्लांटेशन में क्या लगा दिया? रॉयल पाम। क्यों लगा दिया रॉयल पाम? क्योंकि उसकी मेंटेनेंस कम है। तो इस तरह से क्या हुआ कि मेरे नेटिव पेड़ सारे गायब हो गए, और अगर नेटिव पेड़ गायब हो जाएंगे तो पूरी बायोडायवर्सिटी खत्म हो जाएगी। उस पेड़ से जो मेरे इंसेक्ट्स रिलेटेड है, जो मेरे बर्ड्स रिलेटेड है, जो मेरी बटरफ्लाइज रिलेटेड है, एक पेड़ के खत्म होते ही वो सब खत्म हो जाएगा, और धीरे धीरे उस एरिया की पूरी बायोडायवर्सिटी खत्म हो जा रही है, हमें पता ही नहीं चल रहा है। तो ये बहुत जरूरी है हम ये सोचे कि यदि हम कोई पेड़ काट रहे हैं, यदि हम शीशम काट रहे हैं, महुआ काट रहे हैं, बरगद काट रहे हैं, हम लगा क्या रहे हैं? क्या हम वहां उस एरिया के नेटिव पेड़ लगा रहे हैं? सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, यदि आप QR कोड या PBL का इंपैक्ट की बात करें कि इसके रिजल्ट्स क्या हैं, तो आज से 4-5 साल पहले एक स्टूडेंट था युवराज, वो मेरे साथ QR कोडिंग करता था। उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं थी, उसके फादर नहीं थे, तो कई बार ऐसा होता था कि युवराज से जब बात करो तो वो रोने लगता था अचानक से। बाहर से जब लोगों से इंटरेक्ट करके आता था तो कहता था मैम वो तो ऐसा कह रहे हैं, और बहुत जल्दी हार जाता था। पर वो प्रोजेक्ट करते समय मैंने उसमें देखा कि कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, और फिर जब वो कमिश्नर सर से मिल रहा है, कलेक्टर सर से मिल रहा है, जब उसकी फोटो न्यूज़पेपर में आ रही है, तो इससे कॉन्फिडेंस उसमें धीरे धीरे डेवलप हुआ। और फिर उस बच्चे को क्योंकि QR कोड बनाना था तो उसको टैब मिल रहा था, उसको मेरा लैपटॉप मिल रहा था, तो उसको धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट डेवलप होने लगा। और अभी जुलाई में मुझे पता चला कि उस बच्चे ने IIT रुड़की ज्वाइन किया है।
1: कितना मतलब एक एक्सपैंड होता है आपका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है जो छात्रों का। और कोई ऐसा एग्जांपल आप बता सकें कि जो उन्होंने ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के दौरान सीखा उसको आगे जाके उनको उसकी हेल्प हुई हो?
0: एक बहुत पुराना प्रोजेक्ट है मैम, जब मैंने टीचिंग स्टार्ट ही किया था तो आई यूज टू गिव दिस प्रोजेक्ट टू माय स्टूडेंट्स। तो 9th क्लास में देयर वाज स्टूडेंट, बच्चों को मैंने एक प्रोजेक्ट दिया था कि आपको अपनी सिटी में जो बर्ड्स मिलती हैं उन बर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है, और उन बर्ड्स को आइडेंटिफाई करके आपको बताना है कि उनका नाम क्या है, उनकी फोटोग्राफ्स आपको लेनी है। तो उस बच्चे ने वो प्रोजेक्ट किया, एंड देन कुछ साल पहले दिल्ली से मुझे एक कॉल आया, और वो बच्चा मुझे कॉल करके बोलता है कि मैम मैं विनायक बोल रहा हूँ, मैम आपने मुझे 9th में साइंस पढ़ाई थी, तो he said कि आज मैं UPSC का इंटरव्यू देके आया हूँ। तो I congratulated him and then he was like कि मैम आपको पता है आपने 9th में मुझे एक प्रोजेक्ट दिया था जो बर्ड्स के ऊपर, तो आज मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आपने कोई भी ऐसा काम जो एनवायरमेंट से रिलेटेड है प्रैक्टिकली किया है? तो बोलता मैम वो 9th में जो मैंने बर्ड्स का आइडेंटिफिकेशन किया था, मैं सुबह कैमरा लेके जाता था, बर्ड्स की फोटो खींचता था, गूगल से मैच करता था, और कितना डिफिकल्ट होता था उस काम को करना, वो सारा मैंने आज डिस्क्राइब किया। एंड देन आफ्टर फ्यू डेज आई सॉ इन द न्यूज़पेपर दैट इज UPSC ranking was 47.
1: Wow.
0: So that is an achievement.
1: Yes, yes. आपको लगता है कि ये जो एक्सपीरियंस इनको मिलता है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में, जैसे आप कह रही हैं कि वो रिसर्च जो स्टेज है उसमें भी इन्वॉल्व होते हैं, और जिस तरह से धीरे धीरे डायनामिक चेंजेस होते हैं प्रोजेक्ट में, उसको एक सक्सेस तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह से इन्वॉल्व रहते हैं बच्चे, तो आपको लगता है कि पूरा उनका जो माइंडसेट है फॉर लाइफ, ता उम्र के लिए वो एक जो कंजर्वेशन है, हमारी प्रकृति के प्रति प्रेम है, उसके संरक्षण के प्रति जो जागरूकता है, वो आपको लगता है कि उन्हें हमेशा वो रहेगी, उनका पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी बन जाती है?
0: जो 40 स्टूडेंट्स या 50 स्टूडेंट मेरी क्लास में आज बैठते हैं, मेरा ये मानना है कि कल समाज वही बनाएंगे। आज जो समाज हम देख रहे हैं, यदि हम उसमें कुछ बुराइयां देख रहे हैं या कमियां देख रहे हैं, ये समाज कभी किसी दिन किसी टीचर की क्लास में बैठा होगा, और आज जो मेरी क्लास में बैठा है ये आने वाली पीढ़ी है, ये कल समाज की नींव रखेगी। जरूरी नहीं है कि मेरे क्लास में जितने विद्यार्थी बैठे हैं वो सभी के सभी डॉक्टर्स या इंजीनियर्स बन जाएं। तो यहाँ पर मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मैं अपने विद्यार्थियों को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बना। मैं उन्हें इस चीज

0: के लिए समझा पाऊं, सेंसिटाइज कर पाऊं कि प्रकृति हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितना आप प्रकृति से लेते हैं कुछ तो उसके बदले में उसे दीजिए। हमें प्रकृति को बचाने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपने आप को बचाने की आवश्यकता है। तो ये जो सेंसिटाइजेशन है, यदि हम इस कच्ची उम्र में कर पाते हैं तो वो जीवन पर्यंत उनके साथ जाता है। जैसे मेरे एक विद्यार्थी है मैम, वो इंजीनियर है, तो वो बहुत पहले पढ़ाया था मैम, 2010-11 में पढ़ाया था, सबसे पहला बैच था मेरा। तो उस बच्चे को जब हम क्या करते थे, नेस्टिंग साइट ढूंढते थे कि चलो आज देखते हैं कहाँ कहाँ नेस्टिंग साइट्स हैं गांव में, जाते थे मेरे साथ और नदी के किनारे नेस्टिंग साइट ढूंढते थे। तो बड़ा मजा आता था कि ओपन बिल की नेस्टिंग साइट है, ये ईग्रेट्स की नेस्टिंग साइट है। वो वहां पढ़ाया और खत्म हो गया और बच्चे ने मैथ्स ले लिया। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले मुझे उसका मैसेज आता है कि मैम मैं यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी की लाइन डाल रहा था तो मैंने वो ना डायरेक्शन चेंज करा दिया मैम। आई सेड क्यों, क्या हुआ? तो ही वाज लाइक मैम वहां पे तो नेस्टिंग साइट है, तो ईग्रेट्स की और ओपन बिल्स की नेस्टिंग साइट है, तो वो पेड़ नहीं काटना मैम, बिकॉज दे नो कि ऐसी कई माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो कई हजार किलोमीटर उड़कर बार बार इंडिया आती है, और जब वो इंडिया आती है तो वो उसी पेड़ को ढूंढती है, उसी एरिया को ढूंढती है। तो इन एरियाज को रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है। यदि वो पेड़ वहां पे नहीं है और बिल्डिंग बन गई है, क्योंकि वो उसका ब्रीडिंग सीजन है, वो ब्रीडिंग सीजन मिस आउट हो जाएगा। तो इसलिए नेस्टिंग साइट्स को पहचानना बहुत जरूरी है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा बच्चा किस फील्ड में है, लेकिन नेचर से कनेक्ट होना तो सभी के लिए जरूरी है मैम।
1: बिल्कुल जरूरी है, हमारे खुद के भविष्य के लिए भी। सो डॉक्टर शुक्ला, जैसा आप कह रही हैं कि हर एक जो नागरिक है वो आगे चलकर किसी भी फील्ड में जाए, लेकिन जो पर्यावरण का संरक्षण है वो तो हम सभी के भविष्य के लिए, हमारे जो आने वाली पीढ़ियां उनके भविष्य के लिए भी बहुत ही जरूरी है, जैसा हम देख ही रहे हैं। एक और जो आपकी पहल है बीजों को लेकर, सीड बिन्स को लेकर, उसके बारे में आप हमें बता सकती हैं, उसका क्या है ये पहल और उसका क्या उद्देश्य है?
0: मैम इसकी कहानी भी इसी तरह से शुरू हुई थी कि एक बार मैं थर्ड फ्लोर पे खड़ी हुई थी और मैंने देखा कि नीचे से जो गार्बेज व्हीकल थी वो निकल रही थी और लोग क्या कर रहे थे, आम के बीज को काली पन्नी में बांधकर और उसमें डाल रहे थे। तो मैंने अपने विद्यार्थियों को यही समझाया कि बीज कचरा नहीं है, क्योंकि बीज को जो आप कचरे की गाड़ी में डाल रहे हैं वो कचरा है ही नहीं। दूसरा, बीज का जो मौलिक अधिकार है उसको मिट्टी पानी मिल सके, आपने वो भी खत्म कर दिया। तो और वो बीज का एक पोटेंशियल है कि हर बीज जो है या तो 40 दिन में या 1.5 महीने में वो उगाता है, अगर उतने दिन में उसको मिट्टी पानी नहीं मिला तो बीज खत्म। इस तरह से लाखों बीज हम भारत में हर साल बर्बाद कर। तो इस यहां से ये मुहिम शुरू हुआ कि हम जो बीज है उसको गार्बेज व्हीकल में नहीं डालेंगे। तो फिर इसको लेकर हमारी नगर निगम कमिश्नर मैम से बात हुई कि मैम क्या हम बीज को अलग से इकट्ठा कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने गाड़ियों में थैलियां डलवाई और पूरे एरिया में लोगों से रिक्वेस्ट किया कि बीजों को अलग से दीजिए, और इन बीजों को हमने बोरियों में कलेक्ट किया। तो जब ये काम कौन कर सकता था, मेरे विद्यार्थी पूरे शहर में फैले होते हैं तो वो हर जगह अपने अपने एरिया में बता रहे थे, और इस तरह से हमने बीजों को कलेक्ट किया। और यहाँ पर ये हुआ कि स्कूल में कैसे कलेक्ट करेंगे, तो हमने स्कूल में डस्टबिन के साथ सीड बिन्स रखे। तो मेरे विद्यार्थी जो सीताफल खाते थे वो सीताफल के बीज लाके उसमें अलग से डालते थे, जो आम खाते थे वो आम लाके अलग से डालते थे। तो यहाँ से सीड बिन्स का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। और इस मुहिम के चलते हम नगर निगम के साथ मिलकर आम के उस साल लगभग 6,000 बीज और सीताफल के लगभग 10,000 बीज बचा पाए थे, और वो 6,000 में से 2,500 पेड़ हमने डेवलप किए थे।
1: बहुत ही मतलब एक नेचुरल रिसोर्स है देखा जाए तो। ये एक और जो आपका कॉन्सेप्ट है प्लांट्स में इमोशन है, ये क्या तथ्य है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं और इसका क्या फायदा है?
0: एक बार क्लास में ही पढ़ाते हुए मैंने जगदीश चंद बसु जी के बारे में जब अपने विद्यार्थियों को बताया तो मैंने कहा था कि वो कहते हैं कि उनमें फीलिंग्स होती हैं, उनमें भावनाएं होती हैं, वो फील करते हैं। तो मेरा एक बच्चा खड़ा होकर कहता है कि मैम सच में फील करते हैं क्या, क्या वो हमारी बात समझते हैं? तो मैंने कहा करके देखते हैं। तो विद्यार्थी बड़े एक्साइटेड होते हैं, यस मैम कर सकते हैं क्या, मैंने कहा करते हैं। तो हम दो पौधे लाए और दोनों पौधे जो है वो बराबर साइज के थे, एक जैसी मिट्टी थी, एक जैसे गमले थे, एक जैसी सूरज की रोशनी मिल रही थी, और हम नाप कर दोनों में पानी डालते थे, बराबर खाद डालते थे। बस एक डिफरेंस जो था, हमने पांच बच्चों का एक ग्रुप बनाया जो पेड़ों से बात करता था। तो एक ग्रुप जो है वो उस पेड़ को ग्रेटिट्यूड शो करता था, अप्रिशिएट करता था, और जो दूसरा ग्रुप है वो थोड़ा क्रिटिसाइज करता था। okay. तो उसकी जो लैंग्वेज होती थी वो रफ होती थी और क्रिटिसाइजिंग होती थी। तो मैंने इनसे कहा कि आप बात करिए इनसे, लेट्स सी कि कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो जब बच्चों ने बात किया, एक महीने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट थे, तो जिससे हम नेगेटिवली बात कर रहे थे उसकी ग्रोथ ज्यादा थी। तो मुझे लगा कि शायद हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, कुछ तो है जो हम गलत कर रहे हैं। तो फिर दे सेड कि नहीं मैम ऐसा तो नहीं हो रहा है। मैंने कहा लेट्स कंटिन्यू विद द प्रोजेक्ट, अभी रोकते नहीं है इसको। हमने अगले महीने फिर उस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू किया। तो मैम इसकी जो ग्रोथ थी जिससे हम नेगेटिवली बात कर रहे थे उसकी ग्रोथ थोड़ी सी रुक गई, और इसमें नई पत्तियां निकलने लगी। तो हम नोट करते थे कि इसमें नई लीफ आ रही है, स्केल से नापते थे कि कितनी बड़ी हो गई। 3 महीने आते आते मैम जो पौधा जिसको क्रिटिसाइज करते थे वो मर गया और जो दूसरा वाला पौधा था वो हरा था। तो मतलब अब कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो जिन बच्चों ने ये प्रोजेक्ट किया, जब उन्होंने पीपीटी प्रेजेंटेशन इस प्रोजेक्ट का दिया, तो वो बच्चे जितनी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे उतने अच्छे से तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। तो अब मेरे बच्चे सुबह आते हैं तो पेड़ों से हेलो करते हैं, मैं खुद हेलो करती हूँ, बात करती हूँ।
1: तो बहुत ही कहें कि दूरगामी इसके प्रभाव है, और लगता है कि ये विन विन सिचुएशन है, एंड बच्चों के लिए भी।

0: ही उनकी जो ऑलराउंड डेवलपमेंट है उसमें आपको लगता है कि इसका बहुत अहम भूमिका है?
1: यस मैम, हमने एक और मूवमेंट शुरू किया है जिसमें हम बच्चों को पेड़ों को हग करने के लिए कहते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज हग अ ट्री मूवमेंट। तो जब वो पेड़ों को हग करते हैं, देयर इज अ साइंटिफिक रिपोर्ट जो ये कहती है कि अगर आप सिर्फ 28 सेकंड्स तक अगर किसी पेड़ को हग करते हैं तो आपके अंदर एक ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, और ये वही हार्मोन है जो मदर को हग करने से रिलीज होता है। और मैंने बच्चों के फेस पे एक्सप्रेशन चेंज होते हुए देखे हैं।
0: डॉक्टर शुक्ला, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आई आकाशवाणी स्टूडियोज में और आपने इतने विभिन्न पहलुओं पर इतने विस्तार से बताया, और एक बार फिर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जो आपको सम्मानित किया है भारत सरकार ने उसके लिए।
1: थैंक यू सो मच मैम मुझे यहाँ बुलाने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ एक लाइन आखिरी में बोलना चाहूंगी, महात्मा गांधी ने कहा था बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी इन द सोसाइटी, और मुझे खुशी है कि हम वह परिवर्तन है। धन्यवाद।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे बच्चों के साथ गौरैया और पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष योगदान देने वाली तथा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर अर्चना शुक्ला के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही थी सोनू सूद। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
4: अभी आपने सुना पॉडकास्ट सीरीज प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ की 11वीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
5: उड़ान हौसलों की, उड़ान सपनों की, उड़ान उन मंजिलों की ओर जो बाहें फैलाए आप सबका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। हेलो नमस्कार, मैं एना कर्मा
6: और मैं प्रिया
5: उड़ान कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ,
6: और सबसे पहले आपका धन्यवाद देती हूँ कार्यक्रम सुनने के लिए और हमें संपर्क करने के लिए।
5: जी हाँ श्रोताओं, हमेशा की तरह आप सबसे पहले हमारा नंबर लिख लें, क्या पता कार्यक्रम सुनने के बाद आप हमसे अपने अनुभवों को या अपने प्रश्नों को साझा करना चाहें। तो श्रोताओं, हमारा नंबर है 8860088827। जी हाँ, 8860088827।
6: श्रोताओं, आज का इंसान लालच में अंधा हो गया है कि इंसानियत को खोता जा रहा है। आज लोगों को किसी के दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उनका लालच और उनका स्वार्थ पूरा होना चाहिए। लालच के इस भंवर में ऐसा फंस चुका है कि वह भूल जाता है कि मुसीबत किसी पर भी आ सकती है। कुछ ऐसी ही घटना पर आधारित हमारा आज का नाटक है। ये नाटक शुरू होता है रेखा जी के घर से। उनका एक बेटा है जो कि एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। रेखा जी अपने बेटे का विवाह ओम प्रकाश की बेटी रिया से करवा देती है। ओम प्रकाश जी दिल के मरीज थे, उनकी पत्नी का भी निधन हो गया था। बेटी रिया के विवाह के बाद उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी। रिया एक सुंदर और सुशील लड़की थी। रिया भी एक कंपनी में काम करती थी। शादी के बाद अक्सर रिया अपने पिताजी के घर चली जाती और उनका हालचाल पूछती और दवाई और घर का छोटा बड़ा काम कर आती थी, और समय पर अपने ससुराल में आकर वहाँ का भी काम करती थी। परंतु रिया का ऐसा हर एक दो दिन में पिता के घर जाने पर रिया की सास को ठीक नहीं लगता था। रिया अपने पिता की एक लौती संतान थी, तो ऐसी बीमारी के हालात में पिता को अकेले छोड़ भी नहीं सकती थी। ऐसे में क्या होता है उनके घर में, आइए सुनते हैं नाटक।

0: अंकुश की मम्मी क्या कर रही हो?
1: अरे कुछ नहीं।
0: अरे क्या बात है, आज फिर बहू अपने पापा के घर चली गई क्या?
1: क्या पता कहाँ गई है, मैं तो परेशान हो गई हूँ। जब देखो मुंह उठा के मायके चली जाती है।
0: तो तुम उससे बात करो, तुम्हारी बहू ऐसे रोज रोज मायके चली जाती है तो कल हमारी बहुएं भी ऐसे ही करेंगी।
1: अरे हमारी तो किस्मत ही फूटी थी जो ऐसे घर में रिश्ता कर दिया। चलो बेटा, अंकुश के आने का टाइम हो गया है, उसके लिए भी चाय बनानी है अभी।
0: हे भगवान, बहू के रहते अब तुम चाय बनाओगी, क्या फायदा ऐसी बहू का?
1: क्या करूं, मैं तो खुद पछता रही हूं ऐसी बहू को घर लाकर।
0: तुम अपने बेटे से क्यों नहीं बात करती कि वो अपनी पत्नी को समझाए?
1: आज अंकुश से बात करती हूँ।
0: वैसे मैं तो किसी के घर के मामले में बोलती ही नहीं, तुम्हारी बहू है तुम्हारा घर, मुझे क्या मतलब, मैं तो चलती हूँ, मुझे और भी बहुत काम है।
2: पड़ोस की आंटी के जाने के कुछ समय बाद अंकुश आ जाता है और रिया को आवाज लगाता है।
3: रिया कहाँ हो यार, एक गिलास पानी पिला देना।
1: ये लो बेटा पानी।
3: अरे माँ आप पानी लाई, रिया कहाँ है?
1: अरे मुझे क्या पता कहाँ गई है।
3: कब गई है ये तो पता होगा।
1: मुझे क्या पता कब गई है। देख अंकुश, जब से रिया जॉब करने लगी है तब से ये कुछ ज्यादा ही घूम रही है।
3: अरे माँ कुछ काम होगा तभी तो गई है।
1: हाँ घर के सिवा हर काम उसके लिए जरूरी है।
3: अरे माँ तुम भी ना।
1: अरे और भी तो लड़कियाँ हैं जो जॉब करती हैं पर टाइम से घर आकर घर भी संभालती हैं।
3: हाँ माँ मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ आराम करने।
1: ठीक है बेटा जाओ और आराम करो।
2: रेखा जी की ऐसी बातें सुनकर अंकुश कमरे में चला जाता है और रेखा जी वहीं बैठकर टीवी देखने लगती है। कुछ समय बाद रिया आ जाती है, परंतु सास के चेहरे को देखकर समझ जाती है कि घर में कुछ तो हुआ है। तो रिया अपनी सास से पूछती है, माँ अंकुश आ गए क्या? और रिया की आवाज़ सुनकर वहाँ अंकुश भी आ जाता है और रिया से पूछता है,
3: रिया तुम कहाँ गई थी?
4: मैं पापा के घर गई थी, उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है।
3: अरे यार तो घर में बताकर तो जाना था ना।
4: अरे मम्मी जी को बताया तो था कि मैं पापा जी के घर जा रही हूँ, उनकी तबीयत खराब हो गई है और 2-3 घंटों के लिए वहाँ जा रही हूँ।
3: पर मम्मी जी आप तो बोल रही थी कि रिया ने आपको कुछ नहीं बताया।
1: अरे बेटा इसका तो रोज का काम हो गया है, और बहू तू अब कोई नया बहाना ढूंढ ले, मैं तो तंग आ गई हूँ तेरे एक ही बहाने से।
4: अरे माँ जी मेरे पापा बीमार हैं, इसमें बहाने वाली क्या बात है।
1: हाँ हाँ एक तेरे ही पापा बीमार हैं और तेरे जाते ही ठीक भी हो जाते हैं।
4: माँ जी आप कैसी बातें कर रहे हो, आपको तो सब पता है मेरे पापा का मेरे सिवा

0: और अपनी मायके की कोई भी बात मेरे सामने नहीं करोगी, ठीक है?
1: ठीक है। अरे बेटा, अब ऐसा भी क्या कर दिया, अपनी पत्नी को समझाने के बजाय तुम मुझे ही बोल रहा है।
0: अरे माँ, इससे तो अच्छा है मैं ऑफिस ही ठीक था।
2: इतना बोलकर रिया और अंकुश कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं और रेखा जी भी अपने कमरे में चली जाती है। सुबह के समय रिया सबके लिए नाश्ता बनाती है और अंकुश को टिफिन देती है और साथ ही बोलती है कि उसे अपने पापा जी को डॉक्टर के पास ले जाना है, तो ऑफिस से हाफ डे की छुट्टी लेकर वहाँ से अस्पताल चली जाएगी। अंकुश भी हाँ चली जाना ऐसा बोलकर चला जाता है और रिया भी घर का काम करके ऑफिस चली जाती है और ऑफिस से हाफ डे की छुट्टी लेकर अपने पिता के घर चली जाती है।
3: पापा, आप रेडी हो गए?
4: हाँ बेटा, मैं रेडी हूँ।
3: पापा, आपने कुछ खाया है कि नहीं?
4: हाँ बेटा, खा लिया। तुम्हारे चाचा के बेटे और बहू आए हैं, उन्होंने ही घर का काम किया है।
3: तो अभी कहाँ हैं वो?
4: वे मार्केट गए हैं, कुछ राशन का सामान लाने आते ही होंगे।
3: अरे भाभी, आ गई आप? पहले बताती तो रात को मैं यहीं रुक जाती।
5: अरे दीदी, बस चाचा जी की तबीयत के बारे में सुना तो सोचा जाके मिल आते हैं।
3: अच्छा किया भाभी। और वहाँ सब कैसे हैं?
5: अरे दीदी, बाबूजी के जाने के बाद तो घर में मन ही नहीं लगता। घर में बड़े बूढ़े हों तो मानो घर में भगवान है, पर उनके जाने के बाद तो घर सूना सूना सा हो गया है।
3: भाभी, अब होनी को कौन टाल सकता है। भाभी, आप यहीं क्यों नहीं रुक जाते? मेरे पापा की देखभाल भी होती रहेगी और आपका और पापा जी का भी मन लगा रहेगा और मैं भी बेफिक्र होकर काम कर लूँगी।
5: ठीक है दीदी।
3: थैंक यू भाभी।
2: रिया अपने पिताजी को हॉस्पिटल ले जाती है और फिर वापस घर छोड़कर अपने ससुराल चली जाती है और 2 महीने अपने पिता के घर नहीं जाती, बस फोन पर ही हालचाल पूछ लेती थी। एक दिन रिया ने अंकुश से बोला कि आज वह ऑफिस नहीं जाएगी। ये सुनकर अंकुश ने पूछा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तो उसने बताया कि तबीयत तो ठीक है, पर आज उसने पूरे दिन की छुट्टी ली है, उसे कोर्ट जाना है। यह सुनकर रेखा जी बोलती है,
1: अरे कोर्ट क्यों जाना है?
3: बस कुछ काम है, पापा जी के साथ जाना है।
1: अरे ऐसा भी क्या कर दिया तेरे पापा ने जब कोर्ट जाना है?
3: मम्मी जी, पापा जी ने कुछ नहीं किया।
1: अरे फिर कोर्ट क्यों जा रहे हो, कुछ तो किया होगा।
3: अरे मम्मी जी, पापा जी ने ऐसा कुछ नहीं किया, काम मुझे है इसलिए मैं पापा जी को साथ ले जा रही हूँ।
0: पर रिया, सब ठीक तो है? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो।
3: मेरे पापा के नाम जो भी प्रॉपर्टी है वो मैं चाचा के बेटे और बहू के नाम करना चाहती हूँ, इसलिए मुझे उनके साथ कोर्ट जाना होगा।
1: क्या तुम्हारे पापा अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने भाई के बेटे के नाम पे कर रहे हैं?
0: रिया, ये तुम क्या कह रही हो?
3: हाँ जी, मैंने जो कहा वो सच है।
1: अरे जब तुम हो तो तुम्हारे रहते हुए तुम्हारे पापा अपने संपत्ति अपने बेटे के नाम पर कैसे कर सकते हैं?
3: क्यों नहीं दे सकते? जो उनकी देखभाल करेंगे वही उनकी प्रॉपर्टी का हकदार होगा।
1: हे भगवान, ये तो सारी प्रॉपर्टी दान कर देगी।
3: क्या सोचने लगी माँ जी?
1: पर ये जरूरी तो नहीं कि वो तुम्हारे पिता की देखभाल करेंगे। क्या पता प्रॉपर्टी मिलने के बाद देखभाल ना करें, फिर क्या करोगी तुम?
3: उसका भी इंतजाम कर दिया है माँ जी मैंने, घर में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिया है और ये बात एग्रीमेंट में भी मेंशन कर दी है। अगर उन्होंने पापा की देखभाल नहीं की तो सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को चली जाएगी।
0: रिया, क्या तुमने इतनी बड़ी बात मुझे बताना जरूरी नहीं समझा?
3: अंकुश, तुमने ही तो कहा था कि मैं तुम्हारे सामने मायके की कोई बात ना करूं।
0: पर रिया,
3: पर वर कुछ नहीं, मेरे लिए मेरे पापा की देखभाल जरूरी है। अगर मैं उनकी देखभाल नहीं कर सकती तो उनकी प्रॉपर्टी पर भी मेरा कोई हक नहीं।
1: लो गई भैंस पानी में, अब इस लड़की को कौन समझाए, ये तो अपना ही नुकसान करने पर लगी है।
3: कैसा नुकसान माँ जी?
1: अरे तेरे पापा की प्रॉपर्टी अगर तेरे पास रहेगी तो तेरे ही काम आएगी ना।
3: पर माँ जी, अगर मैं आपको खाना बनाकर ना दूं, ना ही आपकी बीमारी में देखभाल करूं और आपके बेटे और घर को ना संभालूं, तो क्या आपकी प्रॉपर्टी पे हमारा कोई हक है या नहीं?
1: अरे बेटा, तू तो गुस्सा मान गई।
3: नहीं माँ जी, समय रहते ही सब समझ आ गया कि आपने मुझसे अपने बेटे की शादी प्रॉपर्टी के लिए की थी, ना कि मेरे गुणों को देखकर। बड़े अफसोस की बात है कि आज भी दुनिया में आप जैसे लोग हैं।

0: रिया की यह बातें सुनकर रेखा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और किए हुए बर्ताव पर पछतावा भी हुआ। तो श्रोताओं, रेखा जी को अपनी बहू रिया के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। एक दिन सभी को उम्र के उस पड़ाव पर आना है जहां सभी को सहारे की आवश्यकता होती है, जहां पर रिया की सास को रिया का साथ देना चाहिए था ताकि अपने पिता की सेवा कर सके। वहीं उन्होंने लालच के चलते इंसानियत को खो दिया। उन्हें लगता था कि रिया अपने पिता की इकलौती संतान है तो पिता की प्रॉपर्टी रिया को मिलेगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ और अपने किए पर पछतावा हुआ। श्रोताओं, जो सेवा करेगा और सही से देखभाल करेगा वही संपत्ति का असली हकदार होगा, पर वो आपके संतान हो या कोई रिश्तेदार या फिर कोई गैर। इस विषय में आप क्या विचार रखते हैं हमें अवश्य बताएं। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या एसएमएस करें इस नंबर पर। नंबर है
1: 8860088827। जी हाँ, 8860088827। और हमारा पता है कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ, कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। तो श्रोताओं, मुझे एना कर्मा को दीजिए अनुमति
0: और मुझे यानी कि प्रिया को अनुमति दीजिए।
1: आपसे हम जल्द मुलाकात करेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। पेश है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाये गीत से। मजरूह सुल्तानपुरी के गीत को सुरों में डाला है चित्रगुप्त ने और फिल्म का नाम है गंगा की लहरें।

सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में सुनिए रजनीगंधा फिल्म का गीत। योगेश के गीत में आवाज मुकेश की।

अब हम आपको सुनवा रहे हैं लव इन टोक्यो फिल्म का गीत। शब्द संयोजन हसरत जयपुरी का, धुन बनाई शंकर जयकिशन ने और आवाज लता मंगेशकर की।

0: लव इन टोक्यो फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है छोटे से अंतराल का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आपके

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, 7 बजने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नईम अख्तर। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में इस घोषणा पत्र को अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
2: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
1: ब्रिक्स के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सदस्य देशों के नेताओं ने 2 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए। इससे पहले उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती रहती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यान्वयन तंत्र 3 पक्षों के समूह ट्रॉइका के माध्यम से सभी पहलुओं और उनके परिणामों की निगरानी करेगा।
2: ग्लोबल गवर्नेंस का वर्तमान स्ट्रक्चर एक पिरामिड जैसा दिखाई देता है। हमें इस पिरामिड ऑफ प्रिविलेज को प्लेटफॉर्म ऑफ पार्टनरशिप में बदलना है, जहां हर देश की आवाज हो, हर सदस्य का स्टेक हो, हर प्रयास के केंद्र में मानवता का विकास हो। इस उद्देश्य से मैं प्रस्ताव रखता हूं कि हम मिलकर ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म के 10 प्रपोजल्स तैयार करें।
1: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्ष के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपनी कार्यप्रणाली में सुधार से करनी होगी। ब्रिक्स देशों ने विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बढ़ते ध्रुवीकरण तथा गुटबाजी पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक सैन्य खर्च में लगातार वृद्धि पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बहुपक्षीय दृष्टिकोण का आह्वान किया, जो सतत विकास, भूख और गरीबी का उन्मूलन तथा जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर सभी देशों के दृष्टिकोण का सम्मान करता हो। ब्रिक्स देशों ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए सभी तरह के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले दिन के सत्र के समापन के बाद प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिक्स नेताओं ने पौधारोपण किया। उन्होंने इंडिया इनोवेट्स प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आयोजित भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का उद्देश्य उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों में विकसित नवाचारों को दुनिया तक पहुँचाना है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि जन स्वास्थ्य की रक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है। श्री नड्डा ने आज आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सत्य कुमार यादव की मौजूदगी में 10 क्रिटिकल केयर ब्लॉक और 12 एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन सुविधाओं से राज्य में मरीजों को बेहतर सेवा मिलेगी। भारत ने छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में दुनिया की सबसे लंबी स्टील स्लैग सड़क बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 1.85 किलोमीटर लंबी ये सड़क स्वदेशी तकनीक के व्यापक प्रयोग को दिखाती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये पहल कचरे से संपदा बनाने और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने की प्राथमिकताओं के अनुरूप है। पाकिस्तान के एक मानवाधिकार संगठन ने अधिकारियों पर बलूचिस्तान में सुनियोजित सैन्यकरण और दमनकारी अभियान चलाने का आरोप लगाया है। संगठन ने कहा कि हिंसा और विस्थापन नागरिकों के दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गए हैं। भारत ने महिला जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोची में पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। पहले आज और कल आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आज के कार्यक्रम रात 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में। फिल्मी गीतों का आनंद लीजिएगा 8:35 पर। रात 9:30 पर संस्कृति भारती और 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, इसमें आप सुनेंगे सुर बहार वादन, कलाकार होंगे अश्विन एम दलवी। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। अब आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले कल के कार्यक्रमों पर एक नजर। 11 बजे सुनिएगा फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने आपकी फरमाइश। फिल्मी गीतों का ये फरमाइशी कार्यक्रम आप सुनेंगे 12 बजे। 12:30 पर संग्रहालय से कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा धारावाहिक जमुनिया की 26वीं कड़ी। 1 बजे प्रसारित होगा महिला कार्यक्रम। लोक संगीत सुना जा सकेगा 1:30 पर। 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति होंगे। फिल्मी गीतों का लुत्फ उठाइएगा फिल्म संगीत में दिन में 2 बजे, शाम 5:33 पर और शाम 6 बजे। बच्चों का कार्यक्रम सुना जा सकेगा दिन में 2:30 पर। प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की होगी। महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के अंतर्गत भारत और चीन के मध्य दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे फाइनल मैच का आंखों देखा हाल सुना जा सकेगा 7:30 से 8

कर 45 मिनट तक, 9:30 से 11 बजे तक और 11:10 से खेल के समापन तक, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। जिले की चिट्ठी प्रसारित होगी सुबह 10 बजे। 10:05 पर सुनिएगा सामुदायिक गान, इसमें आप सुन सकेंगे नेपाली गीत का शिक्षण पाठ। गीत रचना रुद्रा पौड्याल की होगी। चंद फिल्मी गीत सुनेगा फिल्म संगीत में 10:30 पर। कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में एक बार फिर सुन लीजिए। महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के अंतर्गत भारत और चीन के मध्य दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे फाइनल मैच का आंखों देखा हाल आप सुनेंगे 7:30 से 8:45 तक, रात 9:30 से 11 बजे तक और 11:10 से खेल के समापन तक, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। दिन में 1 बजे प्रसारित होगा महिला कार्यक्रम। लोक संगीत सुना जा सकेगा 1:30 पर। सुगम संगीत का प्रसारण होगा 1:45 पर और शाम 5:02 पर युवा मित्रों का कार्यक्रम युववाणी। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति होंगे। बच्चों का कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे दिन में 2:30 पर। प्रस्तुति होगी आकाशवाणी इंदौर की।

0: कल सुबह 10 बजे आप सुन सकेंगे जिले की चिट्ठी और 10:05 पर हम आपको सुनवाएंगे सामुदायिक गान। इसमें आप सुनेंगे नेपाली गीत का शिक्षण पाठ, गीत रचना रुद्रा पौड्याल की होगी। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, 7:10 होने को है। थोड़ी ही देर में सुनिएगा प्रादेशिक समाचार।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भारत की अध्यक्षता में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आज नई दिल्ली में हुआ शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, अगले 5 वर्षों में स्व सहायता समूह की बहनों को मिलेगा 10 लाख करोड़ रुपए का ऋण। प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, लंबित और राजीनामा योग्य मामले आपसी सहमति से हुए निराकृत। और मौसम विभाग ने 15 जिलों में भारी बारिश

0: का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। भारत की अध्यक्षता में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थित प्रतिष्ठित रामनाथ स्वामी मंदिर के मनोरम दृश्य के बीच भारत मंडपम में विश्व नेताओं का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स समिट 2026 को संबोधित करते हुए कहा, इस वर्ष का ब्रिक्स समिट एक ऐतिहासिक पड़ाव है। हम ब्रिक्स की 20वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। मानव जीवन में 20 वर्ष की आयु मैच्योरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी के नए चरण का आरंभ करती है। यह वो अवस्था होती है जब सपनों के साथ जिम्मेदारियां जुड़ती हैं, सामर्थ्य को नई दिशा मिलती है। आज ब्रिक्स भी अपने कमिंग ऑफ एज के क्षण में है। पिछले 20 वर्षों में ब्रिक्स ने वैश्विक मंच पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। हम एक दूसरे के दर्शकों का सम्मान करते हैं और कर्तव्य निष्ठा से आगे बढ़ते हैं। हम किसी के विरुद्ध नहीं बल्कि सभी को साथ लेकर चलने की सोच के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा।
1: एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले, अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 11 पूर्ण सदस्य देश और 10 साझेदार देशों सहित कुल 21 देश हिस्सा ले रहे हैं। 11 पूर्ण सदस्य देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया शामिल हैं, जबकि बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम साझेदार देशों के रूप में भाग ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में हो रहे इस सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उद्यम वित्त पोषण और एसएचजी बैंक लिंकेज और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत देशभर की लाखों स्व सहायता समूह की सदस्यों, लखपति दीदियों और आवास हितग्राहियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने घोषणा की कि अगले 5 वर्षों में समूहों को 10 लाख करोड़ रुपये का बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपये का व्यक्तिगत ऋण भी शामिल है।
2: हमने तय किया है कि हेल्पलाइन समय पर लोन मिले इसकी व्यवस्था, ये भी तय किया कि बिना वजह समूहों को या दीदियों को बैंक लोन से मना नहीं किया जाएगा और किसी बहाने, कि जब बैंक में दिक्कत आए तो एक हेल्पलाइन बनाई जाए और दीदियां उस हेल्पलाइन पे दिक्कतें बताएं, समाधान हम करें, ताकि दीदी अपने आप को अकेला महसूस ना करे। बैंक सखी मदद के लिए है, इंडिविजुअल खुद का काम धंधा समूह की सदस्य करना चाहती है उसको भी लोन मिलना चाहिए।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल आगर मालवा से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की सितंबर माह की 40वीं किस्त का अंतरण करेंगे। इस अवसर पर प्रदेश की 1,25,10,150 पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1,835,09,22,450 रुपए की मासिक आर्थिक सहायता सीधे अंतरित की जाएगी। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया से भेंट की। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के विकास, रोजगार सृजन, युवाओं के कौशल विकास तथा प्रदेश में रोजगार के नए अवसरों के विस्तार से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश में युवाओं के कौशल विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। साथ ही प्रदेश के युवाओं को अधिक अवसर उपलब्ध कराने तथा केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सहयोग से रोजगार एवं कौशल विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के संबंध में भी विचार विमर्श किया। प्रदेश में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें लंबित और राजीनामा योग्य मामले आपसी सहमति से निराकरण के लिए रखे गए। भोपाल में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल के अध्यक्ष मनोज कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय परिसर भोपाल में लोक अदालत का आयोजन किया गया। यहां 57 खंडपीठों का गठन किया गया है। रायसेन जिला न्यायालय परिसर सहित सभी तहसील अदालतों में लोक अदालत आयोजित की गई। लोक अदालत में 9000 से अधिक लंबित और प्री लिटिगेशन प्रकरण सुनवाई के लिए रखे गए थे। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के द्वितीय चरण के अंतर्गत 18,77,000 मकानों को मंजूरी दी है। इससे योजना के क्रियान्वयन को और गति मिलेगी तथा शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह निर्णय नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 9वीं बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के शहरी विकास विभाग के सचिव सत्येंद्र सिंह ने की। आज प्रदेश के विभिन्न शहरों में बारिश का दौर एक बार फिर प्रारंभ हुआ। इंदौर, धार, खरगोन और बड़वानी में तेज बारिश हुई, जबकि भोपाल में दोपहर बाद हल्की बारिश हुई। रतलाम के नामली में मूसलाधार बरसात होने की खबर है। वहीं मौसम विभाग ने अगले आज 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें उज्जैन, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, देवास, हरदा, सागर, रायसेन, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, पांडुना, सिवनी, बालाघाट और छतरपुर शामिल हैं। महिला एशिया कप क्रिकेट में दुबई में कल भारतीय टीम फाइनल में पिछले चैंपियन श्रीलंका से भिड़ेगी। श्रीलंका की टीम कल पाकिस्तान को 4 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंच गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में वृत्त स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह के मुख्य आतिथ्य में आयोजित मेले में 50 से अधिक कंपनियों ने सहभागिता की। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत झाबुआ जिले के कलेक्टर ने मेघनगर स्थित औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया। आगरमालवा उत्कृष्ट विद्यालय की छात्रा ममता गवली ने नीमच में आयोजित हुई संभाग स्तरीय जूडो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए जगह बनाई। जबलपुर जिले के ग्राम नुनसर स्थित शौर्य कृषि केंद्र का उर्वरक लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत निरीक्षण के दौरान की गई। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: अब पढ़ाई के साथ कमाई भी। मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। 18 से 29 साल के युवाओं को मिलेगी इंडस्ट्री ट्रेनिंग और हर महीने 8,000 से 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड। हुनर सीखो, पैसा कमाओ और करियर बनाओ एक साथ। रजिस्टर करने का मौका अभी है।
1: mmsky.mp.gov.in पर जाएं। सीखो, कमाओ और लाइफ में कुछ बड़ा करो।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: अब इतना पानी कहाँ कि पानी के साथ खेला जाए।
1: पानी के छींटे व्यर्थ में ना उड़ाएं।
0: पानी का उपयोग सजगता के साथ करें।
1: ब्रश करते समय, दाढ़ी बनाते समय नल खुला न रखें।
0: सीधे नल के नीचे बर्तन न धोएं।
1: कपड़े धोते समय जमा पानी का ही उपयोग करें।
0: शावर के बजाय बाल्टी के पानी से नहाएं।
1: सब्जी फल धुले और पोछा लगे पानी को गमले में डालें।
0: जितनी प्यास हो ग्लास में उतना पानी ही लें।
1: अपने वाहन को पाइप से न धोएं।
0: शौचालय में फ्लश के बजाय बाल्टी के पानी का प्रयोग करें।
1: घर के टपकते नल को तुरंत ठीक करवाएं।
0: सार्वजनिक नल को बहता देख आगे न बढ़ जाएं।
1: उसे बंद कर अपना दायित्व निभाएं।
2: कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगे।
1: कभी कभी नहीं, रोज ही रखें इन बातों का ध्यान।
0: समय है पानी बचाने का,
1: पानी का मोल समझने और समझाने का।
0: पानी बचाएं, भविष्य सजाएं।
3: प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें मुख्य हैं थर्माकोल से बनी प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे, मिठाई के बक्से। इसके अलावा निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट की फिल्म, प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारे की छड़ें और आइसक्रीम पर लगने वाली प्लास्टिक की स्टिक, साथ ही 100 माइक्रोन से कम के बैनर शामिल हैं। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, हमारी धरती को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाएं।

0: ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज पर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम, प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना।
2: किसान वाणी कार्यक्रम सुन रहे हैं मैं सभी भैयन खो सभी बहनन खो पूनम बहन की दुई दुई हाथ जोड़ के राम राम पहुँच बे। हम उम्मीद करते हैं कि सभी जने खूब नौने हुओ। देखो भैया बहनों हरो का है कि किसानन को अपनी उपज को पूरा फायदा मिल पावे इके लाने सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इके लाने कृषि बाजार अधोसंरचना योजना की पहल सोई करी गई है जिको उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रन में कृषि उपज के भंडारण विपणन और प्राथमिक प्रसंस्करण की आधुनिक ढांचागत व्यवस्था विकसित करवो है जो मुख्य रूप से दो बड़े हिस्सन में चल रही है कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और कृषि विपणन अधोसंरचना। कृषि बाजार अधोसंरचना योजना मुख्यतः कृषि विपणन अवसंरचना AMI और कृषि अवसंरचना कोष AIF भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिको उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में कृषि उपज के भंडारण विपणन और प्राथमिक प्रसंस्करण की आधुनिक ढांचागत व्यवस्था विकसित करवो है। योजना के मुख्य उद्देश्य और लाभन में सबसे पहले बात करत है वैज्ञानिक भंडारण क्षमता की। सो किसानन की उपज को सुरक्षित रखने के लाने गोदामों साइलों और शीतगृह को निर्माण करवो जिससे फसल कटाई के बाद बारे नुकसान को रोको जा पावे। वित्तीय सहायता और सब्सिडी देवो मने इसे क्रेडिट लिंक्ड बैंक एडेड सब्सिडी योजना के तहत सामान्य क्षेत्रन से 25% और पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्रन में या महिला SC ST उद्यमिन के लाने और FPO के लाने 33.33% तक की पूंजीगत सब्सिडी दी जात है। ब्याज में छूट मने AFI के तहत पात्र ऋण में 3% तक की ब्याज सहायता और क्रेडिट गारंटी को लाभ मिलत है। बाजार तक सीधी पहुंच मने बिचौलियन की भूमिका को कम करके किसानन को उनकी उपज के उचित मूल्य दिलावे के लाने सीधे विपणन और ई नाम एकीकरण को बढ़ावा दौ जात है। और भैया बहना हरो ई के अलावा भी बड़ी अच्छी जानकारी आज हम अपन के लाने लेके आए हैं। तो देखो का है कि खरीफ के मौसम में खेतन में अपन ई समय कई तरह की फसलें उगात हैं। फसलन में बढ़वार की अवस्था में कई तरह के रोग और कीटन को प्रकोप सोई हो जात है। सो उड़द और मूंग की फसलन में भी कीट व्याधि की रोकथाम के लाने विभिन्न तरीकन को मिला के समन्वित कीट प्रबंधन करो जात है। मने फसलन में समन्वित कीट व्याधि प्रबंधन से बीज उपचार जल प्रबंधन पोषण प्रबंधन निगरानी और नियंत्रण जैसी बातन को ध्यान रखो भी बहुत ही जरूरी है। सो ई के संबंध में अपन और जानकारी प्राप्त कर लिए थे। सुनत है जो भेंट वार्ता उड़द एवं मूंग में समन्वित कीट प्रबंधन विशेषज्ञ है डॉक्टर RP शर्मा, इनसे बातचीत करी है मनोज सक्सेना भैया ने।
3: किसान भाइयों, समय के गुजरने के साथ ही फसलों में भी अब बदलाव देखने को मिल रहा है। बारिश अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुकी है और फसलें भी अब देखिए ना परिपक्व होने की स्थिति में आ गई हैं। फलियों में भराव शुरू हो चुका है। बात हम कर रहे हैं आज खरीफ मूंग और उड़द की फसल की। यहाँ ऐसी अवस्था में जब फलियां भरने लगी हों, फूल पर फसल हो, तब रोग और कीट बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जी हाँ, इसी विषय पर हम आज बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी से, जिन्हें की हम सब RP शर्मा के नाम से जानते हैं, प्रधान वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र देवास से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद
3: सर। इस समय खरीफ की फसल में पहले हम मूंग और उड़द दोनों की साथ ही बात कर लेते हैं। फलियों में अगर कीट लगते हैं
4: जी
3: तो क्या नुकसान हो सकता है, उन कीटों की पहचान कैसे की जाए और उनका प्रभावी नियंत्रण कैसे किया जाए?
4: निश्चित रूप से देखिए, उड़द और जो मूंग जो फसल है ना, दलहन विशेषकर
3: जी,
4: इनका अपने आप में बड़ा महत्व है
3: जी।
4: भले ही हम कहते हैं कि हमारे देश में जो है 35% जो है विश्व का एरिया भारतवर्ष में है
3: जी।
4: उत्पादन के दृष्टिकोण से भी देखते हैं तो पूरे विश्व का जो है 27% जो है दलहन की पूर्ति हम करते हैं
3: जी।
4: हम विश्व में प्रथम नंबर पे आते हैं
3: जी।
4: लेकिन जब उत्पादकता की बात करते हैं उड़द मूंग विशेषकर
3: जी,
4: तो 5 से 6 क्विंटल उत्पादकता आती है मात्र, जो कि बहुत कम है,
3: बहुत कम है,
4: है ना। और कई किसान जब इसको उड़द मूंग को रबी में करते हैं या समर में करते हैं तो 15 क्विंटल भी लेते हैं, मतलब दूने से भी ज्यादा उत्पादकता में अंतर है। तो खरीफ में अभी जो बात कर रहे हैं हम लोग, इसमें मुख्य कारण है कीट बीमारी। यदि कीट बीमारियों का किसान भाई उड़द मूंग में सही प्रबंधन कर ले तो निश्चित रूप से जो उत्पादकता हमारी आज भारतवर्ष की 5 से 6 क्विंटल है उसको हम 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ले आ सकते हैं। इसकी मुख्य कमी के लक्षण क्या है? देखिए, एक तो खरीफ में जब किसान दलहनी फसलें विशेषकर मूंग उड़द करता है तो वो एक तरफ से बोनी करता है, लाइन से लाइन की दूरी वो एंटर नहीं करता है। निश्चित रूप से आप जानते हैं, हम लोग सभी जानते हैं कि खरीफ में फसल जब रुक रुक के बारिश होती है ना, तो फसल का जो वनस्पति बढ़वार बहुत ज्यादा होता है। तो हम जो है जैसी बोनी जो है गर्मियों में करते हैं, रबी में करते हैं, वही बोनी हम लोग जो है अधिकतर किसान भाई जो हमारे जो है इसमें भी कर देती है। यदि बुंदेलखंड की बात करें या विंध्य प्लेटू की बात करें

0: लेते हैं जो गलत है। कीटों पर आते हैं सर, कीट जिस तरीके से बारिश के दिनों में बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं फसलों पर, बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, तो कौन कौन सी कीट ऐसे हैं जो इस समय बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं?
1: इस समय देखिए जो मुख्य कीट हैं जो उड़द मूंग में आ रहे हैं वे माहू है, लीफ ओवर है, जैसे जिसको बोलते हैं, हरे मच्छर है और सफेद मक्खी। सफेद मक्खी जो है बहुत ज्यादा हान पहुंचाने वाला कीट आज हमारे यहाँ हो गया है।
0: सही बात।
1: और सफेद मक्खी के कारण ही आज हमारे यहाँ जो किसानों किसान भाई जो पीला जो मोजेक रोग बोलते हैं वो इसी के कारण फैलता है। विशेषकर जहाँ सोयाबीन वाला क्षेत्र है और जहाँ किसान भाई रबी में और गर्मियों में भी मूंग लगाते हैं और उस खेत में आपने यदि फिर दोबारा लगा दिया है तो निश्चित रूप से मानिए कि सफेद मक्खी का प्रकोप बहुत ज्यादा होगा। अभी हम लोग जो देख रहे हैं मालवांचल में, विशेषकर हमारा जो नर्मदा की पट्टी है, उस नर्मदापुरम लें, देवास के पास जो नेमावरी का क्षेत्र लें, खातेगांव कन्नौज जो एरिया जो नेमावरी की पट्टी है, इस क्षेत्र में जो है गर्मियों में मूंग बहुत लगाते हैं किसान भाई। अब गर्मियों में जो मूंग लगा रहा है किसान भाई, अभी जो सोयाबीन लगाई है, तो जितनी भी नेमावरी पट्टी वहाँ सफेद मक्की का जबरदस्त प्रकोप है। इसमें किसान भाइयों ने काफी स्प्रे भी किए हैं लेकिन प्रतिरोधक क्षमता आ गई है, सफेद मक्की को नियंत्रण नहीं कर पा रहे। और निश्चित रूप से किसान भाइयों, जब हम लोग सोयाबीन मूंग मतलब कहने का दलहन और तलहनी फसलें जी करते रहेंगे तो निश्चित रूप से इसका बढ़वारी होगी। इस कीट को आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, है ना। इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैविक तरीके हैं, जैविक तरीके अपनाओगे आप तो निश्चित रूप से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं।
0: अब इस समय जैसे कि फलन हो रहा है, फलियां भर रही हैं, ये बड़ी ऐसी स्थिति होती है कि अब फली को अगर कोई कीट खा लेगा
1: जी
0: तो सीधा सीधा आर्थिक क्षति होनी है।
1: जी जी।
0: कौन सा कीट है जो सबसे ज्यादा इस समय लग रहा है?
1: इस समय दो कीड़े हैं, एक तो फ्रूट फ्लाई है, फल मक्खी जो बोलते हैं, फल के अंदर मक्खी दे देती है उसमें, और दूसरा जो है चने की इल्ली है, इसको एलका बर्पा बोलते हैं। एलका बर्पा जो चने की इल्ली है ना, जो चने की घेंटी के अंदर घुस जाता है और दाने को डैमेज करता है, वैसे ही वो एलका बर्पा जो कीट है वो दाने के अंदर जो घुस जाएगा, इसके फली के अंदर घुस जाता है और दाने को खराब कर देता है। मुख्यतः जो है फ्रूट फ्लाई जो फल मक्खी है और जो है चने की इल्ली, उसको चने की एलका बर्पा नाम है उसका। और चूंकि चने का वो मुख्य कीट हुआ करता था पहले, लेकिन आजकल जो है 14 प्रकार के रंग बदलता है वो। जब चने की फसल आएगी तो उसका कलर अलग होगा, तुअर में लगेगा तो अलग होगा, आपका सेम में लगेगा तो अलग कलर होगा, बैंगन में लगेगा तो अलग कलर होगा। मतलब 14 प्रकार की इल्ली है ना, इतनी होशियार हो गई है कि जैसी फसल
0: वैसा रंग
1: बदलती, मतलब मनुष्य से ज्यादा रंग मुझे बदल दे रही है आजकल।
0: और किसान इसको चने की इल्ली के नाम से ही जानता
1: है। चूंकि क्या है देखिए, एक तो हमारे यहाँ हरी अर्ध कुंटल की इल्ली मिलती है इस समय, और चने की इल्ली, मुख्यतः दो प्रकार की इल्लियां हुई, हरी और अर्ध कुंटल की इल्ली जो है कुबड़ बना के चलती है, और चने की इल्ली सीधी सीधी चलती है। चने की इल्ली विशेषता ये है कि जब दाने वाली अवस्था होती है, चाहे वो सोयाबीन हो चाहे उड़द मूंग की बात कर रहे हैं, इस समय हमारे यहाँ फलियां बन रही है किसान भाइयों। निश्चित रूप से आप देखिए, जो फली है आपकी उड़द की या मूंग की, उसके ऊपर आपको हरी इल्ली मिलेगी, हरी इल्ली बिल्कुल, इल्ली इसी पे नुकसान करती है, फल जो लगा हुआ है फल को डैमेज करती है, फल को नुकसान करती है। इसलिए ऐसी इल्लियों से आप जरूर बचाव रखें इस समय निश्चित रूप से यदि आपने कंट्रोल नहीं किया तो बज में 25-30% की हानि केवल इससे हो जाती
0: है। इसको नियंत्रित करने के लिए दवा कौन सी उपयोग करना चाहिए?
1: देखिए साहब, दवा की बात निश्चित रूप से, किसान भाई हमारे यहाँ मालवांचल की बात करें तो ऑलरेडी किसान बहुत सारी दवा डालते हैं, इसका परिणाम जो हो रहा है कि कीटों में प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो गई। तो रस चूसने वाले जो कीट है, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि रस चूसने वाले कीटों के लिए हम सबसे पहले तो इमिडाक्लोप्रिड जो दवा आती है उसे बीजोपचार करें। यदि आपने बीजोपचार कर दिया है तो उसमें रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप कम से कम होगा। दूसरा जो है, यदि आपका जेसिड्स है, थ्रिप्स है, ये लगे हुए हैं, तो इसके लिए भी हम लोग जो है जैविक कर सकते हैं। और जैविक में जो है आपका जो है लेडी बर्ड बीटल है, कोक्सिनोला इसको बोलते हैं, एक क्रासोपरला, ऐसे ये छोटे छोटे जीवाणु हैं, परजीवी हैं, इनको यदि आपने खेत में छोड़ दिया तो ये इनके ऊपर अंडे देते हैं, ये इल्ली जो आपकी है, और कोक्सिनोला है ना, ये माऊ को थ्रिप्स को खा जाता, तो मतलब प्राकृतिक रूप से आपका जो है कंट्रोल होगा। दूसरा जो है सफेद मक्खी की बात कर रहे थे, इसमें हम लोगों ने यदि पीले चिपचिपे बोर्ड लगा, पीले चिपचिपे बोर्ड का मतलब ये है, गत्ता ले लें, हालांकि ये आईपीएम का जो सेंटर है वहाँ भी मिलते हैं किसान भाइयों, लेकिन यदि आप वहाँ नहीं जाना चाहते हैं तो एक गत्ते काट लें आप, और गत्ते को जो है पीला झटक पीला जैसे बोलते हैं गाँव में लोग, तो पीले रंग से हम लोग इसको पोत दें, पोतने के बाद इसमें ग्रीस लगा दे सफेद वाली, जो ट्रांसपेरेंट जेली बोलते हैं इसको, ग्रीस सफेद ग्रीस लगा देंगे 10 से 12 जगह, इसको खेत में गाड़ देंगे, फसल से थोड़ा सा ऊंचा रहेगा ये, और इसको गाड़ देंगे तो निश्चित से मांगिए जितने भी प्रोण जो हैं वो प्रोण इस पे चिपक जाएंगे। 8 दिन बाद आप देखोगे तो पीलापन पूरा खत्म हो जाएगा, और इसमें आपको जो है काला काला दिखेगा, तो इसको आप 8 दिन बाद फिर साफ कर दें और फिर ग्रीस लगा दें, तो जितने प्रोण है मतलब युवा, इसमें शिशु नहीं आ पाते आप, आपके

0: ये नहीं आ पाएंगे, इसलिए आपको छुटाना नहीं है, खेत में से निकालना नहीं जब तक आपकी मूंग की फसल उड़द की फसल कट नहीं जाती है, तो उसको लगाने। दूसरा, इसमें जो चने की इल्ली थी इसमें एनपीबी का भी आप डाल सकते हैं, न्यूक्लियस पॉलीहाइड्रोस वायरस है 250 ml प्रति हेक्टेयर, आपने इसको डाल दिया तो चने की इल्ली को निश्चित रूप से मानिए कि तीसरे दिन बुखार आता है, चौथे दिन काली पड़ जाएगी, पांचवे दिन काली पड़ के उल्टी लटक जाती, तो इसमें बीमारी फैला दें। हम लोग दवा पे बाद में जाएं, इसके बाद ट्राइकोडर्मा वेरिडी भी हम लोग जा सकते हैं, कई बार फफूंद लग जाती है जमीन में, तो फफूंद को खाने में ट्राइकोडर्मा वेरिडी है ना, इसको भी अपन लोग कंट्रोल उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाई, निश्चित रूप से कीटों की ये बात हो गई है, अब थोड़ा सा बीमारियों की बात में।
1: बिल्कुल, मैं वही पूछने वाला था सर कि बीमारियां भी लगती हैं तो मुख्य बीमारियां भी आप बताइए।
0: एक तो पीला मोजेक है, किसान भाई उस समय पीलापन बहुत आता है, और पीला मोजेक जो बीमारी है वो बीमारी सफेद मक्खी और रस चूसने वाले कीड़े जो मैंने आपको बताया इनके द्वारा फैलती है। इस जो वायरस है, इस वायरस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वायरस किससे फैलता है उसको कंट्रोल कर सकते, और ये वायरस फैलता है सफेद मक्खी, तो सफेद मक्खी को आपने कंट्रोल कर लिया है तो निश्चित रूप से मांगनी है ये पीला मोजेक जो है कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन फिर भी शुरू की अवस्था में कहीं कहीं यदि आपको पीले पौधे दिख रहे हैं तो उन पीले पौधों को उखाड़ करके किसान भाइयों उसको गाड़ दें, तो इससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, एक कॉलर रॉट बीमारी और आती है, जड़ सड़न, जड़ भी सड़ जाती है, तो इसके लिए भी मैंने आपको निवेदन किया था ट्राइकोडर्मा 2 kg प्रति हेक्टेयर डाल दें, या जो है मेटालेक्जिल एक दवा आती है उसका उपयोग कर सकते हैं हम लोग, जो है ना। दूसरा जो है, जो बीजोपचार है ना वो सबसे ज्यादा कारगर है, मेटालेक्जिल कर लेंगे ना तो 2.5 gram 1 kg बीज के हिसाब से बीजोपचार करोगे ना तो इसमें निश्चित रूप से ये बीमारी से अपन लोग बच सकते हैं। और दूसरा, एक तीसरी बीमारी और आती है पाल्डू मिल्डू, विशेषकर बारिश के मौसम में आती है पाल्डू मिल्डू, चू
1: बभूतिया टाइप,
0: हाँ बभूतिया टाइप की, इसका शुद्ध नाम तो ये बभूतिया रोग ही बोलते हैं किसान भाइयों। जब लगातार बारिश होती है और बीच में मौसम शुष्क हो गया, मतलब गर्मी सी पड़ी, उमस जैसी उमस पड़ रही है और बारिश हो रही है, तो ऐसे में ये बभूतिया रोग निश्चित रूप से खेत में आने के चांसेस हैं। जैसा भी मौसम बन रहा है तो इसमें बभूतिया रोग आ सकता है, बभूतिया रोग आता है तो इसमें जो दाने की जो गुणवत्ता है गुणवत्ता प्रभाव पड़ता है, और पत्तियां बिल्कुल सफेद हो जाती है, फलियों के ऊपर भी आ जाता है। तो ये इसमें किसान भाइयों किसी भी प्रकार का दवा डालने की जरूरत नहीं है, आप जो बैटरीबल सल्फर जो आता है घुलनशील सल्फर, 2 gram 1 liter पानी में घोल बनाओ और घुलनशील सल्फर का स्प्रे कर दोगे तो जो बीमारी कंट्रोल हो जाती है। दूसरा, कार्बोनेजियम ले सकते हो आप, है ना, उससे 0.5 gram प्रति लीटर पानी में घोल बनाओगे ना तो इससे भी आप इसको कंट्रोल कर सकते। तो किसान भाइयों एकदम हम लोग जो रासायनिकों की बात नहीं करें, रसायनों का उपयोग हम लोग बरसों से करते आ रहे हैं, परिणाम जो हो रहा है कि नए नए कीट क्षेत्र में आ रहे हैं और कीटों में प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो रही है, सफेद मक्खी की बात हो रही है। कहीं भी किसी भी किसान के पास जाइए आप इस समय, किसान हमेशा ये कहता है कि साहब मैंने 4 spray कर दिए, मैंने 5 spray कर दिए, लेकिन सफेद मक्खी नहीं मर रही। इन सफेद मक्खी को आपको कंट्रोल करना है तो आपको सबसे पहले कोई भी फसल बो रहे हैं बीजोपचार से शुरुआत करनी,
1: बिल्कुल
0: जब तक बीजोपचार के लिए नहीं करोगे ना तो सफेद मक्खी को स्प्रे से आप कंट्रोल नहीं कर सकते।
1: वाकई सर ये ऐसा विषय है कि किसान भाइयों ने आज जाना होगा कि हमें अगर अपनी फसल से बारिश के दिनों में खरीफ में भरपूर उत्पादन लेना है तो कुछ बातों का ध्यान तो रखना जरूरी है। किसान भाइयों आज की इस बात को हम यहीं विराम दे रहे हैं, सर को हम फिर कभी आमंत्रित करेंगे और भी विषय पे बात करेंगे। सर आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अब अपन ने सुनी जो भेंट वार्ता उड़द एवं मूंग में समन्वित कीट प्रबंधन विशेषज्ञ हते डॉक्टर RP शर्मा, इनसे बातचीत करी हती मनोज सक्सेना भैया ने। और चलो अब कछु मनोरंजन हो जाए, तो आपरन को सुनवात है जो 12 मासी नीता खरे की गाय भई।

0: अबे अपन ने सुनी जो बारामासी स्वर हतो नीता खरे को भैया बहनाहरों आजकल पॉली हाउस बनाबे और इस्तेमाल करवे को चलन बढ़ रहो है। जो एक पारदर्शी प्लास्टिक की फिल्म से ढकी भई संरक्षित संरचना है जी में पौधन को नियंत्रित वातावरण उगाओ जात है। पॉली हाउस से बेमौसम उत्पादन मिलबे के संगे संगे पैदावार सोई अधिक होत है। सो ई के संबंध में अपन कछु और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सुनत है जो लघु वार्ता पॉली हाउस में उद्यानिकी फसलों की खेती विशेषज्ञ है डॉक्टर विजय अग्रवाल।
1: किसान भाइयों, पॉली हाउस एक ऐसी संरचना है जो प्लास्टिक के बने घरनुमा संरचना होती है और इसके अंतर्गत हम सारे उद्यानिकी फसलें, चाहे फूलों की खेती हो चाहे सब्जियों की खेती हो, उसके लिए जो पौधों के लिए जो आवश्यक वातावरण होता है वो उसके अंदर हम निर्मित करते हैं। ये इस प्रकार की संरचना होती है जिसमें पौधों के हिसाब से अंदर का तापमान, अंदर की नमी, आर्द्रता, बारिश के पानी से बचाव, साथ ही साथ पाला ओला, साथ में कीड़े और बीमारियों से पौधों की सुरक्षा होती है। इस आवरण की जो मुख्य बात होती है, इसमें ऊपर आप देखेंगे कि एक परावैगनी अवरोधी प्लास्टिक लगी रहती है और साथ में

0: के दोनों तरफ होते हैं, यहाँ पर इसमें कीट अवरोधी जाली लगी रहती है जिससे अंदर कीड़े प्रवेश नहीं करते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा होता है जब हम पॉली हाउस में खेती करते हैं, इसमें हम वर्ष भर खेती कर सकते हैं चाहे कोई सा भी मौसम हो और इसके अंदर हम कोई भी फसलें इसमें लगा सकते हैं। दूसरा फायदा होता है इसके अंदर बेमौसमी फसल उत्पादन भी संभव होता है। जैसा कि हम देखते हैं जब हमारे किसान भाई बेमौसम में सब्जियों की खेती करके बाजार में उत्पाद लेकर आते हैं तो उनको अधिक मूल्य मिलता है। साथ ही साथ आज के समय में जो वातावरण में ओला पाला एवं अन्य समस्याएं होती हैं जिससे जो फसल है उत्पादन प्रभावित होता है, इसमें उस दशा में भी अच्छा उत्पादन होता है। संरचना जो होती है पॉली हाउस चारों तरफ से बंद होती है तो इसमें कीड़े एवं बीमारियों का प्रवेश अंदर ना के बराबर होता है और फसल का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। इसके बाद इसमें अंदर सिंचाई के लिए टपक सिंचाई पद्धति या ड्रिप सिंचाई पद्धति की व्यवस्था होती है जिसमें पौधों में बूंद बूंद करके जो पौधों की आवश्यकता होती है उतना पानी जाता है। साथ ही साथ जो पौधों की खाद की या पोषक तत्वों की भी जो मांग होती है उस हिसाब से नपातुला हम इसमें पोषक तत्व भी पौधों को देते हैं जिससे पौधों की वृद्धि काफ़ी अच्छी होती है। किसान भाइयों, बात आती है कि हम इसमें कौन कौन सी फसलों का चयन करें। इसमें हम दो प्रकार की खेती कर सकते हैं, एक सब्जियों की खेती कर सकते हैं, एक फूलों की खेती। सब्जियों की खेती की अगर हम बात करें तो इसमें बेल वाले जो टमाटर होते हैं जो इंडिटर्मिनेट किस्म के होते हैं उनकी हम इसके अंदर खेती करते हैं। साथ में इसमें चेरी टमाटर की खेती होती है। इसके अलावा इसमें हम रंगीन शिमला मिर्ची जिसका बाजार भाव ज्यादा होता है उस तरह की शिमला मिर्ची की इसके अंदर खेती करते हैं। और खीरा जो कि स्वपरागित खीरा होता है क्योंकि खीरे में नर एवं जो मादा पुष्प होते हैं अलग अलग आते हैं एक ही बेल पर, लेकिन इसमें स्वपरागित किस्म अंदर लगानी पड़ती है क्योंकि अंदर कीड़ों का प्रवेश नहीं होता है, तो इस कारण से स्वपरागित हम खीरे लगा सकते हैं। किसान भाइयों ध्यान रखें कि इसमें लौकी गिलकी करेला तोरई ऐसी फसलें जिनमें नर और मादा फूल अलग अलग आते हैं ऐसी फसलों का चयन हम ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ इसमें अगर हम फूलों की बात करते हैं तो इसमें जो हाइब्रिड किस्म के गुलाब होते हैं जिनको कट फ्लावर के रूप में जाना जाता है जिसकी बाजार में एक फूल 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये तक का एक फूल की कीमत होती है वो इसके अंदर हम लगा सकते हैं। इसके साथ साथ जरबेरा नामक पुष्प की खेती कर सकते हैं इसके अंदर, और इसके अलावा इसमें कार्नेशन आदि की भी खेती इसके अंदर की जा सकती है। ये सब्जी एवं फूलों की खेती कर रहे हैं तो इसमें किस्म जो होती हैं एक विशेष किस्में इसके अंदर लगाते हैं जो कि ग्रीन हाउस या पॉली हाउस के अंदर अच्छा उत्पादन देती हैं, तो सही किस्मों का ही इसमें चयन करें। इसके बाद जहाँ तक संभव हो जब इसके अंदर हम पौधे लगाते हैं सब्जियों के पौधे लगाते हैं तो पौधों को भी आप सुरक्षित वातावरण में कीट अवरोधी वातावरण में आप पौधे तैयार करें जिससे उसमें किसी भी प्रकार के कीड़े एवं बीमारियों की संभावना ना रहे, और उसी प्रकार के पौधों को आपको पॉली हाउस के अंदर लगाना है। पॉली हाउस के बारे में कुछ चीज़ें हमको ध्यान में रखना है। इसमें जो फिल्म लगती है प्लास्टिक की वो पराबैंगनी अवरोधी होनी चाहिए। प्राकृतिक रूप से वातानुकूलित जो पॉली हाउस है वो हमको लगाना है। जितने क्षेत्र का हम पॉली हाउस लगा रहे हैं उससे 5 गुना पानी की व्यवस्था हमारे पास होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखें। यह संरचना 6.5 मीटर हाइट की होनी चाहिए, अगर कम हाइट की होगी तो इसमें तापमान बढ़ेगा। इसके साथ साथ इसमें ध्यान रखें कि चारों तरफ कीट अवरोधी जाली लगी हो जिससे कीड़े अंदर प्रवेश ना कर पाए, और 2 दरवाजे इसके अंदर होने चाहिए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर आप पॉली हाउस के अंदर सब्जी एवं फूलों की वर्ष भर खेती कर सकते हैं, और इनसे मिलने वाला उत्पाद की गुणवत्ता भी अच्छी होती है जिससे आपको इसका बाजार में अच्छा मूल्य मिलेगा।
1: अब अपन ने सुनी जो लघु वार्ता पॉली हाउस में उद्यानिकी फसलों की खेती, विशेषज्ञ हते डॉक्टर विजय अग्रवाल। हमारे किसान भैया बहन खेती किसानी के संगे संगे मछली पालन सोई करत है, और इके लाने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जो 10 सितंबर 2020 से शुरू करी गई हती। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को उद्देश्य है देश में मत्स्य पालन क्षेत्र को सतत विकास करवो, मछुआरन की आर्थिक स्थिति में सुधार लावो, योजना के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से पूरे देश में मत्स्य संपदा से जुड़े कार्यों को बढ़ावा दौ जा रहा है। योजना के मुख्य उद्देश्य में उत्पादन में वृद्धि मने मछली पालन और उत्पादकता को बढ़ा के इको नए स्तर पर ले जावो है। आय में वृद्धि के लाने मछुआरों और मत्स्य किसानन की आय को बढ़ावा देवो और रोजगार के नए अवसर पैदा करवो भी इको मुख्य उद्देश्य है। बुनियादी ढांचा जैसे कोल्ड स्टोरेज, आइस प्लांट, मछली परिवहन जैसी सुविधाओं को विकास करवो, आर्थिक सहायता और अनुदान मैंने सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को परियोजना लागत को 40%, जबकि महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को 60% तक का अनुदान दो जात है।

0: इकिला ने सरकार की तरफ से तालाब निर्माण, बायोफ्लॉक यूनिट, मछली बीज हैचरी और मोटरसाइकिल विद आइस बॉक्स जैसी गतिविधियों के लाने आर्थिक मदद दी जात है। सो जो तो हती जानकारी और हम उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में जो भी जानकारी है हमने अपने भैया बहनों को दी वे उनके काम में आए हैं और वे खेती किसानी के लाने सरकार की इन सभी योजनाओं को बातन को अपना है और फायदा भी उठा है। और ई के संगे आज को किसान वाणी कार्यक्रम हमें तय समाप्त करते हैं। स्वीकार करो पूनम बहन की, राम राम।
1: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहाँ,
2: पर हम तो सब ही डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच
1: है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूँगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
4: आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी।

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी भोपाल से अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए सुने कार्यक्रम सुर्खियों में।
2: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले दिन के प्रमुख घटनाक्रमों पर विशेष चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ डॉक्टर हर्ष वी पंत। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
3: भारत की अध्यक्षता में आज से नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन शुरू हुआ। इस वर्ष की थीम है सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण को दर्शाती है। आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में इस सम्मेलन के पहले दिन के घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार डॉक्टर हर्ष पंत। अम्बेसडर सज्जनहार और डॉक्टर पंत, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आज के जो हम बात कर रहे थे घटनाक्रम जो हुआ है उसमें सबसे खास बात क्या रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करना इस विषय पर आयोजित शिखर सम्मेलन में पहले दिन के सत्र को संबोधित किया और इसके अंत में उन्होंने नई दिल्ली घोषणा पत्र 2026 का प्रस्ताव रखा और इसे अडॉप्ट किए जाने की घोषणा की। तो सबसे पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
4: हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है, साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। यदि किसी सदस्य को कोई आपत्ति न हो तो मैं डिक्लेरेशन को अडॉप्ट करने का प्रस्ताव रखता हूँ। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।

0: फ्रेंड्स, आज की हमारी बैठक अत्यंत सार्थक और रचनात्मक रही। हमारे विचारों की विविधता के साथ साथ ब्रिक्स सहयोग के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता भी स्पष्ट रूप से सामने आई है। आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। रिप्रेजेंटेशन, रिस्पॉन्सिवनेस और रूल मेकिंग, तीनों में सुधार आवश्यक है। हमने इस बात पर भी बल दिया कि भविष्य की टेक्नोलॉजी और उनके नियमों के निर्माण में ग्लोबल साउथ की बराबर भागीदारी होनी चाहिए। निर्णयों और उनके परिणामों के बीच जो दूरी बनी हुई है, उसे पार्टनरशिप और कलेक्टिव एक्शन से काम करना होगा। आज एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा देता है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदले। ब्रिक्स चेयर के रूप में आपके बहुमूल्य योगदान, कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट और आपकी प्रतिबद्धता के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इसी के साथ इस सेशन के समापन की घोषणा करता हूं।
1: और एक बार फिर स्वागत करते हैं इस चर्चा में पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार का। अशोक जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
2: जी, बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए, धन्यवाद
1: जी। अशोक जी, भी हमने प्रधानमंत्री को सुना, उन्होंने जो ये न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 यानी कि नई दिल्ली घोषणा पत्र 2026 जो अडॉप्ट की गई आज पहले दिन के सत्र के अंत में, उसके बारे में बताया। तो जो ये घोषणा पत्र अडॉप्ट किया गया है, इसके सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आपको कौन से लगते हैं?
2: जी, बहुत धन्यवाद मुझे फिर से मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ जो ये हम कंसेंसस डिक्लेरेशन, ये जो घोषणा पत्र है
1: जी,
2: इसको हम सर्वसम्मति से अडॉप्ट कर पाए, मेरे विचार से सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है। क्योंकि बहुत ये कहा जा रहा था जो ये मुद्दे इतने पेचीदे हैं और इतने डिवाइसिव हैं देशों के बीच में, तो उसमें एक सर्वसम्मति पाना बहुत ही मुश्किल होगा
1: जी।
2: क्योंकि आपको याद है जो 2023 में जब भारत ने अध्यक्षता की थी G20 की, तब भी ऐसा ही मुद्दा था रूस और यूक्रेन का युद्ध का, और तब रूस चीन एक तरफ खड़े थे और सारे जो पश्चिमी देश थे एक तरफ खड़े थे। परंतु एक ब्रिज बिल्डर के नाते भारत ने अपना रोल अदा किया था और एक सर्वसम्मति से वहां पर भी डिक्लेरेशन पारित किया था, और वो उस दो दिनों के सत्र के शुरू होने के पहले दिन के शुरू होने से
1: जी,
2: उसको एडॉप्ट कर लिया गया था। आज भी पहले दिन ही किया गया, और क्योंकि ये बहुत इसमें बातचीत ये कहा जा रहा था जो ईरान चाहता है, क्योंकि उसके ऊपर हमला हुआ है, क्योंकि ये तीन देश जो हैं, युद्ध चल रहा है जो ईरान में और अमेरिका और इसराइल में, तो इसमें तीन देश जो इसमें भागीदार हैं, ईरान के ऊपर तो हमला हुआ है और ईरान ने हमला किया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरेबिया, तो उनके ऊपर वो कह रहे थे जो किस प्रकार का ये फॉर्मुलेशन किया जाए। तो यहाँ पर फिर से भारत ने एक ब्रिज बिल्डर बनकर वो काम किया है। दूसरी बात मैं बताऊंगा जो यहाँ पर जो आतंकवाद के विरुद्ध जो प्रोविजन्स हैं, मेरे विचार से वो बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर कोई उनको पढ़ेगा और उनको देखेगा, ये पैराग्राफ 40, 41, 42 में सभी कुछ रिफ्लेक्टेड हैं, तो ये जो पूरा लैंग्वेज है, ये पूरा लैंग्वेज भारत जो लैंग्वेज का प्रयोग करता है आतंकवाद के बारे में बोलने का, जो ये किसी भी कारण से उसको नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, ये दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए, सभी को साथ में मिलकर इसके विरुद्ध काम करना चाहिए, जो टेररिज्म फंडिंग है, जो मनी लॉन्ड्रिंग है, उसके विरुद्ध काम करना चाहिए, तो ये सब जो भारत कहता है, मांगता है, वो उसमें दिए हुए हैं। और पहलगाम इंसिडेंट के बारे में भी, जो पिछले साल 22 अप्रैल को हुआ था जिसमें हमारे 26 लोग मारे गए थे, तो उसका भी इसमें पूरी तरीके से विवरण है। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है।

0: और उसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो कि, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने, आपको याद होगा, कहा
1: जी
0: था जो हम ऐसा ये ब्रिक्स समिट करना चाहते हैं, ब्रिक्स की अपनी प्रेसिडेंसी करना चाहते हैं जो कि पीपल सेंट्रिक हो,
1: बिल्कुल
0: जिसका फायदा लोगों को मिले, जिसमें ह्यूमैनिटी फर्स्ट हो। तो ये सारे जो 140 पैराग्राफ हैं इस डिक्लेरेशन के, वो सभी इसके बारे में ही बताते हैं जो कैसे नेशनल करेंसीज में ट्रेड किया जाए, ट्रेड बढ़ाया जाए,
1: जी
0: निवेश बढ़ाया जाए, तो एनर्जी सिक्योरिटी कैसे की जाए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, फूड सिक्योरिटी को कैसे आगे लेकर आया जाए, स्टार्टअप्स फंड कैसे किया जाए, विमेन और यूथ का इन्वॉल्वमेंट और ज्यादा होना चाहिए ब्रिक्स के देशों में।
1: जी
0: तो ये सभी चीजें इसमें हैं, और मैं समझता हूं जो बहुत ही, ये एक ठोस और बहुत ही अच्छा डिक्लेरेशन है जो कि आगे चलते हुए सभी देशों का बहुत फायदा करेगा।
1: डॉक्टर पंत, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी हमने अंबेसडर सज्जन हार को सुना, उन्होंने काफी विस्तार में बताया है जो ये नई दिल्ली घोषणा पत्र 2026 आज अडॉप्ट किया गया है, इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्होंने कई बातें कही, पर जो सबसे अहम बात मुझे लगी, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि सर्वसम्मति से अडॉप्ट कर पाए हैं हम बात, क्योंकि हमारे जो ब्रिक्स के जो सदस्य देश हैं और जो मेंबर नेशंस हैं उसमें सऊदी अरेबिया, यूएई एक तरफ है, ईरान एक तरफ है, तो इन सब बातों को देखते हुए आप इसको कितना अहम मानते हैं कि एक सर्वसम्मति से पास हुआ ये अडॉप्शन, और उसके अलावा आप क्या मानते हैं कि क्या महत्वपूर्ण बिंदु रहे?
2: जी धन्यवाद। मुझे भी ऐसा लगता है कि जो एक कॉमन परसेप्शन था कि बड़ा भारत को मुश्किल आएगी कंसेंसस डॉक्यूमेंट अडॉप्ट करवाने में, और ब्रिक्स कहीं ऐसा ना हो कि लड़खड़ा जाए, वो मुझे लगता है कि भारत ने काफ़ी अपनी डिप्लोमेटिक मेटल इस नेगोशिएशंस में दिखाई, और जो कंपीटिंग एजेंडास थे, चाहे वो ईरान और सऊदी अरब या यूएई के बीच में हो, डाइवर्जेंसेस थे, उनको पाटने में भारत की डिप्लोमेसी सफल रही। तो मुझे लगता है बड़ा अचीवमेंट है, और एक ट्रेंड बनता जा रहा है अब G20 से लेकर ब्रिक्स तक, जहां भारत जो एक बहुत ही फ्रेगमेंटेड हम वैश्विक अवस्था में जी रहे हैं, उसमें भारत एक एक तरह से देशों को साथ पिरोने में, कन्वर्जेंसेस ढूंढने में, कॉमन सॉल्यूशंस को आगे लाने में सफल होता नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है ये भारत के जो ग्लोबल स्टेचर के लिए, ये भारत की डिप्लोमेसी के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल है कि भारत का रोल जो है वो दुनिया में, जब दुनिया में देश एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, उसमें भारत एक ऐसी व्यवस्था को लेकर आता है, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स को लेकर आता है जहां पर एक देश, जो देशों के बीच में खाई है, उसको पाटने में भारत सफल हो पाता है। तो मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण एक मापदंड बनता जा रहा है भारत की डिप्लोमेसी के लिए। इसमें जो मुझे कुछ इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि यूजुअली ब्रिक्स का जो एजेंडा होता है वो जियो इकोनॉमिक्स और जो SDG इश्यूज हैं
1: जी
2: उन पर वो काफी प्रबलता के साथ सामने आते हैं, लेकिन इस बार टेररिज्म के अलावा ये जो पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स की बात कर रहा है ब्रिक्स, और यूनिलैटरल वॉर मेजर्स ना आए इसकी बात कर रहा है, मुझे लगता है बड़े महत्वपूर्ण है कि ब्रिक्स आज अपने आप को एक जियो इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म से जियो पोलिटिकल प्लेटफॉर्म
1: जी
2: की तरफ बनता नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, और ब्रिक्स आज ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आता है इस बात को कहने में कि जो भी दुनिया में बदलाव हो रहा है, उथल पुथल हो रही है, उसमें ब्रिक्स कहाँ पर कंट्रीब्यूट कर सकता है। जो पहले एक हिचक होती थी जियोपॉलिटिकल इश्यूज पर बोलने की, वो
1: जी
2: हिचक अब खत्म होती नजर आ रही है।
1: आपने एक बहुत दिलचस्प बात कही कि ब्रिक्स जो है वो जियो इकोनॉमिक ग्रुपिंग से बढ़कर अब एक जियो पोलिटिकल ग्रुपिंग की तरफ बढ़ गया है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। पर इससे पहले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आज के सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कई बातें कही, और एक बात जो उन्होंने कही वो ये कि अब ये समूह परिपक्व हो गया है। उन्होंने कहा कि इट हैज रीच्ड अ कमिंग ऑफ एज। पहले सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
3: आज ब्रिक्स भी अपने कमिंग ऑफ एज के क्षण में है। पिछले 20 वर्षों में ब्रिक्स ने वैश्विक मंच पर अपनी विशिष्ट पहचान बढ़ाई है। हम एक दूसरे के दृष्टिकोण का सम्मान करते हैं और कंसेंसस से आगे बढ़ते हैं। हम किसी

0: के विरुद्ध नहीं बल्कि सबको साथ लेकर चलने की सोच के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करते।
1: अम्बेसडर सज्जन हार, हम साफ तौर पर हमने जैसे भी सुना प्रधानमंत्री मोदी को, उन्होंने कहा कि ब्रिक्स जैसा एक विविध समूह जिसके भीतर इतने अंतर हैं, इतने डिफरेंसेस हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारे अंदर, हमारे भीतर काफ़ी अंतर हैं, काफ़ी डिफरेंसेस हैं, पर साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इन डिफरेंसेस के बावजूद ब्रिक्स ने सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का रास्ता चुना है। इस टिप्पणी को आप कैसे देखते हैं?
2: जी देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है और इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ कहूँगा जो अभी उन्होंने कही और दोहराई, और वो उन्होंने कहा जो हम किसी के विरुद्ध नहीं।
1: जी,
2: ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बहुत कहा जा रहा था जो इसमें गुट में कुछ ऐसी शक्तियां हैं, कुछ ऐसे देश हैं जो कि इस गुट को एंटी वेस्टर्न बनाना चाहते हैं, पश्चिम देशों के विरुद्ध बनाना चाहते हैं। और वो पहले नाम लिए जाते थे, ईरान का तो यकीनन, क्योंकि ईरान के ऊपर इतने ये आक्रमण हुआ है, अभी भी हुआ है, पिछले साल भी हुआ है, उसके विरुद्ध कितने सैंक्शंस लगाए गए हैं, केवल अभी से नहीं परंतु दशकों से उसके ऊपर सैंक्शन लगे हैं, तो वो तो बिल्कुल एक एंटी वेस्टर्न फॉर्मुलेशन इसमें यकीनन चाहते थे भाई, इसको ग्रुप को हम एक एंटी वेस्टर्न ग्रुप के रूप में लेकर आए। और ये भी कहा जाता था क्योंकि रूस के ऊपर भी सैंक्शंस इतने लगाए गए, रूस के ऊपर ये जो यूक्रेन ने के ऊपर हमला किया रूस ने, और फिर जो सहायता दी जा रही है यूक्रेन को, तो वो भी चाहते थे जो ये इसको एंटी वेस्टर्न, और फिर चीन का भी ऐसा ही कहा माना जाता था जो रवैया है। परंतु उन्होंने कहा जो हम, और भारत का हमेशा पक्ष रहा है, जो हम एंटी वेस्टर्न नहीं है, हम नॉन वेस्टर्न हैं, हम पश्चिमी देशों के साथ नहीं हूँ परंतु उनके विरुद्ध तो बिल्कुल नहीं है। और इसमें देखा जाए भारत के अपने बड़े अच्छे संबंध हैं, न केवल अमेरिका के साथ परंतु यूरोप के साथ और बहुत सारे पश्चिमी देशों के साथ। तो जो उन्होंने कहा है जो ये हम किसी के विरुद्ध नहीं है और हम कंसेंसस की बात करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए ये वाला जो गुट है इसमें करीब 49% से ऊपर जनसंख्या है पूरे विश्व की, 40% है इसकी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी बहुत है, 26% है इसका वर्ल्ड ट्रेड का प्रोपोर्शन, 40% है इसकी एनर्जी प्रोडक्शन, क्योंकि एनर्जी के बहुत इसमें जायंट्स आ गए हैं, रूस पहले था, अभी यूएई, सऊदी अरेबिया, ईरान, इंडोनेशिया सभी मिलकर आ गए हैं। तो अगर ये इसमें इतना ज्यादा आर्थिक शक्ति है परंतु अगर ये एक आवाज से नहीं बोलेगा तो कोई इसकी आवाज को सुनेगा नहीं, कोई इसकी आवाज पर ध्यान नहीं देगा। परंतु ये हमने इस समय ये बता दिया है, प्रूफ कर दिया है जो ये गुट, हालांकि इसमें इतनी विविधता है परंतु फिर भी ये एक आवाज से सभी मिलकर बोल सकते हैं, और इसीलिए मेरे विचार से इस गुट का जो महत्व है और कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। अगर सभी अपनी अपनी अलग आवाज में बोलते, अगर हम कंसेंसस डिक्लेरेशन नहीं ले आ पाते जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, तो फिर इसका गुट का इतना महत्व नहीं होता जितना कि अब हो रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं जो कितने सारे देश हैं जो दरवाजे के बाहर खटखटा रहे हैं, वो भी अंदर आना चाहते हैं,
1: बिल्कुल,
2: परंतु हम नहीं आने दे रहे हैं अभी क्योंकि हम इसको कंसोलिडेट कर रहे हैं अभी।
1: डॉक्टर पंत, प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से ग्लोबल साउथ के एक बड़े समर्थक रहे हैं, वोटरी रहे हैं, और इस बात पर जोर देते रहे हैं कि अब इसकी आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और आज भी अपने संबोधन में उन्होंने ग्लोबल साउथ का समर्थन किया। पहले सुनते हैं क्या कहा।
0: हमें ग्लोबल साउथ को रूल टेकर से रूल शेपर बनाने के लिए प्रयास करने होंगे। ब्रिक्स के माध्यम से हम ग्लोबल साउथ के देशों के युवा डिप्लोमेट्स और पॉलिसी मेकर्स को नेगोशिएशन स्किल्स, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और लीगल एक्सपर्टीज प्रदान कर सकते हैं। भारत इस विषय में लीड लेने के लिए तैयार है।
1: डॉक्टर पंत, अभी जैसा हमने सुना प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्लोबल साउथ को नियम मानने वाले यानी कि रूल टेकर्स की जगह अब नियम बनाने वाले यानी कि रूल शेपर्स में बदलने की कोशिश करनी चाहिए, तो आपको लगता है कि, और इसमें भारत, उन्होंने

0: कि भारत इस बारे में एक अग्रणी भूमिका निभाने को तैयार है, जो भी ट्रेनिंग की जरूरत है वो हम देने के लिए तैयार हैं, तो क्या ब्रिक्स, ग्लोबल साउथ और जो पश्चिमी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके बीच का एक पुल जो है वो भारत की स्थिति को, भारत की स्थिति कैसे और कितना मजबूत स्थिति है भारत की इसमें?
1: देखिए, दुनिया में जो इस समय उथल पुथल चल रही है और जो हमने अंतर्राष्ट्रीय जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बने, वो जो पूरा स्ट्रक्चर ढांचा बना था ग्लोबल ऑर्डर का, वो चरमरा रहा है, वो शिथिल पड़ता जा रहा है और उसमें सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है वो ग्लोबल साउथ का हो रहा है, विकासशील देशों का हो रहा है। अगर आप दो युद्ध भी देखें जो यूरोप में रूस और यूक्रेन के बीच में है और मिडल ईस्ट में ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच में चल रहा है, वो उसमें चाहे फूड सिक्योरिटी का इशू हो, एनर्जी सिक्योरिटी का इशू हो, सारे इश्यूज जो हैं वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उनका सबसे गरीब देशों पर पड़ रहा है, जो सबसे जो विकासशील देश है उन पर पड़ रहा है और उनकी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म्स बने हैं यूएन हो, डब्ल्यूटीओ हो, डब्ल्यूएचओ, वो काम नहीं कर रहे, ये बात बड़ी स्पष्ट है। तो भारत का पिछले कुछ सालों से ये सतत प्रयास रहा है कि कैसे इन देशों की आवाज को बुलंद किया जाए, इनकी प्रायोरिटीज को, इनके इंटरेस्ट को, इनके एस्पिरेशंस को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखा जाए, क्योंकि ग्लोबल गवर्नेंस का कोई मतलब नहीं अगर आप इनकी आवाजें नहीं सुन रहे, और बड़ी शक्तियां ये बात बिल्कुल सही है नहीं सुन रही हैं। तो कहां उसमें भारत ने जो लीड ली, जिस तरह से भारत अफ्रीकन यूनियन को G20 में का मेंबर बनाता है और अब जो उसने अपनी ब्रिक्स की एजेंडा की जो रूपरेखा तैयार करी, उसमें अगर आप ध्यान से देखें, चाहे रेजिलियंस की बात वो करता है, चाहे इनोवेशन की करता है, चाहे कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी की करता है, इसके केंद्र में ग्लोबल साउथ है। तो भारत हमेशा से न सिर्फ अपने हितों की बात कर रहा है मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पर, बल्कि वो ग्लोबल साउथ के डेवलपिंग कंट्रीज के हितों की बात कर रहा है। जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि जो भारत अपने लिए कहता था कि भारत रूल टेकर से रूल शेपर की तरफ बढ़े, रूल्स बनाए बैठकर, वो बात आज प्रधानमंत्री ने ग्लोबल साउथ के लिए कही कि ग्लोबल साउथ अगर रूल्स नहीं बनाता है तो उसको दूसरे के रूल्स पर ऑपरेट करना पड़ता है और वो रूल्स ऐसे हैं जो उसको नुकसान देते हैं, उसको मार्जिनलाइज करते हैं। तो मुझे लगता है ये बड़ी महत्वपूर्ण बात भारत की, एक बहुत महत्वपूर्ण पहल भारत की तरफ से हो रही है और भारत उसको अपने एक्सपीरियंसेस को साझा करने को तैयार है, चाहे वो DPI हो, चाहे वो लो कॉस्ट इनोवेशन हो, चाहे वो सस्टेनेबिलिटी हो, और दूसरा भारत कैपेसिटी बिल्ड करने को तैयार है ग्लोबल साउथ के देशों में। जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि डिप्लोमेसी में, नेगोशिएशंस में हम कैसे उन देशों को ज्यादा सशक्त बना सकते हैं जो कमजोर पड़ जाते हैं नेगोशिएटिंग टेबल पर, क्योंकि जो विकसित देश है उनके पास इतनी ताकत होती है डिप्लोमेसी की या नेगोशिएटिंग पावर इतनी ज्यादा होती है कि कहीं पर ग्लोबल साउथ या डेवलपिंग वर्ल्ड कमजोर पड़ जाता है। तो ये प्रयास भारत का लगातार जारी है और मुझे लगता है आगे भी भारत के केंद्र में, भारतीय विदेश नीति के केंद्र में ग्लोबल साउथ और उनके एस्पिरेशंस रहेंगे।
0: बात अगर जब हम कर रहे हैं कि रूल टेकर से रूल शेपर्स बनने की बात कर रहे हैं ग्लोबल साउथ की, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जैसे कि UNSC है, यानी कि UN सिक्योरिटी काउंसिल है, या जो विभिन्न फाइनेंशियल आर्थिक संगठन है, उनमें सुधार होना बहुत ज़रूरी है। और ये भी एक मुद्दा है जो आज प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में उठाया।
2: UN सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म अब और टाला नहीं जा सकता। इस विषय पर टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशंस को निश्चित समय सीमा और स्पष्ट परिणाम से जोड़ना होगा। उसी तरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वोटिंग पावर, लीडरशिप पोजीशंस और पॉलिसी प्रायोरिटीज आज की इकोनॉमिक रियलिटीज के अनुसार होनी चाहिए। जो देश ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को गति देते हैं, उन्हें ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस को दिशा देने में भी उचित भूमिका मिलनी चाहिए।
0: जी अम्बेसडर सज्जनहार, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो प्रधानमंत्री ने बात की कि अब UN सुरक्षा परिषद में सुधार में और देरी नहीं की जा सकती, उन्होंने इसी तरह वित्तीय संस्थानों में भी वोटिंग पावर और लीडरशिप के पदों में प्राथमिकताओं की बात की है, ये आज की मौजूदा वर्तमान में जो वैश्विक सच्चाई है उसको दर्शाता है और ये कितना जरूरी हो गया है?
3: जी, बहुत जरूरी हो गया है। देखिए, मेरे विचार से ये वाले जो रिफॉर्म्स हैं, ये जो बदलाव है, ये आज नहीं ये कल हो जाना चाहिए था, परसों बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और आपको याद होगा जो जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने पद संभाला था और वो गए थे यूएन जनरल असेंबली में, तब उसके तब उन्होंने कहा था जो एक साल में इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए और कोई ना कोई निर्णय होना चाहिए, निष्कर्ष निकलना चाहिए, क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल अभी वो रियलिटी रिफ्लेक्ट करता है जो कि 1945 में थी, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तब जो रियलिटीज थी उसको रिफ्लेक्ट करता है, आज के दिन की रियलिटीज रिफ्लेक्ट नहीं करता। और अगर उसको ठीक तरीके से काम करना है, क्योंकि हम देख रहे हैं जो मल्टीलैटरलिज्म हो, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हो, एकदम शिथिल पड़ चुका है, एकदम इतने उसका सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव था जो वहां पर पीस सिक्योरिटी शांति लेकर आए, सुरक्षा लेकर आए पूरे विश्व में। अब हम देख रहे हैं रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है 4.5 साल से, उसमें वो कुछ भी नहीं कर पाया है। और अभी ये ईरान का और अमेरिका का युद्ध भी कितने 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं, परंतु उसमें भी कुछ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल कोई योगदान नहीं दे पाया है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है वो उसका कार्यशीलता बढ़ेगी, वो अच्छा अपना काम कर पाएगा अगर वो आज की रियलिटीज को रिफ्लेक्ट करता है। वही बात है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, क्योंकि वहां पर भी जो लीडरशिप है, वोटिंग राइट्स है, वो आजकल की इकोनॉमीज को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। क्योंकि अगर ब्रिक्स में देखा जाए, चीन दूसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है पूरे विश्व में
0: जी,
3: भारत चौथे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और भी हमारे इसमें बहुत बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, परंतु उनको अपना जितना उनका योगदान है उतना बिल्कुल भी नहीं मिलता है। भारत करीब 18% योगदान करता है ग्लोबल ग्रोथ में, परंतु यही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जो उनको
0: उनको आवाज नहीं मिल रही, जितना योगदान है उतनी आवाज नहीं मिल रही,
3: उतनी आवाज नहीं मिल रही और उसको जरूर मिलना चाहिए
0: जी। एक जी। और बात जो आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कही वो थी कि समुद्री यात्री यानी कि सी फेयरर्स की सुरक्षा को लेकर उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है, सुनते हैं क्या कहा।
2: सी फेयरर्स का वैश्विक व्यापार में बहुत बड़ा योगदान है, किंतु अक्सर मुश्किल समय में उन्हें सहारे की कमी महसूस होती है। मेरा प्रस्ताव है कि क्या हम सी फेयरर्स इमरजेंसी सपोर्ट नेटवर्क बना सकते हैं, इसके माध्यम से संबंधित देशों की मैरिटाइम अथॉरिटीज और मिशंस को जोड़ा जाएगा। इससे डिस्ट्रेस अलर्ट्स, मेडिकल असिस्टेंस, परिवारों को सूचना तथा इवैक्यूएशन में सहयोग दिया जा सकता है।
0: डॉक्टर पंत, प्रधानमंत्री ने जो सी फेयरर्स इमरजेंसी सपोर्ट नेटवर्क बनाने की जो एक पेशकश की है, अगर हम मौजूदा परिपेक्ष में देखें, खासकर जो पश्चिम एशिया में हो रहा है और उससे पहले भी उसके साथ साथ और न सिर्फ पश्चिम एशिया में पर और भी हिस्सों में जो भारत विश्व के दूसरे हिस्सों में हो रहा है, एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर सप्लाई चेन में जो हम आजकल सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शंस हम देख रहे हैं, उन सब के मद्देनजर ये जो प्रपोजल, ये जो एक प्रधानमंत्री ने बात कही है एक सपोर्ट नेटवर्क बनाने के लिए, ये कितनी अहम है?
1: ये मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट एक पहल प्रधानमंत्री कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें पिछले कुछ समय से वैश्विक हालात जिस तरह के बने हुए हैं, उसमें सबसे डायरेक्ट इंपैक्ट जो हो रहा है वो ग्लोबल ट्रेड पर हो रहा है, ग्लोबल कॉमर्स पर हो रहा है, सप्लाई चेन्स डिस्टर्प्ट हो रही हैं, और जो एक जिस तरह से वैश्विक ढांचा बना हुआ था व्यापार का, उस पर निरंतर प्रहार हो रहा है। और ये बात भारत लगातार कहता रहा है कि जो बेसिक ग्लोबल गुड्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं होता है तो उसका प्रभाव विकासशील देशों पर पड़ता है, गरीब देशों पर पड़ता है, और ग्लोबल कॉमर्स जिस तरह से डिस्टर्ब होता है उसका नेगेटिव इंपैक्ट सारी ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ता है, और जिसका एग्जाम्पल हम देख रहे हैं आजकल क्या हो रहा है, पूरी वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है वो उथल पुथल है, इकोनॉमिक डिक्लाइन हो रहा है, GDP नीचे जा रहे हैं। तो कहीं पर इसको सुदृढ़ करना, इसमें एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जो आपकी मदद कर पाए कठिन से कठिन समय में, जब दो देश युद्ध लड़ रहे हों, लेकिन कहीं पर जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वॉर फाइटिंग के वो प्रोटेक्ट रहे और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट

0: है, और इसको इसका समर्थन जरूर काफी हद तक न सिर्फ ब्रिक्स के देश बल्कि ब्रिक्स से आगे जो देश हैं, ब्रिक्स के बाहर जो देश हैं वो भी करेंगे, क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इकोनॉमी पर है, लोगों की लाइवलीहुड पर है, लोगों की इकोनॉमी इकोनॉमिक ग्रोथ पर है। तो ये मेरे हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रपोजल भारत ने प्रस्तुत किया है अपनी प्रेसिडेंसी के लिए, और
1: जी
0: अगर ये आत्मसात होता है, अगर ये ऑपरेशनलाइज होता है ग्राउंड पर, तो इसका बेनिफिट ग्लोबल होगा, न सिर्फ भारत को होगा बल्कि दुनिया में होगा।
1: जी अब बात करते हैं कि आज जो पूरा दिन की गतिविधियां, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कई अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से भी बातचीत की। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 7 साल बाद भारत पहुंचे हैं, आज आए हैं, और उनके साथ आज कुछ देर पहले आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की, और इन दोनों नेताओं के बीच में ये 3 साल में तीसरी मुलाकात थी। पहले सुनते हैं कि इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
2: आपका हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। ब्रिक्स समिट में आपके सकारात्मक वक्तव्य के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सेलेंसी, भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान चीन से मिले समर्थन और सहयोग के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। अब हमें द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा करने का अवसर मिल रहा है। एक बार फिर भारत में आपका हार्दिक स्वागत है।
1: अम्बेसडर सज्जनहार, दुनिया की दो सबसे अधिक आबादी वाली उभरती अर्थव्यवस्थाएं भारत और चीन, दोनों नेताओं के बीच में ये जो बैठक हुई है ये कितनी महत्वपूर्ण है?
3: जी, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। जैसे आपने बताया, जो ये पिछले 3 साल में तीसरी बैठक है, जो हमारे बीच के जो संबंध थे उनमें बहुत एक शॉक उसको मिला था, बड़ी खटास आ गई थी जब गलवान इंसिडेंट हुआ था 2020 में, जून 2020 में, और वो 5 साल तक चलता रहा, कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहे, और जो हमारे संबंध थे, राजनीतिक संबंध, राजनयिक संबंध, उनको बहुत ही निचले स्तर पर हम ले आए थे, और बहुत से ऐसे अंकुश भी लगा दिए थे भारत ने जो चीन के साथ संबंधों पर। परंतु इसकी फिर से शुरुआत हुई अक्टूबर 2024 में, जब कजान में रूस में ब्रिक्स की समिट के साइडलाइंस पर मुलाकात हुई, और तब नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन शुरू हुआ। और फिर पिछले साल त्यानजिन में मुलाकात हुई, इस बारी बिश्केक में भी 10 दिन पहले मुलाकात हुई, परंतु कोई स्ट्रक्चर्ड बायलैटरल मीटिंग नहीं हुई। परंतु आज ये मुलाकात हुई, और मैं समझता हूं जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस शुरू किया था 2024 में अक्टूबर में, जिससे कि हमने वीजा देने शुरू कर दिए थे, फैसिलिटेट कर दिए थे, जिससे कि हमने डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू कर दी थी, कैलाश मानसरोवर यात्रा हमने फिर से प्रारंभ कर दी थी, जो चीन से इन्वेस्टमेंट आती है उसमें थोड़ी सी हमने ढील दे दी थी, उसके जो प्रोविजंस थे उनको थोड़ा लिबरल बना दिया था, लूजन कर दिया था। तो ये मैं समझता हूँ नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस, ये शुरुआत हुई थी 2024 में, और आज की मुलाकात में देखता हूँ, देखिए मैं नहीं समझता जो कोई बहुत ही इतना बड़ा या जिसे कहा जाए गेम चेंजिंग या मेजर अनाउंसमेंट होगा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के बारे में, परंतु फिर भी मैं समझता हूं जो हमारे संबंध ठीक होते हुए चल रहे हैं, तो उसको और ज्यादा कंसोलिडेट किया जाएगा। थोड़ा सा दोनों देशों के बीच में, दोनों नेताओं के बीच में विश्वसनीयता को और आगे लाने का प्रयास किया जाएगा, और जिससे कि सबसे महत्वपूर्ण बात जो प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते हैं, जो हमारे जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो हमारा 3500 किलोमीटर का बॉर्डर है, रिकग्नाइज्ड वो नहीं है, डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, उसके ऊपर पीस और ट्रैंक्विलिटी रहनी चाहिए, उसके ऊपर शांति रहनी चाहिए। हमने देखा है पिछले कुछ सालों में चीन ने उनके ऊपर बहुत इनकर्शंस किए हैं, 2013 में, 2014 में, 2017 में, 2020 में तो गलवान हुआ। तो वो जो बॉर्डर है वो स्टेबल होना चाहिए, वो स्थिर होना चाहिए, और वहां पर शांति रहनी चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी।
1: चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले सीधे चलते हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद कुमार के साथ, जो इस वक्त मौजूद हैं भारत मंडपम में। आनंद, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
4: जी अनुभा
1: जी, आनंद मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज के पूरे दिन की गतिविधियां जो रही, अब उसके बाद आज जो नई दिल्ली डिक्लेरेशन भी अडॉप्ट हो गया, अब कल जो दूसरा

0: दिन है इस शिखर सम्मेलन का, कल के लिए क्या कार्यक्रम है और कल क्या क्या होने की संभावना है?
1: अनुभा, ब्रिक्स सम्मेलन के कल दूसरे और अंतिम दिन ब्रिक्स के साझेदार देश समावेशी वैश्विक विकास के भविष्य को आकार देने संबंधित विषय पर आयोजित सत्र में भाग लेंगे। इस सत्र के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति से भी वार्ता करेंगे। आज ब्रिक्स के जैसे 20 वर्ष पूरे हुए हैं, इसके उपलक्ष्य में सदस्य देशों के नेताओं ने दो स्मारक डाक टिकट भी जारी किए। सत्र के आज समापन के बाद सदस्य देशों के नेताओं ने भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया और बाद में सभी ने बरगद के पौधे भी लगाए। जी अनुभा,
0: आनंद, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी डॉक्टर पंत, मैं आप पर वापस आना चाहूंगी। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री की जो द्विपक्षीय वार्ताएं आज हुई, उनमें हमने अभी बात करी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स के जो अन्य सदस्य देश हैं, इथियोपिया और यूएई, और जो भागीदार देश है मलेशिया और वियतनाम, इनके नेताओं से भी मुलाकात की। दो राष्ट्रों के बीच जब इस तरह के मजबूतों का संबंध को मजबूत करने के लिए इस तरह की जो द्विपक्षीय वार्ताएं होती हैं, वो कितनी महत्वपूर्ण है, खासकर व्यापार, ऊर्जा, रक्षा, राजनीतिक और राजनयिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए?
2: देखिए, जब भी किस तरह के मल्टीलैटरल इवेंट्स होते हैं, प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो उसमें एक अपॉर्चुनिटी होती है, एक मौका होता है कि देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे से मिलें और जो अपने जो कॉमन इंटरेस्ट की बात है वो करें। और मुझे लगता है इसमें भारत ने इसका पूरा फायदा उठाते हुए सभी देशों के साथ मुलाकात की है, और जिसका भी आनंद जी बता रहे थे, कल भी वार्ताएं होंगी। लेकिन भारत की जो रूस के साथ, चीन के साथ और वियतनाम जैसे देशों के साथ जो वार्ता हो चुकी है, वो मुझे लगता है अपने आप में भारत का भी एक जो बायलैटरल जो रिलेशनशिप्स हैं भारत की, उनको सुदृढ़ करने में काफी योगदान देंगी। और आगे जैसे जैसे ये संबंध और गहरे होंगे, हम ऐसी द्विपक्षीय वार्ताओं को और प्लेटफॉर्म्स में भी होते हुए देखेंगे।
0: अम्बेसडर अशोक सज्जनहार और डॉक्टर हर्ष पंत, आप आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े और चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए।
4: सुर्खियों में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। लता मंगेशकर और मुकेश के युगल स्वर में पेश है पारसमणि फिल्म का गीत। फारूक कैसर के गीत को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अब सुनिए एक फूल दो माली फिल्म का गीत। प्रेम धवन के गीत को सुरों में ढाला है रवि ने, आवाज आशा भोसले की।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है छोटे से अंतराल का।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
5: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
2: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल।

0: बरसात के सुहाने मौसम में जगह जगह गड्ढों में भरने लगता है गंदा पानी, कीचड़ गंदगी का फैल जाता है साम्राज्य, भिन भिन आती है मक्खियाँ, पनपने लगते हैं मच्छर, मौसमी बीमारियाँ देने लगती हैं दस्तक।
1: दिल करे हाए, हाए। कोई ये बताए क्या होगा?
2: हमें कुछ नहीं होगा अगर हम सभी अपने घर और आसपास सफाई रखें, गड्ढों में पानी न जमा होने दें, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की शुद्धता का ध्यान रखें, ताज़ा हल्का भोजन करें, खुले में रखें, कटे फल और खाद्य पदार्थ न खाएं,
0: और
2: फिर लें आनंद इस मौसम का।
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, 8:45 होने को है। कुछ ही क्षणों में समाचार संध्या का अनुप्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया, बहुपक्षवाद को मजबूत करने और व्यापक सहयोग के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि की। घोषणा पत्र में सदस्य देशों के बीच गहन आर्थिक और विकासात्मक सहयोग का आह्वान। पश्चिम एशिया सहित सभी विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए संवाद और कूटनीतिक प्रयासों का आग्रह। भारत ने कहा, घोषणा पत्र को अपनाया जाना भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, निर्णयों और परिणामों के बीच अंतर को साझेदारी और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से पाटना होगा। कहा, ब्रिक्स सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने द्विपक्षीय बैठक में रणनीतिक और दीर्घकालिक संबंधों पर बल दिया। कहा, मतभेदों का को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने रेड कॉर्नर नोटिस के अंतर्गत वांछित अमृतपाल सिंह को मोल्दोवा से भारत प्रत्यर्पित कराया और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में आज रात मौजूदा चैंपियन आरिना सबालेंका का सामना एलिना रिबाकिना से। और अब समाचार विस्तार से। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में इस घोषणा पत्र को अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
5: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार, प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
4: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम निर्माण की प्रक्रिया में सुधार आवश्यक हैं। श्री मोदी ने कहा कि निर्णयों और उनके परिणामों के बीच के अंतर को साझेदारी और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से पाटना होगा। ब्रिक्स के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सदस्य देशों के नेताओं ने 2 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए। इससे पहले उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यान्वयन तंत्र 3 पक्षों के समूह ट्रोइका के माध्यम से सभी पहलों और उनके परिणामों की निगरानी करेगा।
5: गवर्नेंस का वर्तमान स्ट्रक्चर एक पिरामिड जैसा दिखाई देता है। हमें इस पिरामिड अब प्रिविलेज को प्लेटफॉर्म अब पार्टनरशिप में बदलना है, जहां हर देश की आवाज हो, हर सदस्य का स्टेक हो, हर प्रयास के केंद्र में मानवता का विकास हो। इस उद्देश्य से मैं प्रस्ताव रखता हूं

0: नमस्कार। आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। संस्कृति को अगर किसी एक शब्द में समझना हो तो संभवतः वो शब्द होगा जीवन। हम किन परंपराओं को सजोते हैं, किन नदियों के किनारे अपनी स्मृतियां छोड़ते हैं, किन पर्वों में सामूहिक उल्लास के रंग भरते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या गाते हैं, किस भाषा और बोली में अपनी पीड़ा दर्ज करते हैं, इन सब में हमारी संस्कृति सांस लेती है। और इसीलिए भाषा भी केवल संवाद का माध्यम नहीं है, भाषा में हमारी स्मृतियां हैं, हमारी मान्यताएं हैं, हमारी जीवन दृष्टि है। जरा सोचिए, हमारी दादी नानी की कही कोई पुरानी बात, गांव की कोई लोक कथा, किसी त्योहार का गीत, किसी रिश्ते को पुकारने का अपना अलग ढंग, क्या ये महज शब्द है? नहीं, इन शब्दों में एक पूरी जीवन पद्धति होती है। एक समाज, उसकी स्मृतियां, उसकी परंपराएं और उसकी संवेदनाएं। दरअसल भाषा और बोलियां संस्कृति की सबसे जीवंत आवाज हैं। हम जैसा जीते हैं वैसा ही बोलते हैं, और जो बोलते हैं वो धीरे धीरे हमारी पहचान का हिस्सा बन जाता है। हमारे देश की खूबसूरती ही इसकी विविधता है। यहाँ भाषा बदलती है तो उसके साथ लोक बदलता है, लय बदलती है, संबोधन बदल जाते हैं, लेकिन भावनाओं की धड़कन वही रहती है। हिंदी की अपनी खूबसूरती इसी में है कि उसने इस विविधता से संवाद किया। अलग अलग भारतीय भाषाओं, बोलियों और लोक परंपराओं से शब्द और भाव ग्रहण किए, यहाँ तक कि विदेशी भाषाओं से भी। इसीलिए हिंदी कोई बंद कमरा नहीं, बल्कि कई दिशाओं से आती हुई सांस्कृतिक हवाओं के लिए एक खुली खिड़की है। और जब कोई भी भाषा संस्कृति को अपने भीतर समेटती है तो वो सिर्फ बोलने का माध्यम नहीं रहती, वो हमें अपने होने का अर्थ भी बताती है। भाषा से संस्कृति की ओर और संस्कृति से प्रकृति की ओर, अब एक ऐसी यात्रा जिसमें रास्ता केवल पैरों से नहीं स्मृतियों और संवेदनाओं से भी तय होता है। नर्मदा, जिसे भारत की जीवनदायिनी नदियों में से एक माना जाता है, जिसके तटों पर सभ्यताएं, लोक विश्वास और अनगिनत कथाएं आकार लेती रही हैं। विश्व नदी दिवस के उपलक्ष्य में सुनिए प्रख्यात चित्रकार, लेखक और नर्मदा प्रेमी स्वर्गीय अमृतलाल वेगड़ के स्वरों में उनकी नर्मदा परिक्रमा के वृत्तांत का एक अंश, तीरे तीरे नर्मदा।
1: हम लोग नर्मदा पदयात्रा कर रहे थे और अमरकंटक जा रहे थे। छिनगांव का कुआं गांव के बाहर एक घाटी में था। मेरे साथी बड़े सवेरे वहां जाकर नहाए। मैं गया जरूर पर नहाया नहीं, ठंड के कारण हिम्मत ही न हुई। मन को समझाया, नहाऊंगा तो नर्मदा में, कुओं तालाबों पर नहीं। कह हंसा मोती चुगे, कह भूखे रही जाए। छिनगांव से बरछा, कच्ची धूल भरी सड़क से उतरने लगे तो नीचे दूर मैदान में से बहती हुई धूप नहाई नर्मदा दिखाई दी। अब प्रायः अमरकंटक तक नर्मदा मैदान में से ही बहती है। पंचमनाथ पुजारी जब 48 बरस का था तभी पत्नी का देहांत हो गया था। अभी 70 का है और पूरी तरह से स्वस्थ है। कहता है, मैं बाहर भी हूं और भीतर भी हूं। अगर हम लोग भी बीच बीच में भीतर चले जाया करें और देखते रहें कि कहीं हमारी आत्मा को फफूंद तो नहीं लग गई तो कितना अच्छा हो। दूसरे दिन भी लगातार पानी बरसता रहा। हम कहीं जा नहीं सकते, लेकिन किसानों को कई दिनों से इस वर्षा की प्रतीक्षा थी। उनकी फसल सूख रही थी, उसे नया जीवन मिला। वैसे किसानों को इससे कहीं अधिक पानी की जरूरत थी। बादलों को आकाश से नीचे उतारने की विद्या केवल वनों को आती है। और हम अपने अधिकांश वन काट चुके हैं। अब बादलों को आकाश की अटारी से नीचे धरती पर भला कौन उतारे। रात लुकामपुर में रहे। रात्रि के अंतिम प्रहर में ओस गिरनी शुरू हो गई थी। एक तो कड़ाके की ठंड, ऊपर से ओस की बुंदनियां, सवेरे घना कोहरा। कोहरे के छटने का काफी इंतजार किया, लेकिन छटा नहीं तो कोहरे और ओस की फुहार में ही चल दिए। चलते चलते आसपास के सौंदर्य को मन में उतारता जाता, सोचता क्या इस सौंदर्य की गूंज अपनी कृतियों में पैदा कर सकूंगा। लेकिन इसकी चिंता अभी क्यों करूं, अभी तो इसका भरपूर आनंद लूं, अपने हृदय में उतार लूं और पकने के लिए वहीं छोड़ दूं। समय आने पर वह स्वयं बाहर आएगा, इसमें समय लगता है। अगर मैं कलाकार हूं तो मुझ में धैर्य होना चाहिए। दोपहर को खाना नहीं बनाते, लेकिन रामघाट के प्रपातों को देखकर लगा कि आज खाना यही बने। देर तक मैं उन प्रपातों के पास मड़राता रहा। शाम तक दूधी संगम पहुंच गए, लेकिन एक ग्रामीण ने कहा कि आप दूधी पार करके हर्रा जाइए, वहां कहीं न कहीं रहने की व्यवस्था हो जाएगी। आधी रात को आकाश में शरद पूर्णिमा का चंद्र था, चंदन का घाट और पूर्णों का चांद। अपनी नर्मदा परिक्रमा के दौरान मुझे कई पूर्णिमाएं देखने का अवसर मिला है, और हर बार मैंने नई नई उपमाओं से चांद और चांदनी का वर्णन किया है। सवेरे आगे बढ़े, बसंतपुर और कंचनपुर होते हुए ठाड़ पातर पहुंचे। इस बार की यात्रा में एक सुखद परिवर्तन देखने मिला। अधिकांश गांव में प्राथमिक पाठशालाएं खुल गई हैं और बच्चे पढ़ भी रहे हैं। जहां भी शाला मिली हम वहां जरूर गए, और शिक्षक से अनुमति लेकर मैं बच्चों को नर्मदा के बारे में बताता। अगर बच्चे जरा बड़े होते तो अपनी पुस्तक सौंदर्य की नदी नर्मदा में से उनके गांव से संबंधित अंश पढ़कर सुनाता। नर्मदा तट के कई गांवों में मैंने बच्चों के समक्ष रचना पाठ किया, उसी निष्ठा से जिस निष्ठा से नवंबर 2001 में भोपाल के भारत भवन में साहित्यकारों और साहित्य प्रेमियों के समक्ष किया था। ठाड़ पाथर की पाठशाला को देखते ही मेरी बांछें खिल गईं। प्यारे बच्चों, हर बच्चे को सबसे अधिक प्यार अपनी माँ से होता है। माँ के बिना वह रह नहीं सकता। इससे हुआ यह कि जो भी चीज हमें बहुत प्यारी होती है उसे हम माँ कहने लगे। जैसे हमारा देश, हम उसे भारत माता कहते हैं। इसी प्रकार यह जो नर्मदा बह रही है ना, वह हमें इतनी प्यारी लगती है कि हम उसे भी माँ कहते हैं, नर्मदा मैया। बच्चों, तुम कितने भाग्यवान हो कि नर्मदा की गोद में पल भर रहे हो। पता नहीं बड़े होकर तुम इसी गांव में रहोगे या और कहीं जाओ।

0: गाय सूर्य देवता को समर्पित जिस उल्लास पूर्ण नृत्य उत्सव के साथ अपनी सामुदायिक जीवन ऊर्जा को व्यक्त करता है वो है बांग्ला। और इसी बांग्ला के लोक रंग को समेटे है हमारी अगली प्रस्तुति, ये लघु रूपक आशीर्वाद मिसी साजोंग का।
1: हरे भरे पहाड़, बादलों से घिरा आसमान और इसके बीच गूंजती ढोल की सामूहिक थाप, ये है मेघालय का गारो समुदाय का वांगला। एक ऐसा लोक उत्सव जिसमें संगीत है, नृत्य है और प्रकृति के प्रति आभार की भावना भी।
2: भारत के पूर्वोत्तर की जनजातीय परंपराओं में गारो समुदाय की अपनी विशिष्ट पहचान है। गारो समुदाय मुख्य रूप से मेघालय में निवास करता है, हालांकि असम, त्रिपुरा और नागालैंड में भी इनकी बसावटें हैं।
1: वांगला फसल कटाई के बाद मनाया जाने वाला पारंपरिक उत्सव है। ये मूलतः गारो समुदाय के सूर्य देवता मिसी साल्जो के प्रति कृतज्ञता और समृद्धि के उत्सव का अवसर है।
2: और इसकी सबसे खास पहचान है ढोल की सामूहिक थाप। शायद इसी वजह से वांगला को कहा जाता है 100 ढोलों का उत्सव।
1: इस जीवंत परंपरा की खूबसूरत झलक इस साल दिल्ली में आयोजित नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट फेस्टिवल यानी नेस्ट फेस्ट 2026 में भी देखने को मिली।
2: लेकिन आखिर वांगला नृत्य की खासियत क्या है, इसकी प्रस्तुति में कौन सी लय और भाव छुपे हैं?
3: मेरा नाम अनालिशा है, मैं मेघालय से हूँ, गारो ट्राइब से। तो ये हमारा वांगला डांस जो है वो एक्चुअली हमारे एंसेस्टर्स ने शुरू करा था। जो ट्राइब है मेघालय की उसका एक गॉड है जो कि हम बोलते हैं मिसी साल्जो, जो कि सन के गॉड हैं। तो हम उनको हमारी अच्छी हार्वेस्ट को प्रेज करने के लिए या फिर वर्शिप करने के लिए हम ये वांगला डांस परफॉर्म करते हैं। 100 ड्रम्स वांगला ये एक फेस्टिवल है, इस पे हम वांगला परफॉर्म करते हैं। हमारा जो ड्रम्स होता है हम खुद ड्रम्स बजा के हम डांस करते हैं। जो लड़के लोग होते हैं वो ड्रम्स, हमारे ड्रम्स जो होते हैं उसको दामा बोलते हैं, लंबे ड्रम होते हैं, वो लड़के लोग डांस के टाइम पे उसको कैरी करते हैं और वो बजाते हैं उस टाइम पे, तो वही हमारा इंस्ट्रूमेंट और म्यूजिक हो जाता है।
1: पारंपरिक दामा ढोल की थाप पर जब कलाकार एक साथ कदम मिलाते हैं तो जैसे पूरी प्रस्तुति में एक लय सी दौड़ जाती है।
2: ढोल की यही धुन वांगला को गति देती है, 100 ढोलों के उत्सव की पहचान भी देती है।
1: वांगला की खूबसूरती सिर्फ इसके लय और कदमों में नहीं, इसके रंगों में भी दिखाई देती है। पारंपरिक वेशभूषा के रंग बिरंगे परिधान और आभूषण इस नृत्य को एक अलग विजुअल पहचान देते हैं।
2: आइए सुनते हैं अनालिशा को।
3: जब हम ये डांस परफॉर्म करते हैं तो यूजुअली हम लोग अपना ट्रेडिशनल अटायर पहनते हैं। ट्रेडिशनल अटायर जैसे कि हम लोग सर पे बांधने का कपड़ा पहनते हैं, रैप अराउंड स्कर्ट होता है। मैं अगर गारो में बोलना चाहूँ तो एक दोमे होता है, दोमे जो होता है वो हम सर पे लगाते हैं, वो मुर्गी के पंख होते हैं, और एक खोतप होता है वो हम सर पे बांधते हैं कपड़ा जैसा होता है। तो फिर हम इयररिंग्स भी पहनते हैं, उसको हम नासापसी बोलते हैं, और नेकलेस भी पहनते हैं, लंबे लंबे नेकलेस, उसको हम रुकतुक बोलते हैं या फिर रुकमाचू। और हम जो बेल्ट पहनते हैं उसको हम सेंखी बोलते हैं, और जो हम हाथ में जो चूड़ियाँ पहनते हैं उसको हम चकसान बोलते हैं, हाँ, और जो हम नीचे जो रैप अराउंड स्कर्ट पहनते हैं उसको हम मंदा बोलते हैं।
2: इस पूरी प्रस्तुति का नेतृत्व करने वाला एक खास कलाकार भी होता है जिसे कहा जाता है मदग्रिक। आइए सुनते हैं रियोशन से।
4: तो जो मदग्रिक का जो ड्रेस है वो सबसे अलग होता है, क्योंकि वो सबसे बड़ा वॉरियर होता है जो अपने कम्युनिटी को लीड करेगा। तो उसका जो कपड़ा होता है उसका पंद्रह होता है, जो वो गामसा की तरह उसको पहना जाता है उसको पंद्रह कहते हैं, और इसको रुकमाचू कहते हैं, जो हम गले में पहनते हैं उसको रुकमाचू कहते हैं। और उसके बाद हम डोमे भी पहनते हैं, डोमे बेसिकली जो बर्ड है, वाइल्ड बर्ड्स से उनको बनाया जाता है,

0: ये है गारो समुदाय का वांगला, जहां ढोल की हर थाप में उत्सव की खुशी है, हर कदम में सामूहिकता की लय है और हर रंग में अपनी संस्कृति पर गर्व।
1: समय बदला, जीवन शैली बदली, लेकिन वांगला की थाप आज भी गूंज रही है अपनी परंपरा, अपनी पहचान और अपनी जड़ों को साथ लेकर। संस्कृति भारती के लिए मैं हूँ प्रांजल।
0: और मैं नेत्रा।
2: आशीर्वाद मिसी सालजोंग का गारो समुदाय के वांगला नृत्य उत्सव पर केंद्रित लघु रूपक अभी आपने सुना। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। लोक से शास्त्र, परंपरा से पर्व और अब गणपति बप्पा की भक्ति और उत्सव धर्मता के रंग। भारत के अलग अलग हिस्सों में पर्वों की अपनी अपनी छवियां हैं, अपनी ध्वनियां हैं, अपनी परंपराएं हैं। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव तो जैसे सार्वजनिक जीवन और सांस्कृतिक चेतना का अभिन्न हिस्सा ही है। आइए सुनते हैं गणेश चतुर्थी या विनायक चतुर्थी पर ये विशेष प्रस्तुति गणपति बप्पा मोरया।

0: पुणे का गणेशोत्सव आज जिस तरह से पूरे जोश और उत्साह से मनाया जाता है, उसकी शुरुआत के पीछे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का बड़ा योगदान है। सन 1893 में लोकमान्य तिलक ने गणेशोत्सव को सार्वजनिक रूप दिया। उस समय गणपति की पूजा ज्यादातर घरों में ही होती थी। लोकमान्य तिलक ने गणपति उत्सव के बहाने लोगों को एक साथ लाया। गणेशोत्सव को उन्होंने अनंत चतुर्दशी तक मनाने की परंपरा को आगे बढ़ाया। धीरे धीरे पूजा के साथ भजन, कीर्तन, भाषण और तरह तरह के कार्यक्रम भी होने लगे। उस समय देश अंग्रेजों के शासन में था, इसलिए इन कार्यक्रमों के जरिए लोगों में जागरूकता और देश के लिए कुछ करने की भावना भी पैदा होने लगी। शुरुआत में सन 1893 में पुणे में 3 और मुंबई में 2 जगह सार्वजनिक गणेशोत्सव मनाया गया था। धीरे धीरे यह उत्सव पुणे से निकलकर महाराष्ट्र के दूसरे शहरों तक और अब तो सारे देश में ही नहीं विदेश में भी पहुंच गया है। पुणे के गणेशोत्सव की एक खास पहचान है यहाँ के प्रतिष्ठा प्राप्त 5 गणेश, जिसे मराठी में मानाचे 5 गणपति कहते हैं। इनमें श्री कस्बा गणपति को पुणे का ग्राम दैवत माना जाता है।
1: नमस्ते, मैं नीलेश वकील, कार्याध्यक्ष। मैं बात कर रहा हूँ पुणे के प्रथम नामांकित मंडल से, श्री कस्बा गणपति सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल से। 1893 में यानी 1893 में ये गणेशोत्सव मंडल की हमारे स्थापना हुई और तब से ये उत्सव चलते आ रहा है। पहला मान विसर्जन का यानी पहला नंबर हमको दिया जाता है। गणेशोत्सव क्या है तो कलावंत, विचारवंत, बुद्धिवंत इन लोगों का उत्सव यानी गणेशोत्सव, यानी सब लोग आके ये उत्सव सेलिब्रेट करते हैं। गणेशोत्सव की और एक खासियत है कि सामाजिक काम यानी सोशल वर्क। इसी तरह से हम लास्ट 25 साल से ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं।
0: इसके बाद तांबड़ी जोगेश्वरी, गुरुजी तालीम, तुलसी बाग

0: केसरीवाड़ा के गणपति आते हैं।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित तिलक, मैं अध्यक्ष हूँ केसरी गणेश उत्सव का। अलग अलग प्रोग्राम्स रखे जाते हैं केसरीवाड़ा में, कोई लेक्चर्स हो, म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स रखे जाते हैं, कॉम्पिटिशन रखी जाती है, ब्लड डोनेशन कैंप रखा जाता है। ऐसे पूरे 10 दिन कार्यक्रम केसरी गणेश उत्सव के माध्यम से किया जाता है। अगर कोई प्रेजेंट इशू हो तो उसके ऊपर भी लेक्चर्स ये केसरी गणेश उत्सव के माध्यम से हमेशा कंडक्ट किया जाता है।
0: गणपति की स्थापना से लेकर अनंत चतुर्दशी के विसर्जन तक पूरा शहर जैसे उत्सव में डूबा रहता है। कहीं ढोल ताशों की गूंज सुनाई देती है तो कहीं सुंदर सजावट और सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाई देते हैं।

0: श्रीमंत दगरूशेठ गणपति के बारे में हेमंत रास ने बताते हैं।
1: जय गणेश। श्रीमंत दगरूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणेशोत्सव 135 साल यहाँ पुणे में विराजमान हो रहे हैं। अभी श्रीमंत दगरूशेठ हलवाई गणपति का परमानेंट मंदिर हो गया है। यहाँ बहुत बड़ी भीड़ रहती है। उत्सव में 10 दिन में 2 करोड़ लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। इस साल हमने वृंदावन का प्रेम मंदिर यहाँ मंडप में बनाया है, जो दगरूशेठ हलवाई गणपति के दान पेटी में जो भाविक अपना योगदान देते हैं, उससे हम मानव सेवा का महामंदिर बनाते हैं।
0: भाऊ रंगारी गणेशोत्सव के अध्यक्ष संजीव जावड़े,
2: ये जो उत्सव जो चालू हुआ वो 1892 में भाऊ रंगारी इन्होंने चालू किया उनके साथीदारों के साथ, और उन्होंने एक मूर्ति बनाई जो राक्षस को वध करती है, और ये मूर्ति इको फ्रेंडली है। और 1892 से आज तक हमारे ट्रस्ट ने किसी के पास चंदा लिया नहीं है। हम गुलाल नहीं यूज करते, और तीसरी बात यानी हमारे जो म्यूजिक या गीत जो रहते वो भक्ति गीत रहते, और वो भी मॉडरेट लेवल नॉइस पे।
0: पुणे का गणेशोत्सव सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं, बल्कि लोगों को साथ लेने वाला, हमारी संस्कृति से जोड़ने वाला एक खास उत्सव बन गया है। गणपति बप्पा मोरिया, गणेश चतुर्थी या विनायक चतुर्थी पर ये विशेष प्रस्तुति आपने सुनी आकाशवाणी पुणे के सौजन्य से। उत्सव हमें जोड़ते हैं और शिक्षा हमें सशक्त बनाती है। साक्षरता केवल अक्षरों को पहचान लेने का नाम नहीं, ये अपने अधिकारों को समझने, अपने निर्णय स्वयं लेने और दुनिया को नए नजरिए से देखने की क्षमता भी है। शिक्षक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के उपलक्ष्य में अब एक ऐसी कहानी जिसने साक्षरता की उपलब्धि को एक भौगोलिक पहचान से जोड़ दिया, मिजोरम की उस यात्रा की कहानी जिसने उसे साक्षरता के शिखर तक पहुंचाया। सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, साक्षरता का मिजो शिखर।
3: साक्षरता का अर्थ केवल वर्णमाला पहचानना या हस्ताक्षर करना नहीं है। वास्तविक साक्षरता वो है जो नागरिक को अपने अधिकारों, जिम्मेदारियों और समाज के प्रति उसके योगदान का एहसास भी कराए। हाँ, शुरुआत जरूर अक्षरों की पहचान से होती है।
4: सितंबर का ये समय देश भर में पठन पाठन और गुरु परंपरा के सामाजिक महत्व पर मंथन का अवसर देता है। ये समय हमें ये देखने का अवसर भी देता है कि नीतियाँ कागजों से उतरकर धरातल पर कितना प्रभाव छोड़ रही हैं।
3: इसी उजाले की मिसाल बनकर उभरा है भारत के पूर्वोत्तर का सुंदर राज्य मिजोरम। भारत सरकार के नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम ने 98.2% की कार्यात्मक साक्षरता हासिल करके देश में पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा प्राप्त किया है।
4: पर जानते हैं, दुर्गम पहाड़ियों और बीहड़ रास्तों के बीच बसी आबादी में इतना बड़ा बदलाव केवल कागजी दावों से नहीं होता। जब जमीन पर जाकर एक एक घर का सर्वे किया गया तो देखा गया कि आखिरी पड़ाव पर लगभग 3000 ऐसे लोग बचे थे जो अक्षरों की दुनिया से दूर थे।
3: और यहाँ मिजोरम की सांस्कृतिक चेतना का एक सुंदर रूप देखने को मिलता है, जिसे स्थानीय भाषा में कहते हैं तलांगना। जैसे ही सर्वे के आंकड़े सामने आए तो बिना किसी आर्थिक लाभ की परवाह किए लोकल वॉलंटियर्स और युवा खुद आगे आ गए।
4: इन युवाओं ने गांव-गांव जाकर अपने से बड़ों को पढ़ाना शुरू किया और एक अनोखा कम्युनिटी बॉन्ड बना, यानी तलांगना। इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और आधुनिक कम्युनिटी ड्रिवन मॉडल को समझने के लिए आइए सुनते हैं भारतीय जनसंचार संस्थान आइजोल परिसर के प्राध्यापक डॉक्टर वनलाल रोहता को।
5: मिजोरम में जीवन को करीब से देखने और समझने के बाद मैं यह कह सकता हूँ कि मिजो समुदाय का पढ़ना, पुस्तकों और शिक्षा के साथ ऐतिहासिक रूप से गहरा और विशिष्ट संबंध रहा है। जब ईसाई मिशनरी मिजोरम आए तो उन्होंने रोमन लिपि का प्रयोग करते हुए मिजो भाषा के लिखित रूप को विकसित और प्रचलित किया। मेरे लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण बात यह है कि पढ़ने की संस्कृति केवल उच्च शिक्षित लोगों तक सीमित नहीं थी। परिवारों में मनोरंजन और रुचि के लिए पढ़ने की भी एक मजबूत परंपरा रही है। सोशल मीडिया के दौर से पहले माता पिता द्वारा बच्चे को सोने से पहले कहानियां सुनना या सुनाना काफी आम बात थी। मेरा मानना है कि मिजोरम की उच्च साक्षरता दर की जड़ें समुदाय की मजबूत सहभागिता की संस्कृति में निहित है। मिजो दर्शन में निहित त्रावमेना अर्थात बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा के निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करना और उनकी सहायता करना, उल्लास अर्थात समाज के सभी वर्गों के लिए आजीवन सीखने की अवधारणा, या नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत भी इसी सामुदायिक भावनाओं को महत्व दिया गया है। किसी राज्य को पूर्ण साक्षर घोषित करने के लिए 95% साक्षरता को मानक माना गया है। उल्लास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक मुझे इसमें स्वयंसेवी शिक्षकों की भूमिका लगती है। मिजोरम में इन स्वयंसेवी शिक्षकों में विद्यार्थी, शिक्षक, संसाधन व्यक्ति और क्लस्टर रिसोर्सेज सेंटर के समन्वयक शामिल रहे हैं। उन्होंने विद्यालयों, सामुदायिक भवनों, वायम पुस्तकालय और आवश्यक पढ़ने पर शिक्षार्थियों के घरों तक जाकर भी सीखने सिखाने की गतिविधियां संचालित की।
6: कम्युनिटी हॉल्स, वायम लाइब्रेरीज एंड वेयर नेसेसरी इवन इन लर्नर्स होम्स एज वेल टू देयर ओन सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट।
4: मिजोरम के पहाड़ों पर जब सुबह सुबह धुंध छटती है तो किसी घर के बरामदे में बैठा बुजुर्ग या स्कूल की ओर बढ़ती कोई छोटी बच्ची, दोनों के हाथों में एक चीज समान मिलती है, एक खुली हुई किताब। संस्कृति भारती के लिए मैं नेत्रा
3: और मैं हूँ प्रांजल।
0: अभी आपने सुनी लघु प्रस्तुति साक्षरता का मिजो शिखर, प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। विश्व के या देश के अलग अलग हिस्सों को हम समझना चाहें, उन्हें जानना चाहें, तो करनी पड़ती है यात्राएं। और इसी महत्व को रेखांकित करने के लिए हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य पर्यटन के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व के प्रति दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाना है। और पर्यटन की यही मानवीय भूमिका हमें एक दूसरे महत्वपूर्ण दिवस की ओर ले जाती है, विश्व शांति दिवस। हर साल 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1981 में इस दिवस की घोषणा की थी और 2001 में इसे अहिंसा और युद्ध विराम के दिवस के रूप में निर्धारित किया। 2026 में विश्व शांति दिवस की थीम है इन्वेस्ट इन पीस फॉर एवरीवन, एवरीवेयर, एवरीडे, यानी शांति में निवेश हर व्यक्ति के लिए, हर जगह, हर दिन। और अब समय है उन विभूतियों के स्मरण का जिन्होंने अपने विचार, कर्म, कला और जीवन से भारतीय समाज और संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। महापुरुष श्रीमंत शंकर देव और श्री नारायण गुरु, स्वाधीनता और राष्ट्र चेतना के पुरोधा दादा भाई नौरोजी और अमर क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह, शिक्षाविद और समाज सेवी डॉक्टर एनी बेसेंट, महान दार्शनिक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति

0: डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और संगीत की दुनिया की दो महान स्वर साधिकाएं एम एस सुब्बुलक्ष्मी और लता मंगेशकर, जिनके सुरों ने भारतीय संगीत को देश और दुनिया तक का विस्तार दिया। इन सभी महान विभूतियों के कृतित्व और व्यक्तित्व को नमन करते हुए संपन्न होता है संस्कृति भारती का ये अंक। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सुप्रसिद्ध गायक आनंद वैद्य का शास्त्रीय गायन। अजमेर राजस्थान के निवासी आनंद वैद्य जी ने अपनी प्रारंभिक संगीत शिक्षा अजमेर की श्रीमती श्यामल नवरे जी और सांगली के पंडित ए.आर. पटवर्धन जी से प्राप्त की। तत्पश्चात किराना घराने के प्रसिद्ध गायक पंडित अजय पोहनकर जी के मार्गदर्शन में आपने हिंदुस्तानी शास्त्रीय ख्याल गायकी की शिक्षा ग्रहण की। पिछले 30 से अधिक वर्षों से देश के प्रतिष्ठित संगीत समारोहों में अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे आनंद वैद्य सुरमणि और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के युवा शास्त्रीय गायक पुरस्कार से सम्मानित हैं। आप आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार हैं। आनंद वैद्य जी अपने कार्यक्रम की शुरुआत राग गोरख कल्याण से कर रहे हैं। विलंबित ख्याल के बोल हैं धन धन भाग जो एक ताल में निबद्ध है। मध्यलय ख्याल के बोल हैं जा जा रे जा पथिकवा जो तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं अकबर हुसैन और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं राजेंद्र बनर्जी।

अभी आपने सुना राग गोरख कल्याण। आनंद वैद्य अब प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग जोग। विलंबित ख्याल के बोल हैं पिहरवा को बिरमायो, जो एक ताल में निबद्ध है। मध्यलय ख्याल के बोल हैं साजन मोरे घर आए, जो तीन ताल में निबद्ध है।

अभी आपने सुना आनंद वैद्य का गाया राग जोग। इसके साथ ही आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम संपन्न होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जयपुर द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपना लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में घोषणा पत्र अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम निर्माण की प्रक्रिया में सुधार आवश्यक हैं। इससे पहले उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यान्वयन तंत्र तीन पक्षों के समूह ट्रोइका के माध्यम से सभी पहलों और उनके परिणामों की निगरानी करेगा। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। प्रधानमंत्री ने समुद्री अधिकारियों और संबंधित देशों के राजनयिक मिशनों को जोड़ने के लिए आपात स्थिति में नाविक सहायता नेटवर्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच की एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदलने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स किसी देश के विरुद्ध नहीं है, बल्कि सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इसे और नहीं टाला जा सकता। प्रधानमंत्री ने बताया कि वैश्विक आर्थिक विकास को गति देने वाले देशों को वैश्विक आर्थिक शासन में भी उचित भूमिका निभानी चाहिए। ब्रिक्स देशों ने विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बढ़ते ध्रुवीकरण तथा गुटबाजी पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक सैन्य खर्च में लगातार वृद्धि पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। सदस्य देशों ने बहुपक्षीय दृष्टिकोण का आह्वान किया, जो सतत विकास, भूख और गरीबी उन्मूलन तथा जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर सभी देशों के दृष्टिकोण का सम्मान करता हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पुष्टि की है कि भारत और चीन को अपने संबंधों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष अगस्त में तियानचिन में बैठक के बाद भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों में निरंतर प्रगति का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज रेड कॉर्नर नोटिस के अंतर्गत गिरफ्तार अमृतपाल सिंह उर्फ गुरपाल सिंह को मोल्दोवा से भारत प्रत्यर्पित कराने में सफलता हासिल की। वांछित भगोड़े को विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और पंजाब पुलिस के समन्वय से वापस लाया गया। सीबीआई ने बताया कि अमृतपाल पंजाब में दर्ज कई गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित था। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स का फाइनल देर रात एलिना रिबाकिना और आर्याना सबालेंका के बीच खेला जाएगा। वहीं पुरुष सिंगल्स का फाइनल बेन शेल्टन और अलेक्जेंडर ज्वरेव के बीच होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Amrit Bhushan. The BRICS nations adopted New Delhi Declaration on the first day of their summit at Bharat Mandapam in New Delhi today. The declaration calls for commitment to stronger multilateralism and deeper cooperation, stresses on deeper economic and developmental cooperation, and advocates international order for developing countries to have greater influence in decision-making on global issues. The BRICS leaders expressed concern over ongoing conflicts in many parts of the world and the current state of polarization and fragmentation in the international order. The grouping also stressed cooperation on sustainable development. It highlighted the need to tackle hunger and poverty and strengthen the global response to climate change. Prime Minister Narendra Modi said in his closing remarks after adoption of the New Delhi Declaration that it provides a clear direction for the shared resolve of the member countries. He added that it is now their shared responsibility to translate these resolutions into tangible results.
1: आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। Representation, responsiveness और rule making तीनों में सुधार आवश्यक है आज अडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा देता है अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदले
2: The 18th BRICS summit kicked off this afternoon with Prime Minister Narendra Modi welcoming leaders of member countries at Bharat Mandapam. In his opening remarks, Prime Minister Modi proposed a BRICS continuity and implementation mechanism to ensure that the grouping's institutional momentum is maintained despite the changing chairship every year. He emphasized that the gap between decisions and their outcomes must be bridged through partnership and collective action.
1: Global South aaj vaishvik sankaton ki front row mein hai, lekin decision making ki back row mein hai. Hame is pyramid of privilege ko प्लेटफॉर्म और पार्टनरशिप में बदलना है जहां हर देश की आवाज हो हर सदस्य का स्टेक हो हर प्रयास के केंद्र में मानवता का विकास हो इस उद्देश्य से मैं प्रस्ताव रखता हूं कि हम मिलकर ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म के 10 प्रपोजल्स तैयार करें
2: The Prime Minister said BRICS countries will have to work on a new and ambitious agenda for the next 20 years. The Prime Minister also proposed to establish a seafarers emergency support network to connect the maritime authorities and diplomatic missions of relevant countries to facilitate assistance during difficult times. After the conclusion of the session on the first day, Prime Minister Modi and the BRICS leaders planted saplings at the venue outside the lawns of Bharat Mandapam and posed for a family photo. They also visited the India Innovates exhibition. Prime Minister Narendra Modi and President of China Xi Jinping today reaffirmed that India and China should take a strategic and long-term perspective of their ties and differences should not become disputes. During their bilateral meeting on the sidelines of BRICS summit, the two leaders welcomed the steady progress in India-China bilateral relations since their last meeting in Tianjin in August last year. Prime Minister Modi highlighted that both sides must be guided by three mutuals, mutual respect, mutual sensitivity and mutual interest. He emphasized that peace and tranquility in the border areas remains an essential basis for the continued development of bilateral relations. The two leaders expressed commitment to a fair, reasonable and mutually acceptable resolution of the boundary question proceeding from the political perspective of their overall bilateral relations and the long-term interests of the two peoples. External Affairs Ministry said in a statement that the two leaders took note of the progress in people-to-people ties and underscored the need to further promote cultural exchanges, business linkages and greater mobility between the two countries. A special cultural performance, Navarasa, the universe of shared emotions, was presented during the BRICS Leaders Summit Gala dinner hosted by the Prime Minister today at Bharat Mandapam in New Delhi. The cultural event featured the BRICS Symphony, One Rhythm, Many Cultures, bringing together musicians from BRICS members and partner countries in a unique collaborative musical performance. And in US Open tennis, defending champion Arina Sabalenka will take on Elena Rybakina in the women's singles final tonight. And that is the end of this news bulletin.
0: ये
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 11:10 हुए हैं। हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। सुबह 5:53 पर हम फिर होंगे आपके साथ। अब अनुमति